मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 13वीं तिथि, तदनुसार 3 जून सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:52 होने को हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

0: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है खेत खलियान कार्यक्रम। इसमें सुनिए वार्ता नींबू का खर्रा रोग। वार्ताकार हैं श्रीनिवास सहाय।
1: किसान भाइयों नमस्कार। साइट्रस कैंकर या नींबू का खर्रा रोग नींबू वंश या वृक्षों में ज्यादा होता है। इस रोग के लक्षण जैसा कि आपको ज्ञात है, कैंकर शब्द का मतलब होता है कैंसर। कैंसर का अपभ्रंश है जिसका मुख्य प्रभाव उत्तक क्षय के रूप में होता है। इस रोग का जब आक्रमण होता है तो वृक्ष की पत्तियां, टहनियां, कांटे, पुरानी शाखाओं और फलों आदि सभी भागों पर दिखाई देता है। सबसे पहले नींबू के खर्रा रोग का लक्षण पत्तियों के ऊपर छोटे गोल जलमय पारभासक धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। यह धब्बे पीत भूरे और उभरे हुए दानों के समान होते हैं। आरंभ में यह पत्ती की निचली सतह पर बनते हैं लेकिन बाद में दोनों सतहों पर बनते जाते हैं। जैसे जैसे रोग बढ़ता है इन धब्बों की सतह सफेद अथवा धूसर रंग की हो जाती है और अंत में यह मध्य से फटकर खुरदरे या रुक्ष कटोरे सदृश कॉक के समान काष्ठीय हो जाते हैं। इस गुण के कारण इसका नाम काष्ठ रोग पड़ा है। यह धब्बे आकार में बढ़कर 1 मिलीमीटर से 1 सेंटीमीटर तक व्यास के हो जाते हैं और फलों एवं टहनियों पर कई धब्बे एक साथ मिलकर लंबे बिछतों के रूप में दिखाई देते हैं। यह खुरदुरे बिछत एक पीत भूरे उभरे किनारे अथवा जलमय पीले प्रभा मंडल द्वारा घिरे रहते हैं। बड़ी शाखाओं पर यह बिछत या कैंकर अनियमित आकार के खुरदरे अथवा अत्यधिक स्पष्ट होते हैं। फलों पर बने कैंकर पत्तियों के कैंकर के समान ही होते हैं परंतु यहाँ इनके चारों ओर का पीला प्रभा मंडल अनुपस्थित होता है और इनके मध्य में कटोरे जैसा गड्ढा अधिक स्पष्ट होता है। फलों में क्षति केवल त्वचा तक ही सीमित रहती है और गुदे या रस में कोई क्षति नहीं दिखाई देती है, लेकिन इसके कारण बाजार भाव जो है फलों का, नींबू के फलों का कम मिलता है। आप देखें कि जब आप नींबू खरीदने बाजार में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि नींबू के ऊपर काले काले धब्बे पड़े हैं और इन धब्बों के कारण नींबू की गुणवत्ता जो है वो खराब हो गई है। वास्तव में उसकी गुणवत्ता जो है वो खराब नहीं होती है, लेकिन ये जरूर होता है कि बाजार भाव कम मिलते हैं, देखने में ये खराब लगता है। यह रोग जैसा कि आपको पता है जीवाणु के कारण होता है। जीवाणु परपोषी के भीतर प्राकृतिक अथवा कीटों एवं कांटों द्वारा बनाए गए घावों के रास्ते से पौधे में प्रवेश करता है। इसके द्वारा संक्रमण होता है और अनुकूल मौसम में यह रोग जो है वो फैलाता है। नींबू के खर्रा रोग के नियंत्रण की सबसे उपयुक्त विधि है रोगी वृक्षों को जला देना, परंतु ऐसा करना संभव नहीं होता है क्योंकि यदि उद्यान में यह व्यापक रूप से फैल गया तो पूरा उद्यान को आप नष्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि एक या दो पौधा जो है वो रोग ग्रसित हो गया तो उसको आप हटा सकते हैं। नींबू जाति के जब नए उद्यान आप लगाएं तो केवल रोग रहित नर्सरी मूल वृंदों का ही प्रयोग करें। पौधे पर नए उद्यान में रोपण करने से पहले 1% बोर्डो मिश्रण का छिड़काव कर दें। पुराने उद्यानों में रोगी टहनियों को काटकर वर्षा ऋतु के आरंभ में आप फेंक दें और वृक्षों के ऊपर 1% बोर्डेक्स मिश्रण का या ब्लाइटॉक्स का छिड़काव करें 15 से 20 दिनों के अंतराल पर, ताकि यह रोग जो है नहीं लगे। उसके अलावा कुछ प्रतिजैविक पदार्थ हैं, एंटीबायोटिक्स जैसे 10 लाख भाग जल में 500 या 1000 भाग स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट अथवा 2500 भाग फाइटोमाइसिन आदि का छिड़काव 15 दिनों के अंतराल पर आप कर सकते हैं। यदि इन घोल में 1% ग्लिसरीन को मिला दिया जाए तो पौधे के भागों पर आसान भली भांति से चिपक जाता है और लाभ जो है ज्यादा होता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि नीम की खली यदि पौधे की जड़ों में दें तो भी यह रोग नहीं होता है। रोग नियंत्रण की सबसे उपयुक्त विधि है नींबू जाति के वृक्षों को रोगरोधी किस्मों का आप प्रयोग करें और उसके बाद हरदम कटाई छटाई जो है वो करते रहें।
0: खेत खलियान कार्यक्रम के अंतर्गत आपने वार्ता सुनी नींबू का खर्रा रोग। वार्ताकार थे श्रीनिवास सहाय। प्रसारण आकाशवाणी भागलपुर से किया गया। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के भीतर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। बोर्ड ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल नई दिल्ली में बताया कि उनके साथ उनके मंत्रिमंडल के प्रमुख मंत्री भी होंगे और वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगी।
1: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इन वार्ताओं में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर भी चर्चा होगी।
2: ट्रांसपोर्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी।
0: भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह की भूमिका को खारिज कर दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने लंबित सीमा विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद है।
2: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं, उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क और संबंधों को मजबूती मिलेगी। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की 2 दिवसीय उच्च स्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त शांतमनु करेंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। यह आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार आज अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री के संबोधन के तुरंत बाद लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। प्रत्येक ब्लॉक नगर पालिका और कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में चयनित 100 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। तीसरे और अंतिम महिला T20 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर और 3 गेंद में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के तटवर्ती इलाकों गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सिक्किम में भी वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मिडी वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है आज का चिंतन मनन।

गांधी जी की इच्छा थी कि हर घर में चरखे का संगीत सुनाई दे, भारत का हर व्यक्ति चरखा चलाए, सूत काटे और अपने बनाए हुए एक छोटे वस्त्र को भी पहने। परंतु ऐसा हो ना सका। कबीर भी अपने बनाए हुए वस्त्र को ही पहनते थे। यूरोप की महारानियों ने भी इस व्यवहार को बहुत दिनों तक अपनाए रखा। सच ये है कि असली खादी का आनंद सूत काटकर पहनने वाले ही जानते हैं। विडंबना ये है कि जिस चरखे को गांधी जी ने अपनाया, उसे भारत नहीं अपना सका। क्या चरखे की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है? इस पर जरा और गौर करना होगा। सिलाई मशीन या इलेक्ट्रॉनिक के युग में कोई व्यक्ति चरखे की बात करे तो उसे पागल करार दिया जाता है। हम भूल जाते हैं कि सिलाई मशीन के आने पर भी घर में सुई रखने का चलन उठ नहीं गया है, और ना ही कंप्यूटर आ जाने से हाथ से लिखने की कला का अंत हो गया है। यदि होटलों के रहते हुए लोग घर में खाना बनाकर खा सकते हैं, तो मिलों के साथ साथ चरखे क्यों नहीं चला सकते? गांधी जी की नजर में चरखा कभी दिखावे की चीज नहीं रही। ये आर्थिक तकलीफ दूर करने का एक सरल तरीका है, शोषण से मुक्ति का रास्ता है, इंसानियत की सेवा है, उत्पादन और वितरण का विकेंद्रीकरण करने का विचार है, और सबसे ऊपर गांव को बचाने और आत्मनिर्भर बनाने का जरिया है। 1921 में मद्रास की एक सभा में गांधी जी ने कहा था, चरखा इस बात की खरी कसौटी है कि हमने अहिंसा की भावना को कहां तक आत्मसात किया है। गांधी जी को चरखा और खादी की ताकत पर भरोसा था। उन्होंने कहा था, तुम मेरे हाथ में खादी दो और मैं तुम्हारे हाथ में स्वराज दूंगा। हिंदू मुस्लिम एकता भी खादी के बल पर टिकी रहेगी। ये अमन की हिफाजत का जबरदस्त जरिया है। गांधी जी की इच्छा थी कि चरखा और अहिंसा को हर भारतीय अपनाए। विकास तो वास्तव में भीतर से ही होता है। यदि भीतर से ही प्रतिक्रिया नहीं हो तो बाहरी साधनों का कोई अर्थ नहीं रह जाता। आज गांधी जी को याद करने का अर्थ है उस चरखे की तलाश करना जिसके प्रयोग से अहिंसा और एकता की ताकत मिलती हो। उनके इस करामती चरखे की तलाश के लिए गांधी जी की नजर वाली चश्मे को पहनना होगा, उनके चरखा दर्शन को जिंदगी में उतारना होगा। 16 मई 1926 को नवजीवन में एक प्रकाशित लेख में उन्होंने कहा था, मैं चरखे को अपने लिए मोक्ष का द्वार मानता हूं। जब रविंद्रनाथ टैगोर ने द कल्ट ऑफ चरखा में चरखे की आलोचना की थी तो गांधी जी ने कहा था, मैं तो भगवद गीता में भी चरखे को ही देखता हूं।

सुन रहे थे चिंतन मनन, प्रसारण आकाशवाणी भागलपुर से किया गया। पेश है भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। आरंभ में सुनिए ये देश वंदना समूह स्वर में।

0: सुन रहे थे भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। प्रसारण आकाशवाणी भागलपुर से किया गया। प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम। इसमें सुनिए वार्ता कैंसर का होम्योपैथिक इलाज। वार्ताकार हैं डॉक्टर मोहम्मद अनवर हसन।
1: होम्योपैथिक इलाज। कैंसर एक जख्म की तरह होती है जिसमें लगातार वृद्धि होती रहती है। यह शरीर के बाहर या अंदर कहीं भी हो सकती है। इसकी उत्पत्ति शरीर के कोशिकाओं में वृद्धि होने के कारण भी हो सकती है। कैंसर के जितने भी रोग होते हैं उसमें 20% वंशानुगत के कारण से भी होता है। 100 से भी ज़्यादा प्रकार के कैंसर हैं। सभी का अपना चरित्रगत लक्षण होता है। प्रत्येक कैंसर शरीर के अलग अलग तरीके से प्रभावित करता है। यथापि कैंसर में समानता नहीं है, यानी सभी अलग अलग है, तो भी कुछ लक्षण ऐसे हैं जो कि ज़्यादातर कैंसर में पाए जाते हैं। थकावट। थकावट प्राय सभी प्रकार के कैंसर में पाया जाता है। यह कैंसर के ज़्यादा वृद्धि होने पर आरंभ होता है। बिना कारण के भार में कमी, बिना कारण के बिना भोजन कमी के शरीर के भार में कमी आ जाती है। ज़्यादातर रोगी बुखार का अनुभव करता है। इस बुखार का कारण या तो प्रतिरोधी क्षमता बल पर रोगों का आक्रमण हो या चिकित्सा के क्रम में भी बुखार आ सकता है। त्वचा में परिवर्तन जैसे जॉन्डिस, त्वचा का कालापन, अनावश्यक केश वृद्धि, लालीपन, त्वचा में खुजलाहट इत्यादि। कैंसर के वृद्धि होने पर प्राय दर्द रहता है, खासकर हड्डी के कैंसर में। वास्तव में अधिकृत चिकित्सकीय दृष्टि से कैंसर एक ऐसा रोग है जो प्राथमिक रूप से स्थानीय होता है और बाद में फैलता है। यह गंभीर तब होता है जब यह फैलकर पूरे शरीर को आक्रांत कर लेता है। कैंसर रोग से हाजमा बिल्कुल मंद पड़ जाती है। इसमें पाचक रस हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं बनती है। होम्योपैथिक में किसी रोग का कोई फिक्स्ड मेडिसिन नहीं होता है। रोगी एवं रोगों में पाए जाने वाले लक्षण समूह के आधार पर औषधि का निर्धारण कर चिकित्सा किया जाता है। इस रोग की कुछ प्रमुख औषधि है जिसे डॉक्टर जेटी केंट, डॉक्टर बोरिक, डॉक्टर एच ग्रीमर के अनुसार विभिन्न अंगों के कैंसर के लिए प्रमुख औषधियों का रिपर्टरी के अनुसार है, जो मैं संक्षेप में कहने जा रहा हूँ। जीभ का कैंसर, इसमें आर्सेनिक, ऑरमेट, कार्बोनेमिलिक, अस्थि कैंसर, एसिड फ्लोर, ऑरम, कोनियम। ओंट का कैंसर, आर्सेनिक एल्बम, कंडोरंगो, हेडेस्टिस, थूजा, सीपिया। मसूड़े का कैंसर में कार्बोवेज, मर्क कॉल, सिस्टस। गले के कैंसर में कार्बोनेमिलिज, लेकेसिस, आर्सेनिक, नाइट्रिक एसिड। लैरिंग्स के कैंसर में आर्सेनिक, नाइट्रिक एसिड। फेफड़े के कैंसर में आर्सेनिक आयोड, क्रियोजोट, फास्फोरस, लेकेसिस। नाक का कैंसर, ऑरम, कार्बोनेमिलिज, लेमना माइनर, मर्क सॉल, लेक कैनेनम। स्तन का कैंसर, कार्सिनोसिन, कार्बोनेमिलिज, कोनियम, काली आयोट, थूजा, सिस्टस कैनेडेंसी, लेपिसल्वा, बडियागा। आँख

0: के कैंसर में अर्सेनिक आयोड, एस्टेरियस रूबेंस, उधर के कैंसर में कॉन्डोरंगो, एसेटिक एसिड, ऑर्स, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कैंसर में ऑर्निथोगेलम, नाइट्रिक एसिड, यकृत के कैंसर में अर्स एल्बम, लाइकोपोडियम, कार्बोएनेमिलीज, गॉल ब्लैडर के कैंसर में कॉलेस्ट्रिनम, चेलिडोनियम, एपिस, प्रोस्टेट के कैंसर में सेवाल सेरुलेटा, चिमाफिला, थूजा, पेनिस के कैंसर में कोनियम, कैनाबिस सेटावा, जरायु कैंसर में सीपिया, क्यूरियोजोट, ऑरम का हम दे सकते हैं। और इस तरह से और लक्षण और रोगी के सिम्टम के आधार पर हम दूसरी तीसरी दवाओं का भी चुनाव कर सकते हैं।
1: आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत वार्ता, कैंसर का होम्योपैथिक इलाज। वार्ताकार थे डॉक्टर मोहम्मद अनवर हसन। प्रसारण आकाशवाणी भागलपुर से किया गया। प्रस्तुत है रामचरितमानस गान की अगली कड़ी। कलाकार हैं श्रीकांत पारगांवकर।

सिंहासन पर श्रीराम की पादुका की स्थापना करके भरत नंदीग्राम में पर्णकुटी बनवा वहां इस प्रकार अनासक्त भाव से निवास करने लगे हैं जिस प्रकार चंपा के उद्यान में भ्रमर अनासक्त रहता है। उनका शरीर दिनों दिन दुबला होता जा रहा है किंतु मुखमंडल की कांति पूर्ववत बनी हुई है। शरद ऋतु में जल घटता है किंतु बेंत विकसित होते हैं और कमल खिल जाते हैं। शम दम संयम और उपवास रूपी नक्षत्रों से भरत जी के हृदय का आकाश आलोकित है। उनकी निष्ठा और विश्वास ध्रुव तारे की भांति अटल हैं। 14 वर्ष की अवधि पूर्णिमा के समान है। श्री राम की स्मृति आकाश गंगा जैसी निर्दोष और प्रकाशमान है। भरत नित्य प्रति श्री राम की पादुका का पूजन करके उन्हीं से आज्ञा मांगकर राजकाज करते हैं। उनका परम पवित्र आचरण व्रत और संयम देखकर साधु संत भी सकुचा जाते हैं। अयोध्या कांड के समापन प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास ने इन शब्दों में अपने उद्गार व्यक्त किए हैं। श्री राम के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत का जन्म यदि न होता तो मुनियों के लिए भी दुष्प्राप्य यज्ञ नियम शम दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता।

रामचरितमानस गान आप सुन रहे थे। कलाकार थे श्रीकांत पारगांवकर। प्रसारण आकाशवाणी भागलपुर से किया गया। कार्यक्रम विवरण, इसमें सुनिए आज की सभा में प्रसारित होने वाले हमारे मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। 7 बजे से 7:55 तक आप सुनेंगे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। इसमें आप सुन सकते हैं मौसम का मिजाज, रेल सूचना, समाचार पत्रों की सुर्खियां, आज का इतिहास, रसरंग, काव्यांजलि और फिल्म संगीत। 9:06 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नगमे नए पुराने। 9:30 पर सुगम संगीत का प्रसारण होगा। कलाकार होंगे अनिल कुमार आनंद। 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। 10:30 पर लोकगीत का प्रसारण किया जाएगा। कलाकार होंगी रूपा सिंह। 11 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम नई फिल्मों से। 11:30 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गुलदस्ता का प्रसारण किया जाएगा। 12 बजे आप सुनेंगे शहरी महिलाओं का कार्यक्रम नारी लोक। 12:30 पर NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का प्रसारण किया जाएगा। 1 बजे आप सुनेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। कलाकार होंगे विश्वेश्वर प्रसाद शर्मा।

1:30 पर ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन आप सुन सकते हैं। 2:30 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट से का प्रसारण किया जाएगा। 3:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम रविंद्र संगीत, कलाकार होंगे चिन्मय चटर्जी। संध्या 5:00 युवाओं को संबोधित कार्यक्रम युवाणी का प्रसारण होगा। 5:30 पर फिल्म संगीत आप सुनेंगे। 6:00 आप सुन सकते हैं कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी। 7:10 पर श्रमिक जगत कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। प्रस्तुतकर्ता होंगे अतुल कुमार प्रियदर्शन। 7:52 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम सुरलहरी का प्रसारण किया जाएगा।

कलाकार होंगे कुमारी सुवर्णा घोष। 8 बजे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा आप सुन सकते हैं। रात्रि 9:30 पर चर्चा का विषय है, कार्यक्रम का प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। 10 बजे फिल्म संगीत आप सुनेंगे और 10:30 पर कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से प्रसारित किया जाएगा। कार्यक्रम विवरण में अभी आप सुन रहे थे आज की सभा में प्रसारित होने वाले हमारे मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

गुड मॉर्निंग विक्रमशिला श्रोताओं, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मौसम का मिजाज, रेल सूचना, समाचार पत्रों की सुर्खियां, आज का इतिहास, रसरंग, काव्यांजलि और फिल्म संगीत। तो शुरू करते हैं रसरंग से। कलाकार हैं गांधी कुमार मिस्त्री। इनकी आवाज़ में सुनिए ब्रह्मानंद का ये भजन।

0: श्रोताओं, आगे बढ़ते हुए सुनते हैं मौसम सूचना। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वानुमान अवधि 3 से 7 जून के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान साफ रहने एवं मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। हालांकि कल अरवल, औरंगाबाद, कैमूर, बक्सर एवं भोजपुर जिलों में गरज चमक के साथ हल्की वर्षा होने का अनुमान है एवं इसके बाद लू हीट वेव की स्थिति बनने की आशंका है। अधिकतम तापमान 37 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 60 से 65% तथा दोपहर में 20 से 25% रहने की संभावना है और अगले 2 दिनों तक 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पछुआ पश्चिमी हवा चलने की संभावना है, जबकि इसके बाद पूर्वानुमान अवधि के शेष दिनों में दक्षिण पूर्वी हवा चलने का अनुमान है।
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
3: 8700001-4242।
0: सूरदास के भजन को सुनिए। कलाकार हैं गांधी कुमार मिस्त्री।

श्रोताओं, आगे बढ़ते हुए सुनते हैं आज का इतिहास। 1947 को भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने देश के बंटवारे का आधिकारिक ऐलान किया था। आज के दिन 1915 में

ब्रिटिश सरकार ने नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड सर की उपाधि से सम्मानित

0: श्रोताओं, आगे बढ़ते हुए सुनते हैं काव्यांजलि कार्यक्रम के अंतर्गत काव्य पाठ। कवि हैं रामावतार राही।
1: कविता का शीर्षक है विज्ञापन। 66 साल का बूढ़ा लंगोटी पहन

ने लाठी के सहारे अखबार के दफ्तर में गया। 66 साल का बूढ़ा लंगोटी पहने लाठी के सहारे अखबार के दफ्तर में गया, अपनी खोई हुई बेटी के लिए एक गुमशुदा विज्ञापन निकलवाया। विज्ञापन का मजमून था इस प्रकार, मेरे प्यारे भोले भाले भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। मेरी बेटी आप लोगों के बीच कहीं खो गई है। अभागे बाप को छोड़ गई है। बरसों से बेटी की तलाश में दर दर भटक रहा हूँ। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे के दर पे सर पटक रहा हूँ। पहचान के लिए दुबला पतला सा शरीर, देखने में जैसे लगती हो कोई लकीर। सत्य अहिंसा की पुजारी, साथ में लिए भूख गरीबी लाचारी। कपड़ा पहने खादी, बेटी का नाम है आज़ादी। नोट ढूंढ कर लाने वाले को दूंगा मनचाहा इनाम, स्वतंत्रता का भरपूर वरदान। निवेदक अभागा बाप हिंदुस्तान, दूसरी रचना कुछ निकाय है। आग पर चढ़े दूध की तरह आज का हर आदमी, उबलता रहता है। कोई भी नहीं दबा पाता है भीतर की ज्वाला को, धरती की तरह। मोटर के पीछे भागती धूल चाहती है मोटर से आगे निकल जाना। वैसा कुछ भी नहीं होता, मोटर चलती जाती है अपनी दिशा को और धूल भटक जाती है अपनी राह से। आदमी एक पुराना विद्यार्थी है, आदिकाल से पढ़ रहा है सत्य हरिश्चंद्र नाटक, रामायण, महाभारत और गीता। परंतु बार बार रटने के बाद भी, भूल जाता है कि हरिश्चंद्र शमशान पर क्यों बिके, वाल्मीकि कौन थे और महाभारत क्यों हुआ। तीसरी रचना, झूठ बोलना ही होगा। हर रात सोने के पहले यह निर्णय लेता हूँ कि कल से झूठ नहीं बोलूँगा। लेकिन कल जो ही नींद टूटती है कि पेट खाली नजर आता है और बिस्तर छोड़ने के पहले ही क्षमा याचना कर लेता हूँ कि प्रभु रात जो मैंने वादा किया था उसे नहीं निभा सकूँगा, क्योंकि रात में मेरा पेट भरा था लेकिन अभी तो ये खाली है, और इसे भरने के लिए झूठ बोलना ही होगा।

0: बदलना ही होगा। रचना बेटा बदल जाता है, बेटा बदल जाता है पर माँ नहीं बदलती है, बेटा बदल जाता है पर माँ नहीं बदलती है, बच्चों की हर सुख की खातिर, बेटा बदल जाता है पर माँ नहीं बदलती है, बच्चों की हर सुख की खातिर अंगारों पर चलती है, बेटा बदल जाता है पर माँ नहीं बदलती है, बेटा बीवी का रटा रटाया तोता है, बेटा बीवी का रटा रटाया तोता है एसी में सोता है, बेटा बीवी का रटा रटाया तोता है एसी में सोता है, बाहर दरवाजे पर बैठी माँ पंखा झलती है, बेटा बदल जाता है पर माँ नहीं बदलती है, बीमार माँ लेटी है खाट पर, बीमार माँ लेटी है खाट पर फिर भी खुश है बेटे की ठाट वाट पर, बीमार माँ लेटी है खाट पर फिर भी खुश है बेटे की ठाट बाट पर, बहू मोबाइल लेकर छत पर टहलती है, बेटा बदल जाता है पर माँ नहीं बदलती है, रोटी के लिए खेतों में गढ़ती है भर दिन घास, रोटी के लिए खेतों में गढ़ती है भर दिन घास, बेटा का नाम है दुर्गा दास, बेटे की हरकत से माँ दहलती है, बेटा बदल जाता है पर माँ नहीं बदलता है बदलती है, जन्म से लेकर जवानी तक माँ बच्चों को देती है सहारा, जन्म से लेकर जवानी तक माँ बच्चों को देती है सहारा, बहू आते ही माँ को कर देता किनारा, ऐसे बेटे को पा, बहू आते ही माँ को कर देता किनारा, ऐसे बेटे को पाकर माँ हाथ मलती है, बेटा बदल जाता है पर माँ नहीं बदलती है। अंतिम रचना है बिजली के नाम प्रेम पत्र। मेरे प्राणों की प्राण घर की आन वान शान, तुम अचानक बार बार बिना कहे सुने कहाँ गुम हो जाती हो, मेरे प्राणों की प्राण घर की आन वान शान, तुम अचानक बार बार बिना कहे कहाँ गुम हो जाती हो, किस कलमुहे के साथ रंगरेलियाँ मनाने चली जाती हो, तुम अचानक बार बार बिना कहे सुने कहाँ गुम हो जाती हो, किस कलमुहे के साथ रंगरेलियाँ मनाने चली जाती हो, मत पूछो मेरी रानी कैसे सुनाऊँ अपनी दर्द भरी कहानी, तुम्हारे बगैर घर का कोना कोना लगता है सूना सूना, तुम्हारे बगैर घर का कोना कोना लगता है सूना सूना, अंधेरे में सोता हूँ उल्लू सा जीवन जीता हूँ, अंधेरे में सोता हूँ उल्लू सा जीवन जीता हूँ, कोने में पड़ा फ्रीज टीवी वॉशिंग मशीन रोए, कूलर एसी पंखा बिरह गीत गाए, इन दिनों इतना फूट फूट कर रो रहा हूँ कि जितना कि पिता के मरने के बाद भी न रोया था, इन दिनों इतना फूट फूट कर रो रहा हूँ कि जितना कि पिता के मरने के बाद भी न रोया था, खैर कोई बात नहीं मेरी जान तुम मुझसे मिलने ज़रूर आना, खैर कोई बात नहीं तुम मुझसे मेरे घर मिलने ज़रूर आना, काली रात में तुम्हारे इंतज़ार में और न तड़पाओ, यही है मेरी दर्द भरी कहानी, अस्थाई रूप से शीघ्र चली आओ मेरी बिजली रानी, और न तड़पाओ यही है मेरी दर्द भरी कहानी, अस्थाई रूप से शीघ्र चली आओ मेरी बिजली रानी, अंत में झेलता हुआ हर तबाही तुम्हारा आशिक राही।
1: श्रोताओं, आपने काव्यांजलि कार्यक्रम के अंतर्गत काव्य पाठ सुना, कवि थे रामावतार राही। आगे बढ़ते हुए अब सुनते हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत फिल्म है मुस्कान, आवाज़ें सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल की, गीत लिखा है समीर ने और संगीत रचना है निखिल विनय का।

श्रोताओं, आगे बढ़ते हुए सुनते हैं रेल सूचना। भागलपुर रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेनों की सूचना। रेलवे स्टेशन भागलपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार गाड़ी संख्या 15553 भागलपुर से चलकर जयनगर को जाने वाली भागलपुर जयनगर एक्सप्रेस, ये गाड़ी सुबह 7:50 पर अपने सही समय से भागलपुर से जाएगी। गाड़ी संख्या 13016 जमालपुर से चलकर हावड़ा को जाने वाली हावड़ा कवि गुरु एक्सप्रेस, ये गाड़ी

0: वह 7:45 पर अपने सही समय पर भागलपुर को आएगी। गाड़ी संख्या 1, 2, 3, 6, 8 आनंद विहार से चलकर भागलपुर को आने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस, ये गाड़ी सुबह 8:15 पर अपने सही समय पर भागलपुर को आएगी। गाड़ी संख्या 1, 5, 6, 5, 8 कामाख्या से चलकर दिल्ली को जाने वाली ब्रह्मपुत्र मेल, ये गाड़ी सुबह 8:05 पर अपने सही समय पर भागलपुर को आएगी। गाड़ी संख्या 5, 3, 4, 1, 6 जमालपुर से चलकर साहेबगंज को जाने वाली जमालपुर साहेबगंज पैसेंजर, ये गाड़ी सुबह 8:37 पर अपने सही समय पर भागलपुर को आएगी। गाड़ी संख्या 1, 5, 6, 4, 8 भागलपुर से चलकर लोकमान तिलक तक जाने वाली भागलपुर लोकमान तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस, ये गाड़ी लगभग 5:42 विलंब से भागलपुर आने की संभावना है, जिसका सही समय सुबह 8:30 है। गाड़ी संख्या 1, 3, 4, 0, 3 रांची से चलकर भागलपुर को आने वाली वनांचल एक्सप्रेस, ये गाड़ी सुबह 9 अपने सही समय पर भागलपुर को आएगी। गाड़ी संख्या 6, 3, 4, 3, 1 साहेबगंज से चलकर जमालपुर को जाने वाली साहेबगंज जमालपुर मेमू, ये गाड़ी सुबह 9:15 पर अपने सही समय पर भागलपुर को आएगी। गाड़ी संख्या 1, 3, 4, 0, 9 मालदा से चलकर क्यूल को जाने वाली मालदा क्यूल इंटरसिटी एक्सप्रेस, ये गाड़ी सुबह 9:35 पर अपने सही समय पर भागलपुर को आएगी। गाड़ी संख्या 1, 3, 2, 4, 1 बांका से चलकर राजेंद्र नगर को जाने वाली बांका राजेंद्र नगर इंटरसिटी एक्सप्रेस, ये गाड़ी सुबह 10:15 पर अपने सही समय पर भागलपुर को आएगी। और गाड़ी संख्या 1, 2, 3, 6, 7 भागलपुर से चलकर आनंद विहार को जाने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस, ये गाड़ी सुबह 11:55 पर अपने सही समय से भागलपुर से जाएगी।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 यानी 90 जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: नाम फिल्म का गीत सुनिए, पंकज उदास और साथी की आवाजों में। गीत आनंद बख्शी के हैं और संगीत रचना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

श्रोताओं, आगे बढ़ते हुए सुनते हैं समाचार पत्रों की सुर्खियां। बिहार के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सीधी नौकरी। TMBU स्नातक में नामांकन की पहली मेधा सूची जारी। सीजन रिव्यू, IPL 19 बैटर्स के नाम रहा 10% ज्यादा छक्के लगे। पहली बार विदेशियों से तेज रहे भारतीय। इंडोनेशिया ओपन, अब ओलंपिक चैंपियन से भिड़ेंगी सिंधु। और टेनिस, फ्रेंच ओपन में पहली बार खेला गया महिलाओं का नाइट मैच, सवालेंका ने ओसाका को हराया। अब सुनिए फिल्म आशिकी का ये गीत कुमार सानू की आवाज़ में।

ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे क्रमशः समाचार प्रभात, मॉर्निंग न्यूज, खबरनामा हमारे दिल्ली केंद्र से और 8:48 पर प्रादेशिक समाचार हमारे पटना केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डी के शिव कुमार आज दोपहर कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल में आज से शुरू होगी अन्नपूर्णा योजना, पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेगी 3,000 रुपए की सहायता। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी बधाई। जर्मनी ने हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त की। भारत ने कहा इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा। और महिला क्रिकेट में मेजबान इंग्लैंड ने तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। एक रिपोर्ट।
4: भारत और वेनेजुएला के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, विशेषकर ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा कई क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, दवाएं, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, दवा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी सुविधाओं का करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य सहयोग के अवसर को तलाशना और भारत की तकनीकी तथा औद्योगिक क्षमताओं के बारे में जानकारी हासिल करना है। दीपेंद्र और ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
3: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डी के शिव कुमार आज कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 8 बार के विधायक डी के शिव कुमार बेंगलुरु के लोक भवन स्थित ग्लास हाउस में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। 28 मई को सिद्धरमैया के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस विधायक दल ने 64 वर्षीय डी के शिव कुमार को अपना नेता चुना था। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित कई प्रमुख नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार आज एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याणकारी पहल अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इस योजना का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: पहले चरण में लाभार्थियों को बैंक खाते में आज से ही 3,000 रुपए भेजना शुरू होगा। इस योजना से लगभग 2 करोड़ महिला उपभोक्ताओं को लाभ मिलने की संभावनाएं हैं। नवान्न में दोपहर 12:30 बजे उद्घाटन समारोह में महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की मंत्री अग्निमित्रा पल उपस्थित रहेंगी। साथ ही राज्य की सभी ब्लॉक, नगर पालिकाएं और कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित होगा। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के प्रत्येक ब्लॉक और नगर पालिका से जुड़ा रहेगा। पूरे कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए जिला अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। उद्घाटन के बाद प्रत्येक ब्लॉक और नगर पालिका क्षेत्र में चुने गए

0: अन्नपूर्णा योजना लाभार्थियों को अनुमोदन पत्र प्रदान किया जाएगा। काशफिन नहार, आकाशवाणी संवाद, कोलकाता।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की।
2: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं जीएसटी ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98,00,000 से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिल रही है।
3: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित हो गया। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको सहूलियत हो रही है।
2: वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है जो बाजार से 50-80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिलती है।
4: दवाई ले रहा हूँ, सस्ती दवाई मिलती है, डॉक्टर का विश्वास है कि जन औषधि से दवाई खरीदे।
2: वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40,00,000 करोड़ रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्रीय शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। राष्ट्रपति बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र में प्रशिक्षण केंद्र का वर्चुअल रूप से उद्घाटन करेंगी। वे देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में स्थापित 75 अंतरिक्ष प्रयोगशालाओं का भी उद्घाटन करेंगी। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली प्रत्यक्ष तकनीकी बैठक आज ओडिशा के पुरी में शुरू होगी। 3 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य और साझेदार देशों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ भाग लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से अनुचित और संवैधानिक रूप से गलत है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य चुनाव आयोग की 2 दिन की उच्च स्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य चुनाव आयुक्त शांत मनु करेंगे। सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक WPI को धीरे धीरे समाप्त करने और उसकी जगह एक व्यापक उत्पादक मूल्य सूचकांक PPI प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। ये निर्णय देश की मुद्रास्फीति और मूल्य निर्धारण डेटा संरचना को आधुनिक बनाने और इसे वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियों के अनुरूप बनाने के लिए लिया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि WPI के आधार वर्ष को 2011-12 से संशोधित करके 2022-23 करने की मंजूरी दी गई है। संशोधित थोक मूल्य सूचकांक और नया उत्पादक मूल्य सूचकांक 15 जून को जारी किया जाएगा। सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि नामांकन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्हें 99 वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देश कल 2027-28 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्यों का भी चुनाव करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने डॉक्टर खलीलुर रहमान को अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई दी है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि वे भारत और बांग्लादेश की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने और बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए डॉक्टर रहमान के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क बढ़ेंगे और संबंधों को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। और बात खेलों की, तीसरे और अंतिम महिला 2020 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर 3 गेंदों में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच जीत लिया। एलिस कैप्सी प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई, साथ ही प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी उन्हीं को मिला। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गरज चमक के साथ आंधी चलने की चेतावनी जारी की है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक केरलम और माहे में अत्यधिक वर्षा का अनुमान भी व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: धन्यवाद विशाल। CBSE के ऑन स्क्रीन मार्किंग विवाद के बीच केंद्र सरकार की बड़ी कार्रवाई, आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, CBSE चेयरमैन और सचिव हटाए गए, OSM टेंडर की जांच के लिए समिति गठित, 1 महीने में देगी रिपोर्ट। वहीं जनसत्ता ने लिखा है, पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर साइबर हमला, CBSE ने कहा सेवाओं को बाधित करने का प्रयास। नेपाल से सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की भूमिका का सवाल ही नहीं, विदेश मंत्रालय का ये बयान दैनिक जागरण में है। विवाद सुलझाने में चीन और ब्रिटेन को शामिल करने की नेपाल की मांग, भारत ने की खारिज। शिक्षा की शक्ति से आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें युवा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये आह्वान वीर अर्जुन में है। एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने कहा, जब युवा शिक्षा और प्रौद्योगिकी की शक्ति के बल पर आगे बढ़ेंगे तो एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस में टूट की आशंका को भी अखबारों ने प्रमुखता दी है। पंजाब केसरी ने लिखा है, तृणमूल के 50 विधायकों का बगावती रुख, विधानसभा अध्यक्ष को सौंप सकते हैं प्रस्ताव। इस खबर पर राजस्थान पत्रिका ने संपादकीय में लिखा है, राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को आज आत्ममंथन की जरूरत है। सत्ता जाते ही उन्हें ना विचारधारा की चिंता रहती है और ना ही अनुशासन की। बीते 15 वर्ष में पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज रही तृणमूल कांग्रेस में अब जो कुछ हो रहा है वो खुली बगावत की तरह है। दुश्मन की वायु रक्षा को तबाह करेगी रुद्रम 2 मिसाइल, अमर उजाला के अनुसार रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और वायुसेना ने हवा से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डी के शिव कुमार आज दोपहर बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।

0: the inaugural session of the conclave. The event is being held as part of the ongoing Janjatiya Garima Utsav 2026. President Draupadi Murmu will virtually inaugurate the training fab established at the Center for Nanoscience and Engineering at the Indian Institute of Science, Bengaluru. She will also inaugurate 75 space labs established across Eklavya model residential schools in different parts of the country. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. India has undergone a remarkable transformation driven by the principles of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi in the last 12 years. During this period, the Modi government carried out many flagship initiatives for the welfare and empowerment of the poor, farmers, women and youth. Akashwani News brings you a special feature on the government's efforts over the last 12 years across key sectors. Today, we focus on the measures taken by the government towards the welfare of the middle class. A report.
1: Over the past 12 years, the government has empowered India's middle class through wide-ranging reforms. Simplified taxation and stronger banking, insurance and pension systems have enhanced their financial security. Under the new tax regime, individuals earning up to 12 lakh rupees annually are paying zero tax. For the middle class, specifically, GST has delivered several tangible benefits by simplifying taxes and lowering everyday costs. The Pradhan Mantri Awas Yojana Urban, launched in 2015, has transformed the lives of crores of people by providing them with secure housing. Out of the total 1 crore 25 lakh sanctioned houses, over 98 lakhs are completed or delivered to beneficiaries across the country so far. Talking to Akashwani News, Abhishek Kumar from Uttar Pradesh said the scheme is ensuring housing for the poor and bringing relief to those living in rented accommodation.
2: My name is Abhishek Kumar. I have been in Pradhan Mantri Awas Yojana for 2 years. After applying, I have been given a lottery draw के माध्यम से मकान आवंटित हो गया। आवंटित होने के बाद उसकी जो किस्तें बननी है वो मैं जमा कर रहा हूँ। जमा होने के बाद उसकी रजिस्ट्री आने वाले कुछ समय में हो जाएगी। उसके बाद मेरे को मकान आवंटित हो जाएगा, रजिस्ट्री कब्जा हो जाएगा। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं।
1: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हैज एनेबल्ड 43.52 करोड़ हेल्थ कार्ड एक्सपेंडिंग एक्सेस टू हेल्थ केयर प्रोटेक्शन व्हाइल प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना स्कीम इज प्रोवाइडिंग क्वालिटी जेनेरिक मेडिसिन एट 50-80% लोअर प्राइसेस थ्रू जन औषधि केंद्र। टॉकिंग टू आकाशवाणी न्यूज ब्रह्मदेव ऑफ बिहार सेड दैट द मेडिसिन एट दिस केंद्रज आर अवेलेबल एट वेरी अफोर्डेबल प्राइस देन द मार्केट।
3: मेरा नाम ब्रह्मदेव मालाका, मैं बिहार से हूँ, मधेपुरा जिला से। लगभग एक साल से यहाँ से दवाई ले रहा हूँ, सस्ती दवाई मिलती है। डॉक्टर का विश्वास है कि जन औषधि से दवाई खरीदे की सलाह पर हम लोग चलते हैं, बार बार दवा लेते हैं। यही दवा यदि बाहर में लेना चाहते हैं तो महंगी दवा मिलती है। तो सरकार की ये संस्था है, इससे गरीब की समस्या हल होती है।
1: द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लॉन्च्ड इन 2015 हैज आल्सो इवॉल्वड इनटू अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ एम्पावरमेंट। अंडर द स्कीम 40 लाख करोड़ रुपीज ऑफ लोन्स हैव बीन डिस्बर्स्ड टू द बेनिफिशियरीज सो फार। एज इनकम्स राइज एंड अपॉर्चुनिटीज एक्सपैंड, इंडियाज मिडिल क्लास इज एक्टिवली ड्राइविंग द नेशंस ग्रोथ एम्बिशन एंड फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी। आनंद कुमार, आकाशवाणी न्यूज, दिल्ली।
0: The government has decided to gradually phase out the wholesale price index and replace it with a comprehensive producer price index system. The decision was taken to modernize country's inflation and pricing data framework and align it with global best practices. The Commerce and Industry Ministry has said that the government has approved the revision of the base year of the wholesale price index from 2011-12 to 2022-23. Bangladesh's Foreign Minister Khalilur Rahman has been elected President of 81st Session of UN General Assembly. Dr. Rahman emerged victorious in a closely contested election held in UN General Assembly, garnering 99 votes against Cyprus Special Envoy for Multilateralism Andreas Kakouris, who got 91 votes. His one-year tenure as head of the Chief Deliberative, Policy-Making and Representative Organ of the United Nations will commence in September. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has congratulated Dr. Rahman on his election as UN General Assembly President. In a social media post, Dr. Jaishankar said, that he is looking forward to working closely with Dr. Rehman to advance the shared priorities of India and Bangladesh and strengthen multilateral cooperation. Indian nationals will no longer require an airport transit visa when travelling to a third country through German airports beginning today. German Embassy in India announced that the exemption will simplify travel for Indian citizens transiting through Germany on their way to other international destinations. The embassy described the decision as a reflection of the growing partnership between the two countries. It said the move underlines the German government's commitment to deepening ties between the two countries, facilitating the movement of people. India has welcomed the operationalization by Germany of the announcement waiving requirement of transit visa for Indian nationals transiting through Germany exclusively by air. External Affairs Ministry said that the announcement was made after discussions between Prime Minister Narendra Modi and Chancellor of Germany Friedrich Merz during his visit to India in January this year. The ministry said that this new arrangement would further enhance people-to-people ties between India and Germany. On to sports. In women's cricket, England sailed to a 6-wicket win over India in the third and final T20 international to clinch the series 2-1 at the county ground Taunton in England last night. India felt confident after taking 3 early wickets, but a commanding partnership between Heather Knight and Alice Capsey helped England chase down 180 with ease. India set a target of 181 runs against England. In reply, England scored 184 for 4 in 18.3 overs. Earlier, England won the toss and opted to bowl. Indian women made 180 for 5 in 20 overs. Alice Capsey was declared player of the match as well as player of the series. In badminton, PV Sindhu advanced to the second round of the Indonesia Open after overcoming a tough challenge in the opening match, returning to the world's top 10 rankings for the first time since October 2023. Sindhu defeated Thailand's Busanan Ongbamrungpan in the first round of the prestigious BWF Super 1000 tournament in Jakarta. However, it was disappointment for India in men's singles as Lakshya Sen crashed out in the opening round after suffering a defeat. Today in men's singles, HS Pranoy will face Ireland's Nat Nguyen and Ayush Shetty will meet China's Wang Hongyang. In men's doubles, the Indian duo of Sattvic Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty will begin their campaign against Malaysia's Sky King Hang and Arun Thai. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Subhadra Ramachandran.
4: Thank you, Shagun. All dailies lead with the centre's action in the wake of irregularities in CBSE exams. Hindustan Times opens with the headline, CBSE Chairman, Secretary shunted amid outcry, while the Tribune adds, Government forms panel to probe on-screen marking. Pioneer reports CBSE re-evaluation portal faces new cybersecurity challenges. Indian Express on its editorial page writes, Girls rewrite G-script, campus must keep pace. For the first time, more than 10,000 girls have qualified for admission to premier engineering institutions, including IITs. This year, G witnessed a striking improvement that has pushed the number of successful females up by almost 89% since 2019. In international news, Asian Age mentions Israel PM calls off Beirut strike after heated call with Trump, while the Pioneer reports Trump slams Netanyahu over Lebanon offensive. Times of India informs El Nino is rapidly developing and is set to impact global temperature and rainfall patterns under the headline World Meteorological Organization's El Nino Alert raises odds of severe impact on monsoon with 80% chance of onset during June-August period. And finally, under a piece titled Tigress Zenith Gives Birth to 4 Cubs in Odisha Simlipal, the Hindu informs the translocation effort aimed at enhancing the genetic diversity of tigers in Odisha Simlipal Tiger Reserve. Has reserved major boosting, adding a proud chapter to Odisha's natural resources and wildlife conservation efforts. With that, it's back to you, Shagun.
0: Thank you, Subhadra. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Venezuela's acting President Delcy Rodriguez to be on a 5-day visit to India beginning today. Senior Congress leader D.K. Shivkumar to be sworn in as Chief Minister of Karnataka this afternoon. West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari to launch Annapurna Yojana to provide 3,000 rupees every month to eligible women in the state today. Bangladesh Foreign Minister Khalilur Rahman elected president of 81st session of UN General Assembly. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar congratulates him. And in women's cricket, host England beat India by 6 wickets in third and final T20 international to seal 3-match series 2-1. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
5: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कौनैन हैदर। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वेनेजुएला की कारगुजार सदर डेल्सी रोड्रिग्ज आज से भारत के 5 रोजा दौरे पर रहेंगी। सीनियर कांग्रेस रहनुमा डी के शिव कुमार को आज से पहर कर्नाटक के वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया जाएगा। मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी रियासत में अहल खवातीन को 3,000 रुपये माहाना फराहम करने की अन्नपूर्णा योजना का आगाज करेंगे। बांग्लादेश के वजीर खारजा खलीलुर रहमान को अकवाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 81वें सेशन का सदर मुंतखब किया गया है। वजीर खारजा एस जयशंकर ने उन्हें मुबारकबाद दी। जर्मनी ने भारतीय बाशिंदों के लिए उसके हवाई अड्डे से गुजरकर जाने वाले मुसाफिरों के लिए ट्रांजिट वीजा की जरूरत आज से खत्म कर दी है। और खवातीन क्रिकेट में तीसरे और आखिरी T20 बैनल अक्वामी मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज 2-1 से जीत ली। अब खबरें तफसील से। वेनेजुएला की कारगुजार सदर डेल्सी रोड्रिग्ज आज से भारत के 5 रोजा दौरे पर रहेंगी। अपने दौरे के दौरान वो भारत वेनेजुएला के ताल्लुकात के पूरे मंजरनामे का जायजा लेने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ दो तरफा बातचीत करेंगी। दोनों ममालिक तिजारत सरमायाकारी तवानाई काबिल तजदीद तवानाई हिफ्जान सेहत और दवा साजी समेत अहम शोबों में बाहमी तआवुन के इम्कानात का जायजा लेंगे। कल नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने बताया कि वेनेजुएला के उमूर खारजा मईशत खजाने और साइंस और टेक्नोलॉजी से मुतालिक वजरा पर मुश्तमिल एक आला सतही वफद भी मोहतरमा रोड्रिग्स भी के हमरा भारत पहुंचेगा। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
6: भारत और वेनेजुएला के दरमियान खास तौर पर तवानाई और तजारत के शोबों में दोस्ताना ताल्लुकात हैं। इस दौरे से दो तरफा ताल्लुकात के मुस्तहकम होने और मुख्तलिफ शोबों में दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी ताउन में मजीद इजाफा होने की उम्मीद है। वजीर आजम के साथ बातचीत के दौरान तवानाई की यकीनी फराहमी तजारत और सरमायाकारी दवा साजी हिफ्जान सेहत नकलो हमल और काबिल तजदीद तवानाई समेत बाहमी मफाद के शोबों में ताउन को मुस्तहकम करने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वेनेजुएला का वफद तवानाई दवा साजी और ऑटोमोबाइल से मुतालिक शोबों से वाबस्ता इदारों का दौरा करेगा। इस दौरे का मकसद इश्तराक के मौके का जायजा लेना और भारत की तकनीकी और सनती सलाहियतों के बारे में अहम मालूमात हासिल करना है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
5: भारत की ब्रिक्स सदारत में आज ओडिशा के शहर पुरी में ब्रिक्स डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की पहली जाती तौर पर तकनीकी मीटिंग शुरू हो रही है। इस 3 रोजा मीटिंग में 11 ब्रिक्स और पार्टनर ममालिक के मंदुबीन पॉलिसी साज और आफात के बंदोबस्त के माहिरीन शिरकत करेंगे। इस मीटिंग में आलमी खित्ते जनूब में आफात के ताल्लुक से लचकदारी को मुस्तहकम करने पायदार तरक्की को फरोग देने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। सीनियर कांग्रेस रहनुमा डी के शिव कुमार को आज से पहर कर्नाटक के वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया जाएगा। रियासत के गवर्नर थावरचंद गहलोत आज शाम 4 बजे बेंगलुरु में वाकई लोक भवन में जनाब शिव कुमार और नई काबीना के अरकान को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाएंगे। इससे पहले जनाब सिद्धरमैया के वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा देने के बाद जनाब शिव कुमार के लिए इस आला ओहदे के लिए रास्ता साफ हो गया था। इसके साथ ही कर्नाटक कांग्रेस में लंबे अरसे से इक्तदार के लिए जारी रस्साकशी

0: मन हवाई अड्डों से होकर किसी तीसरे मुल्क जाएंगे तो उन्हें आज से ट्रांजिट वीजा की जरूरत नहीं होगी। भारत में जर्मन सिफारतखाने ने ऐलान किया है कि इस छूट से उन भारतीय शहरियों के सफर में सहूलत हो जाएगी जो जर्मनी के रास्ते किसी दूसरे मुल्क जाते हैं। भारत ने अपने शहरियों के लिए ट्रांजिट वीजा को खत्म करने के लिए जर्मनी के इस ऐलान का खैर मकदम किया है। वजारत खारजा ने कहा कि यह ऐलान इस साल जनवरी में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के दरमियान बातचीत के बाद किया गया है, जब जनाब फ्रेडरिक भारत के दौरे पर आए थे। वजारत ने कहा कि इस नए इंतजाम से दोनों मुल्कों के दरमियान अवाम से अवाम के दरमियान रिश्तों को मजीद फरोग हासिल होगा। जम्मू कश्मीर में रियासती इंतखाबी कमीशन आज से आला सतह की एक दो रोजा मीटिंग मुनाकिद करेगा। ये मीटिंग जिला इंतखाबी अफसरान और दीगर शख्सियतों के साथ की जाएगी, जिसका मकसद मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इस इलाके में पंचायत और ज़िला तरक्याती कौंसिल के इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेना है। हमारे नामा निगार ने बताया कि रियासती इंतखाबी कमिश्नर शांत मनु इस मीटिंग की सदारत करेंगे। जम्मू कश्मीर में पंचायत और ब्लॉक तरक्याती कौंसिलों का कामकाज 9 जनवरी 2024 को रोक दिया गया था। बल्दियाती इदारों की मुद्दत कार अक्टूबर-नवंबर 2023 और जिला तरक्याती कौंसिलों की मुद्दत कार 24 फरवरी 2026 को मुकम्मल हो गई थी। हुकूमत ने साल 2026 के प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार के लिए नामजदगियां तलब की हैं। नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। ये बावकार अवार्ड सदर जमहूरिया की जानिब से ऐसे बच्चों को अता किया जाता है जिन्होंने बहादुरी, सामाजिक खिदमत, माहौलियात, खेलकूद, आर्ट और कल्चर और साइंस और टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ मैदानों में गैर मामूली खिदमत अंजाम दी हों। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गरज चमक के साथ तूफानी झक्कड़ की सूरत हाल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। IMD ने केरला और माहे में अगले 2 से 3 दिनों के लिए शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात ने कल तक अंडमान और निकोबार जजायर, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, उत्तराखंड, मगरबी उत्तर प्रदेश और शिमाल मशरकी खित्ते में गरज चमक और तेज हवाएं चलने की भी पेशगोई की है। खवातीन क्रिकेट में कल रात टॉन्टन में खेले गए तीसरे और आखिरी T20 बैन अलावी मैच में मेजबान इंग्लैंड ने 6 विकेट से जीत हासिल करके भारत के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। हेथर नाइट और एलिस कैप्सी की शानदार शराकत दारी की बदौलत इंग्लैंड ने आसानी से 180 रन का निशाना हासिल कर लिया। एलिस कैप्सी को इस मैच और सीरीज की बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। इससे पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय खवातीन ने 5 विकेट के नुकसान पर 180 रन बनाए थे। इसके जवाब में इंग्लैंड ने 18.3 ओवर्स में 4 विकेट पर 184 रन बनाए। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया कौनन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के उर्दू अखबारात की शह सुर्खियाँ एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अखबार इनकलाब ने सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की हलफबरदारी से मुतल्लिक खबर को शह सुर्खी बनाया है। अखबार की सुर्खी है, 5 नए जजों को हलफ दिलाया गया, सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद 37 हुई। अखबार प्रताप की शह सुर्खी है, मोदी सरकार ने CBSE चेयरमैन व सेक्रेटरी को ओहदे से हटाया, पेपर लीक मामले में कोताहियों की जांच कराएगी हुकूमत। इसी अखबार की एक और सुर्खी है, दिल्ली में BJP सदर से नेपाल के वफद की मुलाकात। अखबारात की एक और अहम सुर्खी है, भारत और जनूबी अफ्रीका ने 2 तरफा रिश्तों को और मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया। अखबार प्रताप ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के इस बयान को सफ़े अव्वल पर जगह दी है कि मजबूत, खुशहाल और खुदकफील भारत की तामीर में ताउन दे कबायली नौजवान।
0: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वेनेजुएला की कारगुजार सदर डेल्सी रोड्रिग्स आज से भारत के 5 रोजा दौरे पर रहेंगी। सीनियर कांग्रेस रहनुमा DK शिवकुमार को आज से पहर कर्नाटक के वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया जाएगा। मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी रियासत में अहल खवातीन को ₹3,000 माहाना फराहम करने की अन्नपूर्णा योजना का आगाज करेंगे। बांग्लादेश के वजीर खारजा खलीलुरहमान को अकवामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 81वें सेशन का सदर मुंतखब किया गया है। वजीर खारजा SJ शंकर ने उन्हें मुबारकबाद दी। जर्मनी ने भारतीय बाशिंदों के लिए उसके हवाई अड्डे से गुजर कर जाने वाले मुसाफिरों के लिए ट्रांजिट वीजा की जरूरत आज से खत्म कर दी है। और खवातीन क्रिकेट में तीसरे और आखिरी टी20 बैन अलावामी मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज 2-1 से जीत ली। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: ये आकाशवाणी पटना है, कुछ ही देर बाद प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे।
3: सावधान, क्या आप जानते हैं आपके द्वारा पॉलिथीन में फेंका गया खाद्य पदार्थ पशुओं की जान ले सकता है। पॉलिथीन में लिपटा बचा हुआ खाद्य पदार्थ पशुओं का साइलेंट किलर बनता जा रहा है। खाद्य पदार्थों के साथ ये पॉलिथीन उनके पेट में जमा होकर पाचन तंत्र को बंद कर देता है, जिससे उनकी मौत तक हो सकती है। पॉलिथीन के कैरी बैग पर लगाए गए प्रतिबंध का पालन करें, उसे खुले में न फेंकें, बचे हुए खाद्य पदार्थों का सही निपटान करें, पॉलिथीन मुक्त समाज बनाएं, पशुधन बचाएं।
4: डेयरी एवं पशु संसाधन विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, राज्य में 25 चीनी मिलें 2030 तक चालू हो जाएंगी। न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया, 5 जून को पदभार ग्रहण करेंगी। सहयोग शिविर के दौरान अब तक 1,59,000 से अधिक मामलों का हुआ निपटारा, 2,500 पदाधिकारियों को जारी किया गया नोटिस। और मौसम विभाग ने पटना सहित राज्य के कई जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य में 25 चीनी मिलें 2030 तक चालू हो जाएंगी। मुख्यमंत्री श्री चौधरी ने मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर में आयोजित सहयोग शिविर को संबोधित करते हुए कहा कि अगले विधानसभा चुनाव में जब वोट मांगने आएंगे तब इन मिलों में काम शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने सरकारी आवास पर कब्जा जमाए बैठे लोगों को इससे जल्द खाली करने की चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा कि भवन निर्माण विभाग आवास आधिकारिक तौर पर आवंटित लोगों को सौंपेगा। श्री चौधरी ने विपक्षी नेताओं पर सरकारी संपत्ति को निजी संपत्ति समझकर कब्जा जमाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इसे हर हाल में खाली करना होगा।
1: कुछ लोगों को लगता है मेरा घर खाली हो जाएगा, पक्का खाली होगा, धरती पे कोई रोक नहीं सकता है, ये ध्यान रखिएगा। घर तो खाली करना ही पड़ेगा, कोई राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति राय बृहस्पतिवार को पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू की सेवानिवृत्ति के बाद शुक्रवार से पदभार ग्रहण करेंगी। इससे पहले न्यायमूर्ति मीनाक्षी सिक्किम उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश थीं। वे पटना हाई कोर्ट की दूसरी महिला और 48वीं मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण करेंगी। इधर देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। गौरतलब है कि न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर मुजफ्फरपुर के चैनपुर गांव के रहने वाले हैं। प्रदेश भर में आयोजित सहयोग शिविर के दौरान अब तक 81% मामलों का निष्पादन किया गया है। राज्य सरकार के जारी आंकड़ों के अनुसार पंचायतों और नगर निकायों में 2000 से अधिक स्थानों पर सहयोग शिविर लगाया गया। इस दौरान सहयोग पोर्टल पर 2,06,928 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 1,59,000 से अधिक शिकायतों का निष्पादन कर दिया गया है। शेखपुरा, कटिहार, पश्चिम चंपारण, नालंदा, मुजफ्फरपुर, अररिया, सारण और सहरसा जिले में 90% मामलों का निपटारा किया गया। वहीं 2,500 पदाधिकारियों को 10 दिनों के भीतर मामले के निष्पादन नहीं करने के आरोप में कारण बताओ नोटिस दिया गया है। गौरतलब है कि राज्य सरकार के संकल्प सबका सम्मान जीवन आसान के तहत 19 मई से प्रत्येक माह के प्रथम और तृतीय मंगलवार को सहयोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नितिन नवीन आज 2 दिवसीय बिहार दौरे पर आ रहे हैं। विधान परिषद की 9 सीटों पर होने वाले चुनाव और बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर श्री नवीन आज पटना में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे। पार्टी सूत्रों ने बताया है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नवीन बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर पटना में क्षेत्र के सभी मंडल अध्यक्षों और पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श करेंगे। गौरतलब है कि राज्यसभा सांसद बनने के बाद श्री नवीन ने बांकीपुर के विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। राज्य में इस वर्ष रबी मौसम में फसल क्षति के लिए जल्द ही 2,00,000 किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। आपदा प्रबंधन विभाग ने कृषि विभाग को किसानों की फसल क्षतिपूर्ति के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। रबी मौसम में आंधी तूफान ओलावृष्टि और बारिश से प्रदेश के 13 जिलों में गेहूं चना मसूर मक्का फल और सब्जी की क्षतिपूर्ति के लिए किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से राशि दी जाएगी। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने भ्रष्टाचार और अनियमितता के मामले में 8 अंचलाधिकारियों और राजस्व अधिकारियों पर कार्रवाई की है। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने विभागीय संचिका पर मंजूरी देते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी। गौरतलब है कि बीते एक सप्ताह के दौरान विभाग ने 23 अधिकारियों पर कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि अंचलाधिकारियों को शपथ पत्र देकर बताना होगा कि उनके क्षेत्र में कोई भी भूमिहीन परिवार नहीं है। श्री जायसवाल ने पटना में समीक्षात्मक बैठक में जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी आवेदन को अस्वीकृत करने से पहले संबंधित आवेदक से संवाद करें। उन्होंने दाखिल खारिज परिमार्जन ई मापी सहित आम जन से जुड़ी सभी राजस्व मामलों का निर्धारित समय सीमा के भीतर निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। प्रदेश के विश्वविद्यालयों में पीएचडी में नामांकन के लिए होने वाली परीक्षा पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। यूजीसी की अधिसूचना के अनुसार अब राज्य का कोई भी विश्वविद्यालय पीएचडी प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं करेगा। इसके बदले यूजीसी नेट स्कोर को ही प्रवेश का आधार बनाया जाएगा। इस संबंध में राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि पीएचडी में नामांकन की प्रक्रिया पूरी तरह बदल गई है। सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को भेजे पत्र में कहा गया है कि यूजीसी की अधिसूचना और कुलाधिपति के निर्देशों के अनुरूप यह निर्णय लिया गया है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: इधर आइए, इधर
3: इधर।
2: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
4: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
3: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
4: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
3: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222205042। हमारा ईमेल एड्रेस है patna@gmail.com।
4: शुभवाणी,
3: लाभवाणी,
4: आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @news_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों किसानों महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की।
5: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं जीएसटी ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43 करोड़ करोड़ 52 लाख स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है, जो बाजार से 50 से 80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिलती है।
6: एक साल से यहाँ से दवाई ले रहा हूँ, सस्ती दवाई मिलती है, डॉक्टर का विश्वास है कि जन औषधि से दवाई खरीदे।
5: दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में 2 श्रेणियों में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। ग्रामीण विकास मंत्री राजीव रंजन सिंह देश भर की 42 उत्कृष्ट पंचायतों को ग्रामीण विकास, सुशासन, जन भागीदारी, स्वच्छता, डिजिटल सेवाओं तथा सतत विकास लक्ष्यों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सम्मानित करेंगे। बिहार की भी कई पंचायतों को सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने तकनीकी गड़बड़ी होने के कारण 30 मई को प्रभावित सीयूईटी यूजी 2026 परीक्षा का दोबारा आयोजन करने का निर्णय लिया है। पुनर्परीक्षा 6 और 7 जून को आयोजित होगी। एनटीए ने प्रभावित अभ्यर्थियों के लिए संशोधित प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विभाग ने पटना सहित राज्य के कई जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि की संभावना है।
7: अगले 2 से 3 दिनों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने का पूर्वानुमान है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों के न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने का पूर्वानुमान है।
0: पटना जिले के कदमकुआं थाना क्षेत्र अंतर्गत खान कोचिंग संस्थान में बीती रात गोलीबारी, तोड़फोड़ और मारपीट मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। वरीय पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय के शर्मा ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज से फायरिंग की पुष्टि नहीं हुई है। खान सर ने अपने संस्थान पर 8 से 10 राउंड फायरिंग किए जाने का आरोप लगाया है। रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम के नवरत्न बाजार में एक युवक की गोली मारकर हत्या मामले में त्वरित कार्रवाई कर पुलिस ने मुख्य आरोपी टिंकू सोनी उर्फ अजय सोनी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक रोशन कुमार ने बताया कि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। अररिया जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर पुलिस ने 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 35 किलो गांजा और 36 लीटर नेपाली शराब बरामद की गई है। औरंगाबाद जिले के नबीनगर स्थित एनटीपीसी सुपर थर्मल पावर परियोजना के बालिका विकास के लिए बालिका सशक्तिकरण अभियान शुरू हो गया है। सीआईएसएफ के महानिरीक्षक प्रबोध चंद्र, एनटीपीसी के क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक एल के बेहरा और अन्य ने इसका शुभारंभ किया। राज्य सरकार प्रदेश के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सीधी नौकरी देगी। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार ओलंपिक से लेकर राष्ट्रीय खेल के पदक विजेताओं को अब बिना किसी परीक्षा के सीधी नौकरी दी जाएगी। खिलाड़ियों के मेडल के हिसाब से उनके पद तय होंगे। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने आगामी सत्र 2026-27 के लिए चयनकर्ता और सहयोगी स्टाफ के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन मांगा है। जारी विज्ञापन के अनुसार पुरुष सीनियर चयन समिति, जूनियर क्रिकेट समिति और महिला चयन समिति के लिए चयनकर्ताओं की नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा मुख्य कोच, बल्लेबाजी कोच, गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण कोच सहित कई सहयोगी स्टाफ पदों पर भी आवेदन मांगे गए हैं। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग मामले में केंद्र सरकार ने की बड़ी कार्रवाई। अखबार लिखता है, सीबीएसई चेयरमैन और सचिव हटाए गए। दैनिक जागरण लिखता है, प्रदेश के मदरसों की जांच के लिए हर प्रखंड में बनेगी 3 सदस्यीय कमेटी। दैनिक भास्कर की मुख्य खबर है, बिहार का गंगा पथ, 3 नए एक्सप्रेसवे से दिल्ली लखनऊ की राह आसान। प्रभात खबर ने औद्योगिक विकास से जुड़ी खबर को अपनी पहली लीड बनाते हुए लिखा है, अमूल फतुहा में लगाएगी 200 करोड़ रुपए की यूनिट। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, राज्य में 25 चीनी मिलें 2030 तक चालू हो जाएंगी। न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। 5 जून को पदभार ग्रहण करेंगे। सहयोग शिविर के दौरान अब तक 1,59,000 से अधिक मामलों का निपटारा हुआ। 2500 पदाधिकारियों को जारी किया गया नोटिस। और मौसम विभाग ने पटना सहित राज्य के कई जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलो हर्स और FM 100.1 मेगा हर्स पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम नगमे नए पुराने। आरंभ में सुनिए फिल्म नायक का ये गीत शंकर महादेवन और अलका याग्निक की आवाज़ों में। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत रचना है AR रहमान का।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: पापा
2: लाइए
1: 3,000।
2: क्यों भाई?
1: मेरी पॉकेट मनी।
2: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
1: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं? हाँ, सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
2: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
1: अपना मोबाइल लाओ।
2: ले ले।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
5: नैना फिल्म का गीत सुनिए, शारदा की आवाज में। गीत हसरत जयपुरी के हैं और संगीत शंकर जयकिशन का।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424242।
0: ओ 8700001424242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424242 पर।
2: कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में सुनिए फिल्म नाजायज का ये गीत। गीत लिखा है राहत इंदौरी ने और संगीत है अनु मलिक का।

नमक हराम फिल्म का गीत सुनिए किशोर कुमार की आवाज़ में। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और धुन दी है राहुल देव बर्मन ने।

नगमे नए पुराने कार्यक्रम आप सुन रहे थे। प्रसारण आकाशवाणी भागलपुर से किया गया। पेश है सुगम संगीत। कलाकार हैं अनिल कुमार आनंद। इनकी आवाज में सुनिए ब्रह्मानंद का ये भजन।

AIR at 90. अनिल कुमार आनंद की आवाज़ में सुनिए मीरा बाई का ये भजन।

0: आकाशवाणी भागलपुर केंद्र से सुने NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सोमवार से शुक्रवार दिन के 12:30 बजे से। उमंग
1: अब सुनिए नीरज के लिखे गीत को। कलाकार हैं अनिल कुमार आनंद।

सुगम संगीत आप सुन रहे थे, कलाकार थे अनिल कुमार आनंद, प्रसारण आकाशवाणी भागलपुर से किया गया, प्रस्तुत है कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। आरंभ करते हैं फिल्म नौजवान से, लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत लिखा है साहिर ने और संगीत दिया है SG बर्मन ने।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: महेंद्र कपूर की आवाज में फिल्म निकाह का ये गीत सुनिए। गीत है हसन कमाल के और संगीत रवि का।
3: अभी अलविदा मत कहो।

0: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: पड़ोसन फिल्म का गीत सुनिए, लता मंगेशकर, आशा भोसले और साथी की आवाजों में। गीत लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने और संगीत रचना है राहुल देव बर्मन का।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
0: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
2: मनोज कुमार के लिखे गीत को सुनिए। संगीत रचना है उत्तम सिंह का, फिल्म है पेंटर बाबू, आवाज़ है महेंद्र कपूर और साथी की।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424242।
0: ओ 8700001424242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424242 पर।
2: शैलेंद्र के लिखे गीत को सुनिए, संगीत रचना है सलील चौधरी का, फिल्म है परख, आवाज लता मंगेशकर की।

सुन रहे थे कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से, प्रसारण आकाशवाणी भागलपुर से किया गया। प्रस्तुत है लोकगीत, कलाकार हैं रूपा सिंह। इनकी आवाज़ में सुनिए ये शिव भजन।

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश,
2: ट्रेश
0: और बाल्टी बॉय।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रेश, ट्रेश और बाल्टी बॉय।
4: रूपा सिंह की आवाज में सुनिए ये देवी गीत।

0: का कार्यक्रम आओ साथ चलें। कार्यक्रम में आज का विषय है बिहार की साहित्यिक धरोहर। स्वर सहयोग धारिणी वाधवन का है, प्रस्तुति मोहम्मद शाहिद सभा की। तो आइए सुनते हैं आज का ये कार्यक्रम आओ साथ चलें, छोटे से अंतराल के बाद।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के आओ साथ चले के इस विशेष अंक में। साथियों, इतिहास गवाह है कि जब जब दुनिया को ज्ञान, आध्यात्म और वैचारिक क्रांति की जरूरत पड़ी है, तब देश के पूरब से एक सूरज उगा है जिसे हम बिहार कहते हैं। लेकिन बिहार सिर्फ साम्राज्यों, नालंदा के खंडहरों या गंगा के घाटों का नाम नहीं है। बिहार नाम है उस चेतना का जिसने शब्दों को धार दी है, जिसने लोक संस्कृति को अमर किया और जिसने हिंदी, उर्दू, मैथिली, भोजपुरी, मगही और अंगिका के माध्यम से पूरे विश्व के साहित्य को समृद्ध किया। बिहार की साहित्यिक यात्रा इतनी प्राचीन है कि इसके पन्ने पलटते ही माँ सीता की जन्मभूमि मिथिला याद आ जाती है। इस मिथिला की कूक से 14वीं सदी में ऐसे महाकवि का जन्म हुआ जिनकी रचनाओं के बिना भारतीय साहित्य का श्रृंगार अधूरा है। जी हाँ, मैथिल कोकिल महाकवि विद्यापति। विद्यापति ने जब राधा और कृष्ण के प्रेम को अपनी पदावली में पिरोया तो वह सिर्फ कविता नहीं, वह प्रार्थना बन गई। कहते हैं कि उनके गीतों से रीझकर स्वयं भगवान शिव उनके घर उगना बनकर चाकरी करने आ गए थे। देख देख राधा रूप अपार, अपरूप के भी आनी मिलाउल, खिति तल लावनी सार।

लेकिन बिहार की ये साहित्यिक जमीन सिर्फ एक रंग की नहीं है, ये सतरंगी है। जहां एक तरफ मिथिला के लोकगीत गूंज रहे थे, वहीं दूसरी तरफ बिहार सूफी संतों और संतों की वाणी से महक रहा था। मनेर शरीफ के हजरत मखदूम शरफुद्दीन यहया मनेरी के पत्र हों या कबीर की परंपरा को आगे बढ़ाते संत, बिहार ने हमेशा साझी संस्कृति यानी गंगा जमुना तहजीब को शब्दों का जामा पहनाया। वक्त बदला, देश गुलामी की जंजीरों से जकड़ा था, तब बिहार की साहित्यिक चेतना ने कलम को तलवार बना दिया। सिमरिया बेगूसराय की मिट्टी से एक ऐसा कवि उठा जिसकी हुंकार से अंग्रेजों का सिंहासन डोल उठा। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की। दिनकर जी के काव्य में जहां एक तरफ कुरुक्षेत्र और रश्मिरथी जैसी रचनाओं में क्रांति का उग्र स्वर था, वहीं उर्वशी में प्रेम का अत्यंत कोमल रूप भी था। जब उन्होंने लिखा, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है दो राह समय के रथ का, धर धर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ये सिर्फ कविता नहीं आजाद भारत का घोषणा पत्र बन गया। दिनकर जी ने जहां वैचारिक क्रांति की बात की, वहीं पूर्णिया के औराही हिंगना गांव से एक ऐसा कथा शिल्पी उभरा जिसने हिंदी साहित्य को पहली बार आंचलिकता के रस से सराबोर कर दिया, फणीश्वर नाथ रेणु। रेणु जी का उपन्यास मैला आंचल सिर्फ एक किताब नहीं है, ये कोसी के अंचल की सिसकी, उसकी हंसी, उसके लोकगीत, उसकी सादगी और उसके संघर्ष का जीवंत दस्तावेज है। कमली, बावनदास और डॉक्टर प्रशांत जैसे पात्रों को रचकर रेणु ने साबित किया कि साहित्य महलों में नहीं धूल धूसरित गांवों की पगडंडियों पर पलता है। उनकी कहानी तीसरी कसम पर बनी फिल्म आज भी भारतीय सिनेमा का गौरव है।

0: श्रोताओं, पटना का पुराना नाम अजीमाबाद भी है और अजीमाबाद का उर्दू अदब में वही मर्तबा है जो दिल्ली और लखनऊ का रहा है। शाद अजीमाबादी ने जब अपनी गजलों से उर्दू दुनिया को दीवाना बनाया तो अजीमाबाद का नाम अमर हो गया। उनका एक शेर आज भी जिंदगी का फलसफा बयां करता है, तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने देके बहलाया गया हूँ, खिलौने देके बहलाया गया हूँ। और हम कैसे भूल सकते हैं स्वतंत्रता संग्राम के उस अमर गीत को जिसके रचयिता बिस्मिल अजीमाबादी थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि हुंकार इसी पटना की धरती से उठी थी, जिसने भगत सिंह और उनके साथियों के दिलों में देशभक्ति की आग सुलगाई थी। बिहार का साहित्य हमेशा सत्ता से सवाल करता रहा है। जन कवि बाबा नागार्जुन, जिन्हें मैथिली में लोग यात्री कहते हैं, जिन्होंने तरौनी दरभंगा से निकलकर पूरे देश के जनमानस की आवाज को अपनी कविताओं में ढाला, वे जितने बड़े मैथिली के लेखक थे उतने ही बेबाक हिंदी के कवि थे। शोषितों, पीड़ितों और किसानों के हक में बाबा की कलम हमेशा चलती रही। उसी तरह आचार्य शिव पूजन सहाय, जिन्हें साहित्य का मसीहा कहा जाता है, उनके उपन्यास देहाती दुनिया ने भाषा को एक नया ठेठ गवई मिजाज दिया। राम वृक्ष बेनीपुरी की माटी की मूर्तें आज भी रेखा चित्र विधा की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। श्रोताओं, बिहार का साहित्यिक धरोहर सिर्फ अतीत की बात नहीं है, ये निरंतर बहने वाली गंगा की तरह गतिशील है। आज भी भोजपुरी, मगही और अंगिका जैसी लोक भाषाओं में कबीर और भिखारी ठाकुर की परंपरा जीवित है। भिखारी ठाकुर, जिन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है, उनके विदेशिया और गबर घिचोर जैसे नाटकों ने समाज के यथार्थ और विस्थापन के दर्द को जिस तरह समेटा, उसकी मिसाल दुनिया में कहीं भी नहीं मिलती। आज के दौर में भी बिहार के युवा लेखक, कवि और रंगकर्मी देश विदेश में अपनी लेखनी का परचम लहरा रहे हैं। चाहे वह समकालीन कविता हो, उपन्यास हो या सिनेमा की पटकथा, बिहार की मिट्टी का स्वाद, उसकी सोच और उसका जुझारूपन हर जगह उपस्थिति दर्ज करा रहा है। श्रोताओं, बिहार की साहित्यिक यात्रा ज्ञान के उस दीप स्तंभ की तरह है जिसने समय की हर आंधी में खुद को जलाए रखा, जहां शब्द में मिठास भी है और अन्याय के खिलाफ विरोध की आग भी। यहाँ की माटी में जो रस है वही यहाँ के साहित्य की जान है। चलते चलते बस इतना कहूंगी कि जब तक दुनिया में शब्द रहेंगे, भावनाएं रहेंगी और समाज को बदलने का जज्बा रहेगा, तब तक बिहार का साहित्य पूरे विश्व का मार्गदर्शन करता रहेगा। इसी खूबसूरत एहसास के साथ आज के आओ साथ चले में बस इतना ही। नमस्कार।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम आओ साथ चले, स्वर सहयोग धारणी वाधवन कथा, प्रस्तुति मोहम्मद शाहिद सभा की। ये आकाशवाणी।
2: मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलो हर्ट्ज पर और एफएम बैंड के 100.1 मेगा हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11 बज रहे हैं। पेश है फिल्म संगीत का

कार्यक्रम नई फिल्मों से श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं सोनू निगम और साथियों की आवाज़ में। फिल्म है वनवास, संगीत है मिथुन का और गीतकार हैं सईद कादरी।

0: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: आकाशवाणी भागलपुर केंद्र से सुने NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सोमवार से शुक्रवार दिन के 12:30 बजे से उमंग
2: आकाशवाणी भागलपुर से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम नई फिल्मों से श्रोताओं कार्यक्रम का अगला नगमा सुनिए फिल्म रेड 2 से जिसे गाया है जुबिन नौटियाल ने इसकी धुन तैयार की है रोचक कोहली ने और गीत की रचना की है मनोज मुंतसर ने

0: विज्ञापनों की बुकिंग
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: आकाशवाणी भागलपुर से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम नई फिल्मों से। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला नगमा सुनिए नीति मोहन और साथियों की आवाज में। फिल्म है गदर 2। इसके बोल लिखे हैं सईद कादरी ने और इसे संगीतबद्ध किया है मिथुन ने।

श्रोताओं, आप सुनिए फिल्म फतेह से ये नगमा। आवाजें हैं रूपाली मोघे और साथी की, बोल लिखे हैं मनदीप खुराना ने और संगीत है हारून गविन का।

श्रोताओं, कार्यक्रम का आखिरी नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म बॉर्डर 2 से। गायक कलाकार हैं सोनू निगम और पलक मुशल। गीतकार हैं मनोज मुंतशिर और जावेद अख्तर, और इसकी धुन तैयार की है अनु मलिक और मिथुन ने।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम नई फिल्मों से संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11:30 हो रहे हैं। पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता।

श्रोताओं, स्वागत है आपका आज के ही कार्यक्रम गुलदस्ता में। 3 जून की तारीख भारत के लिए बेहद अहम है। 1947 में आज ही के दिन भारत के बंटवारे का ऐलान किया गया था। ब्रिटिश राज के अंतिम दिनों में भारत की आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने यह घोषणा की थी, लिहाजा इस घटना को 3 जून या माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। दरअसल आज़ादी की जोर पकड़ती मांग के बीच ब्रिटिश सरकार ने 20 फरवरी वर्ष 1947 को यह साफ कर दिया था कि जून 1948 तक भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। इसके बाद देश में कई तरह की राजनीतिक बहस शुरू हुई जो बाद में हिंसा में बदल गई। देश दंगों की आग में झुलसने लगा। केंद्र की अंतिम सरकार हालातों को काबू करने में नाकाम साबित हो रही थी, क्योंकि कानून व्यवस्था का मामला प्रांतों के पास था और इसे देखते हुए ब्रिटिश राज सांप्रदायिक एवं राजनीतिक गतिरोध को समाप्त करने के लिए माउंटबेटन योजना के साथ सामने आया था, जिसमें भारत के विभाजन और पाकिस्तान के जन्म का खाका रखा हुआ था।

श्रोताओं, ब्रिटिश सरकार ने 20 फरवरी 1947 को यह घोषणा की थी कि भारत को जून 1948 तक स्वतंत्र कर दिया जाएगा। ऐसे में भारत के तत्कालीन वायसराय माउंटबेटन पर जल्द ही किसी निर्णय पर पहुंचने का दबाव था। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के नेताओं के साथ लंबे विचार विमर्श के बाद माउंटबेटन ने 3 जून वर्ष 1947 को अपनी एक योजना पेश की। इस योजना में भारत को 2 देशों में विभाजित करने की योजना पेश की गई थी। इस योजना में भारत पाकिस्तान बंटवारे के लिए 3 बातों को मुख्य तौर पर शामिल किया गया था। योजना का पहला बिंदु था कि भारत के बंटवारे के सिद्धांत को ब्रिटेन की संसद द्वारा स्वीकार किया जाएगा, और दूसरा ये कि बनने वाली सरकारों को डोमिनियन स्टेट यानी अर्ध स्वायत्त राज्य व्यवस्था का दर्जा दिया जाएगा, और तीसरी शर्त ये थी कि उसे ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने या शामिल रहने का फैसला करने का

अधिकार मिलेगा। दरअसल ये बात उस समय तक भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में स्थापित हो चुकी थी कि भारत के पंजाब और बंगाल प्रांत का बंटवारा होगा और एक नया देश पाकिस्तान बनेगा। लेकिन यह विभाजन किस तरह से होगा यह किसी को पता नहीं था और यही इस योजना का असली मकसद था। ये बात उस समय तक भारतीय कर्मचारियों, भूमि क्षेत्र और सेना बंटवारा का कैसा होगा, सीमा का निर्धारण, राज्य के अधिकार और संविधान निर्माण की प्रक्रिया क्या होगी जैसे प्रश्नों के समाधान के साथ विभाजन को अमलीजामा कैसे पहनाएं, यह योजना प्रस्तुत कर रही थी।

माउंटबेटन योजना ही बाद में भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के रूप में विकसित हुई, जिसके आधार पर भारत को ब्रिटेन के शासन से मुक्ति मिली और स्वराज स्थापित हुआ, और पाकिस्तान के रूप में भारत का एक बड़ा हिस्सा भी उससे अलग हुआ था। अप्रैल 1947 में भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष जे बी कृपलानी ने वायसराय को लिखा कि युद्ध से बेहतर यह है कि हम उनकी पाकिस्तान की मांग को मान लें, किंतु यह तभी संभव होगा जब आप पंजाब और नंगल का ईमानदारी पूर्वक विभाजन करेंगे। आपको बता दें कि लॉर्ड माउंटबेटन लॉर्ड वेवल के स्थान पर भारत के वायसराय बनकर आए थे। माउंटबेटन योजना को कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया था। भारत एवं पाकिस्तान को डोमिनियन स्टेट में विभाजित कर दिया गया था। इस योजना में जहां मुस्लिम लीग की बहुप्रतीक्षित पाकिस्तान के निर्माण की मांग पूरी हो गई, वहीं योजना में कांग्रेस की इस मांग का भी पूरा ध्यान रखा गया कि यथासंभव पाकिस्तान का भौगोलिक क्षेत्र छोटा से छोटा हो। इस योजना को बनाने वाली कमेटी में जनरल हेस्टिंग्स इस्मा, सर जॉर्ज एबल और खुद माउंटबेटन भी शामिल थे। इस योजना के खाके को पहले बालकन योजना या इस्मा योजना के तहत 15 और 16 अप्रैल 1947 को पेश किया गया था।

इस योजना का मुख्य प्रस्ताव यह था कि तमाम प्रांतिक भारतीय संघ या भारत पाकिस्तान के दो राज्यों की बजाय पहले स्वतंत्र उत्तराधिकारी राज्य बने। इस योजना के अनुसार सभी प्रांतों अर्थात मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, पंजाब और उत्तर पश्चिम फ्रंटियर आदि के संयुक्त प्रांतों को स्वतंत्र घोषित करने का प्रस्ताव रखा गया। बाद में ये राज्य तय करेंगे कि वह किस तरफ शामिल होंगे। पहले इस योजना को लेकर माउंटबेटन ने भारतीय नेताओं के कोई विस्तृत चर्चा नहीं की थी। उन्होंने बेहद अनौपचारिक रूप से भारतीय नेताओं से इसका जिक्र किया। इसके बाद इस योजना को अंतिम स्पर्श दिया और सीधे लंदन चले गए। बाद में जब माउंटबेटन शिमला गए तब उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के सामने इस योजना को पेश किया। पंडित नेहरू ने इस योजना को तुरंत अस्वीकार कर दिया। पंडित नेहरू के अनुसार यह योजना भारत के बाल्कनीकरण को आमंत्रित करेगी। नतीजन माउंटबेटन ने इंग्लैंड को सूचित किया कि शायद यह योजना कामयाब ना हो और वह इसे रद्द करना पसंद करेंगे। इसलिए इस योजना को बाल्कन प्लान भी कहा जाता है।

जून वर्ष 1947 यूं तो जून में दिल्ली गर्मी से तप रही थी, लेकिन 3 जून 1947 को ये तपिश कुछ ज़्यादा ही महसूस की जा सकती थी। इस गर्मी में सियासी पारा तो चढ़ा ही था, साथ ही पंजाब और बंगाल के दंगों से भी दिल्ली झुलस रहा था। इस गर्मी को भारत के नए वायसराय रायसीना हिल्स के एयर कंडीशन कमरे में भी महसूस कर रहे थे। माउंटबेटन पर एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी भारत के बंटवारे की। 3 जून 1947 को एक प्लान ने पूरे भारत का इतिहास और भूगोल बदल दिया और एक ऐसा घाव दिया जिसकी टीस आज भी महसूस की जा सकती है।

आकाशवाणी भागलपुर से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला नगमा आपने सुना था फिल्म भुज से, स्वर अरिजीत सिंह का था, संगीत आर्को का और बोल लिखे थे मनोज मुंतसर ने। अगला नगमा आपने सुना था फिल्म मणिकर्णिका से, आवाज़ शंकर महादेवन की थी, संगीत शंकर एहसान लॉय का था और बोल लिखे थे प्रसून जोशी ने। उसके बाद आपने सुना था फिल्म कर्मा से नगमा, जिसे गाया था मोहम्मद अजीज़ और कविता कृष्णमूर्ति ने, गीतकार थे आनंद बख्शी और इसकी धुन तैयार की थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। उसके बाद आपने सुना था फिल्म केसरी से गीत, गायक कलाकार थे बी पराग, इसे संगीतबद्ध किया था आर्को ने और गीत की रचना की थी मनोज मुंतसर ने। अभी आप सुन रहे हैं फिल्म वीर जारा से ये नगमा, जिसे गाया है उदित नारायण और साथियों ने, बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12 बज रहे हैं। प्रस्तुत है महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम नारी लोक।

नारी लोक सुनने वाले सभी श्रोता बहनों को अर्चना का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, गर्मी का मौसम जिसमें चिलचिलाती धूप और तापमान का पारा अपने चरम पर, लेकिन ये अपने साथ मज़ा भी लेकर आता है। रसीले आम, लीची, जामुनों का स्वाद एक अलग ही तरह की ऊर्जा लेकर आता है। बच्चों के लिए बहनों, यह समय स्कूल से मिलने वाली लंबी छुट्टी और मौज मस्ती का पर्याय है। इस मौसम में कुछ विशेष बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। गर्मी के कारण हम सभी को अतिरिक्त नमी और ठंडक की दरकार होती है, इसलिए गर्मी आते ही हमें अपने भोजन में एकदम परिवर्तन लाने की आवश्यकता हो जाती है, क्योंकि गर्मी में अधिक गरिष्ठ या तला भुना खाना हमें नुकसान पहुँचा सकता है। इसीलिए हमें संतुलित भोजन की इस वक्त सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसलिए बेहतर है कि हम सब दिन की शुरुआत ताजे नींबू पानी से करें। गर्मी में हल्के फुल्के खाद्य पदार्थ, ढेर सारे रसीले फल और पेय पदार्थ जो प्रकृति से हमें मिलते हैं, जैसे तरबूज, ककड़ी, खरबूज, खीरा, अंगूर, संतरा, स्ट्रॉबेरी, आम, नारियल पानी आदि जैसे फायदेमंद फ्रूट्स अपने भोजन में शामिल करें, जो हमें सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी तरावट दे और शरीर में जल की पूर्ति करे। बहनों, यहाँ एक बात और भी ध्यान में रखना है कि गर्मी के इस मौसम में वायरस और बैक्टीरिया ज़्यादा एक्टिव होते हैं, यानी उनके पनपने के लिए यह अनुकूल मौसम है। तो जब भी आप फल खरीदें तो उनकी गुणवत्ता पर आप ज़रूर ध्यान दें, और अगर कटे फल को खरीदने की सोच रहे हैं तो ऐसा नहीं करें, क्योंकि पता नहीं वह फल कब काटा गया हो, वो हो सकता है आपको लाभ पहुँचाने की वजह हानि पहुँचाए। रॉक सॉल्ट, जीरा, सौंफ, इलायची, अजवाइन जैसे मसाले और दही, कच्चे आम का पन्ना, पुदीना, बेल का शरबत, सत्तू, जलजीरा जैसी चीज़ें भी शरीर के लिए बेहद अनुकूल है, परंतु इन्हें भी पहले से या देर से बने होने पर अवॉइड करें। बहनों, आगे भी हम अपनी ये चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन अभी आनंद लेते हैं इस गीत का।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
0: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
2: पापा, लाइए 3,000।
3: क्यों भाई?
2: मेरी पॉकेट मनी।
3: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
2: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
3: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
2: अपना मोबाइल लाओ।
3: ले ले।
4: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
5: हर लेन देन अब है आसान।
6: बहनों, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि मन करता है कि दिन भर ठंडी चीज़ें खाते रहे और ठंडे कमरे में बैठे रहे। गर्मी का मौसम मौज मस्ती और आराम का समय होता है, लेकिन इस मौसम में होने वाले संभावित खतरों के प्रति जागरूक रहना उतना ही महत्वपूर्ण है। गर्मी में खुद को स्वस्थ रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पिए, साथ ही दिन भर खूब सारे तरल पदार्थ भी लें। गर्मी में लू लगना एक गंभीर स्थिति है जो जानलेवा भी हो सकती है। इसके लक्षणों में शरीर का तापमान बढ़ना, भ्रम की स्थिति और बेहोशी शामिल है। लू लगने पर शरीर के तापमान को नियंत्रित करने की हर संभव कोशिश करें। ताजे फल और पेय पदार्थ, आइसक्रीम, छाछ आदि हमें चिलचिलाती गर्मी से राहत तो देते हैं, लेकिन हमारे किचन में भी कुछ ऐसी मौसमी सब्जियां और फल मौजूद होते हैं जो अंदर से शरीर को ठंडा रखने में हमारी मदद करते हैं। यह हम सब जानते हैं कि हर खाद्य पदार्थ में कुछ ऐसे गुण होते हैं जिनकी वजह से यह खास होता है। यह खाद्य

पदार्थ हम इंसानों के शरीर पर इस तरह प्रभाव डालते हैं कि हमारा शरीर गर्म या ठंडा रहता है। इसीलिए गर्मियों में कुछ खास खाद्य पदार्थों के सेवन से हमें बचने को कहा जाता है और कुछ अन्य विशेष खाद्य पदार्थों के सेवन के लिए कहा जाता है। फल और सब्जियों की बात करें तो कुछ तरह से इस तरह से बांटा गया है कि कुछ शरीर में गर्मी पैदा करते हैं तो कुछ ठंडक। उदाहरण के लिए मैंने लाल मिर्च, अदरक और कुछ अन्य मसालों में शरीर को गर्मी उत्पन्न करने की क्षमता होती है, इसीलिए सर्दियों में इनका सेवन करने और गर्मियों में इनसे परहेज करने की सलाह दी जाती है। गर्मी के मौसम में मसालेदार खाद्य पदार्थों के अधिक सेवन से त्वचा पर मुहासे, संक्रमण और एलर्जी हो जाती है। वहीं जिन खाद्य पदार्थों में पानी की मात्रा अधिक होती है वे शरीर के भीतर नमी बरकरार रखने और इसे अंदर से ठंडा रखने में मदद करते हैं। ये खाद्य पदार्थ पेट के लिए हल्के होते हैं और इन्हें पचाना भी आसान होता है। एल्कलाइन पानी या एल्कलाइन तरल पदार्थ भी गर्मी से राहत दिलाते हैं। कुछ क्षारीय फल और सब्जियों में पानी की मात्रा काफ़ी अधिक होती है, इनमें कैलोरी भी कम होता है और ये शरीर के तरल पदार्थ की अम्लता और पीएच स्तर को भी संतुलित रखती है। कुल फल और कुछ जो फल हैं और सब्जियां ऐसे होते हैं जिनका सेवन हमें गर्मियों में करना ही चाहिए। इनमें निहित पानी की मात्रा हमारे शरीर को ठंडा रखने के साथ ही लू से भी बचाती है। इनके लगातार और रोजाना सेवन से गर्मी से होने वाली बीमारियों से बचने में हमें मदद मिलती है, साथ ही तेज़ गर्मी वाले मौसम में भी ऊर्जा की कमी हमें महसूस नहीं होती। बहनों, आगे भी हम ये चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन अभी सुनते हैं ये गीत।

बहनों, खीरा खीरा के बिना भारत में गर्मी के मौसम की कल्पना करना बेकार है। यह बेहतरीन फल है, सब्जी है जिसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है। चाहे तो इसे सलाद के तौर पर खाए या दही में डालकर रायता बना ले। ताज़ा खीरा पेट के लिए भी अच्छा है, जल्दी पच जाता है और यह त्वचा की खूबसूरती भी निखारता है। खीरा झटपट शरीर को ऊर्जा से भर देता है। विटामिन ए, सी, फॉलिक एसिड और फाइबर से युक्त खीरा आँखों के नीचे आए गहरे धब्बे, सूजन और त्वचा के दाग धब्बों को ठीक करने में भी लाभकारी होता है। खीरा एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है और इस वजह से कई बीमारियों से शरीर को दूर रखने में भी मददगार साबित होता है। इसी तरह करेले को भले ही अधिकतर लोग पसंद नहीं करते हो, लेकिन सच तो यह है कि इसके गुण आपको चौंका देंगे। यह विटामिन ए, के, सी, B2, B3 के साथ मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होता है। करेला में और भी कई पोषक तत्व होते हैं। इसके नियमित सेवन से ब्लड शुगर का स्तर नियंत्रित रहता है। यह शरीर की रोग प्रतिरोधी क्षमता को मजबूत बनाता है और फेफड़े की सेहत को भी तंदुरुस्त रखता है। कब्ज दूर करने में भी सहायक होने के साथ साथ करेला मुहासों और फुंसी के इलाज में भी लाभकारी है। इस तरह बहनों एक मसाला है जिसे अजवाइन कहा जाता है। अजवाइन एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स और फाइबरनॉइड्स से भरपूर शरीर में विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। यह पाचन में भी सहायता करता है और इसमें एंटी फिलामेंट्री गुण होते हैं जो सूजन को भी कम करते हैं। अजवाइन दिल की सेहत के लिए अच्छा है और इसमें विटामिन के, सी, ए, B6, B2, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फोलेट और अन्य कई पोषक तत्व होते हैं। इसे अपने सलाद, स्टर फ्राई, स्टीम्ड फूड, सूप या रोजाना के डाइट में भी शामिल कर सकते हैं। बहनों, आगे भी चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन अभी सुनते हैं ये गीत।

0: बहनों, गर्मी के मौसम में पिए जाने वाले तरल पदार्थों में नींबू सबसे आगे है। चाहे कोई पेय पदार्थ बनाए या ठंडा सूप या जूस, नींबू के बिना भला काम कहाँ चलता है। पानी में सिर्फ नींबू और चीनी या नमक मिलाकर भी आप नींबू का शरबत तैयार कर सकती हैं। बहनों, इस मौसम में ध्यान रखने लायक कुछ बातें हैं जो बेहद महत्वपूर्ण हैं। जैसे आप घर से कहीं भी बाहर जाएं तो सनस्क्रीन लगाएं, अपने खुले स्किन को ढककर ही बाहर निकले, अच्छी क्वालिटी के सनग्लासेस लगाएं, पानी की बोतल हमेशा साथ रखें, कॉटन के हल्के रंगों के कपड़े पहनने को प्राथमिकता दें। कोशिश करें कि 10 से 4 बजे तक घर से बाहर ना निकले। प्यास लगने से पहले ही पानी पीते रहें। भारी काम करने से बचें क्योंकि इससे लू लगने का खतरा होता है। बासी खाना खाने से बचें क्योंकि इससे शरीर में गर्मी बढ़ सकती है। साथ ही अपने घर को ठंडा रखें, एयर कंडीशन और पंखे का इस्तेमाल करें और घर में हवा के सर्कुलेशन का ध्यान रखें। बच्चे और बुजुर्ग गर्मी के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, इसलिए उनका विशेष ख्याल रखें। और अब चलते चलते आनंद लेते हैं इस गीत का।
1: भूख लगी जोरों की भूख लगी।

महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम नारी लोक संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12:30 हो रहे हैं। अब सुनिए एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार, जिसे हमें भेजा है अकोला महाराष्ट्र राधेनगर से राजेश पी कारिया जी ने। लिखते हैं,
2: गलत लोग आपकी अच्छाई से भी नफरत करते हैं और सही लोग आप में बुराई जानकर भी आपसे प्यार करते हैं और यही मानव संबंध की विडंबना है।
1: बहुत सुंदर संदेश राजेश पी कारिया जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू का।
2: महाराष्ट्र से प्रशांत रमेश पाटिल।
1: और धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी का।
2: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका और मन्नत।
1: और साथ ही साथ हमें संदेश मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का।
2: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
1: और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं पृथ्वी के प्रसिद्ध शीत मरुस्थलों की।
2: इस क्रम में कल हमने चर्चा की थी अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल की और जाना था इससे जुड़ी रोचक बातों को। आज हम चर्चा करेंगे एक और अनोखे शीत मरुस्थल की और वो है गोभी का मरुस्थल। तो अजीत जी, चर्चा को विस्तार दीजिए।
1: जी विमलेश जी, आइए चर्चा को विस्तार देते हैं। तो

0: बताओ, आपको हम बताना चाहते हैं कि अंटार्कटिक का शीत मरुस्थल क्षेत्रफल की दृष्टि से पृथ्वी का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है।
1: जी।
0: लेकिन यदि एशिया महादेश की बात करें तो यहाँ का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है गोबी। इसका क्षेत्रफल है 13 लाख वर्ग किलोमीटर।
1: जी
0: विमलेश जी, अब आपकी बारी।
1: जी श्रोताओं, ये मरुस्थल मुख्य रूप से मंगोलिया और चीन के उत्तरी भाग में फैला हुआ है। स्थानीय भाषा में गोबी को गोब कहते हैं, जिसका अर्थ है निर्जल स्थान। एक बात और आपको बता दें कि ये रेत का नहीं लेकिन पत्थरों का मरुस्थल है, क्योंकि इसका अधिकांश भाग चट्टानी और पथरीला है। केवल 5% भाग ही रेतीला है।
0: तो श्रोताओं, अब बात करते हैं इस मरुस्थल के तापमान की। जहाँ तक तापमान का प्रश्न है, यहाँ तापमान बहुत कम होता है।
1: जी।
0: सर्दियों में ये -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, जबकि गर्मी के मौसम में यहाँ का तापमान 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुँच जाता है।
1: यानी एक ही मरुस्थल में कड़कती ठंड भी और झुलसाने वाली गर्मी भी।
0: जी।
1: लेकिन इसे शीत मरुस्थल इसलिए कहा जाता है कि यहाँ अधिकांश समय सर्दियों का ही होता है। अजीत जी, एक बड़ी विशेष घटना हुई है जिसके कारण गोबी का मरुस्थल बहुत प्रसिद्ध हुआ है। क्या थी वो घटना?
0: विमलेश जी, वो घटना थी जब वैज्ञानिकों को इस क्षेत्र में डायनासोर के अंडे और जीवाश्म मिले।
1: जी।
0: यहाँ और भी कई दुर्लभ प्राणियों के जीवाश्म मिले हैं, जिसके कारण वैज्ञानिकों और संचार माध्यमों ने इसे प्राचीन जीव जगत के खजाने की संज्ञा दी है।
1: अजीत जी, अब श्रोताओं को जरा यहाँ रहने वाले लोगों की जानकारी दे दें।
0: जी हाँ, जरूर।
1: श्रोताओ, गोबी मरुस्थल में रहने वाले अधिकांश लोग आज भी घुमंतू जीवन यानी नोमेडिक लाइफ जीते हैं। मंगोल परिवारों का पारंपरिक घर गोलाकार का होता है, जिन्हें यर्ट कहते हैं। इन घरों की सबसे दिलचस्प बात यह है कि आसानी से खोले और दूसरी जगहों पर ले जाए जा सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग यहाँ मौसम को देखते हुए जगह बदलते हैं। वैसे गोबी मरुस्थल के बाहरी इलाकों में आधुनिक शहर भी हैं।
0: तो श्रोताओं, आपको ये भी बता दें कि आज के आधुनिक वाहन यहाँ बहुत कम मिलते हैं। यहाँ के ऊंट 2 कुबड़ वाले होते हैं,
1: जी,
0: जो अत्यधिक ठंड और गर्मी दोनों सह सकते हैं। एक बात और आपको बता दें कि ठंड के समय ये ऊंट बर्फ खाकर अपनी पानी की जरूरत को पूरा करते हैं।
1: जी।
0: घुड़सवारी यहाँ के प्रतिदिन के लोक जीवन का हिस्सा है और घुड़दौड़ है यहाँ का प्रिय खेल और मनोरंजन का माध्यम।
1: जी अजीत जी, क्योंकि उमंग रेडियो कार्यक्रम है तो ये बताना तो बहुत ही प्रासंगिक होगा कि गोबी मरुस्थल के दूर दराज के इलाकों में भी आज भी टेलीविजन की पहुंच बहुत कम या नहीं के बराबर है।
0: जी।
1: यहाँ लोग रेडियो सुनकर ही मौसम का हाल जानते हैं, समाचार सुनते हैं और मनोरंजन भी करते हैं। अब आधुनिकता के दौर में पर्यटन बढ़ गया है, सैलानी देश विदेश से आते हैं और यहाँ के घुमंतू परिवारों के साथ होम स्टे करते हैं।
0: श्रोताओं, यहाँ की दिनचर्या भी बहुत मजेदार और गतिविधियों से भरी हुई है। सुबह उठकर दूध दुहना महिलाओं का काम है, जबकि पुरुष मवेशी चराने का काम करते हैं।
1: जी।
0: दिन भर की मेहनत के बाद शाम को पूरा परिवार एक साथ भोजन करता है और कहानियों और गीतों के द्वारा मनोरंजन करता है। ये गाते हैं, बजाते हैं।
1: बजाने के लिए इनके खास वाद्य यंत्र हैं, जैसे मोरिन खोर।
0: ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है?
1: ये 2 तारों वाला वाद्य यंत्र है। एक और बहुत लोकप्रिय वाद्य यंत्र है लिम्बे। ये बांसुरी जैसा वायु वाद्य यंत्र है। एक रोचक बात यह है कि यहाँ लोग अपने संगीत को ऊंट, घोड़े और प्रकृति से जोड़ते हैं। कई धुनें यहाँ ऐसी होती हैं जो जानवरों को बुलाने और शांत करने के लिए बनाई गई हैं।
0: बहुत सुंदर जानकारी विमलेश जी। सचमुच गोबी का शीत मरुस्थल जीवन की कठिनाइयों और उसे सुंदर ढंग से जीने का अनूठा उदाहरण है।
1: तो श्रोताओ, ये थी रोचक जानकारी गोबी के शीत मरुस्थल की।
0: अब आज का प्रश्न सुनिए आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है, गोबी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए जा सकते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: गोबी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए जा सकते हैं?
0: श्रोताओं, आप प्रश्नों के उत्तर और संदेश हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर या हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं।
1: जी।
0: हमें आपके संदेशों का इंतजार रहेगा।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें। और हाँ, NCERT की पाठ्य पुस्तकों की ध्वनि पुस्तकें यानी ऑडियो बुक्स आप दीक्षा या NCERT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सुन सकते हैं।
0: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा आज का पहला कार्यक्रम है दोस्त की पहचान।
1: कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस लोक कथा में बताया गया है कि एक सच्चे मित्र की पहचान कैसे की जाती है। संदेश दिया गया है कि सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति के समय काम आए।
2: एक जंगल से दो दोस्त गुजर रहे थे। कितने बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ तो।
3: हाँ बहुत बड़े पेड़ हैं।
2: अरे देखो देखो कितने अच्छे पक्षी हैं यहाँ पर। अरे वो देखो चिड़िया।
3: अरे वो देखो बंदर। ओ मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है।
2: मुझे तो थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है।
3: हाँ ये तो सही कह रहे हो। अरे कोई जानवर आ गया तो क्या करेंगे हम?
2: क्या करेंगे? देखेंगे जब जानवर आएगा तब।
4: अचानक
3: ओ, ये तो रीच की आवाज है। अरे अरे मुझे तो लगता है रीच आ रहा है। ओ अब हम अपनी जान कैसे बचाएंगे?
2: क्या करें क्या करें? जल्दी सोचो क्या करें।
3: मुझे तो बहुत डर लग रहा है।
2: अरे मुझे तो पेड़ पर चढ़ना आता है।
4: रीच को देखकर उनमें से एक दोस्त झट से दरख्त पर चढ़ गया।
2: ओ ऐसा करता हूँ, पेड़ पर चढ़ जाता हूँ।
4: और दरख्त की टहनियों में छुपकर बैठ गया। दूसरा दोस्त नीचे अकेला रह गया।
3: ओ, अब मैं क्या करूं? मैं
4: जब उसको कुछ नहीं सूझा,
3: मैं ऐसा करता हूँ जमीन पर लेट जाता हूँ और अपनी सांस रोक लेता हूँ, तभी जान बचेगी।
4: तो वो सांस रोककर चुपचाप जमीन पर लेट गया। रीच उसके करीब आया, उसने उसे सूंघा।
3: ये रीच तो मुझे सूंघ गया। मैं ऐसा करता हूँ सांस रोक के लेटा रहता हूँ, तभी जान बच पाएगी।
4: और मुर्दा समझकर छोड़ दिया।
3: बच गए, लगता है रीच चला गया।
4: रीच जब चला गया तो दूसरा दोस्त,
2: अरे रीच तो चला गया, अब मैं पेड़ से नीचे उतर सकता हूँ।
4: और अपने साथी से जाकर पूछा,
2: एक बात तो बताओ, रीच ने तुम्हारे कान में क्या कहा?
4: पहले दोस्त ने जवाब दिया,
3: मेरे कान में कहा, ऐसे दोस्त से दोस्ती मत करो जो मुसीबत के समय काम ना आए और तुम्हारा साथ छोड़ दे।
4: पंचतंत्र की कहानी मश्क। सोचिए और बताइए।
0: महफूज तरीके से जंगली जानवरों को कैसे देखा जा सकता है? जंगलों में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, उनकी फेहरिस्त बनाइए। अगर आप उन दोस्तों में होते तो दोस्त की मदद कैसे करते? दोस्त की पहचान। अभी आप सुन रहे थे ये प्रोग्राम अकादमिक समन्वय, डॉक्टर रिजवानुल हक, रिकॉर्डिंग मंजू कुमारी, फनकार फरहान अली नकवी, बाल कलाकार सोहम और वान्या, हिदायतकार विमलेश चौधरी, पेशकश कुसुमलता। ये प्रोग्राम CIET NCERT नई दिल्ली भारत के जरिए पेश किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम दोस्त की पहचान।

0: जादुई पिटारा, है ना मजेदार साथियों? जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम गौरा देवी।
2: इस कार्यक्रम में एक सुंदर नाट्य प्रस्तुति के द्वारा चिपको आंदोलन की जानी मानी नायिका गौरा देवी के जीवन और उनके द्वारा प्रारंभ किए गए प्रसिद्ध चिपको आंदोलन की जानकारी दी गई है।
3: भारत के सबसे रमणीक राज्यों में से एक है उत्तराखंड। इसी उत्तराखंड के चमोली जिले में एक गांव है लाटा। ये गांव विशेषकर बड़े बड़े पेड़ों के कारण जाना जाता है।
4: लाटा गांव के ग्रामीण खेती बाड़ी और पशुपालन द्वारा अपनी जीविका चलाते थे। दिन भर खेतों और जंगलों में काम करने के बाद जब ग्रामीण शाम को घर आते तो उनके नृत्य और लोक संगीत से सारी घाटी गूंज जाती।
3: इसी गांव में सन 1925 में एक प्यारी सी बालिका ने जन्म लिया। नाम रखा गया गौरा। गौरा का बचपन से ही पेड़ पौधों के प्रति बहुत लगाव था। यदि गांव के बच्चे किसी भी प्रकार से फूल पत्तियों और पौधों को कष्ट पहुंचाते तो वो उन्हें मना करती और उन्हें समझाती भी।
5: मारो, मारो, ठीक से निशाना लगाओ।
6: नहीं लगी।
5: अरे नहीं लगा ना, लाओ लाओ, रुको रुको रुको, रुको। मैं
6: तुम लोग इस पेड़ पर पत्थर फेंक रहे हो।
5: हाँ?
6: अभी तो फल भी नहीं लगे। गोविंद, तुम तो सबसे बड़े हो, इनको क्यों नहीं समझाते?
5: अरे पत्थर फेंका है तो क्या हो गया, पेड़ ही तो है ना। देखो।
6: मैंने मना किया है ना कि पेड़ पौधों को पत्थर मत मारो, उन्हें चोट लगती है।
7: तुम हमें इस तरह रोका टोका मत करो।
6: मैं तो टोकूंगी और बार बार रोकूंगी।
5: बड़ी आई रोकने वाली।
3: तो साथियों, ये था गौरा का पेड़ पौधों के प्रति लगाव और स्नेह। स्थानीय लोग बताते हैं कि गौरा ने अपने गांव में कई पौधे लगाए थे जो आज भी जिंदा हैं।
4: समय बदला। उस समय की रीति के अनुसार गौरा की शादी मात्र 12 वर्ष की उम्र में पास के गांव रैणी के मेहरबान सिंह के साथ हो गई।
3: सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी शादी के मात्र 10 वर्षों के बाद पति मेहरबान सिंह की मृत्यु हो गई। गोद में 2.5 वर्ष का बच्चा था। पति के निधन के बाद 22 वर्ष की गौरा देवी पर अपने बच्चे और बूढ़े सास ससुर के भरण पोषण का पूरा बोझ आ गया। उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए जितना भी समय गौरा के पास बचता था वो उसे गांव के कामों में लगा देती थी। गौरा अपने गांव के महिला मंगल दल की अध्यक्ष भी बनी।
4: महिला मंगल दल का विशेष काम था गांव की महिलाओं के रोजगार और उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर ध्यान देना। स्त्रियों पर होने वाली घरेलू हिंसा की स्थिति में महिलाओं के समूह द्वारा हस्तक्षेप करना और ये भी सुनिश्चित करना कि ग्रामीण बालिकाओं की पढ़ाई नियमित रूप से चल रही है या नहीं।
8: बहनों, अब हमें ये देखना है कि हमारे गांव में शराबखोरी तो कम हो गई है और इसके चलते चलते आगे बच्चियों की पढ़ाई भी शुरू करनी पड़ेगी हमें।
6: हाँ, बहुत जरूरी है। मेरी बेटी तो पढ़ने जाने लगी है अब।
8: अरे वाह, कितनी अच्छी बात बताई इसने।
9: लेकिन मेरा आदमी तो अभी काम ही पे नहीं जाता।
8: आप तो काम करती है ना?
9: हाँ मैं करती हूँ, लेकिन उसे होता क्या है?
8: मैं तो ये मानती हूँ कि नारी सशक्तिकरण एक बहुत जरूरी अंग है हमारे समाज का। नारी सशक्त बनेगी तभी तो परिवार सशक्त बनेगा।
3: समय बीतता गया। सन 1962 की बात है। चमोली के ग्रामीण अंचल में विकास के लिए तत्कालीन प्रशासन द्वारा सड़क बनाने का निर्णय लिया गया, जिसके कारण गौरा के गांव रैणी और आसपास के गांवों के लोगों की पुश्तैनी जमीन छिन गई।
4: गढ़वाल क्षेत्र के जंगलों में अंगू का पेड़ प्रचुरता में पाया जाता है। खेती करने के लिए पारंपरिक कृषि के औजार अंगू पेड़ों की लकड़ी से बनाए जाते हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से निवेदन किया कि उन्हें खेती करने के औजार बनाने के लिए अंगू के पेड़ों को काटने की अनुमति दी जाए।
3: लेकिन वन विभाग भला कहां सुनने वाला था। एक ओर वन विभाग ने ग्रामीणों को साफ इनकार कर दिया, तो दूसरी ओर जंगल की जमीन का कुछ हिस्सा खेल सामग्री बनाने वाले एक निर्माता को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए आवंटित कर दिया। अंगू पेड़ों की लकड़ी से उम्दा स्तर की खेल सामग्री भी बनाई जाती थी। दिन था 24 मार्च 1976। इस दिन रैणी और आसपास के गांवों के कुल 2400 पेड़ों को काटने का आदेश दे दिया गया। इन जंगलों को बचाने के लिए लंबे समय से आंदोलन चल रहा था। गांवों के स्त्री पुरुषों ने बड़ी मुस्तैदी से मोर्चा संभाल रखा था और हर परिस्थिति का सामना करने के लिए वे तैयार थे।
10: नहीं कटने देंगे।
11: बिल्कुल नहीं कटने देंगे।
4: लेकिन संयोग कहिए कि उसी दिन गांव के लोगों को उनके उन खेतों का मुआवजा दिए जाने का आदेश हुआ जो सन 1962 के अधिग्रहण के कारण उनसे छिन गए थे। रैणी, मलारी और लाता गांव के लगभग सभी पुरुष मुआवजा लेने जिला मुख्यालय चमोली चले गए।
3: इधर पुरुषों की अनुपस्थिति में 100 से भी अधिक मजदूर रैणी और उसके आसपास के गांवों के जंगलों की ओर बढ़ने लगे। गौरा देवी उस समय गांव में ही महिला मंगल दल की स्त्रियों के साथ बातचीत कर रही थी। उन्हें नहीं पता था कि ठेकेदारों की अगुवाई में मजदूरों का दल जंगल की ओर आ रहा है।
4: और तभी गांव की एक लड़की दौड़ती हुई आई। वो बहुत डरी हुई थी।
12: गौरा मा,
13: क्या बात है चंपा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कहां से आ रही हो?
12: गौरा मा, वो लोग आ रहे हैं।
13: कौन लोग आ रहे हैं? अरे कहां आ रहे हैं, कुछ तो कहो।
12: गौरा मा,
13: हाँ?
12: पहाड़ की ओर से ठेकेदार के बहुत से मजदूर जंगल की ओर आ रहे हैं।
13: क्या?
12: हाँ गौरा मा, उनके हाथों में कुल्हाड़ियाँ, रस्सियाँ और पेड़ काटने वाली आरी है। मैं बकरी चराने गई थी तो देखा कि 3-4 ट्रक आकर रुके। उनसे मजदूर उतरे और जंगल की ओर बढ़ने लगे।
13: अच्छा, तो ये बात है बहनों।
14: हाँ गौरा मा।
13: चलो हम सब तैयार हो जाएं।
9: बिल्कुल,
13: समय आ गया है अब इस गांव के जंगल को बचाने का।
14: हाँ,
15: हाँ,
14: सब तैयार है।
15: नहीं कटने देंगे।
12: बिल्कुल नहीं कटने देंगे।
3: और चल पड़ी गौरा जंगल की ओर। उसके साथ गांव की 27 स्त्रियां थीं। उनकी चाल में दृढ़ता थी, आंखों में संकल्प झलक रहा था और उनके नारों में ओज था।
13: ये है जंगल के उपकार,
16: मिट्टी पानी और बया।
13: मिट्टी पानी और बया।
16: जिंदा रहने के आधार।
4: और अब वो स्त्रियां वहां पहुंच गईं, जहां मजदूर पेड़ों को काटने के लिए तैयार खड़े थे।
13: अरे ओ हरिया, तू तो इसी गांव का है ना रे, जिस जंगल ने तुझे पाला पोसा बड़ा किया, तेरी सारी जरूरतों को पूरा किया, उसे नष्ट करने के लिए कुछ पैसों के लालच में आकर तूने कुल्हाड़ी उठा ली। शर्म करनी चाहिए तुझे।
11: दोरो, आगे बढ़ो।
17: अरे कहाँ से?
11: गवर्नमेंट की बातों में मत आओ। मैंने तुम्हें पेश की थी यार, पेश की इस काम के लिए। होने शुरू। कहाँ पे?
17: पेड़ों से चिपक जाएंगे। ऐसा नहीं होने देंगे
13: हम। आगे बढ़कर तो दिखाओ तुम। एक भी पेड़ को हम हाथ नहीं लगाने देंगे आज।
18: नहीं लगाने देंगे।
13: बहनों, आगे बढ़कर चिपक जाओ पेड़ों से।
11: ठीक है तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
3: मजदूरों के सामने एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई थी। वे जिस पेड़ की ओर बढ़ते, गांव की स्त्रियां भागकर उसी पेड़ से चिपक जाती। इस संघर्ष में लगभग 4 घंटे बीत गए थे। इस दौरान किसी ने भागकर ये सूचना गांव के पुरुषों तक पहुंचा दी।
4: ये खबर वैसे भी जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। आसपास के गांवों से सैकड़ों की संख्या में लोग जंगल की तरफ आने लगे। स्थिति बिगड़ती देख ठेकेदार और जंगल काटने वाले मजदूर वहां से भाग खड़े हुए।
11: ठीक है तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
3: बता दें कि इन पेड़ों की कटाई को रोकने के प्रयास में यह आंदोलन 3 साल पहले 1973 में शुरू हुआ था। इसकी नींव सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में रखी गई थी।
4: इस घटना ने गौरा देवी को चिपको आंदोलन की महान नेत्री बना दिया और इसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई पड़ी। गौरा देवी विश्व मीडिया में चिपको वुमन के नाम से मशहूर हुई। इस घटना का बहुत बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि सरकार ने हिमालयी क्षेत्र में आगामी 15 वर्षों के लिए वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया और राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार पर्यावरण मंत्रालय गठित करने पर विमर्श संभव हुआ।
3: जुलाई सन 1991 में 66 साल की उम्र में इस महान पर्यावरण नेत्री का निधन हो गया।
4: एक साक्षात्कार में गौरा देवी ने जंगल के प्रति अपना स्नेह दर्शाते हुए कहा था,
13: ये जंगल हमारी माता के घर जैसा है। यहां से हमें फल, फूल और सब्जियां मिलती हैं। अगर यहाँ के पेड़ पौधों को काटोगे तो निश्चित ही बाढ़ आएगी।
3: चिपको आंदोलन अहिंसक आंदोलन था जिसमें ग्रामीणों और गढ़वाल की बहनों ने पेड़ों को कटने से रोकने के लिए उन्हें गले लगा लिया। इस महान पर्यावरण नेत्री को हमारा नमन।
0: अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय

बटी लैंगलिंगडो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, कलाकार बाबला कोचर, पूनम एस कुदेसिया, ममता मलकानी, प्रज्ञा प्रवीण शर्मा और गीतांजलि, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: तो श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी, और इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

0: एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग समाप्त हुआ। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: आकाशवाणी भागलपुर केंद्र से सुने एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार दिन के 12:30 बजे से। उमंग।
0: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1:00 बज रहे हैं। प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंग। कलाकार हैं विश्वेश्वर प्रसाद शर्मा। कार्यक्रम के प्रारंभ में इनसे सुनिए लोक भजन।

आकाशवाणी भागलपुर से आप सुन रहे हैं लोकगीत कार्यक्रम, लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। कार्यक्रम का शेष भाग आप सुन पाएंगे दोपहर 1:20 से। अभी समय है प्रादेशिक समाचार का, इसे हम रिले कर रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकट्टा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय जनजातीय विकास सम्मेलन का उद्घाटन किया। जनजातीय समुदाय को मुख्यधारा से जोड़ने पर दिया जोर। केंद्र सरकार ने सीबीएसई ऑन स्क्रीन मार्किंग विवाद पर की बड़ी कार्रवाई। अध्यक्ष और सचिव का तबादला, जांच समिति गठित। आईआईआरएफ रैंकिंग 2026 में झारखंड के संस्थानों का शानदार प्रदर्शन। निजी प्रबंधन संस्थान में एक्सएलआरआई देश में दूसरे स्थान पर और आईआईएम रांची 18वें स्थान पर रहा। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल के नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई में टला बड़ा हादसा। ऑक्सीजन पाइप फटने पर सांसद मनीष जायसवाल की टीम ने लिया जायजा। और जापान में आयोजित अंडर 18 महिला एशिया कप हॉकी में भारत सेमीफाइनल में, झारखंड की खिलाड़ियों ने भी दिखाया दमखम। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सशक्त बनाने संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश भर में रहने वाला जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से अत्यंत समृद्ध है और उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास किए जाने चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि विकास की रोशनी अंतिम व्यक्ति और अंतिम गांव तक पहुंचनी चाहिए।
1: जनमन योजना के तहत जनजातीय समुदाय में भी सबसे पिछड़े समूहों के 20,000 से अधिक गांव तक विकास कार्यक्रम को पहुंचाने का लक्ष्य है। हम सब जानते हैं 75 जो ग्रुप्स और है पीबीटीजी सबसे पिछड़े अभी भी और कोई पेड़ के मंच के रहते हैं, उनके कोई जमीन नहीं, जमीन था लेकिन रिकॉर्डेड नहीं, इसलिए उनको जमीन देकर घर बनाना, उनके हर चीज के लिए अधिकारी लोगों को जितने कर्मचारी लोगों का दायित्व है।
0: केंद्र सरकार ने सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली से जुड़े विवाद के बाद बड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने बोर्ड के अध्यक्ष राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता का तबादला कर दिया है। साथ ही खरीद प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए क्षमता निर्माण आयोग के अध्यक्ष एस राधा चौहान की अध्यक्षता में एक सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया है। समिति 1 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में तकनीकी खामियों और मूल्यांकन संबंधी शिकायतों के बाद यह कार्रवाई की गई है। पाकुड़ जिले के सदर प्रखंड स्थित झिकरहट्टी पूर्वी पंचायत को महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए महिला हितैषी पंचायत के रूप में राष्ट्रीय पहचान मिली है। लगभग 17,500 की आबादी वाली इस पंचायत में झिकरहट्टी पूर्वी समेत 8 गांव शामिल हैं। ग्रामीणों ने पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र और उच्च विद्यालय की स्थापना की मांग भी की है ताकि महिलाओं और छात्राओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। उपायुक्त मेधा भारद्वाज ने बताया कि इस पंचायत की तरह ही अन्य पंचायतों को बढ़ाने का काम किया जाए।
2: एक रिप्रेजेंटेटिव पंचायत के तौर पे ये उभर के आया है, इसको हम लोग एज एन एग्जाम्पल यूज करेंगे फ्यूचर में ताकि हम अन्य पंचायतों को इसी के तर्ज पे महिला सशक्तिकरण और उससे रिलेटेड फिर विकास की दिशा में मोड़ने का कार्य करने के लिए हम लोग इसको एज एन एग्जाम्पल यूज करेंगे।
0: IIRF रैंकिंग 2026 में झारखंड के कई शिक्षण संस्थानों ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। निजी प्रबंधन संस्थानों में जेवर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट को देश में दूसरा स्थान मिला है, जबकि IIT धनबाद सरकारी इंजीनियरिंग संस्थानों में 11वें स्थान पर रहा। वहीं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रांची को प्रबंधन शिक्षा में 18वां, BIT मेसरा को निजी इंजीनियरिंग संस्थानों में 10वां तथा IIT को अपनी श्रेणी में 18वां स्थान हासिल हुआ है। आज विश्व साइकिल दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष विश्व साइकिल दिवस की थीम है हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना। यह दिवस हर वर्ष 3 जून को साइकिल को एक सरल, किफायती, विश्वसनीय और पर्यावरण अनुकूल परिवहन साधन के रूप में बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार x handle @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई यानी SNCU में ऑक्सीजन पाइपलाइन से जुड़े जंबो सिलेंडर का पाइप फटने से अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही अस्पताल प्रबंधन सक्रिय हुआ। उपाधीक्षक डॉक्टर राजकिशोर के निर्देश पर तकनीकी टीम मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त पाइप को बदलकर ऑक्सीजन आपूर्ति बहाल कर दी गई। इस दौरान सांसद मनीष जायसवाल ने भी मामले की जानकारी मिलने पर अपने प्रतिनिधि को अस्पताल भेजा और स्थिति की जानकारी ली। खूंटी जिले में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर 5 जून से सप्ताह भर विशेष जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। जिला वन पदाधिकारी दिलीप कुमार यादव ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर जिले के विभिन्न गांवों, विद्यालयों, सरकारी संस्थानों और सार्वजनिक स्थलों पर पौधारोपण, स्वच्छता अभियान तथा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
3: इस साप्ताहिक कार्यक्रम में हर वन रक्षक GFMC गांव के मुखिया प्रधान जाके वहां पे बैठक करें और विश्व पर्यावरण से संबंधित जो बिंदु है उसके बारे में गांव से विचार विमर्श करें और क्या अपेक्षित है वन विभाग से और किस तरह से हम और एनवायरमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं उस पर एक डिस्कशन है।
0: पाकुड़ के अमरापाड़ा में अवैध रूप से चल रहे निर्माण कार्य के दौरान कई पेड़ों की कटाई की गई। DFO सौरभ चंद्रा ने बताया कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की जा रही है।
4: आमरापाड़ा रेंज में पकलों के पास एक रोड RDO विभाग द्वारा निर्माण किया जा रहा था, इसकी पूर्वानुमति विभाग द्वारा नहीं प्राप्त की गई। स्थलीय प्रबंधन के क्रम में जो हमारे वहाँ प्रधान वनरक्षक उन्होंने पाया था कि बिना अनुमति के वहाँ पर रोड बनाने के क्रम में कई पेड़ को उखाड़ दिया गया है और वन भूमि का वहाँ पर नष्ट किया गया है।
0: सरायकेला में

0: सिंगापुर को 25-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारतीय टीम ने लीग चरण में अपने पूल में शीर्ष स्थान हासिल किया। झारखंड की संदीपा कुमारी, पुष्पा मांझी और श्रुति कुमारी ने भी एक एक गोल कर टीम की जीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हॉकी झारखंड और राज्य खेल विभाग ने भारतीय टीम तथा राज्य के खिलाड़ियों को बधाई देते हुए सेमीफाइनल मुकाबले के लिए शुभकामनाएं दी हैं। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। जमशेदपुर स्थित टाटानगर स्टेशन पर वेंडरों और निजी एजेंसियों के कर्मचारियों को क्यूआर कोड आधारित डिजिटल पहचान पत्र जारी किए गए हैं। इसके साथ ही टाटानगर इस व्यवस्था को लागू करने वाला दक्षिण पूर्व रेलवे का पहला स्टेशन बन गया है। देवघर में आयोजित जनता दरबार में मदद की गुहार लेकर पहुंचे दिव्यांग भवेश को उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने मौके पर ही ट्राई साइकिल उपलब्ध कराई। देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर परिसर के 18 दानपात्र खोले गए। गिनती के बाद दानपात्रों से कुल करीब 26 लाख रुपए प्राप्त हुए। मंदिर प्रशासन के अनुसार यह राशि मंदिर के विकास और श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर खर्च की जाएगी। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय जनजातीय विकास सम्मेलन का उद्घाटन किया। जनजातीय समुदाय को मुख्यधारा से जोड़ने पर दिया जोर। केंद्र सरकार ने CBSE ऑन स्क्रीन मार्किंग विवाद पर की बड़ी कार्रवाई। अध्यक्ष और सचिव का तबादला, जांच समिति गठित। IIRF रैंकिंग 2026 में झारखंड के संस्थानों का शानदार प्रदर्शन। निजी प्रबंधन संस्थान में XLRI देश में दूसरे स्थान पर और IIM रांची 18वें स्थान पर रहा। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल के नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई में टला बड़ा हादसा। ऑक्सीजन पाइप फटने पर सांसद मनीष जायसवाल की टीम ने लिया जायजा। और जापान में आयोजित U18 महिला एशिया कप हॉकी में भारत सेमीफाइनल में। झारखंड के खिलाड़ियों ने भी दिखाया दमखम। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्ज पर और FM बैंड के 100.1 मेगा हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1:20 हो रहे हैं। सुनिए लोकरंग कार्यक्रम का शेष भाग कलाकार विश्वेश्वर प्रसाद शर्मा की आवाज़ में। इनसे सुनिए शिव भजन।

आकाशवाणी भागलपुर से आप सुन रहे हैं लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंग। कलाकार हैं विश्वेश्वर प्रसाद शर्मा। अब इनसे सुनिए निर्गुण।

लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंग संपन्न हुआ। कलाकार थे विश्वेश्वर प्रसाद शर्मा। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है घर आंगन कार्यक्रम।

सभी श्रोता बहनों को आरू का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, गर्मी और उमस का कहर अपने चरम पर है और होना भी चाहिए, क्योंकि अभी पिछले 9 दिनों से नौतपा चल रहा है जो अपने भीषण गर्मी के लिए प्रसिद्ध है। बहनों, चूंकि स्कूल्स में गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, तो थोड़ी सी राहत बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर होने वाली चिंता में जरूर होगी। बहनों, पर्यावरण हमारा जितनी तेजी से बदल रहा है, 40 डिग्री सेल्सियस 42 डिग्री सेल्सियस होना तो अब आम बात हो गई है, और इसका असर ना सिर्फ आपके और हमारे स्वास्थ्य पर पड़ रहा है बल्कि पूरा विश्व और सभी प्रकार के जीव जंतु इससे प्रभावित हो रहे हैं। अनेकों तरह की जानलेवा बीमारियों से लोग ग्रसित हो रहे हैं, और इस समस्या का हल सिर्फ आपके या मेरे चिंता करने से या बात करने से नहीं हो पाएगा, बल्कि सरकार द्वारा किए गए पहलों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी और अपने स्तर पर भी हम सभी को काम करना पड़ेगा। बहनों, हमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है, बल्कि अपनी छोटी छोटी आदतों में सुधार करनी है, जागरूकता फैलाना है और अच्छे पर्यावरण में जीने का आनंद लेना है। छोटी छोटी आदतें जैसे पानी को कहीं भी फिजूल में बर्बाद नहीं होने दें, अपने घर के आसपास पेड़ पौधे अवश्य लगाएं, प्लास्टिक का उपयोग कम करें, प्लास्टिक को नहीं जलाएं, पेट्रोल डीजल बचाने के लिए सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, छोटी दूरी को साइकिल से भी आप तय कर सकती हैं। बहनों, साइकिल से याद आया कि आज है 3 जून और आज हम लोग मनाते हैं विश्व साइकिल दिवस, और हर साल 3 जून को पूरी दुनिया में विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। यह दिन बहनों साइकिल जैसे एक साधारण, किफ़ायती, भरोसेमंद और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन के साधन को समर्पित है। बहनों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, बढ़ते प्रदूषण और बिगड़ती जीवन शैली के बीच साइकिल की प्रासंगिकता और अधिक बढ़ गई है। बहनों, साइकिल के महत्व को वैश्विक स्तर पर मान्यता दिलाने के पीछे प्रोफेसर सिबलिस्की और उनके समाजशास्त्र के छात्रों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। बहनों, उन्होंने साइकिल के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एक व्यापक अभियान चलाया। इस अभियान के परिणाम स्वरूप 12 अप्रैल 2018 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के रूप में घोषित किया। इस घोषणा पत्र का समर्थन 56 देशों ने किया था। बहनों, संयुक्त राष्ट्र ने माना कि साइकिल न केवल परिवहन का एक साधन है, बल्कि यह विकास को बढ़ावा देने, सामाजिक समावेश को मजबूत करने और पर्यावरण की रक्षा करने का एक बेहतरीन उपकरण भी है। बहनों, विश्व साइकिल दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य सतत विकास, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना, सड़क सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन और समानता को बढ़ाना है। बहनों, लोगों की गतिहीन जीवन शैली से बाहर निकलकर सक्रिय रहने के लिए साइकिल कहीं ना कहीं प्रेरित करता है। साथ ही शहरों में साइकिल चालकों के लिए सुरक्षित बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए सरकारों को प्रोत्साहित करना भी इस दिवस का एक मुख्य उद्देश्य है। समाज के सबसे गरीब तबके को भी गतिशीलता प्रदान करना, जिससे वे शिक्षा और रोजगार के अवसरों तक पहुंच सके, यह कहीं ना कहीं एक साइकिल से ही संभव है। साथ ही बहनों, आज की आधुनिक जीवन शैली में मोटापा, मधुमेह और हृदय रोग जैसी बीमारियां महामारी का रूप ले चुकी है। ऐसे में रोजाना केवल 30 मिनट साइकिल चलाना चमत्कारी बदलाव ला सकता है। बहनों, हृदय स्वास्थ्य के लिए भी साइकिल चलाना एक बेहतरीन कार्डियो एक्सरसाइज है। इससे दिल की धड़कनें तेज होती है, जिससे रक्त परिसंचरण बेहतर होता है। शोध बताते हैं कि नियमित रूप से साइकिल चलाने वालों में हृदय रोगों का खतरा 50% तक कम हो जाता है। साथ ही बहनों, वजन नियंत्रण और मोटापा से मुक्ति के लिए भी साइकिल चलाना एक बहुत ही प्रभावी और आनंददायक तरीका है। 1 घंटे की मध्यम गति से की गई साइकिलिंग से लगभग 400 से 500 कैलोरी बर्न होती है। यह मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, जिससे चर्बी तेजी से घटती है। बहनों, आज के दौर में तनाव, एंग्जायटी और डिप्रेशन आम समस्याएं हैं। जब हम खुली हवा में साइकिल चलाते हैं तो शरीर में एंडोर्फिन और सेरोटोनिन जैसे फील गुड हार्मोन का स्त्राव होता है। यह तनाव को कम करता है और मूड को तुरंत बेहतर बनाता है। बहनों, दौड़ने की तुलना में साइकिल चलने से जोड़ों पर बहुत कम दबाव पड़ता है। यह घुटनों को नुकसान पहुंचाए बिना
पैरों की मांसपेशियों को टोन और मजबूत करता है। साथी बहनों, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन में आज दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। दुनिया भर में होने वाले कुल कार्बन उत्सर्जन का एक बड़ा हिस्सा पारंपरिक वाहनों यानी कि कार से, मोटरसाइकिल से और बड़ी ट्रकों से, बसों से आता है। पारंपरिक वाहन जो है धुएं और जहरीली गैसों का उत्सर्जन करती हैं, जिससे वायु प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग होता है। वहीं बहनों, साइकिल शून्य ईंधन यानी कि जीरो फ्यूल पर और शून्य उत्सर्जन पर काम करता है, तो इससे स्वच्छ और हरित पर्यावरण बनता है। बहनों, साइकिल पूरी तरह से मानवीय ऊर्जा से चलती है। इसमें किसी भी प्रकार के जीवाश्म ईंधन जैसे कि पेट्रोल या डीजल की आवश्यकता नहीं होती, जिससे वायु प्रदूषण नहीं होता। साथ ही महानगरों में वाहनों का शोर मानसिक तनाव का एक बड़ा कारण है। साइकिल पूरी तरह से शांत होती है, जिससे ध्वनि प्रदूषण भी कम होता है। इसके अलावा बहनों, एक कार को पार्क करने की जगह में कम से कम 10 साइकिलें पार्क की जा सकती है। इससे शहरों में ट्रैफिक जाम और पार्किंग की समस्या से निजात मिलती है। बहनों, साइकिल केवल स्वास्थ्य या पर्यावरण तक सीमित नहीं है, इसके गहरे आर्थिक और सामाजिक मायने भी हैं। महंगे पेट्रोल, डीजल और वाहनों के रखरखाव के खर्च से मुक्ति मिलती है। एक आम नागरिक के लिए साइकिल पैसों की भारी बचत का साधन है। साथ ही बहनों, साइकिल अमीर और गरीब के बीच की खाई को पाटती है। यह समाज के हर वर्ग के लिए सुलभ है। ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों को स्कूल जाने और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में साइकिल ने क्रांतिकारी भूमिका निभाई है। बहनों, व्यस्त शहरी इलाकों में कम दूरी तय करने के लिए साइकिल अक्सर कारों से तेज साबित होती है, क्योंकि यह ट्रैफिक जाम में नहीं फंसती। साइकिलिंग को बढ़ावा देने में बहुत सारी चुनौतियां भी हैं जो हमारे भारत जैसे और दुनिया के कई विकासशील देशों में हैं, और ये कुछ जो चुनौतियां हैं वे हैं सुरक्षित बुनियादी ढांचे का अभाव। जैसे अधिकांश शहरों में साइकिलिंग चालकों के लिए अलग से ट्रैक नहीं है। भारी वाहनों के बीच साइकिल चलाना जोखिम भरा होता है, जिससे दुर्घटना

दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। साथ ही कई समाजों में साइकिल को गरीबों का वाहन माना जाता है। लोग कार या महंगी बाइक को प्रतिष्ठा यानी कि स्टेटस सिंबल से जोड़कर देखते हैं और इस मानसिकता को बदलने की सख्त जरूरत है। साथी बहनों, सड़क पर साइकिल चालकों को उचित सम्मान और अधिकार नहीं मिलता है। तो बहनों, ये कुछ समस्याएं हैं जिन पे हम अमल करके कहीं ना कहीं इसको दूर कर सकते हैं। बहनों, साइकिल दिवस को जागरूकता अभियान के रूप में चलाया जाता है। स्कूलों और कॉलेजों के स्तर पर साइकिलिंग के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाई जानी चाहिए, क्योंकि यह दिन केवल एक दिन या उत्सव नहीं बल्कि हमारे भविष्य को सुरक्षित, स्वच्छ और स्वस्थ बनाने का एक संकल्प है। साइकिल एक ऐसा उपकरण है जो हमें अतीत की सादगी से जोड़ते हुए एक सस्टेनेबल भविष्य की ओर ले जाता है। आइए इस विश्व साइकिल दिवस पर हम सब यह प्रण लें कि कम से कम छोटी दूरियों जैसे कि सब्जी लाना, पास के बाजार जाना, इन कामों के लिए मोटर वाहनों को छोड़कर साइकिल का उपयोग करेंगे। हमारा यह छोटा सा कदम हमारे स्वास्थ्य के लिए वरदान और धरती माँ के लिए एक अमूल्य उपहार साबित होगा। तो बहनों, साइकिल चलाएं और स्वस्थ रहें। इसी के साथ बहनों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक देवी गीत।

बहनों, इस बहुत ही सुंदर से देवी गीत सुनने के बाद एक बार फिर से आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। बहनों, तो कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और क्यों ना कुछ संदेशों को सुना जाए, तो सुनते हैं इन संदेशों को।

0: Akashvani at 90.
1: बहनों, एक बार फिर से आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। बहनों, स्वच्छ भारत ही स्वस्थ भारत हो सकता है। कहीं भी, चाहे हमारा समाज हो या हमारा देश हो, जब तक हम स्वच्छता का ध्यान नहीं रखेंगे तब तक हम स्वस्थ नहीं रह सकते हैं, क्योंकि जहां स्वच्छता का अभाव होगा वहां बीमारियों का घर होगा। इसलिए स्वच्छ रहना जरूरी है स्वस्थ रहने के लिए। इसी विषय पर एक पूर्व प्रसारित वार्ता सुनते हैं। वार्ता का विषय है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, और वार्ताकार हैं आकांक्षा मिश्रा। तो सुनते हैं यह वार्ता।
2: देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अगुवाई में जब पूरा देश भारत की आजादी में जुटा था, तो वो खुद उस वक्त कई मोर्चों पर संघर्ष कर रहे थे। अंग्रेजों की यकीन को तो उन्होंने खुद चूर चूर कर ही दिया था, लेकिन आज़ाद भारत की तस्वीर कैसी होगी और ये किस दिशा में आगे बढ़ेगा, गांधी जी इस पर भी मनन करते रहे। गांधी जी ने देश के कोने कोने का दौरा किया और महसूस किया कि एक राष्ट्र के तौर पर उदय के लिए हमें राजनीतिक आज़ादी नहीं बल्कि गंदगी और बीमारियों से स्वतंत्रता चाहिए होगी, और इसी सोच के साथ उन्होंने स्वच्छ भारत का सपना देखा। मगर आज़ादी के दशकों बाद भी हम महात्मा गांधी के सपनों को पूरा करने में नाकाम रहे, परंतु स्वच्छ भारत के लक्ष्य को पूरा करने हेतु हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन को एक मुहिम के तौर पर चलाया, जो आज एक व्यापक जन आंदोलन में तब्दील हो गया है, जिसका सकारात्मक रूप भी

0: देखने को मिला। भारत सरकार 90% से ज़्यादा घरों में शौचालय बनाने में सफल हुई है। स्वच्छता अभियान के द्वारा यह संदेश भी घर घर पहुंचाया गया है कि गंदगी अपने साथ बीमारियों को लेकर आती है, जबकि स्वच्छता रोगों को दूर भगाती है। इसलिए स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छता सबसे पहली आवश्यकता है। भारत सरकार ने देश की स्वच्छता और लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए विभिन्न मंत्रालयों को कार्यभार सौंपा, जिसमें स्वच्छता मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, उपभोक्ता मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय शामिल है। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के रूप में योग ने एक नए सिरे से अपनी पहचान को स्थापित किया है। आयुष मंत्रालय ने भी योग के महत्व को घर घर पहुंचाया है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क एवं शुद्ध आत्मा का निवास माना जाता है। सरकार ने भी गांवों घरों तक वेलनेस सेंटर पहुंचाए हैं। सरकार द्वारा टीकाकरण भी उचित कीमतों पर उपलब्ध कराया गया है, ताकि हमारा भारत स्वस्थ बन सके। इस मिशन की सफलता इस बात पर भी निर्भर करता है कि हम अपने आप को बदलने के लिए कितना तैयार मानते हैं। भारत पूरी तरह से स्वच्छ और स्वस्थ तभी बनेगा जब हर व्यक्ति खुद को स्वच्छता के प्रति जिम्मेदार मानेगा। हमें केवल बाहरी स्वच्छता पर नहीं, अपितु अंदर की स्वच्छता अर्थात मन की स्वच्छता पर भी ध्यान देना चाहिए। गांधी जी ने शारीरिक अस्वच्छता एवं दुर्बलता की अपेक्षा नैतिक अस्वच्छता एवं दुर्बलता को दूर करना ज़्यादा ज़रूरी मानते थे। उनका मानना था कि व्यक्ति एवं समाज को शारीरिक बीमारी की अपेक्षा शराब, जुआ, व्यभिचार आदि बुराइयों से ज़्यादा खतरा है। अतः मन की शुद्धता ही स्वस्थ जीवन की पहली सीढ़ी है। महात्मा गांधी ने कहा था, स्वच्छता किसी एक तबके का काम नहीं है, बल्कि ये सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने यह भी कहा था, स्वच्छता ही सेवा है और साफ सफाई ही ईश्वर भक्ति। उन्होंने इन शब्दों के जरिए दुनिया को एक राह दिखाई। कौन सा देश कितना सभ्य है और विकसित है, यह वहाँ के नागरिक के साफ सफाई को लेकर जागरूकता और सजगता से जाहिर होती है। महात्मा गांधी का मानना था कि शौचालय उतना ही साफ सुथरा होना चाहिए जितना कि ड्राइंग रूम। गांधी जी के लिए स्वच्छता दिव्यता के समान थी। इन विचारों को साबित करने के लिए गांधी जी ने अपने शौचालय को शब्दशः पूजा स्थल की तरह बनाया। उनका मानना था कि खुद शौचालय को इतना महत्व देकर ही जनता को इसके महत्व के बारे में समझाया जा सकता है। गांधी जी का मानना था, आंतरिक और बाहरी साफ सफाई स्वच्छता ईश्वर की अनुभूति का साधन है। मैले शरीर और उस पर अशुद्ध मस्तिष्क के साथ हम ईश्वर का आशीर्वाद नहीं पा सकते। स्वच्छ शरीर किसी गंदे शहर में वास नहीं कर सकता। उनका यह भी मत था, अगर कोई व्यक्ति स्वच्छ नहीं है तो वह शुद्ध स्वस्थ नहीं रह सकता। अगर वह स्वस्थ नहीं है तो स्वस्थ मनोदशा के साथ नहीं रह पाएगा। स्वस्थ मनोदशा से ही स्वस्थ चरित्र का विकास होगा। अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, चाहे वह हमारा बिस्किट के पैकेट को सड़क पर फेंकना हो या फिर हमारा इधर उधर थूकना या कूड़े को कूड़ेदान में ना डालकर बाहर फेंकना। इसलिए हमें इन सारी चीज़ों के प्रति सजग होना चाहिए। प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करना चाहिए, क्योंकि यह शहर को गंदा बनाने के साथ साथ हमारी प्रकृति और हमारे स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव डालता है। प्लास्टिक खाने की वजह से मवेशियों की भी जान चली जाती है। हमें ज्ञात होना चाहिए कि प्रकृति ही हमारा पालन पोषण करती है और हम ही निर्दयता के साथ प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं, परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए इसका दुष्परिणाम भी हमें ही झेलना होगा, जैसे डेंगू, स्वाइन फ्लू आदि। आज चीन में कोरोना वायरस की महामारी फैली हुई है। हम उस देश के नागरिक हैं जहां संस्कृति हमें स्वच्छता का महत्व बताती है। हमारे पुराणों एवं धर्म सूत्रों में भी स्वच्छता को खासा तरजीह दी गई है। मानव के आचरण में स्वच्छता को भी एक आचरण की तरह स्वीकारा गया है। जब महात्मा गांधी देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, तब उन्होंने कहा था, जब तक हम अपने गांवों और शहरों की स्थितियों को नहीं बदलते, अपने आप को बुरी आदतों से मुक्त नहीं करते और बेहतर शौचालय नहीं बनाते, तब तक स्वराज का हमारे लिए कोई महत्व नहीं है। और इसी को ध्येय बनाकर मोदी सरकार ने साफ सफाई को महत्वपूर्ण विषयों में एक माना। सरकार ने कई राज्यों में पानी की सफाई और प्रदूषण से मुक्ति के लिए कई संभव प्रयास भी किए हैं, ताकि हमें स्वच्छ हवा और शुद्ध पेयजल मिल सके। हमें भी सरकार की नीतियों का खुले दिल से स्वागत करना चाहिए। नदियों को हमें दूषित नहीं करना चाहिए, नालों का समय समय पर सफाई करना चाहिए, सूखे कूड़े और गीले कूड़े को अलग अलग कूड़ेदान में रखना चाहिए, ताकि गीले कूड़े को मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए उपयोग में लाया जा सके और सूखा कूड़ा जैसे प्लास्टिक की बोतलें, रैपर, पेपर आदि को रिसाइकल करके फिर से उपयोग में लाया जा सके। हमें बच्चों में भी स्वच्छता की आदतें बचपन से ही डालनी चाहिए। स्कूलों, कॉलेजों में भी स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत मिशन के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम हो रहे हैं और उन्हें पाठ्यक्रम में भी इसकी जानकारी दी जा रही है। अतः हमें सदैव यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारा समाज, हमारा गांव, हमारा घर साफ सुथरा रहे। और इसी के साथ मैं यह कहना चाहूँगी कि स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत मिशन के अंतर्गत मोदी सरकार ने वाकई सराहनीय पहल की है और इस अभियान के माध्यम से न सिर्फ स्वच्छ भारत का निर्माण होगा बल्कि भारत की पहचान स्वस्थ देशों में की जा सकेगी।
1: बहनों, हम कह सकते हैं कि हर अच्छाई, हर खूबियों की जो शुरुआत है वो स्वच्छता से होती है, तो स्वच्छ रहें और स्वस्थ रहें। बहनों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कुछ और संदेशों को।

ये हमारे मन के लिए बहुत आवश्यक है। और आज जैसा कि आज हम लोग विश्व साइकिल दिवस मना रहे हैं, तो छोटी छोटी दूरियों को अगर साइकिल से हम तय करते हैं, और छोटी छोटी आदतें, जैसे कि अभी परसों 5 जून को हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाएंगे, तो उस अवसर पे भी हम बहुत सारे पेड़ पौधे लगा के, और जो हमारे आसपास पौधे हैं उनकी सुरक्षा करके, उनको पानी दे के, और लोगों में भी जागरूकता फैला के, कहीं ना कहीं अपने स्तर पे भी छोटा छोटा अगर योगदान, छोटी छोटी योगदान देंगे, तो हमारा जो पर्यावरण है वो भी बेहतर बन सकता है, हमारा आसपास भी स्वच्छ रह सकता है और हम भी स्वस्थ रह सकते हैं। इसी के साथ बहनों, समय हो गया है आपसे विदा लेने का। आशा करती हूँ कि आपको कार्यक्रम पसंद आया हो। दीजिए इजाजत सभी को, आरू का नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे घर आंगन कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 2 बजने ही वाले हैं। अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के पटना केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।
1: प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। ग्रामीण विकास मंत्री राजीव रंजन सिंह ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किए। देश भर की 42 उत्कृष्ट पंचायतों को ग्रामीण विकास, सुशासन, जनभागीदारी, स्वच्छता, डिजिटल सेवाओं तथा सतत विकास लक्ष्यों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए दो श्रेणियों में ये पुरस्कार प्रदान किए गए। समारोह में बिहार के 18 जिलों की विभिन्न पंचायतों को अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि राज्य के 13 जिलों में आयोजित होने वाले श्रावणी मेले के लिए 2,25,00,000 रुपए की राशि आवंटित की गई है। उन्होंने कहा कि यह राशि मेला क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए खर्च की जाएगी। श्री जायसवाल ने कहा कि राज्य सरकार श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की आज पटना में बैठक होगी। बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगने की संभावना है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया कि लगभग 40,000 छात्रों ने सफलतापूर्वक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा कर दिए हैं। यह प्रक्रिया बिना किसी समस्या के पूरी कर ली गई है। बोर्ड ने कल कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोला था। यह सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से पर निर्मित बेली ब्रिज पर वाहन परिचालन का ट्रायल किया गया। परीक्षण के दौरान 2.5 टन वजन वाले चार पहिया वाहन को 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाकर पुल की मजबूती की जांच की गई। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार वाहनों का परिचालन पूरी तरह सफल रहा। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: इधर आइए, इधर।
2: इधर?
1: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
3: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
2: अच्छा, ऐसी बात।

0: बात है तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
1: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
0: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
1: शुभ वाणी,
0: लाभ वाणी,
1: आकाशवाणी।
2: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। पूरा प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कई स्थानों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 41.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ भभुआ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की और बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं आज राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिण पश्चिम हिस्सों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। युवा रोजगार और कौशल विकास विभाग की ओर से दरभंगा में कल से 6 जून तक अलग अलग प्रखंडों में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले में 18 से 45 आयु वर्ग के अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। इधर खगड़िया में भी कल एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। सिवान जिले के बड़हरिया थाना क्षेत्र के शिवराजपुर गांव में एक युवक की पीट पीट कर हत्या के मामले में पुलिस अधीक्षक पूरन कुमार झा ने डायल 112 पर तैनात पुलिस अवर निरीक्षक संजीव कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वहीं 2 गृह रक्षकों के अनुबंध निरस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सुपौल के जिलाधिकारी सावन कुमार ने लोक शिकायत निवारण से संबंधित मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में निर्मलिक के अंचलाधिकारी पर ₹1,000 का अर्थदंड लगाया है। कटिहार रेल मंडल में चल रहे दोहरीकरण और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग कार्य के कारण रेलवे ने 12 जून को सहरसा सियालदह हाटे बाजार एक्सप्रेस के परिचालन मार्ग में बदलाव किया है। इस दिन यह ट्रेन पूर्णिया बनमनखी मधेपुरा मार्ग की जगह मानसी नौगछिया कटिहार के रास्ते संचालित होगी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

ये आकाशवाणी पटना है। अब आप शर्फुल हुदा से इलाकाई खबरें सुनिए। देही तरक्यात के वजीर राजीव रंजन सिंह ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में मुनाकिद प्रोग्राम में कौमी पंचायत अवार्ड तकसीम किए। पूरे मुल्क की 42 पंचायतों को देही तरक्यात, बेहतर हुक्मरानी, अवामी हिस्सेदारी, सफाई सुथराई, डिजिटल खिदमात और मुसलसल तरक्याती अहदाफ के मौसर नफाज़ अमल के लिए दो ज़ुमरों में ये अवार्ड दिए गए। तकरीब में बिहार के 18 ज़िलों की मुख्तलिफ पंचायतों को अलग अलग इलाकों में बेहतर मुजाहरा के लिए अवार्ड से नवाजा गया। महसूलात और ज़मीनी असलाहत के वज़ीर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि रियासत के 13 ज़िलों में मुनाकिद होने वाले शरावनी मेले के लिए 2,25,00,000 रुपये की रकम मख्तस की गई है। उन्होंने कहा कि ये रकम मेला इलाकों में बुनियादी सहूलतों की इस्तेहकामकारी और अकीदतमंदों की सहूलत के लिए खर्च की जाएगी। जनाब जायसवाल ने कहा कि रियासती हुकूमत अकीदतमंदों को बेहतर सहूलत फराहम कराने के लिए पाबंद अहद है। वज़ीर आला सम्राट चौधरी की सदारत में रियासती काबीना की आज मीटिंग पटना में मीटिंग होगी। मीटिंग में कई अहम एजेंडों पर मुहर लगने का इम्कान है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने बताया है कि लगभग 40,000 तलबा ने इवेलुएशन के लिए दरख्वास्तें जमा कर दी हैं। ये अमल बग़ैर किसी मसला के दरपेश मुकम्मल कर लिया गया है। बोर्ड ने कल दर्जा 12वीं के तलबा के लिए जवाबी कापियों की खामियों की तस्दीक और आंसर्स के दोबारा इवेलुएशन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोला था। ये सहूलत सिर्फ उन्हीं तलबा के लिए दस्तयाब है जिन्होंने अपने इवेलुएटेड आंसर

0: मार्कशीट की स्कैन की गई कापियां हासिल कर ली हैं। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु के नुकसानजदा हिस्से पर तामीर बेली ब्रिज पर गाड़ियों का ट्रायल किया गया। तजुर्बे के दौरान 2.5 टन वाली चार पहिए की गाड़ियों को 20 से 30 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलाकर पुल की मजबूती की जांच की गई। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक गाड़ियों की रफ्तार पूरी तरह कामयाब रही। पूरी रियासत में शदीद गर्मी की गिरफ्त में है। महकमा मौसमियात से हासिल शुदा इत्तला के मुताबिक कई जगहों का दर्जे हरारत 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 41.4 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत के साथ भभुआ रियासत का सबसे गर्म जगह रहा। भागलपुर और शेखपुरा का ज़्यादा से ज़्यादा पारा हरारत 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम के कयास आरआई में कहा गया है कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का मज़ीद इजाफा हो सकता है। वहीं आज रियासत के शमाल मशरक़ी और जनूब मगरबी हिस्सों में कुछ मकामात पर हल्की बारिश का इम्कान है। नौजवान रोज़गार और हुनर फरोग महकमा की तरफ से दरभंगा में कल से 6 जून तक अलग अलग ब्लाकों में रोज़गार मेले का इनाकाद किया जाएगा। मेले में 18 से 42 उम्र के उम्मीदवार हिस्सा ले सकते हैं। इधर खगड़िया में भी कल एक रोज़ा रोज़गार मेले का इनाकाद किया जाएगा। कटिहार रेल डिवीज़न में चल रही दोहरीकारी और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग काम के सबब रेलवे ने 12 जून को सहरसा सियालदा हाटे बाज़ार एक्सप्रेस की सर्विस रूट में तब्दीली की है। इस दिन ये ट्रेन पूर्णिया बनमंखी मधेपुरा रूट की जगह मानसी नवगछिया कटिहार के रास्ते से चलेगी। और इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:10 हो रहे हैं। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:15 होने ही वाले हैं। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए के अनुग्रह राशि देने की घोषणा। पश्चिम बंगाल विधानसभा से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी के लगभग 60 विधायकों के समर्थन का दावा करने के बाद तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल मची। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला के परिभाषा के पुनर्विचार के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार अब से कुछ देर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारत सौर ऊर्जा विकास के मामले में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बना। वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में अमेरिका को पीछे छोड़ा। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में एचएस प्रणय और आयुष शेट्टी आज पुरुष सिंगल्स मैच खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई है। दक्षिण दिल्ली के पुलिस उपायुक्त अनंत मित्तल ने बताया कि 8 दमकल कर्मियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। एक रिपोर्ट।
1: दिल्ली के मालवीय नगर में आज सुबह करीब 9 बजे एक होटल में भीषण आग लग गई। इसके बाद दिल्ली दमकल विभाग, दिल्ली पुलिस, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, कैट एम्बुलेंस सेवा और अन्य आपातकालीन एजेंसियों की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। दिल्ली पुलिस के अनुसार अब तक 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में भेजा गया है। 8 दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि बचाव और तलाश अभियान अभी भी जारी है और सभी संबंधित एजेंसियां मौके पर तैनात हैं। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस संबंध में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
2: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिए में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग की घटना में हुई जानमाल के हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि अधिकारी पीड़ित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री

राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण

0: प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और प्रभावित परिवारों को सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि देश भर में रहने वाला जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है और इन्हें आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि देश के प्रत्येक गाँव और व्यक्ति तक विकास पहुँचना चाहिए।
1: जनजातीय समुदाय के अनेक गांव और बस्तियां दूर दराज के क्षेत्र में जंगलों और पहाड़ों तले इलाके में होते हैं। ऐसे इलाकों को विकास की मुख्य धारा से पूरी तरह जोड़ना आपका कर्तव्य है। अंतिम गांव और अंतिम बस्ती के अंतिम घर तक विकास कार्यक्रम को पहुंचाना आपका उत्तरदायित्व है।
0: सूचना प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने मिजोरम में जनता से राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में विकसित भारत पहल के तहत 2047 तक एक विकसित भारत के लक्ष्य को सरकार साकार करने में योगदान करने का आह्वान किया है। राज्य के कोलाबिस जिले में सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान श्री मुरुगन ने कहा कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को उच्च प्राथमिकता दे रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल के बीच राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बैनर्जी ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर दावा करते हुए 58 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। विधानसभा सूत्रों के अनुसार 58 विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र अध्यक्ष रथिंद्र बोस को सौंपा गया है, जिसमें बैनर्जी के गुट को वास्तविक तृणमूल कांग्रेस के रूप में मान्यता देने की मांग की गई है। इस गुट ने मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज से विधायक अखरुजमान को मुख्य सचेतक नामित किया है। एंटाली से संदीपन साहा और कस्बा से जावेद खान को उपनेता के रूप में प्रस्तावित किया गया है। पश्चिम बंगाल की सामाजिक सुरक्षा योजना अन्नपूर्णा योजना का आज औपचारिक रूप से शुभारंभ किया गया। शहरी विकास, महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने नबन्ना में इसका उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। पहले चरण में लाभार्थियों को आज से उनके बैंक खातों में 3,000 रुपए मिलने शुरू हो जाएंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य प्रशासन के अधिकारियों के अथक प्रयासों से ही योजना का संचालन तुरंत शुरू संभव हो पाया है। पश्चिम बंगाल में मॉनसून से पहले चलाए जा रहे नियमित सफाई अभियान के दौरान कल शाम कोलकाता के सुरेंद्रनाथ कॉलेज में नोटों के बंडल बरामद किए गए। एक बंद कमरे में दो पुराने सूटकेसों में रखे गए ये नोट पूरी तरह क्षतिग्रस्त अवस्था में मिले। भाजपा विधायक सजल घोष ने आरोप लगाया है कि ये कमरा एक स्थानीय तृणमूल कांग्रेस नेता ने बनवाया था, जिसका इस्तेमाल वो अपनी अवैध गतिविधियों को अंजाम देने के लिए करता था। हालांकि पार्टी सदस्यों ने इन दावों को निराधार बताया है। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल के नेता डीके शिवकुमार को आज शाम बेंगलुरु में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। राज्यपाल थावरचंद गहलोत लोकभवन में उन्हें 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाएंगे। पूर्व गृह मंत्री डॉ जी परमेश्वर उप मुख्यमंत्री के रूप में तथा 12 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला, मजदूर, लेखक, अभिनेता, प्रमुख व्यवसायी तथा उद्योगपति शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा के पुनर्विचार और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। समिति इस बात की जांच करेगी कि क्या अरावली पहाड़ियों की पहचान के लिए प्रस्तावित मानदंड पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को काफी हद तक कम कर सकते हैं और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में खनन या अन्य गतिविधियों की अनुमति दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के लेख को साझा किया है, जिसमें लद्दाख में खुल रहे नए अवसरों पर प्रकाश डाला गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने

0: कहा कि लद्दाख में पाई जाने वाली एक खास बेरी नवोन्मेष और अवसरों की कहानी लिख रही है। उन्होंने कहा कि ये लेख बताता है कि कैसे उद्यमिता और मूल्यवर्धन लद्दाख में समृद्धि के नए द्वार खोल रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। भारत ने सौर ऊर्जा के स्थापित क्षमता में उल्लेखनीय 155 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। इससे देश के 50% गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता लक्ष्य को प्राप्त करने और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को समय से पहले पूरा करने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना जैसे प्रमुख पहल लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है। घरों पर लगे सौर पैनल से 40 लाख से अधिक परिवारों को बिजली मिल रही है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश की सौर ऊर्जा विकास गाथा वैश्विक मानक स्थापित कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नेपाल के राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि नेपाल भारत की पड़ोसी पहली नीति के अंतर्गत एक प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि भारत दोनों देशों के बीच विशेष और बहुआयामी संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए नई सरकार के साथ सहयोग करने के लिए उत्सुक है। ईरान ने कल बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान के एक सैन्य ठिकाने पर अमरीकी सेना के हमले के बाद हुए इस घटनाक्रम से तनाव और बढ़ गया है। इससे क्षेत्रीय स्तर पर संघर्ष विराम को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। एक रिपोर्ट।
1: अमरीकी केंद्रीय कमान के अनुसार अमरीकी सेना द्वारा ईरानी बंदरगाहों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे एक तेल टैंकर को निष्क्रिय करने के बाद यह तनाव शुरू हुआ है। अमरीकी अधिकारियों ने बताया कि हेलफायर मिसाइल ने जहाज के इंजन पर हमला किया। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि अमरीका ने केशम द्वीप के दक्षिण में स्थित उनके एक संचार केंद्र को निशाना बनाया था। जवाब में ईरान ने बहरीन में अमरीकी नौसेना के 5वें बेड़े के मुख्यालय और कुवैत में एक सैन्य हवाई अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन दागे। हालिया तनाव बढ़ने के बावजूद अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ संपर्क जारी है और कूटनीति के विफल होने की खबरों को खारिज कर दिया। हालांकि मसौदा समझौते पर बातचीत अभी भी अधूरी है क्योंकि दोनों पक्षों के नेतृत्व ने अभी तक प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव।
0: भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए RBI ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। नीतिगत निर्णय शुक्रवार को घोषित किया जाएगा। सरकार ने उस अंतर्राष्ट्रीय समाचार रिपोर्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने लगभग 12 अरब अमरीकी डॉलर मूल्य का सोना बेचा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि समाचार एजेंसी का यह दावा फर्जी है। पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने सूचित किया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत मतदाताओं की पूर्व मैपिंग प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राज्य भर के सभी मतदान केंद्रों पर 7 जून को विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। अब तक राज्य में 90% से निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 84.62% पूर्व SIR मैपिंग हो चुकी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि लगभग 40,000 छात्रों ने सफलतापूर्वक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा कर दिए हैं। ये प्रक्रिया बिना किसी समस्या के पूरी कर ली गई है। आज विश्व साइकिल दिवस है। इस साल का विषय है हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं से साइकिल चलाने और एक स्वस्थ तंदुरुस्त और हरित राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया है। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए उन्होंने ये बात कही।
2: साइकिलिंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। साइकिलिंग केवल एक व्यायाम या एक दिन की हॉबी नहीं बल्कि स्वस्थ और सशक्त जीवन शैली की पहचान है। यह हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखने का सबसे सस्ता सुंदर और टिकाऊ माध्यम है। जितना अधिक हम साइकिल का उपयोग करेंगे उतना ही प्रदूषण कम होगा और पेट्रोल डीजल की बचत के माध्यम से देश को भी लाभ मिलेगा।
0: इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आज पुरुष सिंगल्स में एचएस प्रणय आयरलैंड के नहन ग्वेन से और आयुष शेट्टी चीन के वेन होंगयांग से मुकाबला करेंगे। लक्ष्य सेन पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए हैं। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु ने थाईलैंड की बुसानन ओंगमाम रुंगफान को हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। पुरुष डबल्स में भारत के सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को आज मलेशिया के खाई शिंगकांग और आरोई ताई ने 6-11 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं महिला सिंगल्स में आज उन्नति हुडा का सामना जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा से होगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों ओडिशा, कोंकण, गोवा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आंधी आ सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए के अनुग्रह राशि देने की घोषणा। पश्चिम बंगाल विधानसभा से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी के लगभग 58 विधायकों के समर्थन का दावा करने के बाद तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल मची। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा के पुनर्विचार के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार अब से कुछ देर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में एचएस प्रणय और आयुष शेट्टी आज पुरुष सिंगल्स मैच खेलेंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्ज पर और एफएम बैंड के 100.1 मेगा हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:30 हो रहे हैं। पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम का पहला नगमा सुनिए सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में। फिल्म है हीरोज़। संगीतकार हैं साजिद वाजिद और बोल लिखे हैं जलीश शेरवानी ने।

0: AIR at 90.
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: आकाशवाणी भागलपुर से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मिशन कश्मीर से, जिसे गाया है शंकर महादेवन और साथियों ने। धुन बनाई है शंकर एहसान लॉय ने और इस गीत की रचना की है राहत इंदौरी ने।

0: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: रानी बक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है?
2: तिलका मांझी तो बहुत।
1: बख्शी जगबंधु का नाम सुना है?
3: बख्शी जगबंधु तो
2: हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट।
4: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियाँ दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।
5: आकाशवाणी भागलपुर से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। श्रोताओं, अगला नगमा सुनिए राहत फतेह अली खान और जयेश गांधी की आवाज में। फिल्म है मिलेंगे मिलेंगे। गीतकार हैं जली शेरवानी और इसकी धुन तैयार की है साजद वाजद ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला नगमा सुनिए। फिल्म दिल का रास्ता से गायक कलाकार हैं अलका याग्निक और कुमार शानू। इसे संगीतबद्ध किया है नदीम श्रवण ने और इसके बोल लिखे हैं समीर ने।

कार्यक्रम का आखिरी नगमा सुनिए उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज़ में। फिल्म है अनाड़ी, गीत की रचना की है समीर ने और संगीतकार हैं आनंद मिलिंद।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3 बज रहे हैं। अब सुनिए रविंद्र संगीत कार्यक्रम। कलाकार हैं चिन्मय चटर्जी।

Akashwadi at 90. आकाशवाणी भागलपुर से आप सुन रहे हैं रविंद्र संगीत कार्यक्रम। कलाकार हैं चिन्मय चटर्जी। अब इनसे सुनिए बांग्ला गीत।

आकाशवाणी भागलपुर से आप सुन रहे हैं रविंद्र संगीत कार्यक्रम। कलाकार हैं चिन्मय चटर्जी, इनसे सुनिए बांग्ला गीत।

अभी आप सुन रहे थे रविंद्र संगीत कार्यक्रम, कलाकार थे चिन्मय चटर्जी। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3:20 हो रहे हैं। अब सुनिए समूह स्वर में देशभक्ति गीत।

अभी आप सुन रहे थे समूह स्वर में देशभक्ति गीत। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3:25 होने ही वाले हैं। अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्र सेवा के कार्यक्रम। संध्या 5 बजे हम पुनः उपस्थित होंगे हमारे केंद्र के शेष कार्यक्रमों के साथ।

0: हाँ चंचल, देखिए जीवन से भरी जब आंखें होती है ना, तो आपके व्यक्तित्व पे चार चांद लगा देती हैं, है ना। और ऐसे में जब महिलाएं खास तौर से खूबसूरत साड़ियां पहनती हैं, तो फिर उनको तो देखते मन ही भरता नहीं है कि क्या बात है।
1: और आपने बात की भाई किसी खास मौके की, तो शादी एक ऐसा मौका होता है ना, जब हमें अपना कल्चर उसे दिखाने का और उसमें लुत्फ उठाने का जब मौका मिलता है, तो उसे महिलाएं खासतौर पर बिल्कुल गंवाना नहीं चाहती। शादियों में रीति रिवाज के अलावा सबसे ज्यादा खास होता है पारंपरिक खाना और पारंपरिक पहनावा।
0: और शादी किसी भी लड़की के लिए उसके जीवन के सबसे खास मौकों में से एक होता ही है। दूल्हा दुल्हन के कल्चर और रीति रिवाज शादी के मौके को और भी खास बना देते हैं। हर जगह का अपना कल्चर होता है, अपने नियम होते हैं और उनका अपना खास महत्व भी होता
1: तो
0: है।
1: तो आज हम गुजरात के कल्चर की एक खास साड़ी के बारे में बात कर रहे हैं मंदाकिनी जी, और जिसे कोई लड़की शादी में पहनकर अपने जो भी उसके लुक्स हैं उसे वो और भी ज्यादा निखार सकती है, यानी कि हम बात कर रहे हैं घटचोला साड़ी की।
0: क्या बात है, घटचोला साड़ी इतनी सुंदर लगती है चंचल कि पूछो मत। तो घटचोला साड़ियां गुजराती शादियों का बहुत खास हिस्सा है और इन्हें जो खास दुल्हन की साड़ी

0: के रूप में चुना जाता है। घरचोला साड़ी के चेकर्ड ग्रिड में प्रत्येक वर्ग दुल्हन और उसके वैवाहिक घर के लिए आशीर्वाद का प्रतिनिधित्व करता है, ऐसा माना जाता है।
1: और ये दुल्हन की सुंदरता में चार चांद लगा देती है, तो वहीं इस साड़ी की जो खूबसूरती है और इसकी तरह ही इसका मतलब भी बड़ा खास होता है। घरचोला यानी कि नाम में दो गुजराती शब्दों को मिलाया गया है, घर जिसका मतलब होता है
0: घर
1: और चोला इसका मतलब है कि पोशाक।
0: हाँ।
1: और दुल्हन अपने पैतृक घर से यानी कि पिता के घर से वैवाहिक घर में जाने को इस चीज के बारे में दर्शाया जाता है। इसका मतलब होता है कि दुल्हन का नया घर और उस चोले को पहनकर ये लड़की उस नए घर में प्रवेश
0: करती है। बिल्कुल, बहुत सुंदर तरीके से इस बात को रखा गया है। और वैसे तो घरचोला एक साड़ी होती है, लेकिन आजकल शादियों में इसके दुपट्टे का भी बहुत इस्तेमाल किया जाता है।
1: और देखिए ना, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि एक छोटे से अंतराल का समय हो गया है। बातें हम जारी रखेंगे, लेते हैं अंतराल।

0: विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली। मैं हूँ आपके साथ चंचल वर्मा।
1: और मैं हूँ आपके साथ मंदाकिनी जोशी।
0: बात कर रहे थे हम साड़ी की।
1: बिल्कुल, साड़ियों की बात हो और हम भूल जाएं, ऐसा कभी होता है चंचल? तो हम बात कर रहे थे कि आजकल शादियों में इसके दुपट्टे का भी खूब इस्तेमाल किया जाने लगा है, जिसे दुल्हन अपने सिर पर ओढ़ती है। और ये कॉटन या सिल्क से बना होता है, जिस पर जरी का काम किया जाता है। घटचोला साड़ियों में पारंपरिक रूप से जरी की बुनाई के साथ चेकर्ड ग्रिड डिजाइन होता है और अक्सर मोर, कमल, फूल पत्तियां जैसे शुभ चिन्ह भरे होते हैं।
0: जब आपने दुपट्टे का जिक्र किया तो मुझे याद आया, सिर्फ महिलाएं ही नहीं पहनकर सचती संवरती, जब कुर्ता पायजामा मर्द पहनते हैं तो जो हमारे पुरुष साथी है ना, वो भी घटचोला का दुपट्टा लेना बड़ा पसंद
1: करते रख लेते हैं वो
0: जी।
1: भी, हाँ।
0: और हम बात कर रहे थे साड़ी की, जो आपने बताया ना चेकर डिजाइन होते हैं, फूल पत्तियों के चिन्ह होते हैं इस पर। और क्योंकि ये एक पारंपरिक विवाह में पहने जाने वाली साड़ी है, तो इसमें वर्गों की जो संख्या है अनुष्ठानिक रूप से वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। वर्गों की संख्या 9, 12, 92 के गुणांक में होती है। और ये पहले कपास से बनी होती थी, लेकिन अब रेशम का भी इसमें उपयोग किया जाने लगा है।
1: हाँ, हालांकि घटचोला साड़ी में क्या है कि बांधनी साड़ियों की जैसा मिश्रण होता है चंचल, जिसमें घटचोला के जरी ग्रिड पैटर्न के भीतर बांधनी टाई डाई को शामिल भी किया गया है।
0: घटचोला बनाने की शुरुआत गुजरात के खंबात जिले में हुई थी और तब से लेकर आज तक गुजरात में साड़ियों, ये जो साड़ी है वो शादियों में बहुत अहम हिस्सा मानी जाती है। इस साड़ी की सबसे खास पहचान है ग्रिड पैटर्न, और ये साड़ियां पारंपरिक रूप से विवाह जैसे खास अवसरों पर ही पहनी जाती हैं। इन साड़ियों में गुजरात की पारंपरिक खास साड़ी है ये, खास तौर पर जामनगर, राजकोट इलाकों में इनका बहुत ही ज्यादा चलन देखने मिलता है।
1: बिल्कुल, और सास की तरफ से बहू को जब आशीर्वाद दिया जाता है ना, तो घटचोला दूल्हे के परिवार की तरफ से दिया जाता है, जिसे ओढ़कर दुल्हन अपने नए घर में प्रवेश करती है। और ये नए परिवार की स्वीकृति और आशीर्वाद का प्रतीक भी होता है। और जब दुल्हन अपने नए घर में स्वागत के लिए पानेत्र साड़ी के ऊपर जो है घटचोला साड़ी डालती है, तो इस बात का प्रतीक माना जाता है कि शादी के बाद दूल्हा और उसका परिवार दुल्हन का हमेशा ख्याल रखेंगे।
0: इनमें से बहुत सारी बातें हमारे श्रोताओं ने भी हम तक लिखकर पहुंचाई हैं, उन्हें हम धन्यवाद कहते हैं। और घटचोला जो है वो दुल्हन को अपने सिर और कंधे दोनों पर वो ओढ़कर आती है, जिसे फेरों के समय दूल्हे को के दुपट्टे के साथ में बांध दिया जाता है। ये पति पत्नी के अटूट संबंध और इस जोड़े के बीच के पवित्र रिश्ते और उसकी मजबूती को दर्शाता है। इसलिए भी शादी में इस साड़ी का बहुत
1: महत्व होता है। बिल्कुल, और घटचोला साड़ी एक सदाबहार फैशन है जो कभी फैशन से बाहर नहीं जाता। इसे शादी के अलावा आप दूसरे फंक्शंस में भी पहन सकते हैं। देखा है बहुत सारी महिलाओं को चाव से पहनकर जाती हैं। ज्यादातर लाल है, गुलाबी है, हरा है, पीला है, ये रंग इसमें बेहद खास लुक देता है। और इसके दुपट्टे को लहंगे के साथ भी अलग अलग स्टाइल तरीके से, स्टाइलिश तरीके से हम पहन सकते हैं, जो खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं।
0: तो भाई कुछ गाने भी सदाबहार होते हैं साड़ियों की तरह, सुन ले।
1: बिल्कुल, जो हमारे कार्यक्रम में चार चांद लगा देते हैं।

0: कुछ तुम कहो और कुछ हम कहें, यानी बात हम करेंगे अब विश्व साइकिल दिवस की। कुछ हम कहेंगे, कुछ हमारे श्रोता तो कह रहे, कुछ नहीं बहुत कुछ
1: कहेंगे। बिल्कुल, ही इतना प्यारा विषय है साइकिल, हमारा इतना प्यारा एक ऐसा
0: याद है,
1: याद हमारा अभिन्न मित्र हुआ करता था एक जमाने में, जब हमें पहली साइकिल मिली थी तो आज भी भुलाई नहीं भूलती।
0: और 3 जून को ये दिन हम मनाते हैं और इसका उद्देश्य है लोगों को साइकिल चलाने से जो लाभ होते हैं उसके बारे में जागरूक करना। और ये दिन इसलिए भी खास है मंदाकिनी जी, क्योंकि साइकिल एक ऐसा परिवहन साधन है जो वायु प्रदूषण को कम करने में भी मदद करता है और पर्यावरण को भी बचाने में मदद करता है।
1: बहुत बड़ी बात। और ये परिवहन का एक सबसे सस्ता, सरल और टिकाऊ और सुलभ साधन है चंचल। इसे हर वर्ग के लोग आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं और इन दिनों साइकिलिंग को एक स्वस्थ और किफायती परिवहन विकल्प के रूप में भी प्रस्तुत किया जा रहा है। साइकिल चलाना सामाजिक समावेशन और शांति की संस्कृति को बढ़ावा भी देता है।
0: विश्व साइकिल दिवस को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अप्रैल 2018 में मनाने की घोषणा की थी और ये दिन साइकिल के महत्व पर बहुत सारी बातें हमें बताता है। और हम सब भली भांति इस बात को समझते हैं कि साइकिल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है और पर्यावरण के नजरिए से भी अच्छा कदम है, ये हम बता ही चुके हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही बात। और इस दिन का समर्थन करने वाले भी मानते हैं कि साइकिल का उपयोग विकास को बढ़ावा देना, बच्चों और युवाओं के लिए शरीर को मजबूत करना, स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और बीमारियों की रोकथाम करने के साधन का एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।
0: अब देखो ना, हमारे जो साथी हैं वो क्या लिख रहे हैं। साइकिल कभी मध्यम वर्गीय परिवार की आन बान शान हुआ करती थी। जो साइकिल चलाता था या जिसके दरवाजे पर साइकिल होती थी, समझिए कि

0: समाज में एक सम्मानित व्यक्ति हुआ करता था। और इसी तरह कहानी में कोर्स की किताब भी पढ़ी है हमने। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य कथा साइकिल की सवारी के लेखक सुदर्शन हैं पंडित बद्रीनाथ भट्ट। इन प्रेरणादायक कहानी में आदर्शवादी संदेश होता था और ये कहानी हास्य से भरपूर है, जिसमें लेखक साइकिल सीखने की प्रबल इच्छा और इसके दौरान उनके द्वारा किए गए मजेदार प्रयासों के बारे में वर्णन करता है। तो अगर किसी ने ये कहानी नहीं पढ़ी है तो जरूर पढ़नी चाहिए।
1: बहुत सुंदर जिक्र किया है इन्होंने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जब मैंने पहली बार साइकिल पर कदम रखा तो मेरे मन में धुकधुकी थी, कहीं मैं गिर न जाऊं। संतुलन बनाने की कोशिश में शुरुआती कुछ पलों में हैंडल कांप रहा था और मुझे पैडल मारने में डर लग रहा था। कुछ बार लड़खड़ाने और गिरने के बाद मैंने संतुलन बनाना सीखा। हवा का एहसास जैसे ही मैंने पैडल पर पूरी ताकत लगाई और साइकिल आगे बढ़ी तो चेहरे पर ठंडी हवा का सुखद एहसास था।
0: और हमारे कन्याश्रोता का संदेश है कि जब मैंने पहली बार पापा को साइकिल के लिए कहा तो उसके 2 साल बाद मेरी साइकिल आई। यानी कि पहले के माता पिता भी ऐसे होते थे कि तुरंत आपकी फरमाइशें पूरी नहीं करते थे, सही समय आने पर ही वो ला कर देते थे। आगे इन्होंने लिखा है कि जब भी पापा से पूछो कब आएगी तो वो कहते एक टायर बन रहा है, फिर कहते हैंडल बन रहा है, फिर कभी कहते कि सीट बन रही है, और इस तरह उन्होंने 2 साल निकाल दिए।
1: कितनी अच्छी बात है। और वहीं आजकल के माता पिता 2 मिनट भी नहीं लगाते, अगर बच्चे ने कह दिया मुझे साइकिल चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए, तो 2 मिनट में आ जाता है। एक शोधा लिखते हैं कि साइकिल की बात चली है तो आपको बता दूं, 1999 में कक्षा 10वीं पास करने पर मेरे को मिली थी, उसकी खुशी मैं बयान नहीं कर सकता। और आज 2-2 दुपहिया वाहन है, किंतु साइकिल की बात कुछ और ही है। मेरी वो साइकिल आज भी मैंने संभाल कर रखी है। मैं चली देखो प्यार की गली, ऐसा ये गाना भी सुनना चाहते थे।
0: और भाई ये गाना नहीं सुना कि गाना कोई दूसरा सुनवा दे, गाने सभी अच्छे हैं। और संदेश बताइए क्या है।
1: ये लिखते हैं कि एक अन्य श्रोता की दोपहिया वाहन यानी मोटरसाइकिल तब चला सकते हो जब आप साइकिल चलाना सीख गए हो, मतलब दोपहिया वाहन चलाने से पहले साइकिल चलाना आना जरूरी है। भाई वो तो बेस है आपका, है ना, वो तो सबसे पहले आप नहीं सीखेंगे तो उसके बाद दूसरी पर जब आप हाथ साफ करेंगे तो आपको डर लगेगा, आप सीख ही नहीं पाएंगे। लेकिन हाँ ये बात भी होती है चंचल कि साइकिल चलाने के साथ घुटने टूटने का जो है ना, घुटनों में चोट लगने का जो एक सबसे बड़ा नजर आता है, वो उसके लिए तैयार रहना चाहिए।
0: एक और बात बहुत सारे श्रोताओं ने लिखकर भेजी है कि नियमित साइकिल चलाने से हृदय फेफड़े मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद मिलती है और इसी वजह से हृदय संबंधी बीमारियां, मोटापा, गठिया, मधुमेह, कैंसर, बहुत सारी बीमारियों के खतरे को हम कम कर सकते हैं। साइकिलिंग तनाव को भी कम करती है और मानसिक कल्याण को भी बढ़ावा देने में ये सहायक है। तो चलिए अब गाना सुन लें।
1: नहीं, एक मेरे पास बहुत अच्छा मैसेज आया है,
0: तो पढ़िए ना।
1: हाँ, ये लिखते हैं कि मेरे लड़के ने पूरी पढ़ाई साइकिल कॉलेज लेकर जाकर की है और इस साल फाइनल पढ़ाई होगी, अभी भी वो साइकिल चलाता है।
0: क्या बात है।

0: हाँ तो चंचल, वक्त तो तब गुजरेगा ना जब आप वक्त का ध्यान रखेंगे, और कैसे ध्यान रखेंगे कि आपके पास घड़ी होगी। हमारी श्रोता लिख रहे हैं कि हम लोग जब हाई स्कूल पास करते थे तो लड़कियों को हाथ की घड़ी दिया करते थे हमारे माता पिता, और हम लड़कों को साइकिल मिला करती थी।
1: तो भाई ये भी एक तरह का नियोजन है, यानी कि प्लानिंग है।
0: हाँ।
1: कि लड़कियों को क्या देना है, लड़कों को क्या देना है। उस समय पहले की अगर बात जब चल रही है ना, तो लड़कियों को भाई वाहन चलाते समय कहीं गिर ना जाए, चोट ना लग जाए, उन्हें थोड़ा नाजुक समझकर इस तरह के उपहार नहीं दिए जाते थे। और लड़कों को क्योंकि बाहर जाकर ही सारे काम करने हैं,
0: इसलिए और साइकिल दे दी जाती थी। लेकिन
1: पहिया वाहन या मोटरसाइकिल का इतना फैशन नहीं था।
0: हाँ, आज उल्टा है चंचल, आज लड़कियों को कमजोर नहीं मानते हमारे माता पिता भी, और उन्हें यहाँ तक की चार पहियों वाली गाड़ी भी दिलाने में कोई परहेज नहीं करते हैं।
1: और बिल्कुल इस बात का नियोजन भी अब सब माँ बाप करते हैं। और नियोजन पर ही बात हो रही है, नियोजन का मतलब होता है योजना बनाना या फिर प्लानिंग करना। और दो शब्दों को जोड़कर बनाया गया है शब्द, मतलब बहुत सारे शब्द इसमें, इसके जो अन्य शब्द हैं, योजना, आयोजन, प्रबंध, व्यवस्था, रूपरेखा या फिर रणनीति,
0: इस अर्थों में भी इनको समझा जा सकता है, इन शब्दों से भी। और नियोजन एक प्रबंधन प्रक्रिया है जिसमें भविष्य के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक यानी जरूरी कार्यों और संसाधनों का निर्धारण किया जाता है, और ये प्रक्रिया लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में भी काम करती है।
1: बिल्कुल, नियोजन में की जो प्रक्रिया है इसमें बहुत सारे चरण शामिल होते हैं। इसमें विकल्पों का मूल्यांकन, योजना का चयन, उसका क्रियान्वयन, और नियोजन में भविष्य में आने वाले जो भी जोखिम है या अनिश्चितताएं हैं उनका पहले से ही एक अनुमान निकालकर क्या समाधान हो सकता है, इसकी तैयारी की जाती है।
0: बिल्कुल, और नियोजन में किसी भी पूर्व निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भविष्य की एक रूपरेखा तैयार की जाती है। इसे हम यूं भी समझ सकते हैं कि ये निर्णय लेने की एक बौद्धिक प्रक्रिया है जो तय करती है कि क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है।
1: इसीलिए हमारे श्रोता लिखकर हमें बता रहे हैं कि नियोजन प्लानिंग का सामान्य अर्थ योजना बनाना है। ये किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने की बौद्धिक प्रक्रिया होती है। इसमें यह तय किया जाता है कि काम कब करें, कैसे करें, कहां करें, किसके द्वारा किया जाएगा, और उपलब्ध साधन का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित कर लेना ताकि जो लक्ष्य है उस तक आसानी से पहुंचा जा सके। ये सब वैसा ही है जैसा हम अपने घर का बजट बनाया करते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा, और अगर सरल शब्दों में हम इसे समझें तो वर्तमान और भविष्य के बीच की खाई को कम करना भी नियोजन है, और ये तय करना कि आने वाले समय में हमें किस दिशा में काम करना है। किसी स्पष्ट लक्ष्य को ध्यान में रखकर जो योजना बनाई जाती है वही नियोजन है, और ये योजना वर्तमान परिस्थितियों और भविष्य के अनुमानों के आधार पर बनाई जाती है।
1: और बिल्कुल मंदाकिनी जी, समय, धन, उपलब्ध संसाधन, इन सब का बेहतर उपयोग भी जिस तरह से किया जाएगा ये नियोजन ही बताता है हमें। जब हमारे पास बहुत सारे विकल्प होते हैं तो उनमें से किसी सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना भी नियोजन का मुख्य हिस्सा होता है।
0: और नियोजन का यानी जो है विभिन्न तरीकों में से जो सबसे उपयुक्त और प्रभावी मार्ग का चयन करना वही नियोजन कहलाता है।
1: तो ये भी एक नियोजन है ना कि बातों के बाद गाना सुनवाना है।

0: अंजल, हम बात कर रहे थे ना कि भाई आजकल गर्मी का मौसम है, क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या सब्जी बनाएं, क्योंकि महिलाओं की खासतौर से ये सबसे बड़ी परेशानी होती है। तो
1: और वो
0: हमारे
1: इसलिए होती है क्योंकि बच्चे बड़े चूजी होते हैं, वो बहुत सारी सब्जियां खाने के लिए मना कर देते हैं। जब भी उन्हें बोलो टिंडे की सब्जी बनेगी तो उनका मुंह बन जाता है, लौकी बनाओ तो उसे वो खाना पसंद नहीं करते। तो कितने कितने जतन करती हैं महिलाएं कि वो सब्जियां उनको
0: खिला दी
1: उन
0: जाए
1: हाँ
0: किसी भी तरह से।
1: ताकि उनका
0: लेकिन
1: पोषण मिले।
0: लेकिन तुम मुझे माफ करना, बच्चों को तुम बहुत ज्यादा बदनाम कर रही हो, है ना। देखा जाए तो हमारी सखियों में से भी कुछ सखियां ऐसी हैं जो हर तरह की सब्जी खाना पसंद नहीं करती हैं।
1: तो भाई ऐसे में बहुत अच्छा आपके पास एक विकल्प है कि बेसन की तरह तरह की सब्जियां आप बना सकती हैं। उसके लिए बेसन, सिंधी बेसन की टिक्कियों की सब्जी, इसके बारे में हमारे श्रोता ने लिखकर बताया है कि इसके लिए सबसे पहले बेसन को कम पानी से टिक्कियां बनाना है। इसमें अनारदाना और हरा धनिया भी डालते हैं। फिर तवे पर बहुत कम तेल में इनको सेका जाता है। प्याज लहसुन अपनी इच्छा के अनुसार, अदरक हरी मिर्च, इन सबको डालकर आप पेस्ट बना लीजिए। एक अच्छी स्वादिष्ट सी ग्रेवी बनाना है, उसमें नमक, लाल मिर्च स्वाद के अनुसार डाल लीजिए। आप अन्य मसाले भी स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। थोड़ा गरम मसाला डालकर बेसन की टिक्कियों को डालकर थोड़ी सी आंच पर इसे पकाना है और सिंधी बेसन की टिक्कियों वाली सब्जी तैयार हो जाती है।
0: बहुत स्वादिष्ट सब्जी होती है ये। हमारी एक सहेली थी, वो सिंधी थी, उनके यहाँ मैंने ये सब्जी खाई भी है।
1: जी
0: हाँ, वही एक श्रोता लिखती है कि बेसन की चीले वाली सब्जी, क्या बात है। बेसन को नमक, हल्दी, अदरक, मिर्ची का पेस्ट के साथ चीले की तरह घोल लें और तवा पर चिली को सेक लें, मतलब चिली को सेक लें, इस दोनों तरफ से फोल्ड कर लें। फिर इन्हें चाकू से काट के टुकड़े के रूप में बना लें। ग्रेवी के लिए धनिया पाउडर पिसा हुआ, पीला सरसों, लहसुन, जीरा, मिर्च, इन सभी को बारीक पीस लें। कड़ाही में तेल डालें, राई का तड़का दें, बारीक कटा प्याज भून लें, पीसें, पीसे हुए टमाटर डाल दें, मतलब अगर आपने टमाटर को भी पीस लिया है। साथ ही मसाले, जो भुने हुए मसाले हैं, उनकी ग्रेवी तैयार होने पर बेसन के टुकड़ों को डाल दें, 5 मिनट तक इसे पकाएं। स्वादिष्ट जो है सब्जी आपकी तैयार है और बहुत सारे लोग इसे शाकाहारी मछली भी बोलते हैं।
1: क्या बात है। तो चलिए अब एक गीत सुन लेते हैं।

0: हाँ तो जन जल रहे ना रहे हम यूं ही महकते रहेंगे और ये कार्यक्रम यूं ही चलता रहेगा। और अब ही सखी सहेली से हमें इजाजत लेनी होगी क्योंकि वक्त हमें और इजाजत नहीं दे रहा है
1: जी।
0: तो कार्यक्रम समाप्त करने की मंदाकिनी जोशी और
1: चंचल वर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार, नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।

दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर गायत्री आहूजा को, जो अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण दिव्यांग जन संस्थान की विभागाध्यक्ष है, यानी कि अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज। ये संस्था देश भर के दिव्यांग जनों के लिए बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रही है। एस एच

0: छात्र जो श्रवण बाधित हैं और बोलने में समर्थ नहीं हैं, उन बच्चों को शिक्षा देना, उन्हें सिखाना कितना मुश्किल होता है, कितना चुनौतीपूर्ण होता है, ये सब कुछ बताएंगे डॉक्टर गायत्री आहूजा। विविध भारती के स्टूडियो में डॉक्टर गायत्री, हम आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
1: नमस्कार, थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी। और विविध भारती से जुड़ना मुझे लगता है काफी सम्मान की बात होती है, सो थैंक यू सो मच। और ये इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने के लिए आपने मुझे बुलाया है, सो थैंक यू सो मच।
0: और ये एक ऐसी संस्था है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी भी नहीं होती है, तो इस संस्था के बारे में आप जानकारी दीजिए सबसे पहले, और उसके बाद बताइए कि श्रवण बाधित बच्चों की शिक्षा बाकी बच्चों से किस तरह से अलग होती है। तो मेरे ख्याल से एक साथ दो सवाल हो गए।
1: कोई नहीं। अलिया वर्जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज का हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, और जहाँ पे मैं वहाँ पे काम करती हूँ, ये हेडक्वार्टर्स है। और हेडक्वार्टर्स से जुड़े हुए रीजनल सेंटर्स भी हैं, जैसे सिकंदराबाद है, कोलकाता है, नोएडा है। हमारे अंतर्गत कॉम्पोजिट रीजनल सेंटर्स भी हैं, जैसे कि अहमदाबाद, गोवा एंड छतरपुर, नागपुर एज वेल। हम सारी संस्था जो हैं स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज पे काम करती हैं। पीडियाट्रिक से लेके जेरियाट्रिक पॉपुलेशन तक हम डील करते हैं। मतलब आप अगर हमारी संस्था में आएंगे तो आप बिल्कुल छोटे से छोटा बच्चा देखेंगे, एज वेल एज 80 ईयर अबाव लोग भी देखेंगे। तो उन सब की हम श्रवण की जांच, स्पीच की जांच, जो हेडक्वार्टर्स है मुंबई, सिकंदराबाद, नोएडा एंड कोलकाता में, स्पीच एंड हियरिंग से जुड़ी हुई करते हैं। पर जो सीआरसीज हैं, जैसे अहमदाबाद हो गया या नागपुर हुआ या छतरपुर हुआ, वहां पे हम सारे डिसेबिलिटीज के साथ डील करते हैं। तो ये बेसिक हमारा काम है, जहाँ पे हम आइडेंटिफिकेशन भी करते हैं, इंटरवेंशन भी करते हैं। सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी करते हैं। अच्छा। हमारे अंतर्गत डिप्लोमा के कोर्सेज, बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी प्रोग्राम्स, साइन लैंग्वेज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी चलते हैं। पेरेंट्स के लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाते हैं, जिससे वो खुद एम्पावर हो सके। एंड पेरेंट्स के लिए जो प्रोग्राम्स हम करते हैं वो मोस्टली फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। बहुत बार हम इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज के लिए भी कार्यक्रम करते हैं कि बैंकिंग किस तरीके से करना चाहिए या इंग्लिश स्पीकिंग किस तरीके से करना चाहिए। वॉट एवर स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज हम चलाते हैं, वो भी हम बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट चलाते हैं। तो रेंज बहुत सारी है कि जहाँ पे हम बच्चे से लेके सीनियर सिटीजन तक के लिए हम काम करते हैं।
0: जी,
1: ये हो गया पहला सवाल।
0: हाँ, राइट। और फिर कितना अंतर है एक सामान्य बच्चे को पढ़ाना, शिक्षा देना, और श्रवण बाधित जो बोलने में समर्थ नहीं है उनको सिखाना, कितना कठिन होता है, कितना चुनौतीपूर्ण होता है?
1: ओके, अब जो बच्चा एडुकेशन के लिए स्कूलिंग सिस्टम में जाता है, एक सामान्य बच्चा, ठीक है, सामान्य बच्चे के जो गोल्स होते हैं एडुकेशन के, वो सेम गोल्स हियरिंग इम्पेयर्ड या श्रवण बाधित बच्चों के भी होते हैं। ओके, जनरल गोल्स सेम रहते हैं। बट आप ऐसा सोचिए कि एक बच्चा है जिसको सुनाई नहीं देता है, ठीक है, अब उसको सुनाई नहीं देता है हियरिंग लॉस की वजह से, उसके तीन चीजें बेसिकली इम्पैक्ट होती हैं, स्पीच वाचा में प्रॉब्लम, लैंग्वेज में इश्यूज एंड कम्युनिकेशन में इश्यूज। ओके, तो एक चीज तीन चीज से जुड़ी हुई है। अब ऐसे बच्चों को जब हम एडुकेट करते हैं तो अगेन इसके अंदर दो पहलू आ जाते हैं। एक ग्रुप जहाँ पे हम हियरिंग एड या कॉकलियर इम्प्लांट, लिसनिंग डिवाइसेस से हम सिखाते हैं, जहाँ पे हम पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चा सुने और बात करे। फिर एक ग्रुप है जहाँ पे हम साइन लैंग्वेज के माध्यम से हम पढ़ाते हैं। तो जनरल गोल्स तो आपके हो गए कि नॉलेज का डेवलपमेंट करना है, स्किल्स को डेवलप करना है, ओवरऑल डेवलपमेंट करना है। ओवरऑल डेवलपमेंट बेसिकली मतलब आपका बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये सारे डेवलपमेंट तो हो गए जनरल गोल। पर जब मैं स्पेसिफिक गोल की बात करती हूँ तो स्पेसिफिक गोल में आ गया मेरा इस बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट करना, स्पीच डेवलपमेंट करना, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट करना। अब कम्युनिकेशन भी कितनी चीजों से जुड़ी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, अब हम साथ में बैठे हैं, हम बात कर रहे हैं, पर मेरी उंगलियां भी चल रही है, मेरे फेशियल एक्सप्रेशन भी हो रहे हैं, मेरे आंख वाख भी, यू नो, इट्स गोइंग अप एंड डाउन, एंड बहुत सारा बॉडी लैंग्वेज है एंड स्माइल है, और जो मैं महसूस कर रही हूँ वो मैं बता सकती हूँ, ठीक है। नाउ यू इमेजिन अ चाइल्ड जिसको जो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके पास भाषा नहीं है. तो कम्युनिकेशन इज सच अ वेरी बिग इम्पॉर्टेंट रोल. कम्युनिकेशन करने के लिए भाषा होना बहुत ज्यादा जरूरी है. भाषा नहीं है तो वो समाज में किस तरीके से उठेगा बैठेगा, वो समाज में इंटरैक्ट कैसे करेगा और पार्टिसिपेट कैसे करेगा, वो जो महसूस करता है या करती है वो किस तरीके से व्यक्त करेगा. तो जो एडुकेशन है, जो हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए जो एडुकेशन है, वो ये सारी पहलुओं को देखकर हम उसका एडुकेशन का विकास करते हैं. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर एडुकेशन ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट इज पेरेंट्स का एम्पावरमेंट करना. तो पेरेंट्स के लिए हम बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराते हैं कि बच्चे को हियरिंग एड किस तरीके से लगाना है, या कॉकलियर इम्प्लांट है तो किस तरीके से लगाना है. अगर हियरिंग एड या कॉकलियर इम्प्लांट में कुछ भी रिपेयर्स हुए तो उसको सिंपल रिपेयर्स किस तरीके से करने हैं. और अगर बच्चा हियरिंग एड और कॉकलियर इम्प्लांट नहीं लगाता है, सांकेतिक भाषा से बात करता है, इशारों में बात करता है, इशारे इज अ वेरी सिंपल टर्म, हम उसको सांकेतिक भाषा बोलते हैं, और सांकेतिक भाषा में अगर बात करता है या करती है तो पेरेंट्स को भी आनी चाहिए सांकेतिक भाषा, तब तो कम्युनिकेशन साइकिल कंप्लीट होगी. तो बहुत सारे एडिशनल गोल्स आ जाते हैं जब हम एडुकेशन ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों की बात करते हैं. तो
0: यहाँ पर एक गाना सुनते हैं फिर और बातें करते हैं. कौन सा गाना सुनवाए?
1: मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, ये गाना बहुत पसंद है,
0: ये धरती ये नदियां
1: और विविध भारती और अलिया वर्जंग.
0: क्या बात है, सुनते हैं.
2: बड़े अच्छे लगते हैं

0: इस गाने के पहले आप जिक्र कर रही थी कि किस तरह से आप शिक्षा देती हैं और पेरेंट्स को भी बुलाते हैं, तो वो बड़ा मुश्किल काम होता होगा पेरेंट्स को सिखाना। कौन सी प्रणाली होती है, कैसे आप सिखाती हैं, कैसे ट्रीट करती हैं उनको?
1: पेरेंट्स के लिए, नाउ यू इमेजिन अ फीमेल हु इज प्रेग्नेंट, एंड हर फीमेल को लगता है या हर माँ बाप को लगता है या हर फैमिली को लगता है कि जो बच्चा होगा वो काफी हेल्दी होगा। ओके, इट्स नॉर्मल, बट जब चाइल्ड इज बॉर्न एंड यू कम टू नो कि नहीं बच्चे को हियरिंग लॉस है, तो सबसे पहले जो चीज है वो है एक्सेप्टेंस, कि उसको एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है कि ओके आई हैव अ चाइल्ड, आई हैव अ हेल्दी चाइल्ड, बट द चाइल्ड इज हैविंग दिस एज अ कंसर्न। ओके, दूसरी चीज ये है कि या तो पेरेंट्स बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं या तो बिल्कुल भी प्रोटेक्टिव नहीं होते हैं, बैलेंस्ड अप्रोच कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मिसिंग हो जाता है, तो वो भी उनको बताना होता है कि किस तरीके से एक बैलेंस्ड अप्रोच रखना है, ना कि यू नो ओवर हो या अंडर हो। यू हैव टू कंसिडर योर चाइल्ड, एक्सेप्ट द चाइल्ड, उसको उतनी ही रेस्पेक्ट दें जितनी बाकी बच्चों को दी जाती है। उसे ऐसा नहीं लगे कि हाँ मैं कुछ अलग हूँ इसलिए मम्मी पापा मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं, तो उसे भी अपनापन लगना चाहिए और मैं इसी घर का एक हिस्सा हूँ ये उसे समझना बहुत जरूरी है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पेरेंट्स को एडुकेशन के प्रोसेस में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए। अगर इन्वॉल्व हुए तो यस द चाइल्ड कैन प्रोसीड या प्रोग्रेस आराम से। इसलिए हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं कोर्सेज करने के लिए, चाहे डिप्लोमा हो या बैचलर्स हो, जिनके खुद के बच्चों को या तो हियरिंग लॉस हो या कोई कंसर्न हो, वो खुद भी आते हैं। क्योंकि जब तक पेरेंट्स को नहीं पता चलेगा कि इन बच्चों में क्या कंसर्न्स हैं, तो वो बच्चों की डेवलपमेंट में कैसे भागीदारी ले सकते हैं। स्कूल्स के साथ जुड़े रहें लगातार, या फॉलो अप ऑडियोलॉजिस्ट या स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के साथ करते रहें। टीचर्स के साथ जुड़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और अगर आपका बच्चा सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करता है तो आप खुद भी सीखें सांकेतिक भाषा, विच इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। बहुत बार ये देखा गया है कि क्या होता है कि पता तो चल जाता है कि बच्चे को हियरिंग लॉस है, ओके, बट माँ या फादर बाकी फैमिली मेंबर्स को बताते ही नहीं है कि बच्चे को कुछ इशू है,
0: रिश्तेदारों को
1: और बाकी लोगों को बताते ही नहीं है, डर के मारे शर्म के मारे कुछ बताते ही नहीं है। अब इससे क्या होता है, पहचान तो हो गई कि मेरे बच्चे को कुछ ना कुछ तो इश्यूज है, कंसर्न्स है, मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, बट इंटरवेंशन बहुत टाइम के बाद होता है, 4 साल 5 साल के बाद हो जाता है, तो ये जो गैप है आइडेंटिफिकेशन और इंटरवेंशन का, ये बढ़ते जाता है, ये कहीं ना कहीं कम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो उनका माइंडसेट कैसा है पेरेंट्स का, दैट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। पॉजिटिव माइंडसेट रखेंगे तो यस द चाइल्ड कैन प्रोग्रेस। ऐसा नहीं है कि चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट आगे प्रोग्रेस नहीं करते हैं। मेरा खुद का एक स्टूडेंट है जो PhD कर रहा है, सुनील सहस्रबुद्धे, वो खुद PhD कर रहा है। शिवाजी पांडा सर हैं, काफी बड़े रोल मॉडल हैं, उनकी तो PhD हो भी चुकी, उन्होंने खुद का अपना एक स्कूल सेटअप बनाया है उड़ीसा में। सो देर आर मैनी who are having hearing loss और एक बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंच गए हैं। हम hearing loss के क्षेत्र में डॉक्टर मदन वशिष्ठ का नाम लेते हैं हमेशा, वो खुद भी hearing impairment है उनको है, and Gallaudet University में डीन रह चुके हैं। So it is possible, everything is possible, but timely और appropriate support system लेके अगर हम काम करें तो things are possible।
0: तो किन किन क्षेत्रों में ये बच्चे आगे बढ़ जाते हैं, ज्यादातर कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर इनके लिए मुश्किल पैदा हो सकती है?
1: देखिए, अभी जैसे मैंने कहा कि हियरिंग लॉस की वजह से लैंग्वेज, स्पीच और कम्युनिकेशन अफेक्टेड है, ओके, सो अगर ये तीन चीज आपने सही टाइमली अप्रोप्रिएटली डेवलप कर दी तो बच्चे को कोई कंसर्न्स इश्यूज नहीं आएंगे। हमारे पास ऐसे भी चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयर्ड हैं जो BSLP जिन्होंने कर चुके हैं, ओके, ऑडियोलॉजी का कोर्स कर चुके हैं, ऑडियोलॉजिस्ट हैं अभी, ओके, एडुकेशन के क्षेत्र में तो बहुत अच्छा करते हैं, बहुत जगह पे यू विल फाइंड जो डेफ टीचर्स बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं बच्चों के साथ। टीचर के क्षेत्र में मैंने बहुत सारे देखे हैं, प्लस यू विल फाइंड मेनी पीपल इन IIMs, IITs ऑल्सो यू विल फाइंड। तो अगेन एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू आइडेंटिफिकेशन, इंटरवेंशन का गैप कम करना है, एंड पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर हम काम करें तो यस थिंग्स आर पॉसिबल। प्लस टीम अप्रोच में काम करना बहुत जरूरी है। टीम अप्रोच का मतलब पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, जो भी उनके थेरेपिस्ट होंगे या साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर हो गए, इन सबको साथ में लेकर अगर वो आगे बढ़ेंगे तो यस थिंग

0: आर पॉसिबल।
1: बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर गायत्री, हमें बताइए कि कैसे पहचाने कि किसी बच्चे को हियरिंग लॉस है, मतलब वो सुनने में असमर्थ है, प्रारंभिक अवस्था में कैसे पहचान होती है?
0: ओके, फॉर सिंपल एग्जाम्पल, अगर मैं फैमिली सेटअप पे बात करूँ तो आप जोर से आवाज बुला रहे हैं बच्चे का, राहुल राहुल राहुल, बच्चा प्रतिसाद नहीं करता है। आपने चिल्ला के बात किया तभी भी प्रतिसाद नहीं कर रहा है, देयर इज नो चेंजेस इन एक्सप्रेशन। हमें जब आवाज आती है तो हम उस तरफ देखते हैं, ओके, जहां से आवाज आती है हम उस तरफ देखते हैं, तो बच्चा वहां पे रेस्पॉन्ड नहीं करता है। अगर बहुत जोर से कोई आवाज आती है तो हम नॉर्मली दचकते हैं, वी स्टार्टल, ओके। अगर बच्चा स्टार्टल नहीं करता है या दचकता नहीं है, तो दीज आर सर्टन साइंस जहां पे बच्चा रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। अगेन, घर की घंटी बजी है एंड द चाइल्ड इज नॉट अंडरस्टैंडिंग कि देयर इज अ डोरबेल। तो एनवायरमेंटल साउंड्स को अगर वो रेस्पॉन्ड नहीं करता है या फाइन साउंड्स जैसे स्पीच साउंड्स को वो रेस्पॉन्ड नहीं करता है, तो यस द चाइल्ड कैन हैव इश्यूज। बहुत बार क्या होता है कि हियरिंग लॉस उतनी मात्रा पे नहीं है, माइल्ड मॉडरेट या मॉडरेटली सीवियर है, तो उन बच्चों को पहचाना थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे है, पर उसके लिए जांच करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी ऐसे बहुत सारे बच्चे आपको रेगुलर स्कूल्स में मिल जाएंगे, जनरल स्कूल्स में मिल जाएंगे, ठीक है, जहां पे बच्चे को लॉस तो है बट आप अगर थोड़ा जोर से बोलते हो तो बच्चा रिस्पॉन्ड कर लेता है। बट व्हेन यू से टर्न पेज नंबर दिस, तो पेज नंबर ये टर्न करना है, ये पूरा वाक्य समझना उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अगेन, ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बहुत ऊंचा बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं कंसर्न्स है। तो ये सब एक बिहेवियर रिस्पॉन्सेज है जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए, और अगर ऐसा कोई बिहेवियर रिस्पॉन्स आप देखते हो तो तुरंत ENT ऑडियोलॉजिस्ट को मिलने, ताकि हमें पता चले कि हियरिंग लॉस है तो कितना हियरिंग लॉस है, और अगर हियरिंग लॉस है क्या वो दवाई से या सर्जरी से ठीक हो सकता है, तो फाइन, नहीं ठीक हो सकता है तो व्हाट आर द डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स, चाहे वो हियरिंग एड लगा दें या कॉकलियर इम्प्लांट लगे या हमको साइन लैंग्वेज का है सपोर्ट चाहिए, क्या करना है, तो हम प्लान ऑफ एक्शन बना सकते हैं। तो दिस इज द बेसिक।
1: और शुरुआत में कोई चीज पता चल जाती है तो उसका इलाज भी संभव है।
0: एग्जैक्टली,
1: छोटी मोटी तकलीफें, छोटी मोटी समस्या है तो उसका इलाज भी संभव है। यहाँ पर एक गाना सुन लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना?
0: पल पल दिल के पास
1: तुम रहती हो।
0: हाँ जी, किशोर कुमार जी।
1: जी, सुनते हैं ये गाना।

0: डॉक्टर गायत्री, हमारे श्रोताओं को बताइए कि सुनना और बोलना एक साथ जुड़ा हुआ है, तो क्या जिनको सुनने में समस्या होती है निश्चित रूप से उनको बोलने में भी समस्या होती है? ऐसा भी होता है कि बोलना बहुत स्मूथ होता है और सुनने में प्रॉब्लम होती है, ये इसके बारे में हमारे श्रोताओं को जरा विस्तार से बताइए।
1: स्पीच इम्पेयरमेंट और हियरिंग इम्पेयरमेंट दो अलग अलग डिसेबिलिटी है, ठीक है। अब पहले हम चलते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट के क्षेत्र में। मुझे सुनाई नहीं देता है, अगेन आई रिपीट, इसलिए मुझे भाषा वाचा और संप्रेक्षण में तकलीफ होगी, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि मुझे कितना हियरिंग लॉस है, ओके, उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि मेरा वाचा भाषा और संप्रेक्षण कितना अफेक्टेड रहेगा। तो हियरिंग इम्पेयरमेंट की वजह से मुझे बात करने में प्रॉब्लम आएगी और भाषा वाचा और संप्रेक्षण में प्रॉब्लम

0: स्पीच इम्पेयरमेंट बिल्कुल भी जरूरी नहीं है जिस बच्चे को स्पीच इम्पेयरमेंट हो उसको हियरिंग इम्पेयरमेंट हो, बिल्कुल नहीं. स्पीच इम्पेयरमेंट टोटली डिफरेंट थिंग है. लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, आप जब बात करते हैं तो बात करने के लिए जो जो ऑर्गन्स या इन्वॉल्व हैं, ओके, जो भी आर्टिकुलेटर्स इन्वॉल्व हैं या जो वोकल फोल्ड्स हैं या जो भी इन्वॉल्व हैं, ओके, वो एक टोटली डिफरेंट क्षेत्र है. ओके, तो हियरिंग इम्पेयरमेंट की वजह से मुझे बात करने में तकलीफ हो सकती है, पर मैं बात नहीं कर सकती हूँ, या मुझे स्टटरिंग है या स्टैमरिंग है या मुझे कोई भी स्पीच रिलेटेड कंसर्न्स है, बट दैट डजंट मीन कि मुझे हियरिंग लॉस भी है. तो ये दो अलग अलग चीजें हैं, पर बहुत बार लोग उसको मिक्स कर लेते हैं. तो पहले जब हमारे पास पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट था, तब वी हैड डेफ की डेफिनेशन थी हमारे पास, एंड डेफ एक प्रॉपर एक डिसेबिलिटी था. RPWD एक्ट जब आया 2016, तो दो अलग डिसेबिलिटी बना दी, स्पीच इम्पेयरमेंट अलग, हियरिंग इम्पेयरमेंट अलग, एंड दोनों के टेक्निक्स, मेथड्स, सिखाने के तरीके एंड थेरेपी सेशंस काफी अलग हैं. तो ये दोनों चीजें अलग हैं.
1: बिल्कुल. और कुछ बच्चे जो बोल तो सकते हैं लेकिन ठीक से नहीं बोल पाते हैं, जिनको हकलाना कहते हैं.
0: राइट. हाँ,
1: तो उनके लिए भी
0: उनके लिए भी थेरेपीज होती हैं. एंड जैसे आपने खुद ने पहले कहा, जितना जल्दी आप जानोगे उतना जल्दी आप उसका निवारण कर सकते हैं, उतना जल्दी इंटरवेंशन प्रोग्राम शुरू हो सकता है. तो अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा हकलाता है, तो आप उसको प्लीज एक इंटरवेंशन प्रोग्राम में लेके जाएं या थेरेपिस्ट के पास लेके जाएं. टू एड वन थिंग, कि जैसे जनरल स्कूल्स में, रेगुलर स्कूल्स में यू विल फाइंड कि कुछ बच्चे हैं जिनको हियरिंग इश्यूज हैं, कुछ बच्चे हैं जिनको स्पीच इश्यूज हैं. तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एक प्रशस्त ऐप बनाया है. ओके, तो वो ऐप से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये बच्चे को रेड फ्लैग है कि ग्रीन फ्लैग है. ओके, तो वो स्क्रीनिंग करने में काफी आसानी होती है कि हाँ वो बच्चा कौन से ग्रुप में फिट होता है, ताकि आपका इंटरवेंशन प्रोग्राम या थेरेपी प्रोग्राम उस तरीके से बढ़ते जाएगा.
1: तो जो बच्चे सामान्य स्कूल में, सामान्य विद्यालय में पढ़ते हैं, तो टीचर्स का, शिक्षक का किस तरह का सहयोग होना चाहिए, क्या भूमिका होती है फिर?
0: जो जनरल टीचर्स हैं, जो रेगुलर टीचर्स हैं, उनके क्लास में यू विल फाइंड कि बहुत सारे अलग अलग यू नो डिसेबिलिटी के बच्चे होते हैं उनके क्लास में भी. तो उनके लिए कुछ कुछ चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. जैसे कि अगर आपको मालूम है कि आपके क्लास में ऐसा बच्चा है जिनको सुनने में तकलीफ है, तो उस बच्चे का आप सिटिंग अरेंजमेंट सही करें, मतलब उसको ठीक सामने बैठाएं, ताकि उसका हियरिंग एड जो एम्पलीफाई करता है साउंड, या वो कॉकलियर इम्प्लांट यूज करता होगा, या जो आपको स्पीच रीड करता होगा, आपकी तरफ देख के यू नो वो समझता होगा, तो उसमें काफी मदद हो जाती है. तो सिटिंग अरेंजमेंट अच्छे से रखें. क्लासरूम नॉइज को जितना कम कर सकते हो उतना अच्छा है, ताकि आप जो बात कर रहे हैं या जो उसका पीयर ग्रुप है, जो उसके फ्रेंड सर्कल है, जो वो बात कर रहे हैं, उनको वो ध्यान लेके समझ सके और सुन सके. दूसरी, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है. जैसे मैं तो कहूंगी कि अगर आप पेरेंट्स को बुलाएं क्लास में और उनको बोलें आप बैठो और ऑब्जर्व करो कि किस तरीके से पढ़ाया जाता है, तो दैट विल ऑल्सो बी हेल्पफुल. तो पेरेंट एम्पावरमेंट अगेन मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, पेरेंट का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है. जब उनको लगे कि यस इसमें मुझे पढ़ाने में ये तकलीफ हो रही है, तो मैं इसको किस तरीके से पढ़ाऊं, तो सपोर्ट लेना स्पेशल एडुकेटर्स विल रियली हेल्प. बिकॉज स्पेशल एडुकेटर्स जिस तरीके से पढ़ाते हैं, उनका मेथड्स और टेक्निक्स काफी अलग होता है, तो वो बहुत हेल्प कर सकते हैं जनरल एडुकेटर्स को कि हम किस तरीके से आगे पढ़ा सकते हैं. चौथी चीज इज, जो वो हियरिंग एड पहनते हैं, जो वो यहाँ तो कॉकलियर इम्प्लांट लगाते होंगे, आपने बहुत बार देखा होगा कान के पीछे एक मशीन होती है, ठीक है, और कान के पीछे और कान के ऊपर तक एक मशीन लगती होगी, तो हियरिंग एड हो या कॉकलियर इम्प्लांट बहुत कॉमन हो गई है, तो वो चल रही है कि नहीं चल रही है उसको भी जांचना बहुत जरूरी है. क्योंकि हो सकता है बच्चे ने लगा तो दी है मशीन, पर बैटरी खत्म हो गई है, आवाज जा भी नहीं रही है. तो ये छोटी छोटी चीजें हैं कि आवाज जा तो रही है, बच्चा सुन तो रहा है, अगर मशीन खराब हो गई है तो अगर आप ठीक नहीं भी कर सकते हो, तो पेरेंट्स को बोल दो कि हाँ बाबा ये मशीन चल नहीं रही है, तो आप ठीक करो, या माइनर रिपेयर्स करने आपको आने चाहिए. अगेन जैसे मैंने लास्ट कहा कि टीम अप्रोच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि इफ देर इज एनी कंसर्न आप उसको ऑडियोलॉजिस्ट के पास भेजें, ईएनटी के पास भेजें और स्पेशल एडुकेटर्स की सपोर्ट आप लें, तब जाके सक्सेसफुल होगी चीजें, अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट।
1: तो क्या ऐसे बच्चों को कुछ मनोवैज्ञानिक ट्रीटमेंट की भी जरूरत होती है, क्योंकि एक सामान्य स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं और सारे बच्चे, उसको तो पता है कि वो सुनने में असमर्थ है, हियरिंग एड लगा रहा है तो उसको पता है, बोलने में असमर्थ है, तो वो जो हीन भावना के शिकार होते हैं तो उसमें किस तरह से मनोवैज्ञानिक ट्रीटमेंट होता है या नहीं होता है?
0: इट ऑल डिपेंड्स ऑन चाइल्ड टू चाइल्ड एंड फैमिली टू फैमिली। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन हूँ और मेरी फैमिली ऐसी है जो बहुत पॉजिटिव है, ओके, एंड उनका माइंडसेट ऐसा है कि इट्स ओके, मतलब कि ठीक है, और उनका काफी रीइन्फोर्समेंट हो रहे हैं, उन बच्चों को ज्यादा इश्यूज और कंसर्न्स नहीं आते हैं। पर जहाँ पे पेरेंट्स ने खुद ने एक्सेप्ट नहीं किया कि मेरे बच्चे को ये कंसर्न है एंड पेरेंट और बच्चे के बीच का जो संबंध है वो सही नहीं है, तो बच्चों को कंसर्न्स आएंगे ही आएंगे। इट कैन भी उनको इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो कि मेरे से कोई बात नहीं कर रहा है, मेरे से कोई क्यों नहीं बात कर रहा है, मुझे लोग अलग तरीके से क्यों ट्रीट कर रहे हैं, तो दैट कॉम्प्लेक्सिटी विल कम। तो ये तो हमारे साथ भी होता है कि समझो अगर हम कोई ग्रुप में गए और हमें लगा कि हाँ मुझे ये इंग्लिश भाषा बात करने नहीं आती और सबके सब इंग्लिश में बात करते हैं, तो वो तो हमको भी लगता है, ये एक स्वाभाविक चीज है। तो ये कंसर्न्स जहां पे एक्सेप्टेंस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, वहां मैंने ये कंसर्न्स बहुत ज्यादा देखे हैं। एक दूसरा जो बहुत ज्यादा देखा है मैंने वो है कि क्या होता है कि पहले समझो बच्चा स्पेशल स्कूल में गया या थेरेपी सेंटर में गया, वहां पे पेरेंट्स को लगा और टीचर्स को लगा कि हाँ बाबा मेरा बच्चा अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, वो सब कुछ अच्छे से कर रहा है, उसको स्पेशल स्कूल सेटअप में जहाँ पे सब स्पेशल बच्चे हैं, स्पेशल टीचर हैं, एंड उसको वहां से पिक करके उन्होंने प्लेस कर दिया एक रेगुलर स्कूल में। अब वो रेगुलर स्कूल में बाकी सब एक सामान्य बच्चे, एक जनरल टीचर, उन्होंने कभी ऐसा बच्चा देखा नहीं, उसके पढ़ाने का तरीका जिस तरीके से वो दिखता है, दिखता तो बिल्कुल सेम है, ओके, बट वो हियरिंग एड है और मोस्टली कभी वो इशारे करता है तो वो थोड़ा अलग हो जाता है। तो वहां पे अगर वो कोप अप नहीं करता है, ओके, बाकी वो एनवायरमेंट और सराउंडिंग से, देन देयर कैन बी अ साइकोलॉजिकल कंसर्न्स आल्सो। फिर क्या होता है, वहां से हम वापस उसको स्पेशल स्कूल में लेकर आते हैं, रिवर्स इंटीग्रेशन करते हैं, इस प्रोसेस में द चाइल्ड फेसेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम। थर्ड, अगर उसकी लैंग्वेज उतनी डेवलप नहीं है, चाहे वो मौखिक भाषा हो या सांकेतिक भाषा हो, अगर उसकी लैंग्वेज डेवलप नहीं है एंड द चाइल्ड इज नॉट एबल टू कम्युनिकेट, ओके, अगर मेरा कम्युनिकेशन अफेक्टेड है, तो यस आई माइट हैव साइकोलॉजिकल कंसर्न्स आल्सो।
1: बिल्कुल।
0: सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि कौन सा सिनेरियो है, कौन सा सिचुएशन है, दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। एंड समटाइम्स आई फील कि जो बिहेवियर्स है ना हम सबके, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फॉर सिंपल एग्जाम्पल, अगर बच्चा स्कूल जाता है तो उसके सिक्योरिटी गार्ड उसको कैसे डील करते हैं, आया जो है आया किस तरीके से उसको डील करती है, और ये सब छोटे बच्चों में बहुत, बिकॉज दे आर मोर ऑफ विजुअल लर्नर्स, ओके, आपका फेशियल एक्सप्रेशन ऐसा होगा कि यू नो यू आर नॉट एक्सेप्टिंग इट, बट आप मुंह से तो बोल रहे हैं हेलो गुड मॉर्निंग, बट फेशियल एक्सप्रेशन इज नॉट गोइंग विद योर स्पीच, ओके, तो वो भी कहीं ना कहीं उसको फील होता है। तो बिहेवियर्स plays an important role because जो hearing impaired होते हैं वो mostly visual learners होते हैं, they are more of visuals, okay? तो आपका बर्ताव, आपका attitude, आपका body language, ये सब बहुत important role play करता है। यहाँ कहीं ना कहीं कमतरता हुई तो that means that will affect the child.
1: बिल्कुल सही बात है। इन बच्चों की ऐसी कौन सी प्रमुख शैक्षणिक आवश्यकताएं हैं जिन्हें हर माता पिता और शिक्षक को समझना चाहिए, ये बताइए हमारे श्रोताओं को।
0: okay. अभी जैसे मैंने कहा चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट या वो बच्चे जिनको हियरिंग लॉसेस हैं, वो दो ग्रुप में होते हैं बेसिकली। एक ग्रुप जो हियरिंग एड या कॉकलियर इम्प्लांट यूज करता है एंड उसका वर्बल कम्युनिकेशन डेवलप होता है, हम मोस्टली उनके इसमें मौखिक भाषा किस तरीके से विकास हो उसके ऊपर हम स्टेप्स लेते हैं। दूसरा ग्रुप है जहाँ पे हम साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, इशारों की भाषा बोलते हैं या विजुअल स्पेशल मैनुअल कम्युनिकेशन हम जिसको बोलते हैं, ये एक ग्रुप होता है, ठीक है। अब इन दोनों ग्रुप में बेसिक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट या जो जरूरत है या लर्निंग नीड्स है बेसिकली कम्युनिकेशन और लैंग्वेज की जरूरत है, ठीक है। अब नॉर्मली लोगों को क्या लगता है कि आपने हियरिंग एड लगा दिया तो मेरा बच्चा बात करेगा, या कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी कर दी तो मेरा बच्चा बात करेगा, पर इसमें और चश्मे के बीच में बहुत फर्क है। मुझे अगर दिखाई नहीं देता है और मैं ऑप्थल के पास जाती हूँ, ऑप्थल मुझे चश्मा देगा और मुझे तुरंत दिखाई देगा और वो आपका तभी का तभी टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। जिन बच्चों को सुनाई नहीं देता है ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो अलग अलग श्रवण यंत्र ट्राई करते हैं, फिर वो गेन देखते हैं और उसके बाद आपको एक हियरिंग एड दिया जाएगा। हियरिंग एड लगाने के बाद तुरंत बच्चा बात नहीं करता है, उसके बहुत सारे थेरेपी सेशंस होते हैं, श्रवण प्रशिक्षण के बहुत सारे थेरेपी के सेशंस होते हैं, उसको सिखाया जाता है कि ये आवाज कौन सी है, इस आवाज का मतलब क्या है, आवाज आ कहाँ से रही है। तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, ओके, एंड अ टीडियस प्रोसेस जहाँ पे बहुत ज्यादा सिंसियरिटी से आपको काम

0: करना होता है। तो ये एक लर्निंग नीड है जहाँ पे अगर लगता है कि हाँ बच्चे ने श्रवण यंत्र पहना है तो उसका ऑडिटरी ट्रेनिंग या श्रवण प्रशिक्षण आपको लगातार करना होगा। हियरिंग एड आपको लगातार पहनना होगा एंड चाहे वो कॉकलियर इम्प्लांट हो या हियरिंग एड हो आपको कंटिन्यूसली पहनना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज है आप जिस वातावरण में हैं वो भाषिक वातावरण होना चाहिए। जितना ज्यादा आप लैंग्वेज इनपुट दोगे उतना ज्यादा आप लैंग्वेज आउटपुट होगा। जितना लैंग्वेज इनपुट नहीं है उतना आउटपुट इज अफेक्टेड। सोशल इंटरेक्शंस बहुत ज्यादा कराएं ताकि बच्चे को भी लगे कि हाँ मैं इस समाज का एक हिस्सा हूँ एंड मुझे हर जगह एक्सेप्टेंस होनी चाहिए एंड प्लस एक सोशल आइडेंटिटी भी डेवलप होती है। मैं जितना ज्यादा समाज में इन्वॉल्व होंगी मेरी उतनी अच्छी आइडेंटिटी भी बनेगी। नीड्स है बेसिकली एक चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट की। अपार्ट फ्रॉम दिस अब देखिए जब हम भाषा की बात करते हैं तो अगर मैं सिंपल एग्जाम्पल दूं मैथमेटिक्स का, अगर मैं लिखूंगी 26 प्लस 24 कितना होता है इन अ डिजिटल फॉर्मेट, वो बच्चा कर पाएगा। ओके पर अगर यही चीज मैं भाषिक रूपांतर में दूं मैथमेटिकल सम्स वो डिफिकल्ट हो जाएगा बिकॉज अब जिस तरीके से मैं बात कर रही हूँ और जब मैं वो लिखती हूँ भाषा टिपिकल मैथमेटिकल कंसेप्ट में जो भाषा का इस्तेमाल होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बच्चे को भाषा सीखने में। नेक्स्ट व्हाट आई फील इज हम कभी भी जो भी कंटेंट सिखाते हैं या चाहे वो टीचर्स हो या चाहे वो पेरेंट्स हो जो भी हम कंटेंट सिखाते हैं उस कंटेंट के अंदर जितने भी कंसेप्ट होते हैं वो जितने भी संकल्पनाएं हैं वो संकल्पना संदर्भ के अकॉर्डिंगली सीखना बहुत जरूरी है। अब एग्जांपल अगर मैं आपको एक शब्द बोलूं खोलना ये शब्द है अगर खोलना तो हम तो कितनी सारी अलग अलग चीजें खोलते हैं। क्लास में आप जाते हो और बोलते हो कि आप बुक्स खोलो तो यू अंडरस्टैंड कि बुक मुझे खोलना है। बुक इस तरीके से खुलती है। अगर मैं कहूँ कि मुझे डोर खोलना है तो दैट क्रिया इज डिफरेंट। दैट प्रोसेस इज डिफरेंट। तो वन वर्ड बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्स्ट। तो हेंस द कंसेप्चुअल क्लैरिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर संकल्पना में अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं अफेक्टेड होती है तो इसके लिए बच्चों को आगे एकेडमिक अंडरस्टैंडिंग में भी प्रॉब्लम्स होती है। नहीं तो फिर बच्चे फिर रट्टा मार के वो वैसे आंसर लिखते हैं कि बहुत बार आप देखोगे कि बच्चे क्या करते हैं जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका वो कीवर्ड देखते हैं और उसके हिसाब से आंसर लिखते हैं क्योंकि उनमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी ही नहीं होती है और बहुत बार रट्टा मारना करते हैं तो रट्टा मारा हुआ चीज लिखते हैं पर कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। तो अंडरस्टैंडिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अंडरस्टैंडिंग हुई तो बहुत सारी एकेडमिक डिफिकल्टीज तो चले ही जाएंगे। प्लस आई एम अ टीचर तो मैं लिटरेसी डेवलपमेंट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ कि जितना ज्यादा आप रीडिंग राइटिंग कराओगे उतना ज्यादा अच्छा प्रोग्रेस होगा। जितना ज्यादा रीडिंग हो फॉर एग्जाम्पल 6 महीने का अगर बच्चा है आप बोलोगे क्या मैं कराऊं रीडिंग और राइटिंग एंड क्या ही कराऊं, बट आप बुक खोल सकते हैं उसके सामने और बुक खोल के पढ़ सकते हैं तो वो जो विजुअल थिंग्स है दैट गोज इन हिज हेड। बच्चा देख रहा है उसका रिसेप्टिव लैंग्वेज इज ऑल्सो डेवलपिंग। आप पेज टर्न कर रहे हैं तो ही ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हाँ जब हम रीड करते हैं तो मुझे पेज टर्न करना है। जब मैं रीड करता हूँ तो मैं ऊपर से लेके नीचे तक जाता हूँ ना कि नीचे से लेके ऊपर तक। तो ये जो स्मॉल स्मॉल थिंग्स है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सो दिस ऑल थिंग कंपाइल्स इन द लर्निंग नीड्स ऑफ द चाइल्ड।
1: जी तो ऐसे बच्चे जो सीख रहे हैं इस तरह जिनमें श्रवण बाधित जो बच्चे हैं तो इनकी समझदारी में भी कुछ फर्क होता है सामान्य बच्चों के तुलना में कि नॉर्मल, क्योंकि जो सामान्य बच्चे हैं बहुत कुछ सुन रहे हैं देख रहे हैं आंखों से और बहुत ऐसी जगहों पर ले जा रहे हैं अमूमन होता होगा पेरेंट्स अवॉइड करते होंगे कि यहाँ नहीं ले जाना है यहाँ ले जाना है तो उनकी जो समझ थिंकिंग प्रोसेस है क्या बराबर होती है या कम होती है?
0: सी आपका जब कॉग्निशन की बात करते हो तो कॉग्निशन बहुत हायर लेवल थिंकिंग है राइट एंड उसके अंदर एक और चीज आती है जिसको हम मेटा कॉग्निशन बोलते हैं। तो उसमें बहुत सारे प्रोसेसेस आते हैं। प्रोसेसेस को समझने के लिए आपको एक यंत्र चाहिए आपको एक टूल चाहिए जो है भाषा। कोई भी चीज को समझने के लिए जैसे आई नो कि जो मैं बात कर रही हूँ ये माइक के माध्यम से इट इज गोइंग टू मैम, मैम उनको चेंज वेंज करके एंड देन इट इज लाइव ब्रॉडकास्टिंग। एवरीथिंग आई एम अंडरस्टैंडिंग थ्रू लैंग्वेज। पर अगर मेरे पास लैंग्वेज ही नहीं है हाउ विल माई अदर प्रोसेसेस विल टेक प्लेस। सो कॉग्निटिव डेवलपमेंट

0: लिए लैंग्वेज भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट मैं ये नहीं कह सकती कि जो हियरिंग इम्पेयरमेंट होते हैं उनको कुछ कॉग्निटिव इश्यूज होते हैं, नहीं, देयर आर नो कॉग्निटिव इश्यूज, नो अंडरलाइंग इश्यूज एज सच, बट यस लैंग्वेज कॉग्निशन से जुड़ा हुआ है एंड इट हैज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑल्सो। तो वो काफी अच्छा प्रोग्रेस करते हैं। बट अगेन सेम थिंग बॉइल्स डाउन टू लैंग्वेज और कम्युनिकेशन डेवलपमेंट। मेरे पास अगर भाषा ही नहीं है तो मैं आगे किस तरीके से वो प्रोसेस को समझूं या किस तरीके से रिस्पॉन्ड करूं या क्या कैसे करूंगी वो मुझे कैसे पता, जब तक मुझे वो रियल लाइफ सिचुएशंस नहीं पता होंगे या मुझे उस चीज का संदर्भ ही नहीं पता है कि मैं किस तरीके से करूं। वैसे
1: बिल्कुल, जहां हम एक गाना सुनते हैं, कौन सा गाना सुनवाए?
0: ये मुंबई है मेरी जान, ए दिल है मुश्किल।
1: ए दिल है मुश्किल जी ना, ये जी सुनते हैं ये गाना। ए

0: डॉक्टर गायत्री हमें बताइए कि श्रवण बाधित बच्चे की सीखने की पूरी प्रक्रिया को किस तरह से प्रभावित करती है, जो सीखने की मतलब लर्निंग प्रोसेस होती है। अभी गाने से पहले भी इस बारे में हम बात कर रहे थे।
1: हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात करते हैं या लर्निंग की बात करते हैं, एक सिंपल चीज को अगर हम ध्यान में रखें कि हर चीज मुझे एक्सेसिबल होना चाहिए। अगर सारी चीजें आपके पास एक्सेसिबल हैं, तो आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी आसान से हो सकता है। नाउ जब मैं एक्सेसिबिलिटी ये शब्द बोलती हूँ, तो इसका अर्थ क्या है? एक्सेसिबिलिटी बेसिकली मींस कि मैं कोई भी चीज को पार्टिसिपेट करूं तो उसमें कोई भी बैरियर नहीं होना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, समझो व्हील चेयर का इस्तेमाल करती हूँ और आपके बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं है, सो मैं थर्ड फ्लोर तक कैसे जाऊँ? ठीक है, आई हैव टू टेक हेल्प ऑफ समबडी एल्स। ओके, मैं इंडिपेंडेंटली नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, तो एक्सेसिबल होना हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। समझो हम ये रेडियो शो कर रहे होते और आप फ्रेंच में बात कर रहे होते, तो मुझे तो फ्रेंच आती नहीं है, तो इट वुड हैव बीन वन वे कम्युनिकेशन, क्योंकि मैं कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करती। तो लर्निंग सक्सेसफुल करने के लिए आप जो भी चीजें, जो भी मटेरियल आप बच्चों को देते हो या जो भी चीजों का इस्तेमाल करते हो, बच्चे के लेवल के अनुसार होना चाहिए और उसको उस तक वो पहुंच सके, इसका ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दैट इज एक्सेसिबल

0: होना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो हमारे बच्चे होते हैं वो मोर ऑफ विजुअल लर्नर्स होते हैं, ओके। सो आप कोई भी क्लासरूम देखोगे, अगर स्पेशल क्लासरूम देखोगे, या अगर आप हमारे CDIC में आओगे, दैट इज क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर, उधर भी आप देखोगे बहुत ज्यादा विजुअल चार्ट्स होंगे, विजुअल थिंग्स होंगे, बिकॉज द चाइल्ड इज मोर ऑफ विजुअल, ओके। सो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स आपको अलग अलग लेने होंगे, एंड अगेन आई रिपीट, एक्सेसिबल होना बहुत जरूरी है। जो भी आप कंसेप्ट कंटेंट दे रहे हैं, क्या वो साइन लैंग्वेज में उपलब्ध है कि नहीं है, ओके। और अगर साइन लैंग्वेज में उपलब्ध नहीं है, जो आप भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो भाषा मेरे बच्चे को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो बहुत बार जो होता है वो टेक्स्ट जो होता है, स्कूल के जो टेक्स्ट होते हैं, उसको हम अडेप्ट करते हैं। अडेप्ट बेसिकली मीन्स व्हाट, हम उसको चेंजेस करते हैं, चेंजेस बच्चे के लेवल के अनुसार चेंजेस करते हैं, और बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स के माध्यम से सिखाते हैं, अगेन कमिंग टू बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। कंसेप्ट्स क्लियर है तो बच्चे का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी आसान तरीके से होता है। हमारे बच्चों के लिए आप जब असेसमेंट भी करते हो, जो मूल्यांकन करते हो, तो आप समझो आप जब पढ़ा रहे हो तो पढ़ाते समय भी आप मूल्यांकन करते रहते हो। पढ़ाने के पहले भी करते हैं, पढ़ाने के बाद भी करते हैं, और पढ़ाते समय बहुत बार हम मूल्यांकन करते हैं। एंड इट प्रोसेस शुड बी बेसिकली दोनों तरफ से इंटरैक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि टीचर क्लास में गई और खुद ही खुद बात किए जा रही है। और बहुत बार तो हमने ये देखा है कि जब हम पेरेंट्स को बोलते हैं कि लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट होना चाहिए, भाषिक वातावरण होना चाहिए, तो माँ ही बोले जा रही है। नहीं, बच्चे को भी मौका दो कि बच्चा भी बात करे, बच्चा भी वो प्रोसेस में इन्वॉल्व हो। तो जितना ज्यादा आप इन्वॉल्व करोगे बच्चे को हर प्रोसेस में, उतना ज्यादा बच्चा प्रोग्रेस कर सकता है।
1: बिल्कुल। डॉक्टर गायत्री, हमारे श्रोताओं को बताइए कि सरकार की कौन सी नीतियां हैं, कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण नीतियां हैं इन बच्चों को जो शिक्षा में समर्थन देती हैं और बढ़ावा देती हैं।
0: गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऐसे बहुत सारे लॉज हैं, बहुत सारे स्कीम्स हैं, जहाँ पे वो बच्चों को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं या इंडिविजुअल्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। हमारे पास अलग अलग एक्ट्स हैं, चाहे वो RPWD एक्ट हो या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो 2020 की, या सिप्टा स्कीम हो। स्किल डेवलपमेंट के लिए वी हैव PM दक्ष स्कीम ऑल्सो। हमारे पास अलग अलग स्कॉलरशिप के स्कीम्स हैं, ताकि बच्चे को ऐसा नहीं लगे कि एजुकेशन काफी डिफिकल्ट है, मैं एजुकेशन कहाँ से लूं और कैसे लूं। एक सिंपल एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि आप अगर हमारे यहाँ पे अगर कोई दिव्यांग है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है, और उसको BEd का कोर्स करना है, MEd का कोर्स करना है, या डिसलिटी ISL का कोर्स करना है, तो उसके लिए फ्री है एजुकेशन, ओके, दैट इज एज पर द स्कीम बच्चे के लिए फ्री है। अगर उसको कोई स्किल डेवलपमेंट का कोर्स करना है या फ्री कोचिंग करना है, तो इट इज टोटली फ्री। तो ऐसे बहुत सारे स्कीम्स हैं जहाँ पे उनको हियरिंग एड भी मिलता है कंसेशनल रेट पे। तो ये सारी चीजें हैं जहाँ पे लॉज आर इन प्लेस, स्कीम्स आर इन प्लेस, जहाँ पे हम एजुकेशन भी देते हैं बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट में। सो ये सारी चीजें तो है इन प्लेस। पर जब हम गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस या लॉज एंड पॉलिसीज की बात करते हैं, वी स्टिल हैव टू डेवलप अवेयरनेस, और अवेयरनेस की आवश्यकता है अभी तक हमारे देश में, कि अगर ये इशू है, अगर ये कंसर्न है, तो मुझे कहाँ जाना है, ओके। ये कहाँ जाना है, ये अभी तक एक कंसर्न है। अभी भी हमको अवेयरनेस में बहुत ज्यादा काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इफ आई कैन कोट अ थिंग इज कोविड के टाइम पे, दे आर गोइंग टू हॉस्पिटल्स एंड दे वर हैविंग देयर ट्रीटमेंट ऑल्सो। सो यू थिंक ऑफ अ पर्सन जिसको कोविड अफेक्टेड है एंड वो हॉस्पिटल गया है एंड ही इज नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद द डॉक्टर बिकॉज देयर इज नो इंटरप्रेटर, ओके। तो हमारे देश में अभी भी इंटरप्रेटर्स की संख्या बहुत कम है, उसमें और ज्यादा इनरोल होना जरूरी है। थर्ड इज द एक्सेसिबिलिटी। इस एक्सेसिबिलिटी को भी हमें इम्प्रूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम इन सब अवेयरनेस, एक्सेसिबिलिटी, इंटरप्रेटर सर्विसेज एंड सपोर्ट सिस्टम अगर हम और बढ़ा दें, तो यस, तो गवर्नमेंट लॉज पॉलिसीज जो है इम्प्लीमेंटेशन काफी अच्छे से होगा। हम डॉक्यूमेंट्स में बहुत अच्छे हैं, इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत कर रहे हैं, बट फिर भी अगर ये दो तीन चीज पे और लाइन अप हम करें, तो यस, द चाइल्ड कैन गो मच मच हायर लेवल पे।
1: जी, आप खुद इस संस्था में पढ़ाती हैं बच्चों को और आपके पास देश भर के बहुत सारे बच्चे आते होंगे, कोई ऐसा निजी यादगार कोई घटना है आपके पास जो शेयर करना चाहती हैं?
0: मैं इस क्षेत्र में आई क्योंकि ऑन माय पर्सनल
1: हेड है, डिपार्टमेंट के हेड है, तो बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रही।

0: उसके पहले तो फैकल्टी थी एंड उसके पहले बहुत साल तक एनजीओ सेटअप में भी काम करती थी मैं. एंड आई इंटर्ड इन दिस फील्ड बिकॉज मेरी बुआ की डॉटर इज हियरिंग इम्पेयर्ड. ओके, सो जब भी मैं बुआ के घर जाती थी तो मुझे ऐसे लगता था कि ये इशारों से बात कर रही है और मेरे पापा आराम से कम्युनिकेट कर सकते थे. एंड आई यूज टू फील ये ऐसे ये कुछ अलग है, ये क्या है. ओके, सो व्हेन आई कंप्लीटेड माय मास्टर्स आई थॉट कि लेट मी गेट इन टू दिस फील्ड बिकॉज दिस फील्ड आई फेल्ट इज वेरी सैटिस्फैक्ट्री, वेरी क्रिएटिव एंड बहुत कुछ चेंज हम कर सकते हैं. एंड अगर हम सब इकट्ठा होके एज अ टीम काम करें तो आई फील यू कैन मेक वंडर्स. कमिंग टू द पर्सनल नोट, जिस संस्था में मैं काम कर रही हूँ, पहले मैं वहाँ पे फैकल्टी थी एंड उसके बाद मैं अभी 2024 में आई बिकेम द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट. सो बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, लाइक मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो खुद डेफ हैं, ने कहा कि जो बैचलर्स करते हैं, मास्टर्स करते हैं और पीएचडी करते हैं, और बहुत सारे सो कॉल्ड यू नो टिपिकली डेवलप्ड स्टूडेंट्स भी हैं. दोनों काफ़ी अलग हैं एंड दोनों का सीखने का तरीका काफ़ी अलग है. बट दीज आर ऑल यू नो लेसन्स, यू अंडरस्टैंड सो मेनी थिंग्स. और अगर मैं कहूँ कि मैंने इनसे क्या सीखा है, पेशेंस सीखा है काफी ज्यादा, मेरे में पेशेंस लेवल काफी अच्छा हो गया है. एंड यू अंडरस्टैंड कि एक ही पहलू को हम कितने अलग तरीके से देख सकते हैं. जैसे हम रिसर्च में कहते हैं थर्ड व्यू. ओके, थर्ड व्यू बेसिकली मीन्स फ्रॉम रिसर्च एंगल, डिफरेंट तरीके से वही चीज को देखना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है. तो दिस इज द थिंग व्हाट आई हैव अंडरगॉन एज अ रीडर.
1: बिल्कुल, भारत में श्रवण बाधित बच्चों को जो शिक्षा दी जा रही है तो इसे मजबूत करने के लिए और क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं भारत सरकार की ओर से?
0: कैपेसिटी बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग की जब मैं बात करती हूँ तो अगर मैं जनरल स्कूल्स की बात करूँ तो जनरल स्कूल्स में जो टीचिंग स्टाफ है एंड नॉन टीचिंग स्टाफ है उनका कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत इम्पोर्टेंट है. उनको समझना, उनका एक्सेप्टेंस करना वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. एंड कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ, जैसे मैं आई थिंक स्टार्ट से कह रही हूँ, वी नीड मोर डेवलपमेंट ऑन एक्सेसिबिलिटी. अगर हर चीज उनके पहुंच तक हो तो यस, द थिंग्स आर पॉजिटिव. एट द एंड ऑफ द डे माइंडसेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है.
1: जी, संक्षेप में बताइए चलते चलते कि आपकी संस्था किस तरह से मदद करती है इन बच्चों को, क्योंकि देश भर से बच्चे आते हैं तो क्या क्या, किस तरह की थेरेपी दी जाती है और क्या क्या जांच की जाती है, फिर उनकी मदद कैसे करती है आपकी संस्था?
0: हमारी संस्था में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जो अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल जिनको सुनने में तकलीफ होती है तो वी हैव एन ऑडियोलॉजी डिपार्टमेंट जहाँ पे उनकी जांच की जाती है कि बच्चे को कितना सुनाई देता है, कितना सुनाई नहीं देता है, उसको कौन सी हियरिंग एड से फायदा होगा, अगर कॉकलियर इम्प्लांट करना है तो कितने हद तक. हमने रिसेंटली वर्टिको थिंग भी बनाया है, वर्टिको एक क्लिनिक थेरेपी सेंटर बनाया है कि जिन बच्चों को, अगर सिंपल तरीके से बोलूं कि बहुत बार लोगों को चक्कर आते हैं, राइट, some people say I have a vertigo issues and all. Okay, so this is a new thing which is being developed in the department. फिर हमारे पास एक department है जिसको हम बोलते हैं speech language pathology department. जिन बच्चों को बात करने में, वाचा में problem आती है, stutter करते हैं, stammer करते हैं, कभी कभी सिर्फ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी कुछ शब्द नहीं बोलते हैं, तो उनकी पूरी थेरेपी वहां पे चलती है. फुल स्पीच थेरेपी लैब है, आइडेंटिफिकेशन से लेके इंटरवेंशन तक. ओके, देन वी हैव साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट जहाँ पे पूरा का पूरा साइकोलॉजिकल डायग्नोसिस होता है, बिहेवियरल मैनेजमेंट करते हैं, बिहेवियरल टेक्निक्स करवाते हैं ताकि उसका भी निवारण हो सके. और जिस डिपार्टमेंट से मैं आती हूँ हम पूरा एजुकेशन देखते हैं उन बच्चों का, कि समझो अगर बच्चा कोई रेगुलर स्कूल में भी जाता है और उसको वहाँ पे भी तकलीफ होती है तो वी गिव देम रेमेडियल टीचिंग एज वेल. सो एजुकेशन डिपार्टमेंट में अगेन अलग अलग कोर्सेज चलते हैं डिप्लोमा से के पीएचडी तक. एंड हम साइन लैंग्वेज के भी कोर्सेज चलाते हैं, कभी ऑफलाइन कभी ऑनलाइन. तो अगर किसी को लगे कि मुझे सांकेतिक भाषा सीखनी है तो वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. एंड काफी सारी कोर्सेज चलते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में. हम कैंप्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी करते हैं ताकि जो हमारे तक नहीं आ सके तो हम वहां तक पहुंच सके, रीच दी अनरीच. तो हम वहां जाके कैंप्स और अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं और उनको हियरिंग एड्स या उनको जो जरूरत हो ओके वो हम देते हैं.
1: जी, तो आपके संस्था से कोई संपर्क करना चाहे तो क्या कुछ कर सकता है, मेल के जरिए? और
0: वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, AYJNISHDNIC वेबसाइट है, आप

0: वहाँ जाके आपको हर डिपार्टमेंटल हेड्स के फोन नंबर्स और ईमेल आईडीज मिलेंगे. यू विल गेट ऑलमोस्ट ऑल द इंफॉर्मेशन ऑन द वेबसाइट इटसेल्फ.
1: बहुत बढ़िया जानकारी आपने दी है डॉक्टर गायत्री, और मुझे लगता है देश भर के हमारे श्रोता जो सुन रहे होंगे, जिन्हें भी जिनके घर में जिन बच्चों को जिन बड़ों को हियरिंग लॉस है या बोलने में दिक्कत है, तो बहुत अपने तई जहां इलाज संभव करें, नहीं तो आपकी संस्था से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. और चलते चलते कोई गाना सुनवाना चाहेंगे?
0: जगजीत सिंह का कोई भी गाना, आई जस्ट लाइक हिम और लाइक हिज वॉइस अ लॉट, तो एनी सॉन्ग ऑफ जगजीत सिंह इज ओके विद मी.
1: तुमको देखा तो ये ख्याल
0: है, ऑल गुड.
1: तो सुनते हैं ये.
0: ठीक

0: और डॉक्टर गायत्री विविध भारती के स्टूडियो में आप आई और इतनी सारी जानकारी दी। और ये एक ऐसा विषय है जो जिस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता है, जो लोग इससे पीड़ित होते हैं वही लोग परेशान होते हैं। तो हमारा भी श्रोताओं से बस यही कहना है कि जहाँ कहीं ऐसे बच्चे हैं उनको सपोर्ट करें, मानसिक रूप से सहयोग दें। आपका तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत
1: थैंक यू टू यू ममता मैम एंड थैंक्स टू विविध भारती द होल टीम। दे आर वेरी कोऑपरेटिव एंड द वे दे आर डीलिंग विद एवरीथिंग, सो थैंक्स टू देम। थैंक्स टू ऑल द लिसनर्स कि आप सुने और कहीं पे किसी को भी आवश्यकता हो तो प्लीज संपर्क करें अलियावर्जन संस्था को। थैंक यू सो मच।
2: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर गायत्री आहूजा से रेडियो सखी ममता सिंह की ये बातचीत। चलने से पहले आपको बता दें इस कार्यक्रम में हमारी रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग काजल भदरगे का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
3: आज के मेहमान।

मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ एवं FM बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं, प्रस्तुत है युवाओं का अपना पसंदीदा कार्यक्रम युवावाणी।

0: सलाम नमस्कार दोस्तों, मैं आपका रेडियो दोस्त आमिर स्वागत करता हूं आप युवाओं के पसंदीदा कार्यक्रम युवावाणी में। आशा करता हूं आप सभी बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों चलिए जान लेते हैं आज के कार्यक्रम की रूपरेखा को। आज हम चर्चा करेंगे वर्ल्ड बाइसिकल डे पर। आगे कार्यक्रम में आज के साप्ताहिक स्तंभ मार्गदर्शन में हम आपको सुनवाएंगे भेंट वार्ता कविता की मौलिकता। कार्यक्रम में आगे प्रश्न मंच में होंगे आपसे एक सवाल। डेली त्रिविया फन फैक्ट में जानेंगे कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। कार्यक्रम में आगे जानेंगे देश विदेश की कुछ हालिया घटनाक्रमों के बारे में, साथ साथ गीतों का सिलसिला भी चलता रहेगा। श्रोताओं कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक प्यारे से गीत के साथ, जिसे हमने लिया है फिल्म पेडी से। आवाजें दी हैं मोहित चौहान ने।
1: ताकि

0: दोस्तों लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: अंतराल के बाद कार्यक्रम में पुनः स्वागत है दोस्तों। चलते हैं आज के चर्चा की ओर। श्रोताओं, अप्रैल 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 जून को विश्व साइकिल दिवस घोषित किया था। विश्व साइकिल दिवस के प्रस्ताव में साइकिल की विशिष्टता, अस्थायीता और बहुमुखी प्रतिभा को मान्यता दी गई है, जो 2 शताब्दियों से उपयोग में है और ये परिवहन का एक सरल, किफ़ायती, विश्वसनीय, स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल टिकाऊ साधन है। दोस्तों, साइकिल चलाने से शरीर का व्यायाम होता है, हृदय स्वस्थ रहता है, मांसपेशियों में मजबूतियाँ आती है और मानसिक तनाव भी कम होता है। विशेषज्ञों के अनुसार प्रतिदिन केवल 30 मिनट साइकिल चलाने से कई स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज वर्ल्ड बाइसाइकिल डे के दिन हम सभी एक छोटा सा संकल्प लें, जहाँ तक संभव हो छोटी दूरी के लिए साइकिल का उपयोग करें। इससे हमारा स्वास्थ्य बेहतर होगा, ईंधन की बचत होगी और पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। आज के चर्चा में इतना ही। चलते हैं गीतों की ओर, जिसे हमने लिया है फिल्म दे दनादन प्यार 2 से। आवाज़ दी है सागर भाटिया ने।

0: गीत के बाद दोस्तों चलते हैं आज के साप्ताहिक स्तंभ मार्गदर्शन की ओर, जहां हम आपको सुनवाएंगे भेंट वार्ता जिसके शीर्षक है कविता की मौलिकता, जिसके भेंट वार्ताकार है डॉक्टर परशुराम रॉय, भेंट करता है अमित कुमार।
1: युवा मित्रों नमस्कार, युवानी में आप सभी का स्वागत है। आज मार्गदर्शन के तहत हम बात करेंगे मौलिकता, कविता की मौलिकता के बारे में। मौलिकता क्या है और कविता आप जब लिखते हैं आप उसको किस तरह से समझ पाते हैं, समझा पाते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे हिंदी स्नातकोत्तर विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर
2: परशुराम राय,
1: और जानेंगे मौलिकता के बारे में कि कविता की मौलिकता को किस तरह से वो व्यक्त करते हैं। सर आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है।
3: धन्यवाद
1: सर। हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे आपसे कि कविता की मौलिकता में जो एक मौलिकता शब्द है सर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
3: दरअसल ये मौलिकता जो शब्द है ये मूल
1: जी
3: से जुड़ा हुआ, इसके उत्स अगर देखेंगे, मूल मतलब क्या, जड़ उत्स, और कविता के संदर्भ में बात हो रही है तो मूल इसलिए देखना है कि कविता बनती कैसे है
1: जी।
3: दूसरी बात, जो हम मौलिक जब बनाते हैं अर्थात विशेषण हो गया वो
1: जी,
3: कि कोई चीज़ मौलिक है यानी वह कुछ खास है इसीलिए वो मौलिक है
1: जी।
3: और जैसे ही हम मौलिकता कहते हैं तो इसका मतलब है कि वो मौलिकता यानी वो फिर संज्ञा बनी
1: जी।
3: तो मौलिकता का अर्थ है कि वह चीज़ जो पहले थी वह मूल रूप में अलग है यानी कुछ खास बन गई है और वो कविता रूपी संज्ञा बन चुकी है। तो कविता जब बनती है तो कविता है क्या
1: जी,
3: पहला सवाल ये
1: जी, कविता क्या है?
3: कविता क्या है? दरअसल कविता भाव चित्र है
1: जी।
3: आपके मन में, आपके हृदय में जो बहुत सारे भाव उठते हैं उन भावों को जब आप शब्दों से रूपायित करते हैं
1: जी,
3: तब वह कविता की शक्ल में, अगर वो कविता की रूप में है तो कविता की शक्ल में आती है। पहले तो जो साहित्य की विभिन्न विधाएं हैं उसमें कविता एक विधा है
1: जी।
3: अब ये अभी यहाँ अवकाश नहीं कि विस्तार में बताया जा सके, केवल इतना ही समझना जरूरी होगा कि कविता साहित्य की विभिन्न विधाओं में सबसे महत्वपूर्ण विधा है और सर्वाधिक उसमें कहिए कि सर्वाधिक कठिन भी है। इसलिए कठिन है, हालांकि आज अभी मुक्त छंद के नाम पर बहुत उछल कूद हो रहा है। हाँ, लोग कहते हैं और मानते हैं कविता बहुत आसान है, क्योंकि शब्दों में, कम शब्दों में अपने भावों को लय के साथ, ताल के साथ, मात्रा के साथ, छंद के साथ प्रस्तुत करना एक तरह की साधना है
1: जी।
3: और इसलिए ये जो साधना है ये साधना आसान नहीं है। इसीलिए हमारे जो पुरखे थे, जो संस्कृत के आचार्यगण थे
1: जी,
3: वो कहते थे कि कवि का जो कर्म है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण कर्म है। इसमें न केवल लोकाचार को, शास्त्र को, बल्कि शब्दों को, छंदों को, अलंकारों को, रसों को, सबको साधना पड़ता है और इनकी साधना के बाद कविता रची जा सकती है। और ये भी नहीं, केवल जानना ही काफ़ी नहीं
1: जी,
3: जानने के साथ साथ वह व्यक्ति में वह कार्य भावित्री प्रतिभा हो ताकि वह कविता रच सके और वह भी रचना, एक सामान्य रूप से रच देना कविता हो सकती है, लेकिन महाकवि तो वही होता है जिसकी दृष्टि बहुत ही व्यापक होती है, वैश्विक होती है। तो जहाँ तक आप कह रहे थे कविता की मौलिकता का सवाल, तो मौलिकता कुछ इस तरह की चीज़ नहीं है कि एकदम से अनूठा अनोखा कोई बात कह देना
1: जी, इसमें मौलिकता नहीं है जी।
3: हाँ, मौलिकता यह है कि जो बात कही गई है वह अनूठे अंदाज में
1: जी,
3: अनोखे शब्द में, भावप्रवण शब्द में कही गई है अथवा नहीं। अगर कही गई है तो वो मौलिक है
1: जी।
3: एक उदाहरण से समझिए
1: जी
3: कि दोहा छंद में बहुत पहले भी, यहाँ तक कि अपभ्रंश वगैरह में भी दोहा छंद में रचना

0: होती थी
1: जी।
0: लेकिन बिहारी लाल जब लिखते हैं
1: जी,
0: तो बिहारी लाल की कविताओं को, दोहों को आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि बिहारी लाल के दोहों में कुछ खास बात है।
1: जैसे जी जी, हाँ, हाँ, बोलना चाहेंगे, जैसे उनका एक कहत नटत रिजत खिजत,
0: हाँ,
1: खिलत खिलत, तो इसमें मतलब 6-7 चीजों को एक दो दो लाइनों में।
0: हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ।
1: तो
0: अब जैसे जैसे एक और मैं सुनाता हूँ। अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार
1: जी,
0: जियत परत झुकी झुकी परत जही देखत तितवार
1: जी।
0: अब ये ऐसा नहीं, यहाँ एक नायिका की आंख का चित्रण है, आंख कितनी खूबसूरत है इसकी बात है। आंख की खूबसूरती पर बहुत सारे शायरों ने, लेखकों ने, कवियों ने रचना की है, लेकिन कम शब्दों में लय के साथ, छंद के साथ, उस भाव का संप्रेषण। जैसे अमी, अमी का मतलब अमृत है, हलाहल आँख को देखिए आप, आँख में आप देखेंगे कि आँख का एक हिस्सा है जो उजला है, बीच का हिस्सा काला है जिसको उन्होंने कहा हलाहल, और किनारे का हिस्सा लाल है। उन्होंने कहा अमी हलाहल मद भरे, ये जो मद है, नशा है, शराब है, जो भी इस तरह की बातें, तो ऐसी ही आँखें, और उस आँखों को जो देख लेता है तो कभी लगता है कि वो मर रहा है, यानी उसमें जो हलाहल का गुण है, जो जो पुतली है काला, और वो कभी लगता है कि वो जी रहा है क्योंकि वो जो उजला वाला हिस्सा अमृत की तरह। तो ये जो प्रस्तुति है, दरअसल ये प्रस्तुति का ही कमाल है। इसलिए कविता की मौलिकता जब हम करते हैं तो है कि हाउ टू इंटरप्रेट, कैसे आप उसको रखते हैं, अंदाजे बयां क्या है
1: आपका, और लोग उसको कितना समझ पाते हैं,
0: हाँ,
1: जो आप बतलाना चाहते हैं उनको।
0: हाँ,
1: तो सर ये तो बात हो गई कविता की मौलिकता के बारे में, लेकिन सर एक सवाल ये भी उठता है कि जब कोई कविता लिखता है पहली बार या रचना करता है कविताओं की,
0: तो
1: जब रचना करता है कविताओं की, तो वो ये कैसे समझ पाए कि उसकी कविता में मौलिकता है क्या नहीं है या नहीं।
0: हाँ,
1: क्योंकि अभी आपने कहा कि कविता की मौलिकता ये नहीं है कि वो अनूठे अंदाज में लिखे, उसका बयां भी, उसका जो अंदाजे बयां हो वो भी बहुत
0: विषय, विषय के संदर्भ में, खाली विषय एक हो सकता है
1: जी,
0: लेकिन अंदाज विषय को प्रस्तुत करने का, भाव
1: तो
0: को,
1: ऐसे युवा किस तरह से अपने को समझ पाए अच्छी है या खराब है, कितनी मेहनत उनको करनी चाहिए।
0: पहली बात तो ये कि एक तो उनको शब्द संधान करना आना चाहिए, शब्द कविता में उपयुक्त शब्द ही रखे जाते हैं, जो श्रेष्ठतम शब्द है, शब्दों का क्रम, वर्ड्सवर्थ ये कहा करते थे, बेस्ट ऑर्डर ऑफ द वर्ड, तो वो जो सर्वोत्तम किसी भावाभिव्यक्ति के लिए जो सर्वोत्तम शब्द है, इसकी समझ एक कवि को होनी ही चाहिए, पहली बात। दूसरी बात है कि कविता क्यों कविता है, अगर गद्य की पंक्तियों को केवल हम तुकों में जोड़ देंगे या छंदों में जोड़ देंगे तो कविता नहीं है,
1: नहीं है जी।
0: उसकी जो सृजनशीलता है, यानी कविता में जब हम कोई भाव व्यक्त करते हैं तो उसमें लय है कि नहीं, उसमें छंद है कि नहीं। छंद का आजकल बड़ा ही
1: छोटा
0: अर्थ ले लिया जाता है, छंद का यह अर्थ नहीं है कि उसमें कितनी मात्राएं हैं और लघु गुरु का क्या क्रम है और छंद का क्या, ये मतलब छंद नहीं है। छंद का मतलब है कि एक सिमेट्री में है कि नहीं, अगर कड़ी से कड़ी, भावों की कड़ियां जो जुड़ती हैं वो जुड़ी हुई कड़ियां सुसंबद्ध हैं कि नहीं, ये कविता, यही वर्ड्सवर्थ कहते हैं, ये आवश्यक है। और अभी अभी आप कह रहे हैं तो मुझे एक बात आ गई
1: जी।
0: कि डरेल बहुत बड़े आलोचक थे, वो कहा करते थे पोएट्री इज नॉट टू से, वो कहा करते थे पोएट्री इज नॉट टू से हाउ टू इंटरप्रेट। आप वही वही बात होगी, अंदाजे बयां की बात है
1: जी।
0: तो एक और बात मुझे अभी याद आ रही है, एक और आलोचक थे आर्डेन, वो कहते थे कि यदि कोई मुझे कहे कि मुझे बहुत बात कहनी है और इसलिए मुझे कविता लिखनी है, तो मैं कहूँगा कि वह कवि नहीं है
1: जी।
0: अगर कोई यह कहे कि मुझे बात कहनी है, मुझे कविता लिखनी है और शब्दों की ध्वनि सुननी है, बहुत बड़ी बात कही उन्होंने, शब्दों की ध्वनि सुननी है, तो मैं कहूँगा कि वह कविता रचने या कवि बनने की प्रक्रिया में है। तो ये बात है कविता, एक नए कवि के संदर्भ में आपने कहा, तो नए कवि को यह समझना पड़ेगा कि वह जो कह रहा है उसके कहने में वह सिमेट्री है कि नहीं, वह एकान्विति है कि नहीं, वह छंद है कि नहीं, वह लय है कि नहीं, और उसका अंदाजी बयां अनूठा है कि नहीं।
1: तो सर ये बातें तो हो गई कि किन बातों का ध्यान रखें प्रारंभिक स्तर पे, लेकिन जो आज की वर्तमान पीढ़ी है सर, या जो रचना हो रही है सर, चूंकि आप हिंदी के प्रोफेसर हैं, तो आप सर कहाँ तक देख पाते हैं कि

0: हैं, लोग समझते हैं कि कविता केवल साहित्य पढ़ने वाले की चीज़ है या फिर लिखने वाले की। एक साहित्य तो हमारे संस्कारों को सुसज्जित करता है, इसलिए चाहे वो किसी भी, ये ठीक है किसी में दक्षता विशेषज्ञता हो सकती है जो उस विषय को पढ़ते हैं, लेकिन कविता और साहित्य तो सबका विषय है, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर, हाँ, प्रोफेसर। लेकिन ये यहाँ नहीं दिखते, हिंदी पट्टी में ऐसी कम प्रवृत्ति है। जो हमारे नए कवि हैं उनको ये खास तौर पर सोचना पड़ेगा कि वह जब कविता लिखते हैं तो उनको वो क्या लिखना चाहते हैं, वो जो लिखना चाहते हैं, जो उनके अंदर भाव मैंने, एक तो ये भी एक जो एक एक रामचंद्र शुक्ल जी का एक शब्द में ले रहा हूँ जो कहते हैं कि मुक्त हृदय, क्योंकि मुक्त हृदय से ही कविता लिखी जा सकती है। अगर हमको जाति का, वंश का, क्षेत्र का, लिंग का, भाषा का, इन सब की संकीर्णताएं अगर मेरे दिमाग में रहेंगी तो हमारा हृदय या चित्त जो है वो मुक्त नहीं रहेगा। तो चित्त की मुक्तावस्था में जो हमारे अंदर भाव सृजित होते हैं और उन सृजित भावों को छांदस में जब हम बांधते हैं कुशल शब्दों से तो वह कविता बनती है। तो उनको ये सोचना पड़ेगा कि वह इस भाव में आकर लिखेंगे और शब्दों का संधान करेंगे, उपयुक्त शब्दों को इसका क्रम दे पाएंगे तो बेहतर कविता लिख देंगे।
1: जी सर, एक चीज और भी देखी जा रही है कि जो युवा कवि हैं या कवित्री हैं वो तुकबंदी पे ज़्यादा बल देते हैं कि तुक से तुक मिल जाता है तो लगती है कि चलो कविता और थोड़ा सुनने में भी अच्छा लगता है। सर वो
0: नहीं, हाँ हाँ ठीक कह रहे हैं। आप लोग जानते हैं निराला जी को माना जाता है, वैसे कुछ लोग कहते हैं मुकुटधर पांडे ने पहला प्रयोग किया था मुक्त छंद का, तो उन्होंने लिखा था, लेकिन जो सुख्यात है वह है कि निराला ने मुक्त छंद का प्रयोग किया और प्रभुत मात्रा में किया। ये आपको ऊपरी तौर पर लगेगा कि छंद के जो नियम हैं, जो छंदों की जो कुछ प्रकृति बनाई गई हैं, उन छंदों से इतर आपको लग सकता है कि ये छंद है, लेकिन वह भी छंद में ही है। उनका जो मुक्त छंद है वह भी छंद है, वह निराला का अपना मौलिक छंद है जी। इस बात को समझा जाना चाहिए कि तो अगर हम उस तरह की मौलिक छंदस का उपयोग कर सकें अपने काव्य में तो वो चलेगा। और ये जो आजकल हम लोग कविता भूलने लगे हैं वह इसलिए भी भूलते हैं कि कभी कभी कवि लोग मुक्त छंद के नाम पर ऐसी गद्यवत कविताएं लिखते हैं जिनको याद करना, जैसे नाद स्वर जो है इसको नादात्मकता कहते हैं हम लोग, जैसे अभी आपने जो उसके पहले जो रिझत खिझत सुनाया था तो वो नाद देखिए, उस नाद के कारण लोगों को वो बातें याद रहती हैं, याद करने में भी सुगमता होती है और लोगों को सुनने में भी अच्छा लगता है। तो नादत जो नाद की अवस्था है, नादात्मकता है, अगर वह घटती है, अगर नहीं होती है तो कविता बहुत ही श्रवणीय नहीं बन पाती।
1: हाँ जी,
0: तो वो ख्याल रखने की जरूरत है, क्योंकि वह कविता को ज़्यादा दिनों तक जिलाए रखने के लिए भी आवश्यक है। और पहली बात अगर आपसे मैं ही पूछ लूँ कि ये बोलिए कविता क्यों पढ़ी जाए, तो कविता क्या बौद्धिक व्यायाम के लिए पढ़ी जाए? कविता तो रस के लिए, चित्त के विस्तार के लिए, संस्कार के लिए, इसीलिए पढ़ी जानी चाहिए।
1: तो इस प्रयोग किया सर ने, तो निश्चित रूप से कविता भावों की यात्रा है और आप उसमें कितना सफल हो पाते हैं इससे आप जान पाएंगे कि आपकी कविता कितनी मौलिक है और उसमें कितनी मौलिकता है। कविता की मौलिकता ये नहीं है कि आप अलग अंदाज में लिखते हैं, उसकी मौलिकता इसमें भी है कि आप उसका अंदाजे बयां किस तरह से करते हैं। धन्यवाद।
2: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे मार्गदर्शन में भेंटवार्ता, जिसके भेंटवार्ताकार हैं डॉक्टर परशुराम राय और भेंटकर्ता थे अमित कुमार। दोस्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं अगले सेगमेंट प्रश्न मंच में। दोस्तों, पिछले हफ्ते प्रश्न मंच में पूछा गया सवाल था, रॉयल सोसाइटी की फेलो चुनी जाने वाली दूसरी भारतीय महिला वैज्ञानिक कौन है? इसका सही उत्तर है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। इसका सही जवाब दिया है फिरोज खान, राबिया कॉलोनी भागलपुर से, सुजीत रॉय कहलगांव से, मोहम्मद शहजाद हाशमी सदरुद्दीन चक से। दोस्तों, इस हफ्ते का प्रश्न मंच का सवाल है, विश्व में ऐसा कौन सा देश है जहां एक भी नदी नहीं है? इस प्रश्न का जवाब आप कार्यक्रम के अंत में बताए गए पते पर भेज सकते हैं। डेली त्रिविया में आज का

सवाल है, आकाशवाणी की प्रसिद्ध सेवा विविध भारती की शुरुआत किस शहर से हुई थी? इसका जवाब हम आपको कार्यक्रम के अंत में बताएंगे। दोस्तों, फन फैक्ट में क्या आप जानते हैं, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाते हुए 30 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से घूमती है। मतलब जब तक आप ये लाइन सुनेंगे तब तक हम स्पेस में सैकड़ों किलोमीटर आगे बढ़ चुके होंगे। दोस्तों, चलिए जान लेते हैं कुछ हालिया घटनाक्रमों के बारे में। हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने कनाडा में अब तक की सबसे बड़ी भारतीय व्यवसायिक प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया है। दोनों देशों ने कनाडा भारत व्यापार और निवेश मंच की शुरुआत की तथा वर्ष 2026 के अंत तक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। दोस्तों, समसामयिकी में इतना ही, उम्मीद करते हैं ये आपके प्रतियोगी परीक्षा में उपयोगी साबित होता है। दोस्तों, आनंद लेते हैं एक गीत का, जिसे हमने लिया है फिल्म बागी 2 से। आवाजें दी हैं आतिफ असलम ने।

दोस्तों, डेली त्रिविया में पूछा गया सवाल का जवाब है। आकाशवाणी की प्रसिद्ध सेवा विविध भारती की शुरुआत मुंबई शहर से हुई थी 3 अक्टूबर 1997 को। दोस्तों, आज का कार्यक्रम आप सभी को कैसा लगा? आप अपना सुझाव हमें मेल या पत्र द्वारा भेज सकते हैं। हमारा पता नोट करें, द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी भागलपुर, आदमपुर भागलपुर। हमारा पिन कोड नंबर नोट करें, 8120001। आप हमें अपना सुझाव मेल द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट करें, phairbhagalpur@gmail.com। दोस्तों, हंसते मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। सुनते रहें आप युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। अब दें अपने रेडियो दोस्त आमिर को इजाज़त। खुदा हाफिज़। नमस्कार।

युवावाणी कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से। 5:30 हुए हैं। पेश है फिल्मी गीत। आरंभ में सुनिए दाग फिल्म में उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल को। गीतकार हैं समीर और संगीतकार हैं राजेश रोशन।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

अर्पण फिल्म का गीत सुनिए। लता मंगेशकर की आवाज़ में गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश,
2: ट्रेश
0: और बाल्टी बॉय।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।
4: उदित नारायण के साथ हल्का याग्निक को सुनिए राजा हिंदुस्तानी फिल्म में। गीत लिखा है समीर ने और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

फिल्म संगीत आप सुन रहे थे आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से। अब सुनिए कार्यक्रम विवरण, इसमें सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष एवं कल के कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा एवं इनका प्रसारण समय। पहले आज के शेष कार्यक्रमों पर एक नज़र। अब से थोड़ी देर बाद यानी शाम 6 बजे से आप सुनेंगे ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम। प्रस्तुतकर्ता होंगे अतुल कुमार प्रियदर्शन। 7:10 पर श्रमिक जगत सुनेंगे। प्रस्तुतकर्ता होंगे अतुल कुमार प्रियदर्शन। 7:52 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम सुरलहरी में कुमारी स्वर्णा घोष को आप सुन पाएंगे। 8:00 रजनीगंधा कार्यक्रम में फिल्मी गीतों का आनंद लेंगे। 9:30 पर दिल्ली से हम आपको सुनवाएंगे चर्चा का विषय है कार्यक्रम। 10:00 फिल्मी गज़लें आप सुनेंगे।

दस बजकर 30 मिनट पर पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम में पुरानी फिल्मों के गीत सुनेंगे। ये तो थे हमारे आज के शेष कार्यक्रम। अब कुछ जानकारियां हम आपको देंगे कल के कार्यक्रमों की। कल हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होगी 5:48 पर 5:55 पर खेत खलिहान कार्यक्रम में कृषि आधारित वार्ता आप सुन पाएंगे। 6:05 पर आप सुनते हैं चिंतन मनन। 6:10 पर भक्ति संगीत सुनेंगे वंदना कार्यक्रम में। 6:35 पर स्वास्थ्य चर्चा के कार्यक्रम में डॉक्टर मोहम्मद शहजाद आलम से सचिन कुमार की बातचीत सुनेंगे दांतों की रिफिलिंग विषय पर। 6:40 पर रामचरितमानस गान का प्रसारण किया जाएगा 7 बजे से 7:55 तक। मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला में सुगम संगीत सुनेंगे भोले शंकर झा से। कहानी होगी बेटी का घर। लेखक होंगे लेखिका होंगी सपना चंद्र। इसके अलावा फिल्म संगीत, रेल सूचना, मौसम सूचना, अखबारों की सुर्खियां और कुछ बातें होंगी इतिहास की। प्रस्तुत करता होंगे अतुल कुमार प्रियदर्शन। कल के कार्यक्रमों में फिल्मी गीतों का समय याद रखेंगे 9:06 पर 10 बजे 11 बजे एवं दोपहर 2:30 पर। 9:30 पर सुगम संगीत सुनेंगे पायल चक्रवर्ती से। 10 बजे अमरेंद्र का लिखा नाटक सुनेंगे वापसी। प्रस्तुत करता होंगे निहार रंजन नाग।

11:30 पर आकाशवाणी की नवे वर्ष के तहत विशेष कार्यक्रम आप सुनेंगी। मुझे याद है ज़रा ज़रा, इसके अंतर्गत सेवानिवृत्त वरीय उद्घोषक जयप्रकाश मिश्र से बातचीत करेंगे मोहम्मद सरशार अहमद। 12 बजे नारी लोक कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। प्रस्तुत करता होंगी श्री पार्वती के 11:30 पर NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम सुनेंगे उमंग। 1 बजे लोकरंग कार्यक्रम में लोकगीत सुनेंगे कृष्णानंद पासवान से। 11:30 पर धारावाहिक गंगा के सुरताल, लेखक होंगे रमेश रमन, प्रस्तुतकर्ता होंगे, इसे फिर से सुन ले, प्रस्तुतकर्ता होंगे दासमती चार्टर एवं अशोक शरण। 3 बजे सुगम संगीत के कार्यक्रम तरंग में आप सुन पाएंगे जगजीत सिंह को। 3:20 पर देशभक्ति गीत सुनेंगे। 3:25 से शाम 5 बजे तक विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुन पाएंगे। कल शाम 5 बजे युवा सुनेंगे कार्यक्रम युवावाणी, प्रस्तुतकर्ता होंगे। कल शाम 5 बजे हमारे युवा सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवावाणी। 5:30 पर फिल्म संगीत सुनेंगे। 6 बजे ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। प्रस्तुतकर्ता होंगे अतुल कुमार प्रियदर्शन। 7:10 पर लोकगीत सुनेंगे पवन कुमार राम से। 7:52 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम सुरलहरी में सुनील कुमार मिश्र को आप सुन पाएंगे। रजनीगंधा कार्यक्रम में आप फिल्मी गीत सुनेंगे 8 बजे। 9:30 पर हम आपको फिल्मी गीत सुनवाएंगे। 10 बजे प्रादेशिक लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कार्यक्रम विवरण में आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष एवं कल के कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा एवं इनका प्रसारण समय। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। शाम के 6 बज चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी।

0: ग्राम जगत के सब श्रोता का विदो के नमस्कार
1: और सभी को आरू का भी नमस्कार। विदो भाई आपको भी नमस्कार।
0: नमस्कार आरू बहन, बताओ की हाल समाचार छे?
1: ये तो देख ही रहे होंगे विदो भाई की गर्मी बहुत तेज और भयंकर रूप से पड़ रही है, साथ ही उमस है, कहीं ना कहीं पूरा जनजीवन बोलेंगे तो अस्त व्यस्त सा हो गया है।
0: हाँ।
1: आशा करती हूँ कि जितनी तेज गर्मी है वैसे ही अच्छी मानसून हो, जिससे कि हमारे किसान भाइयों को भी फायदा मिले और हमारे देश का भी विकास हो। जैसे कि अभी महंगाई स्तर बहुत बढ़ गई है और भी बहुत सारी आर्थिक समस्याओं से हमारा देश जूझ रहा है, तो कहीं ना कहीं मजबूत मानसून अगर हुआ तो हमारे देश को थोड़ा सा राहत तो जरूर पहुंचेगा आर्थिक स्तर पर।
0: कहना कि कृषि के साथ मानसून के गहरा संबंध छे, मानसून अच्छा रहते तो कृषि भी अच्छा होता है, जब कृषि भी अच्छा होते तो देश के आर्थिक स्थिति मजबूत रहती
1: है। जी अभी दुभाए, और कहते हैं कि ये 9 दिन जो है जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो शुरुआत का जो 9 दिन होता है वो जितना गर्म रहता है उतनी अच्छी मानसून होने की संभावना होती है, लेकिन अभी अल नीनो ला नीना बहुत सारे जो कंसेप्ट हैं उसकी वजह से भी हमारे देश में मानसून बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। तो अब वैसे तो अभी ये नौतप्पा शुरू हुआ और फिर बारिश हो गई हमारे यहाँ भागलपुर में और भी आसपास में, लेकिन उससे कहीं ना कहीं ये जो मौसम का जो संतुलन है और ये मानसून जो मजबूत आने का एक लोग आशा रखते हैं उस पर असर पड़ता है, तो आशा करती हूँ कि मानसून अच्छा ही हो।
0: हाँ आरु आरु बहिन, आज 3 जून छके, प्रत्येक वर्ष 3 जून का विश्व साइकिल दिवस मनेलो जाए छे।
1: बिल्कुल,
0: अप्रैल 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 जून का विश्व साइकिल दिवस घोषित कर लो छे।
1: बिल्कुल विदो भाई, और विश्व साइकिल दिवस का इतिहास जो है उसमें प्रोफेसर लेसजेक सिबलेस्की और उनके समाजशास्त्र के छात्रों का बहुत बड़ा योगदान बताया जाता है, क्योंकि इन्होंने ही इन छात्रों के साथ मिलकर साइकिल के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एक व्यापक अभियान चलाया था, और उसी अभियान के परिणाम स्वरूप अभी जो आपने बताया कि 12 अप्रैल 2018 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के रूप में घोषित किया। जी,
0: विश्व साइकिल दिवस के प्रस्ताव में साइकिल के विशिष्टता, स्थायित्व तो आरु बहुमुखी प्रतिभा का मान्यता देलो गेलो छे।
1: बिल्कुल,
0: जे 2 शताब्दी से उपयोग में छे आरु है परिवर्तन के एक सरल किफायती विश्वसनीय स्वच्छ आरु पर्यावरण के अनुकूल टिकाऊ साधन छिके।
1: बिल्कुल, और अभी जितना प्रदूषण बढ़ रहा है और जीवन शैली जैसे बिगड़ गई है तो इन सब के बीच साइकिल की जो प्रासंगिकता है अभी तो भाई वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आज देखिए, कहने के लिए तो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी से विकास हो रहा है, हमारा देश बहुत आगे जा रहा है, लेकिन आप देखेंगे कि बीमारियों का स्तर भी, और वो भी जानलेवा भयानक बीमारियां भी उसी तेज़ी से बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे जीवनचर्या में जो परिवर्तन हो गया है, जो हम लोग को आराम से उस चीज़ें मिल जाती है और घर बैठे, और फिर अंधाधुन हम लोग पर्यावरण का विदोहन भी किए हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य को भी बहुत नुकसान पहुंचा रही है। मोटापा, हृदय रोग और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो कहीं ना कहीं साइकिल का अगर बढ़ावा मिलता है, साइकिल का उपयोग हम लोग ज़्यादा करते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से भी कहीं ना कहीं हम लोग बच सकते हैं।
0: यही वास्तव स्वस्थ जीवन शैली का बढ़ावा दे वास्ते जे छे साइकिल चलाना बहुत जरूरी छे। आ बहुत सारा रोग छे जेना मधुमेह छे या पैर के भी बहुत सारा बीमारी छे जे साइकिल चलेला से ठीक होय छे। ओकरो बात छे कि साइकिल से त पर्यावरण प्रदूषण जे छे उ घटे जरूर छे, हमेशा वाहन के प्रयोग करला से पर्यावरण प्रदूषण जे छे फैल लो जाय रहल छे।
1: बिल्कुल,
0: विश्व साइकिल दिवस एक विशेष दिन छेके जेकरो आनंद सब लोग ओकरो विशेषता के परवाह के बिना उठाय सके छे। मानव प्रगति आर उन्नति के प्रतीक के रूप में साइकिल सहिष्णुता, आपसी समझ आरु सम्मान का बढ़ावा दे छे, आरु सामाजिक समावेश आरु शांति के संस्कृति का सुगम बनाए छे।
1: बिल्कुल,

0: साइकिल सतत परिवहन के प्रतीक छिके आरु सतत उपभोग आरु उत्पादन के बढ़ावा दै वास्ते एक सकारात्मक संदेश दै छै आरु जलवायु पर सकारात्मक प्रभाव डालै छै। तो यही वास्ते आज साइकिल दिवस के अवसर पर हमरा सनी के है प्रण लेना चाहिए कि अनावश्यक जे छै वाहन के प्रयोग नहि करबै आ अधिक से अधिक साइकिल के प्रयोग करबै, जकरा से रोग बीमारी भी घटतै आ पर्यावरण भी प्रदूषित।
1: और विदु भाई, व्यस्त शहरी इलाका में कम दूरी तय करने के लिए बोलते हैं साइकिल का उपयोग ज्यादा उपयोगी होगा।
0: हाँ हाँ।
1: क्योंकि जैसे बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम होता है, जाम रहता है सड़कों पे, बहुत सारी असुविधाएं होती है, पार्किंग का भी असुविधा होता है, साइकिल कहीं ना कहीं सब सारी समस्याओं का एक निदान हो सकता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे है ना, हम लोग का जो एक मानसिकता है कि साइकिल जो है वो गरीब लोग चलाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो ये कहूंगी कि जो मन से अमीर होते हैं, मतलब जो खुद का भी ख्याल रखना चाहते हैं, पर्यावरण का भी, तो ऐसे लोग साइकिल का जरूर उपयोग करेंगे। क्योंकि अब पैसे कितना खर्चते हैं, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये होता है कि इसका बहुत सारा एक कॉस्ट होता है, सोशल कॉस्ट होता है, इन्वायरमेंटल कॉस्ट होता है। पैसों में तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं लग रही है और आप पे भी इन सब का बुरा असर होता है। जब पर्यावरण परिवर्तन होता है, बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है, अनाज सही से नहीं उपजता है, बीमारियों से लोग ग्रसित होते हैं, तो बहुत सारी समस्याओं से निदान हो सकता है अगर लोग साइकिल को अपनाएं। तो जैसा कि आपने कहा कि आज प्रण लेते हैं कि साइकिल का उपयोग करेंगे।
0: हाँ हाँ, तो चलो कार्यक्रम में आरुषनी बात के चर्चा करवे। अभी फिलहाल श्रोता लोग का एक गंगा गीत सुनवाई छे, कलाकार छे निर्मल तौरी चरण
1: जी।

0: हाँ, इतना सुंदर गंगा गीत वास्ते कलाकार गणेश मंडल के बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी
0: आरु चलो आब श्रोता लोग के जे छे एक पूर्व प्रसारित वार्ता सुनवाई छे, सर्व शिक्षा अभियान। वार्ताकार छे के सौरभ कुमार सुमन।
1: जी

0: हाँ तऽ अभी जे छै एक वार्ता सुनबै सर्व शिक्षा अभियान। आ देखो शिक्षा जे होना चाहिए ओ सबके वास्ते सुलभ होना चाहिए। शिक्षा जे छै के शिक्षा के प्रसार बहुत ज़्यादा जरूरी छै, केना
1: बिल्कुल
0: शिक्षा के द्वारा ही आदमी सही आरु गलत में अंतर समझल पारे छै।
1: बिल्कुल
0: तो यही वास्ते कहलो गलो छै कि शिक्षा के जड़ जे छै ओ थोड़ा कड़वा
1: और
0: होइ छै,
1: शिक्षा से
0: लेकिन
1: ही सारी समस्याओं का निदान संभव
0: हाँ
1: है जी। और सभी को शिक्षा मिलेगा तभी ये जो अमीरी गरीबी का, ऊंच नीच का, जाति प्रथा, बहुत सारी जो समस्याएं हमारे समाज में व्याप्त है वो शिक्षा के द्वारा ही खत्म की जा सकती है।
0: आरु एक चीज हमेशा ध्यान देख मतलब छे शिक्षा के खाली है मतलब नहीं के पढ़ी लिए पास करी लिए अच्छा रिजल्ट या अच्छा नौकरी ले लिए। शिक्षा के छके कि दिमाग के एक सही तरीका से ट्रेनिंग जे कि जीवन जिए के कला बतावो।
1: जी,
0: तो
1: जीना
0: चलो
1: जिससे आसान हो जाए।
0: हाँ तो चलो एकरा पर सौरभ कुमार सुमन ने प्रकाश डाले छे आ वो सुनै छे।
1: जी
2: सर्व शिक्षा अभियान पर निबंध। सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है, जिसका लक्ष्य देश के प्राइमरी स्कूलों प्रारंभिक शिक्षा के ढांचे को मजबूत बनाना है। देश का हर बच्चा प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर सके और अपने जीवन का विकास कर सके। इस योजना के अनेक उद्देश्य हैं, जैसे बालक बालिका का अंतर समाप्त करना, देश के हर गांव शहर में प्राथमिक स्कूल खोलना और मुक्त शिक्षा प्रदान करना, निशुल्क पाठ्य पुस्तकें, स्कूल ड्रेस देना, शिक्षकों का चयन करना, उन्हें लगातार प्रशिक्षण देते रहना, स्कूलों में अतिरिक्त कक्षा का निर्माण करना, पेयजल और प्रसाधन की व्यवस्था करना। सर्व शिक्षा अभियान एक विशिष्ट विकेंद्रित योजना है। इस योजना के लिए स्कूल चले हम नामक कविता बनाई गई थी जो बहुत लोकप्रिय हुई थी। यह योजना 2000-2001 में केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने शुरू की थी। इस योजना का उद्देश्य देश के हर बच्चे को शिक्षा देना था। इसका लक्ष्य प्रारंभिक शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण करना है। प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने ग्रामीण बच्चों के लिए 1 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक स्कूल खोले हैं और 3 किलोमीटर की दूरी में उच्च प्राथमिक स्कूल कक्षा 1 से 8 तक की सुविधाएं दी है, जिससे अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के बच्चे भी स्कूलों में जा सके। भारत में प्राथमिक शिक्षा

और प्रारंभिक शिक्षा का स्तर बहुत ही कमजोर था। समाज के उच्च वर्ग के लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजकर शिक्षा दिलाते थे, परंतु गरीब वर्ग के पास बच्चों को पढ़ाने के लिए पर्याप्त मात्रा में धन नहीं था। इसीलिए सरकार ने यह योजना शुरू की कि आज के समय देश के सभी प्राथमिक स्कूलों में मुफ्त शिक्षा दी जाती है। इसके साथ ही बच्चों छात्रवृत्ति, मुफ्त किताबें, स्कूल ड्रेस, बैग, जूते जैसी सभी आवश्यक चीज़ें मुफ्त प्रदान की जाती है। इस योजना से प्राप्त की गई प्राथमिक शिक्षा में बहुत सुधार हुआ। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत देश के सभी प्राइमरी स्कूलों में अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा दे सके, इसके लिए शिक्षकों का प्रशिक्षित होना अब बहुत आवश्यक है। सरकार ने प्राथमिक शिक्षकों को अनेक प्रकार के प्रशिक्षण दिए हैं, जैसे शिक्षा पद्धति, बाल मनोविज्ञान, मूल्यांकन पद्धति, अभिभावक प्रशिक्षण। इसके साथ ही लगातार प्राथमिक शिक्षकों को भिन्न भिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, जिससे वह बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा सके। भारत सरकार ने पढ़े भारत बढ़े भारत योजना सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत कक्षा और 2 के बच्चों को लिखना, पढ़ना, गणित के प्रश्न हल करना सिखाया जाएगा, तथा भारत सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान में विशेष योगदान दिए जा रहे हैं। परंतु केवल सरकार की यह योगदान ही पर्याप्त नहीं है, संपूर्ण भारत को साक्षर एवं शिक्षित बनाने के लिए हमारे योगदान भी होना अति आवश्यक है। अपने आस पड़ोस में रह रहे अशिक्षित वृद्धजनों बच्चों को विभिन्न प्रकार की कक्षाओं का आयोजन करके साक्षर एवं शिक्षित बनाने के प्रयास करके हमारे भारत को शिक्षित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करें। भारत सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत योगा शिक्षा को भी सम्मिलित किया है। इसके लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है। सरकार की योजना है कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान की तरफ से एक शिक्षक और 2 शिक्षिका को योगा शिक्षा विषय पर प्रशिक्षण दिया जाता है। स्कूल के छात्र छात्राओं के लिए योगा शिक्षा बहुत आवश्यक है। इससे बच्चे निरोगी रहते हैं, उन्हें कोई बीमारी नहीं होती। योग के द्वारा पढ़ाई पर अच्छी तरह ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। योग बच्चों के आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है, इससे बुद्धि तेज होती है। भारत सरकार ने 2018 में सर्व शिक्षा अभियान के साथ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को जोर दिया है और इसे समग्र शिक्षा अभियान के नाम से एक नई योजना के रूप में शुरू किया है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत BRC ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, यहाँ से प्राथमिक स्कूलों के लिए पाठ्य पुस्तकें वितरित की जाती है। इसके साथ ही ड्रेस, जूते और दूसरे वस्तुएं भी वितरित की जाती है और प्रशासनिक कार्यों को संपन्न किया जाता है। सर्व शिक्षा अभियान का प्रमुख घटक है, इसके अंतर्गत कुल परियोजनाओं के बजट का 33% तक निवेश किया जाता है। प्राथमिक शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए इस योजना में सभी बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जाती है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत दी जा रही शिक्षा का सतत मूल्यांकन, निगरानी, पर्यवेक्षण किया जाता है, जिससे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। मूल्यांकन के लिए हर स्कूल में 1500 की धनराशि दी जाती है। दृश्य पाठ्य सामग्री के लिए बच्चों को पोस्टर, चार्ट, स्केच पेन और दूसरी वस्तुएं दी जाती है। इस परियोजना के लिए प्रत्येक स्कूल को 2000 रुपये का अनुदान दिया जाता है, जिसे पुस्तकालय स्कूल का सौंदर्यकरण, मरम्मत कार्य, फर्नीचर, संगीत वाद्य यंत्र और दूसरे खर्चों पर धनराशि खर्च की जाती है।

0: कृषि संबंधी शिक्षा भी देना बहुत जरूरी छै, कैना कृषि संबंधी शिक्षा जब लो जेतै बचपन से ही तो कृषि के महत्व के समझलो जेतै, जेकरा से कृषि के अधिक से अधिक उत्पादन होतै। आ जब कृषि के अधिक से अधिक उत्पादन होइ छै तो वैसे की होइ छै, देश के आर्थिक व्यवस्था भी सुदृढ़ होइ छै, आरो अनाज के जे छे निर्यात करला पर विदेशी मुद्रा के भंडार भी बहुत बढ़े छे।
1: बिल्कुल विदो भाई, और शिक्षा का मतलब ये है कि जीवन के हर पहलू के लिए आपको तैयार करना।
0: हाँ।
1: शिक्षा चाहे आप जैसे बताए कि AI है, डेवलपमेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ये सब तो है ही। हाँ। कृषि के लिए अभी आपने बताया, इसी हाँ। तरह और बहुत सारी भी शिक्षा का पहलू हो सकता है एक जीवन का, जैसे एक इंसान का पहलू होता है। आध्यात्मिक शिक्षा भी होता है, सामाजिक तौर पर भी हमको बहुत सारा व्यवहार करना पड़ता है, तो सामाजिक शिक्षा भी हो गया। तो शिक्षा बहुत बड़ा अपने आप में एक शब्द है, बहुत गूढ़ शब्द है, इसको जितना हम लोग उसको परिभाषित करने की कोशिश करेंगे उतना ही कम है। तो बहुत अच्छे से इन्होंने अभी सर्व शिक्षा अभियान के बारे में बताया।
0: हाँ
1: जी,
0: अब चलो कुछ संदेश सुनला के बाद श्रोता का एक झूमर सुनवाई छे।
1: जी

0: Akashvani at 90.
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

0: આવા શ્રોતા લોકો એક પ્રાયોજિત કાર્યક્રમ સુનવાય છે પારામેડિકલ હાઈપારસ
1: જી કે પ્રાયોજક હે શ્રી રાજ નર્સિંગ ટ્રેનિંગ એન્ડ પેરામેડિકલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ
2: નમસ્કાર મેં હું રાજેશ ઓર એક બાર ફિર સે 7 દિનો કે બાદ આજ બુધવાર કા દિન હે ઓર હમ કાર્યક્રમ મે પેરામેડિકલ હાઈપારસ લેકર આપ સબો કે ઘર આંગન મે આ ચુકે હે બાતે કરને कि पैरामेडिकल का कोर्स एएनएम जीएनएम का कोर्स ये सारा कोर्स जो है ना आपके जीवन में एक नई गति ला सकता है यदि आपने तरीके से पढ़ाई की। पैरामेडिकल है पारस ये कार्यक्रम लेकर आते आते वर्षों निकल गया, लगातार ये कार्यक्रम जी हाँ चल रहा है और इसका लाभ लोग उठा रहे हैं। ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की तरफ से, जो कि पटना के जक्कनपुर इलाके में है, जक्कनपुर पुलिस लाइन के ठीक सामने। हाँ, यहाँ आप आकर मिल सकते हैं और ढेर सारी जानकारियां भी ले सकते हैं। कहते हैं ना साथियों कि टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है, अगर जो आपने टेक्निकल पढ़ाई की तो आपके लिए रास्ते बहुत तरीके से खुल जाते हैं। हेल्थ सेक्टर में तो और भी संभावनाएं हैं, आप पढ़ते पढ़ते रोजगार पा सकते हैं, अपनी अर्निंग शुरू कर सकते हैं, स्वरोजगार

0: कर सकते हैं, सरकारी क्षेत्र में जा सकते हैं या फिर निजी क्षेत्र में भी आप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। कुल मिलाकर कहें तो दोनों हाथ में लड्डू है, लेकिन संस्थान का चुनाव हाँ बहुत सावधानी से करना चाहिए। देखना चाहिए कि कहां से संस्थान एफिलिएटेड है, क्लासरूम स्टडी की क्या व्यवस्था है, प्रैक्टिकल की क्या व्यवस्था है, लाइब्रेरी, किताबें बहुत महंगी होती हैं, किताबों के लिए क्या करना होगा, सब कुछ ठोक बजा के एकदम ठठा ठक ठोक बजा के देखना होगा, फिर दाखिला लेना होगा और जोरदार पढ़ाई करनी होगी। बहरहाल चलिए आज हमारे साथ यहाँ कौन है आपको बताएं, और वो है श्री राज, नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के वाइस प्रिंसिपल हैं। आइए जानते हैं सबसे पहले इन्हीं से इनका परिचय, लेकिन उससे पहले हम नंबर बताना चाहेंगे जिस पर आप फोन करके जानकारियां ले सकते हैं। नंबर दो नंबर बताएंगे, आप नोट कीजिए नंबर, और अगर आपके पास नंबर है तो कोई बात ही नहीं है। पहला नंबर है 9162 41 32 33, और दूसरा नंबर है 9155558888, यानी 9 1 4 5 और 4 8। चलिए मुलाकात करते हैं वाइस प्रिंसिपल साहब से और जानते हैं इनके विषय में। पहले फिर सवाल।
1: सर मेरा नाम केशव कुमार डागुरा है, मैं जयपुर राजस्थान से हूँ और श्री राज ट्रस्ट हॉस्पिटल में लास्ट ईयर से वाइस प्रिंसिपल पोस्ट पर पोस्टेड हूँ।
0: वाइस प्रिंसिपल साहब, आप दूसरी बार हमारे इस कार्यक्रम में आ रहे हैं बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, कहाँ से शुरुआत करें?
1: और मैं सभी बच्चों को यही बोलना चाहूँगा, नर्सिंग में एक अच्छा करियर,
0: नर्सिंग में एक अच्छा करियर है। आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई केशव जी?
2: जो आज आपको सुन रहे हैं, पहली बार नहीं सुन पाए थे, उनके लिए पूछ रहा हूँ।
1: मैं सर जीवाजी यूनिवर्सिटी 2013 में पास आउट हूँ वहाँ से, और एमएससी नर्सिंग मेरा केएस कॉलेज ऑफ नर्सिंग MPMSU से क्लियर किया हूँ।
0: बातचीत तो होती रहेगी, लेकिन ये बताइए कि बिहार आके राजस्थान से कैसा लग रहा है?
1: बिहार आके काफ़ी अच्छा लग रहा है सर, और यहाँ पे नर्सिंग में और पैरामेडिकल क्षेत्र में हम लोग कुछ बेटर करना चाहते हैं, कुछ बेस्ट करना चाहते हैं बच्चों को एजुकेशन के मामले में।
0: अच्छा एक बात बताइए, हाँ आप यहाँ बाहर से आए हैं, हमारे पूरे बिहार के बच्चे ये जानना चाहते हैं कि श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट का माहौल कैसा है?
1: श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का सर एजुकेशनली माहौल एकदम, सारे वेल एजुकेटेड टीचर्स हैं, हाँ लैब्स हमारे यहाँ जितनी भी हैं वो अवेलेबल हैं बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए, और मैं यही कहूँगा सभी बच्चों को, सबसे अच्छा एनवायरनमेंट हमारे यहाँ है अभी, और सर भी बहुत अच्छे हैं, चेयरमैन सर, डायरेक्टर सर, बच्चे को हर तरह से सपोर्ट मिलता है।
0: अच्छा अब चलते लौटते हैं BSc नर्सिंग कोर्स की तरफ, BSc नर्सिंग के बारे में पूरी जानकारी दीजिए बच्चों।
1: BSc नर्सिंग सर एक 4 ईयर का कोर्स होता है, इसके लिए इंटर में 12th में बायोलॉजी का होना जरूरी होता है। इसमें गवर्नमेंट भी सेंट्रल लेवल पर भी बहुत सारा वैकेंसीज होता है, आर्मी होता है, डिफेंस का जितना भी वैकेंसी होता है, एम्स होता है, ESIC हॉस्पिटल होता है, आजकल CHO 2020 से एक कॉन्ट्रेक्चुअल गवर्नमेंट पोस्ट दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, जिसका दिल्ली से संचालन होता है, बच्चा CHO भी पोस्टेड होता है, एक PSC होता है गाँव में सर जहाँ पे अंडर 5000 पॉपुलेशन होता है, वहाँ पर CHO को पोस्टेड किया जाता है।
0: आपने बड़े अच्छे से बताया कि बच्चे कहाँ कहाँ जा सकते हैं BSc नर्सिंग की पढ़ाई करके, और 4 साल का कोर्स है आपने बताया
1: जी सर,
0: और जो इंटर में बायोलॉजी के साथ जिसने किया है वो यहाँ आ सकता है। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ेगा, लेकिन दो बातें हम अपने सुनने वालों से कर लें। कार्यक्रम चल रहा है पैरामेडिकल है पारस, और इस वक्त हमारे साथ केशव कुमार डांगुर साहब बैठे हैं जो श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के वाइस प्रिंसिपल हैं, और अभी बातचीत चल रही है BSc नर्सिंग, जैसा कि अभी अभी हमने बताया, और कहां कहां आप प्लेस्ड हो सकते हैं, रोजगार मिल सकता है, यानी एंड ऑफ द डे रोजगार ही चाहिए आपको, है ना, तो वो भी जानकारी दी है। अगर आपको और भी विशेष जानकारी चाहिए तो डॉक्टर NP प्रियदर्शी संस्थान के डायरेक्टर से आप सीधे बात कर सकते हैं, और उनका नंबर है 9162413233, और दूसरा नंबर है 9155558888, ये नंबर है, इस पर बात कर लीजिए और श्री राज

0: नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, जैसा कि आप सभी जानते हैं जो आज पहली बार सुन रहे हैं, उनको बता दें कि ये पटना के जक्कनपुर इलाके में है। जक्कनपुर पुलिस स्टेशन के ठीक सामने श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का अपना बिल्डिंग है, जहां क्लासेस चलते हैं, सारी गतिविधियां होती हैं। अपना श्री राज ट्रस्ट हॉस्पिटल है जहां प्रैक्टिकल कराई जाती है। प्रैक्टिकल से ही एक सवाल हम आपसे पूछते हैं, क्योंकि टेक्निकल कोर्स है हेल्थ का, इसमें प्रैक्टिकल का कितना बड़ा रोल होता है?
1: मेरा मानना यह है सर, प्रैक्टिकल का इसमें 100% रोल होता है। बच्चा अगर उसको हॉस्पिटल में जाके ऑन पेशेंट करेगा या ऑन डमी करेगा, उसके लिए हमारे यहाँ कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में, लैब में डमी पर ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। उसके बाद पेशेंट के पास बच्चे को भेजा जाता है, जिससे टेक्निकली फेस टू फेस बच्चा पेशेंट को हैंडल करेगा, तो इससे ये चीज़ें सीखने को मिलती है सर।
0: कब से प्रैक्टिकल शुरू होता है? हम तो सुने हैं कि श्री राज में जब बच्चे आते हैं तो एडमिशन हुआ और उनकी व्यवहारिक शिक्षा शुरू हो जाती है।
1: जी सर, ऐसा ही है, लेकिन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग सर 3 मंथ्स बच्चे को फर्स्ट एजुकेशन थ्योरी का स्टडी कराया जाता है। पीटीएस एग्जाम होता है, उस एग्जाम के जस्ट बाद उनका आवरली इसमें होता है सर। हम लोग टोटल बच्चे को आवर के अकॉर्डिंग, ईयरली अकेडमिक के अकॉर्डिंग भेजा जाता है बच्चे को हॉस्पिटल ड्यूटी में। अप्रोक्स 10 मंथ उसको कंटिन्यू हॉस्पिटल में ही रहना होता है, 6 आवर ड्यूटी।
0: अच्छा, आपका इंस्टीट्यूशन और हॉस्पिटल का कैंपस तो एक ही में है?
1: यस सर।
0: तो बच्चों को इसका लाभ तो मिलता होगा?
1: बिल्कुल, बच्चों को लाभ भी मिलता है। बच्चों को नाइट ड्यूटी भी, हम लोग जो भी सीखने का इच्छुक होता है हॉस्पिटल में, उसको अलग से भी सर का सपोर्ट होता है, चेयरमैन सर का, टीचर्स लोगों का भी सपोर्ट होता है। सारी चीजें बच्चे को अच्छे से लर्न कराई जाती है प्रैक्टिकल के लिए सर।
0: अच्छा, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज होता है केशव जी, हम लोग भी जब स्टूडेंट रहे थे, आप भी रहे होंगे।
1: जी जी सर।
0: स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन जो बच्चों के ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है।
1: जी बिल्कुल जरूरी होता है।
0: एक फ्रेंडली, तो क्या टीचर एकदम खौफ के साथ रहते हैं या बच्चों के साथ फ्रेंडली बिहेवियर?
1: नहीं सर, टीचर्स जो होता है, कम्युनिकेशन गैप हमारे नर्सिंग में एक टॉपिक होता है सर, जिसमें बच्चे का बिहेवियर, उसके कम्प्लीट जो हैबिचुअल है, उन सारी चीज़ों को टीचर्स सर्विलेंस करते हैं, निगरानी में रखते हैं, अच्छे से देखते हैं। और जो गैप मेंटेन होना चाहिए टीचर्स स्टूडेंट के बीच में, वो होता है एजुकेशनली गैप और बिहेवियर को लेके। मुझे नहीं लगता हमारे यहाँ कोई भी स्ट्रिक्ट टीचर्स होगा, सभी बच्चे को अच्छे से हैंडल करते हैं, पोलाइटली हैंडल करते हैं।
0: यानी एकदम प्रैक्टिकल, एकदम बिहेवियर जो है फ्रेंड और टीचर का है बावजूद।
1: बिल्कुल सर,
0: है ना,
1: बिल्कुल
0: फ्रेंडली माहौल है।
1: बिल्कुल।
0: आपको क्या लगता है कि बच्चे जो आते हैं बीएससी नर्सिंग के लिए, जो ख्वाब लेके आते हैं, जो फ्यूचर में बनना चाहते हैं, तो अगर आपके यहाँ, आपके इंस्टीट्यूशन, कहने का मतलब श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट से पढ़े, तो बच्चे अपने लक्ष्य को पा सकते हैं?
1: बिल्कुल सर, मैं यही बोलना चाहूँगा, बच्चे अच्छा मेहनत करेंगे, बच्चे और गार्जियन का भी उसमें सपोर्ट होता है सर, और बच्चों को भी स्टडी करना होगा। ये 4 ईयर ही होता है बच्चे की एक एज के अकॉर्डिंग, जो स्टडी जो उसका फ्यूचर बना सकती है।
0: जी बिल्कुल।
1: उसके बाद मैं यही बोलना चाहूँगा सभी बच्चों को, राज इंस्टीट्यूट में एक बार आइए और वहाँ पर देखिए स्टडी का, प्रैक्टिकल का। उसके बाद सभी बच्चों का उम्मीद यही है कि 99% उनका फ्यूचर बनेगा सर।
0: फ्यूचर बनेगा। हालांकि हम एक जानकारी और दे दें आप लोगों को कि बहुत सारे लोगों ने डायरेक्टर साहब को, डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी जी को फोन किया कि हम लोग पटना नहीं आ पा रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। इन्होंने गुरौल में भी वैसे लोगों के लिए, एक समाज का विकास हो सके, बच्चे गांव के भी आगे बढ़ सके, इसके लिए इन्होंने गुरौल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो श्री राज ग्रुप का ही है, उन्होंने गुरौल में स्थापित किया है। वहां भी आप इसी नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं, 9162413233, और दूसरा 9155558888। वाइस प्रिंसिपल साहब केशव जी, एक सवाल जो हमारे आपके घर में भी होता रहा है, बच्चों को अभी भी मिडिल क्लास फैमिली में कहें तो करियर चुनने की आजादी नहीं होती है, उनके माँ बाप का बहुत बड़ा रोल होता है, बड़े भाई बहन का होता है, जो हम समझते हैं कुछ हद तक गलत है, सजेशन देना चाहिए। ऐसे में पूरा बिहार सुन रहा है, बात कीजिए कि ये गलत है या सही अपने हिसाब से।
1: मैं सभी गार्जियन से एक ही बात बोलना चाहूंगा, बच्चे पर बिलीव रखना है, बच्चे को अच्छा स्टडी के लिए लाइफ एक बार मिलता है किसी भी इंसान को, तो मुझे ये लगता है कि बच्चे को आगे बढ़ाना चाहिए, पढ़ने के लिए भेजना चाहिए, उसके फ्यूचर पर ध्यान देना चाहिए। सभी गार्जियन से मेरा यही रिक्वेस्ट है।
0: और जो कोर्स वो चुनना चाहते हैं उसमें लिबर्टी मिलनी चाहिए?
1: बिल्कुल मिलनी चाहिए सर, बच्चे की जो चॉइस है, बच्चा जिस चीज में जाना चाहता है उसको बिल्कुल गार्जियन को देना चाहिए और उसको आगे बढ़ने में मदद करना चाहिए।
0: अच्छा, एक बात और हम आपसे पूछना चाहेंगे केशव जी, आपका टीचिंग एक्सपीरियंस है, बहुत हमसे ज्यादा बच्चों के साथ आप रह चुके हैं।
1: जी जी सर।

0: बहुत सारे बच्चे इनडिसिसिव होते हैं जिसमें वो डिसीजन नहीं ले पाते और प्लेन स्टडी को चुन लेते हैं। मसलन बीएससी कर रहे हैं तो फिजिक्स में या केमिस्ट्री में बायोलॉजी में या इस तरीके से कर रहे हैं, तो अगर इसकी जगह वो टेक्निकल कोर्स को ऑप्ट करते तो शायद ज्यादा बेनिफिशियल होता
1: जी।
0: तो वैसे बच्चों के लिए संदेश की अगर आप कंफ्यूजन है आपके पास तो आप किसी बड़े से किसी एक्सपीरियंस आदमी से मदद ले सकते हैं, और इस वक्त रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस तो कोई है नहीं, तो बताइए उन लोगों को।
1: मैं उन लोगों को ये बोलना चाहूँगा सर, जैसे चाइना है, अमेरिका जिस डेवलप कंट्री है, तो वहाँ पर एजुकेशन का मेन रोल है सर उस चीज़ में, टेक्निकल एजुकेशन का। वहाँ पर बच्चे को ही सिखाया जाता है बाज कैसे बनता है, मोबाइल कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें उनको स्टार्टिंग से लर्न कराई जाती हैं। तो मैं सभी बच्चों को यही बोलना चाहूँगा कि बीएससी नर्सिंग एक टेक्निकल कोर्स होता है, इसमें आकर वो आगे बढ़ें और अपना फ्यूचर बनाएं।
0: आगे बढ़ें और फ्यूचर बनाएं। आप राजस्थान से बिहार आ गए, कैसा लग रहा है?
1: जी सर बहुत अच्छा लग रहा
0: है। बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद केशव कुमार डागुर साहब।
1: थैंक यू सर।
2: ये केशव जी थे जो वाइस प्रिंसिपल हैं श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के। एक बात बताएं, टेक्निकल पढ़ाई में इतनी अपॉर्चुनिटी है, जैसे देखिए इन्होंने राजस्थान से पढ़ाई की और बिहार में आकर ये अपना योगदान दे रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं और श्रीराज ट्रस्ट के साथ जुड़े हैं। लगातार बच्चों में बीएससी नर्सिंग या टेक्निकल पढ़ाई के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। बहरहाल साथियों, बीएससी नर्सिंग एक बहुत ही वाइब्रेंट है, एएनएम जीएनएम ये बहुत ही वाइब्रेंट कोर्स है। अगर जो आपने इसे चुन लिया तो आपके लिए रोजगार की कोई भी कमी नहीं होगी। इसके अलावे अगर आप पैरामेडिकल के कोर्सेज में जाना चाहते हैं तो ढेर सारे कोर्सेज हैं। इसके अलावे हॉस्पिटल मैनेजमेंट का भी कोर्स आ गया है। सारी चीजों की जानकारी के लिए आप डायल कर सकते हैं 9162413233 या 9155558888 ये नंबर है। इस पर डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी से आपकी बातचीत हो जाएगी और श्रीराज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की तरफ से ये जो प्रोग्राम ला रहा हूँ, ये संस्थान बहुत ही उम्दा है, लाइब्रेरी की भी सुविधा है और अच्छे जगह से एफिलिएटेड है, हॉस्टल की सुविधा है। अगर आप चाहें, मैं नहीं कह रहा, अगर आप चाहें तो फोन से बात कर सकते हैं और आकर मिल सकते भी हैं। नंबर हमने आपको बता ही दिया है, एक नंबर फिर से बता दे रहा हूं 9155558888। और अब राजेश को दे इजाजत, नमस्कार।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट।
4: जी एक बार फिर से सभी श्रोता भाइयों का कार्यक्रम में स्वागत है।
5: हाँ, आरु आरु बहिन, कृषि के वास्ते खेती के वास्ते कीट के नियंत्रण करना बहुत जरूरी छे
4: जी,
5: नहीं तो फसल का बर्बाद करी दे छे। तो कीट नियंत्रण के की सामान्य सिद्धांत छे एकरा बारे में जे छे श्रोता लोग से सुनवाई छे का सुनवाई छे डॉक्टर जी डी माने के द्वारा एक पूर्व प्रसारित वार्ता
4: जी।
5: फसल में जे छे कीट के नियंत्रण करना बहुत जरूरी रहे छे, केना कि देखो फसल तो पूरा मेहनत करी के लगेलो आरु अंतिम में जो ओकरा पर खाद पानी नहीं दिलो आज जे तरह के छिड़काव करना रहे छे कीट का नियंत्रण करे वास्ते, जो हो तरह के छिड़काव नहीं करबो तो वह हो छे कि कीट नहीं फल का जे छे क्षति पहुँचा दे छे, कभी पत्ता का क्षति पहुँचा दे छे, यानी फसल का सही तरह से बढ़ेल नहीं दे छे
4: जी। और कहीं कहीं जब हम लोग फसल उगाते हैं उससे पहले मिट्टी का भी देख लेना चाहिए, उसमें कुछ तो नहीं है ऐसा जो फसल को बाद में खराब करे, तो उसका भी उचित उपचार कर लेना चाहिए फिर लगाना चाहिए।
5: तो आप सुने छे पूर्व प्रसारित वार्ता कीट नियंत्रण
4: जी।
6: होते ही मानव कीट संघर्ष का भी आविर्भाव हुआ। लगभग 6 लाख कीट प्रजातियों में से करीब 80 प्रजातियां हमारे कृषि फसल के रास में अधिक सक्रिय हैं। इन कीटों से फसल सुरक्षा के लिए जहरीले रसायनों का व्यवहार पिछले 5-6 दशकों से हो रहा है। निसंदेह कीटनाशियों के प्रयोग से फसल की सुरक्षा हुई है। फलाफल से प्रभावित होकर किसान जहरीली

रसानों का व्यवहार अंधाधुन करने लगे हैं। इसके अनुचित व्यवहार से कई विशेष प्रकार की समस्याएं भी उत्पन्न हो गई हैं। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, कीटों में प्रतिरोधात्मक क्षमता का पैदा होना, कम हानिकारक कीटों का अधिक सक्रिय होना, हानिकारक कीटों के प्राकृतिक शत्रुओं का नष्ट होना, खाद्य पदार्थों में कीटनाशकों का अवशेष रह जाने के कारण विभिन्न प्रकार की बीमारियों का फैलना, अनावश्यक खर्च में वृद्धि, इन सभी समस्याओं के कारण ही कृषि वैज्ञानिक कीट नियंत्रण के लिए समेकित कीट प्रबंधन अपनाने पर जोर दे रहे हैं। साथ ही साथ आवश्यक होने पर ही कीटनाशकों के प्रयोग का सुझाव दे रहे हैं, जो न केवल मानव के लिए हितकारक है बल्कि अन्य सभी जीव जंतु समुदाय के लिए भी लाभदायक है। समेकित कीट प्रबंधन पारिस्थितिकी तंत्र के आधार पर बनी एक ऐसी विधि है जिसमें कीटों को नियंत्रित रखने के लिए उपलब्ध सारे तकनीकियों का व्यवहार किया जाता है। इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं ETL, यह क्षतिकारकों की वह तीव्रता है जहां पर इनके प्रबंधन में खर्च फसल में होने वाली क्षति को बराबर होता है। कीट व्याधि की तीव्रता इस स्तर पर पहुंचने पर प्रबंधन हेतु विचार करना आवश्यक हो जाता है। इकोनॉमिक इंजुरी लेवल, उसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं EIL। ETL के ऊपर क्षतिकारकों की वह तीव्रता है जहां पर प्रबंधन में होने वाला खर्च संरक्षित उत्पाद से ज्यादा होता है। समेकित कीट प्रबंधन की विधियां इन प्रकार हैं। कर्षण विधि, इसमें आता है गहरी जुताई, स्वच्छ कृषि, स्वच्छ स्वस्थ एवं उपचारित बीज का व्यवहार, प्रतिरोधात्मक एवं सहनशील किस्मों का प्रयोग, फसल चक्र, पौधों की छटनी तथा दूर दूर लगाना, मिश्रित खेती, उर्वरक एवं खाद का संतुलित व्यवहार और जल प्रबंधन। दूसरी विधि है यांत्रिक विधि। इसके अंतर्गत आता है कीट और रोग को हाथ से एकत्रित कर नष्ट करना, अस्थिरता पैदा करना, ट्रैक्टर के सामने होपर डोजर अवरोध लगाना, विभिन्न प्रकार के फंदों का प्रयोग, प्रकाश फंदा, पीला फंदा, फेरोमोन ट्रैप एवं पक्षी बैठका। तीसरी विधि है भौतिक विधि। इसके अंतर्गत आता है पानी का प्रयोग, ताप एवं प्रकाश का प्रयोग, ध्वनि का प्रयोग। चौथी विधि है जैविक विधि। इस विधि में जीवों के प्रयोग द्वारा ही कीट एवं रोग को नियंत्रित किया जा सकता है, अर्थात सजीवों के प्रयोग द्वारा हानिकारक कीट, पशु पक्षी एवं खरपतवार को नियंत्रित करने की विधि को जैविक नियंत्रण विधि कहते हैं। आए दिन कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा कीट व्याधि नियंत्रण हेतु परभक्षी या परजीवी कीट, बैक्टीरिया, फफूंद, वायरस एवं हार्मोन के प्रयोग पर विशेष जोर डाला जाता है। परभक्षी ये विभिन्न प्रकार की मकड़ियां कीटों को खाकर नियंत्रण का कार्य करती है, जैसे भ्रमिपोतक, सभी प्रकार के मधुआ कीट के निम्फ, वयस्क, पत्र लपेटक एवं तनाछेदक आदि मकड़ी के मुख्य स्त्रोत्र हैं। अनुमानता एक मकड़ी प्रतिदिन 5 से 20 कीटों को खा सकती है। परजीवी कीट, कीट नियंत्रण में परजीवों का प्रयोग जैविक नियंत्रण का मुख्य अंग है। ये परजीवी कीट हानिकारक कीटों के अंडे में, पिल्लू में या प्यूपा में अपने अंडे डालती है। इनके अंडे से पिल्लू के निकलने पर मेजबान कीट नष्ट हो जाते हैं और परजीवियों की संख्या में वृद्धि होती है जो हानिकारक कीट को नियंत्रण में रखती है। उदाहरण स्वरूप ट्राइकोग्रामा प्रजाति, फफूंद, वायरस, जीवाणु एवं हार्मोन। ट्राइकोग्रामा द्वारा कीट नियंत्रण, ट्राइकोग्रामा एक अत्यंत सूक्ष्म कीट है जो अनेक प्रकार के शत्रु कीटों पर आक्रमण करता है। यह एक अंड परजीवी है जो शत्रु कीट के अंडों में अपना अंडा देकर उन्हें नष्ट कर देता है। इस प्रकार यह एक जैविक कीटनाशी का काम करता है जो सिर्फ अपने लक्षित शत्रु कीट को मारता है और मनुष्य या पशुओं के स्वास्थ्य पर कुभाव छोड़े बिना पर्यावरण को भी सुरक्षित रखता है। खेत में छोड़ने की विधि, इसके लिए ट्राइकोकार्ड को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर पत्तियों की निचली सतह पर स्टेपलर द्वारा लगा देते हैं। इस विधि से ट्राइकोग्रामा का समान वितरण पूरे खेत में हो जाता है। ट्राइकोग्रामा को शाम के समय छोड़ना चाहिए क्योंकि दिन का उच्च तापमान इन कीटों के प्रतिकूल होता है। लगाने

0: के कुछ ही घंटों में ट्राइकोकार्ड स्थित परजीविक अंडों से ट्राइकोग्राम के वयस्क निकलने शुरू हो जाते हैं। सावधानियां, इस कार्ड को परजीवी निकलने की तिथि से एक दिन पहले प्रयोग करें। कार्ड को 16 टुकड़ों में फाड़ने के निशान से फाड़कर अलग करें तथा धागे की सहायता से पत्तियों की निचली सतह पर बांधे ताकि सूर्य की सीधी किरण न पड़े। ट्राइकोकार्ड को शाम के समय खेत पर छोड़े। ट्राइकोकार्ड छोड़ने के एक सप्ताह पहले एवं एक सप्ताह बाद किसी तरह का रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग न करें। ट्राइकोकार्ड को एक समान रूप से खेत पर फैलाएं। जैविक नियंत्रण से लाभ, इसमें कम लागत में अधिक लाभ होता है। इस विधि द्वारा लक्षित कीटों का ही नियंत्रण होता है। कीटों में प्रतिरोधात्मक क्षमता के बढ़ने, पर्यावरण प्रदूषण एवं लाभकारी कीटों के नष्ट होने का भय नहीं रहता है। जैविक नियंत्रण के समय अधिक गर्मी, तेज हवा, अधिक आर्द्र वातावरण नहीं होना चाहिए। जैविक कीटनाशी, इसके अंतर्गत बैक्टीरिया से बना कीटनाशी जैसे बायोलेप, हार्ट, डेल्फिन, डाइपेल इत्यादि के व्यवहार से गोभी का पतंग, चना का फली छेदक, तंबाकू के पिल्लू को नियंत्रित किया जा सकता है। वायरस से बना जैविक कीटनाशी जैसे हेलियोकील द्वारा चना के फली छेदक एवं तंबाकू के पिल्लू को नियंत्रित किया जा सकता है। वायरस से बने कीटनाशी जो बाजार में उपलब्ध है वे है हेलियोकील या हेलिसाइट। यह चना के फली छेदक, टमाटर एवं मिर्च के फल छेदक कीटों का नियंत्रण करते हैं। यह तंबाकू के पिल्लू के नियंत्रण के लिए काफी उपयुक्त कीटनाशी हैं। नीम से बना कीटनाशी बाजार में उपलब्ध है जैसे अचूक, निम्बिसिडिन, नीम गोल्ड, नीमोल आदि, जिसके व्यवहार से रस चूसने वाले कीड़े एवं पिल्लू को भी नियंत्रित किया जा सकता है। कीट प्रबंधन, घर में बनाई गई कीटनाशी से नीम की पत्तियों से कीटनाशी बनाना, नीम की फली से कीटनाशी बनाना, तंबाकू के उंठल से कीटनाशी बनाना, मिर्च लहसुन से कीटनाशी बनाना, गोमूत्र से कीटनाशी बनाना। रासायनिक विधि के अंतर्गत आता है कीटनाशी रसायनों का स्थान समेकित कीट प्रबंधन की सीमा रेखा पर माना जा सकता है। अर्थात जब कीट प्रबंधन से उपयुक्त सभी तकनीक असफल हो जाते हैं तथा कीट की आबादी आर्थिक क्षतिकारक तल पर हो तो कम खतरनाक कीटनाशी रसायनों की अनुशंकित मात्रा का व्यवहार सावधानीपूर्वक करना चाहिए।
1: जी। आज के कार्यक्रम से अब यही विदा लेते हैं। अगला दिन फिर मिलबे। सबका विदो के नमस्कार
2: और सभी को आरु का भी नमस्कार।

आप सुन रहे थे ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम, प्रस्तुतकर्ता थे अतुल कुमार प्रियदर्शन। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 7 बजे से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने नई दिल्ली में प्रदान किए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार। पाकुड़ के झिकरहट्टी पूर्वी पंचायत को महिला

0: हितैषी पंचायत श्रेणी में देश भर में दूसरा स्थान। मुख्यमंत्री ने की खान एवं भूतत्व विभाग की समीक्षा। 300 बालू घाटों को जल्द चालू करने और राज्य में गोल्ड माइनिंग तथा नए कोल ब्लॉकों के ऑक्शन की प्रक्रिया तेज करने के दिए निर्देश। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बालू की किल्लत और कालाबाजारी के लिए राज्य सरकार को ठहराया जिम्मेदार। पूरे मामले की CBI जांच कराने की मांग। राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान के तहत राज्य भर के कृषि विज्ञान केंद्रों में किसान जागरूकता कार्यक्रम शुरू। किसानों को मिट्टी की सेहत सुधारने और संतुलित खाद के उपयोग के लिए किया जा रहा जागरूक। और अंडर 18 एशिया कप हॉकी में भारतीय पुरुष टीम ने चीनी ताइपे को 13-1 से हराकर सेमीफाइनल में किया प्रवेश। झारखंड के आशीष तानीपूर्ति ने दागी शानदार हैट्रिक। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार समारोह में देश की 42 पंचायतों को सम्मानित किया। इसमें झारखंड के पाकुड़ जिले की जिकरहट्टी पूर्वी पंचायत ने महिला हितैषी पंचायत श्रेणी में देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त किया। महिला सशक्तिकरण और कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए पंचायत को यह गौरव मिला है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खान एवं भूतत्व विभाग की समीक्षा बैठक में राजस्व बढ़ाने के लिए 300 बालू घाटों को जल्द चालू करने और नीलाम कोल ब्लॉकों को सक्रिय करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अवैध खनन और बालू माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। साथ ही राज्य में गोल्ड माइनिंग को बढ़ावा देने, नए खदानों के ऑक्शन में तेजी लाने और JSMDC और JMECL को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची में बालू की किल्लत और कालाबाजारी के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बालू के अवैध कारोबार में कमीशन फिक्स है और इस पूरे मामले की CBI जांच होनी चाहिए।
1: जब जब कांग्रेस सपोर्ट से JMM की सरकार बनी है तब तक बालू गायब बालू सोना बन गया। ये दुर्भाग्य है। क्यों? कभी बंबई के व्यापारी को बेच दिया, कभी किसी को दे दिया। और कमीशन फिक्स है। इस जो कमीशन खोरी बालू की चल रही है इसमें लाखों नहीं रोजाना करोड़ों रुपए कमीशन में जाते हैं। जांच होनी चाहिए।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एक मुश्त बजटीय सहायता देने की मंजूरी दी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह कोष विमानन टरबाइन ईंधन ATF की कीमतों को स्थिर करेगा। इस महत्वपूर्ण फैसले से भारतीय एयरलाइंस को वित्तीय मजबूती मिलेगी और विमानन क्षेत्र से जुड़े करीब 77 लाख रोजगार सुरक्षित रहेंगे।
2: 6 बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला फैसला है आज की जो वेस्ट एशिया क्राइसिस के कारण जो ATF एविएशन टर्बाइन फ्यूल उसका जो प्राइस बढ़ा है और उसका जो इम्पैक्ट आ रहा है एविएशन सेक्टर पे, उसको मिटिगेट करने के लिए 10,000 करोड़ रुपीस का एक ATF प्राइस स्टेबिलाईजेशन फंड क्रिएट किया गया।
0: रांची में आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा एक दिवसीय मीडिया प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत ने किया। राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कांग्रेस के गौरवशाली इतिहास की चर्चा करते हुए कहा कि देश में IIT, एम्स, PSU, परमाणु परीक्षण और पंचायती राज व्यवस्था जैसी ऐतिहासिक उपलब्धियां कांग्रेस शासनकाल की ही देन है।
3: कांग्रेस पार्टी ने अपनी स्थापना से लेकर के आज तक जितने काम किए पार्टी को उस पर गर्व है। पंडित नेहरू ने वहाँ पर भाखड़ा नंगा डैम बनाने की स्थापना करी थी, IIT बनाई थी, रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाए थे, एम्स बनाए थे, इंजीनियरिंग कॉलेजेस बनाए थे और ललित कला अकादमी बनाई थी, तमाम तरीके की हैवी इंजीनियरिंग यहाँ पे HES बनी थी, जितने PSU थे वो सारे के सारे बनाए थे।
0: पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा में आज नक्सल उन्मूलन और सुदूर क्षेत्रों के विकास को लेकर उच्च स्तरीय बैठक हुई। उपायुक्त मनीष कुमार, SP अमित रेणु और CRPF DIG विनोद कार्तिक ने सुरक्षा व कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा की। बैठक में सारंडा और कोल्हान के दूरस्थ गांवों तक स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और सड़क संपर्क पहुंचाने पर विशेष जोर दिया गया। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी

0: रांची से सुन रहे हैं। गढ़वा सहित राज्य भर के कृषि विज्ञान केंद्रों में केंद्र सरकार के राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान के तहत विशेष किसान जागरूकता कार्यक्रम शुरू हो गया है। 30 जून तक चलने वाले इस महाअभियान का उद्देश्य पंचायत स्तर पर मिट्टी की जांच को बढ़ावा देना और फसलों को संतुलित मात्रा में पोषक तत्व उपलब्ध कराना है। गढ़वा के डुमरो और नारायणपुर गाँवों में आयोजित सत्र के दौरान कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को मिट्टी की जल धारण क्षमता और फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए अजोला, नीलहरित शैवाल और पीएसबी के उपयोग की महत्वपूर्ण सलाह दी। चक्रधरपुर मंडल के डीआरएम तरुण होरिया ने आज सरायकेला खरसावां के कांड्रा जंक्शन का निरीक्षण किया। उन्होंने तीसरी और चौथी रेलवे लाइन के कार्यों की समीक्षा की। डीआरएम ने बताया कि कांड्रा जंक्शन को आधुनिक स्टेशन के रूप में विकसित करने के लिए प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ाने और लिफ्ट लगाने की योजना पर काम जारी है।
1: टाइम लंबे होंगे, वेटिंग हॉल जो है वो ठीक होंगे, टॉयलेट एक्वाटिक होगा, पैसेंजर की अम्यूनिटी बनेगी। तो वही चीज देखने आए थे कि वो थर्ड लाइन फोर्थ लाइन भी आ जाए, पार्किंग भी हो जाए और प्लेटफॉर्म में लिफ्ट भी लग जाए, पैसेंजर का वेटिंग हॉल भी अच्छा हो जाए, वो सब चीज देखने के लिए।
0: धनबाद में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संविदा पर 120 स्वास्थ्य कर्मियों को आज नियुक्ति पत्र सौंपे गए। 18 विभिन्न पदों के लिए आयोजित परीक्षा के बाद चयनित एएनएम स्टाफ, नर्स और फार्मासिस्टों की तैनाती ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के अस्पतालों में की जाएगी। इस अवसर पर उपायुक्त आदित्य रंजन ने कहा कि इन नियुक्तियों से जिले के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक बेहतर चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित होंगी।
2: 100 प्लस और बहाली होना है, 120 आज हो गया, उसमें भी 20 वैकेंसी रह गया, उस वैकेंसी को फिर हम लोग भरेंगे। वो लगभग 250 से 300 के बीच में एनएचएम में बहाली होनी है, पर अनदर आउटसोर्स से 300 से 400 के बीच में लोग हम लोग रखे हैं। कुछ लोग ज्वाइन नहीं भी किए हैं क्योंकि राज्य स्तर की नियुक्ति में कुछ लोगों ने अपना एग्जाम क्लियर कर लिया है, तो वो वाली वैकेंसी हम लोग मेधा सूची से भर देंगे।
0: विश्व साइकिल दिवस पर आज राज्य भर में कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। रांची में करीब 50 साइकिल चालकों ने 35 किलोमीटर लंबी जागरूकता रैली निकाली। इस रैली के जरिए साइकिल चालकों ने

0: जिलों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। मौसम विभाग के अनुसार डाल्टनगंज में सर्वाधिक 40 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, जबकि हजारीबाग में सबसे ज्यादा 2.4 मिलीमीटर बारिश हुई। अंडर 18 एशिया कप हॉकी में भारतीय पुरुष टीम ने चीनी ताइपे को 13-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इस मुकाबले में झारखंड के आशीष तानीपूर्ति ने शानदार हैट्रिक जमाते हुए 3 गोल दागे, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। झारखंड के ही प्रेमचंद सोय ने भी 1 गोल कर भारत की ऐतिहासिक जीत में अहम योगदान दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने नई दिल्ली में प्रदान किए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार। पाकुड़ के झिकरहट्टी पूर्वी पंचायत को महिला हितैषी पंचायत श्रेणी में देश भर में दूसरा स्थान। मुख्यमंत्री ने की खान एवं भूतत्व विभाग की समीक्षा। 300 बालू घाटों को जल्द चालू करने और राज्य में गोल्ड माइनिंग तथा नए कोल ब्लॉकों के ऑक्शन की प्रक्रिया तेज करने के दिए निर्देश। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बालू की किल्लत और कालाबाजारी के लिए राज्य सरकार को ठहराया जिम्मेदार। पूरे मामले की CBI जांच कराने की मांग। राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान के तहत राज्य भर के कृषि विज्ञान केंद्रों में किसान जागरूकता कार्यक्रम शुरू। किसानों को मिट्टी की सेहत सुधारने और संतुलित खाद के उपयोग के लिए किया जा रहा जागरूक। और अंडर 18 एशिया कप हॉकी में भारतीय पुरुष टीम ने चीनी ताइपे को 13-1 से हराकर सेमीफाइनल में किया प्रवेश। झारखंड के आशीष तानीपूर्ति ने दागी शानदार हैट्रिक। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। 7:11 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम श्रमिक जगत। प्रस्तुत करता है अतुल कुमार प्रियदर्शन।

श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम श्रमिक जगत में। कार्यक्रम के आज के अंक के साथ हाजिर हूँ मैं आपका दोस्त पीयूष आनंद। श्रोताओं, आप तो जानते ही हैं कि श्रमिक जगत कार्यक्रम में हम बातें करते हैं सरकार द्वारा चलाई जा रही श्रमिकों के लिए अनेक योजनाओं के बारे में, अपना उद्यम शुरू कर जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, और वैसे अनुभवी लोग जो श्रम कर मेहनत कर इन योजनाओं का लाभ लेकर जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे श्रमिक भाइयों से हम आपको बातचीत भी सुनवाते हैं। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हम जिन योजनाओं की चर्चा करने जा रहे हैं वो है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना। जी हाँ श्रोताओं, युवाओं के विकास और बेहतर भविष्य के लिए और श्रम कर जीवन में वो आगे बढ़ सकें, इसके लिए विभिन्न योजनाएं सरकार लाती रहती है। इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण योजना दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना का शुभारंभ

0: इस योजना के तहत स्किल और प्लेसमेंट की बात करें तो रुचि रखने वाले ग्रामीण युवाओं की पहचान कर
1: कालाबाजारी के लिए राज्य सरकार को ठहराया जिम्मेदार। पूरे मामले की CBI जांच कराने की मांग। राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान के तहत राज्य भर के कृषि विज्ञान केंद्रों में किसान जागरूकता कार्यक्रम शुरू। किसानों को मिट्टी की सेहत सुधारने और संतुलित खाद के उपयोग के लिए किया जा रहा जागरूक। और अंडर 18 एशिया कप हॉकी में भारतीय पुरुष टीम ने चीनी ताइपे को 13-1 से हराकर सेमीफाइनल में किया प्रवेश। झारखंड के आशीष तानीपूर्ति ने दागी शानदार हैट्रिक। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। 7:11 हुए हैं। आई सुनते हैं कार्यक्रम श्रमिक जगत। प्रस्तुत करता है अतुल कुमार प्रियदर्शन।

श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम श्रमिक जगत में। कार्यक्रम के आज के अंक के साथ हाजिर हूँ मैं आपका दोस्त पीयूष आनंद। श्रोताओं आप तो जानते ही हैं कि श्रमिक जगत कार्यक्रम में हम बातें करते हैं सरकार द्वारा चलाई जा रही श्रमिकों के लिए अनेक योजनाओं के बारे में, अपना उद्यम शुरू कर जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है और वैसे अनुभवी लोग जो श्रम कर मेहनत कर इन योजनाओं का लाभ लेकर जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे श्रमिक भाइयों से हम आपको बातचीत भी सुनवाते हैं। तो श्रोताओं आज के कार्यक्रम में हम जिन योजनाओं की चर्चा करने जा रहे हैं वो है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना। यह श्रोताओं युवाओं के विकास और बेहतर भविष्य के लिए और श्रम कर जीवन में वो आगे बढ़ सकें इसके लिए विभिन्न योजनाएं सरकार लाती रहती है। इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण योजना दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना का शुभारंभ। अभी हमने बात की कौशल विकास योजना की। कौशल विकास योजना हो या विभिन्न रोजगार सृजन कार्यक्रम, इन सब का प्रमुख उद्देश्य

0: कहीं से सीखा इस तरह के काम को करने के लिए?
1: हाँ सर, अभी जो सरकार के द्वारा दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत सिखाया गया है सर, उसमें से तो उसमें कंप्यूटर क्लास के जरिए बहुत सारी चीज़ें सिखाया गया है सर, जितने से कि आप बैंक में सारे काम को आप पूरा ऑपरेट कर सकें।
0: नीतीश जी, आपने कहाँ तक की शिक्षा हासिल की है?
1: अभी तो सर इंटर पास किए हैं अभी, और ग्रेजुएशन में नामांकन करवा लिए हैं, और आगे की पढ़ाई जारी है सर।
0: मतलब आप कार्य भी कर रहे हैं और पढ़ाई भी साथ साथ जारी रखे हुए हैं।
1: हाँ सर,
0: आपने इंटर के बाद ही इस तरह का प्रशिक्षण लिया जो दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना के तहत?
1: हाँ सर, एग्ज़ाम देने के बाद जो टाइम मिलता है उसमें ये सारी चीज़ें सीखे सर, और उसके बाद इसमें सर काम करने के लिए आ गए हैं सर, अप्लाई करने के बाद इसमें काम कर रहे हैं सर।
0: इस तरह की योजना के साथ साथ कौशल विकास की कई सारी योजनाएं चलती है।

0: देकर, सब्सिडी देकर स्वरोजगार करने की, उद्यम करने की भी योजनाएं चला रही हैं। क्या आपने इसका लाभ लिया या आप इसका लाभ लेना चाहते हैं आगे?
1: सर अभी तो नहीं लिया है अभी तो, लेकिन आगे सर जरूर लेना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे सर योजनाएं हैं जो सरकार दे रही है सर, और इसमें बहुत लाभ भी हो रहा है।
0: नीतीश राज जी, वैसे सभी युवा, वैसे सभी छात्र जो इस तरह की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं या लेकर इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: सर इसमें अच्छा से अगर आप ट्रेनिंग लेकर सर अच्छे से काम करिएगा तो सर ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है सर, यहाँ से आप अपना रोजगार चला सकते हैं सर,
0: और दूसरे क्षेत्र में रोजगार भी कर सकते हैं।
1: दूसरे क्षेत्र में रोजगार भी कर सकते हैं सर, नहीं तो अपना भी सर, आप कंप्यूटर का प्रशिक्षण लिए हुए हैं तो अपना भी सर दुकान खोल के बहुत सारे काम कर सकते हैं सर, फॉर्म भर सकते हैं किसी का, रेलवे टिकट और बहुत सारे काम होते हैं सर कंप्यूटर के थ्रू, तो आप अपना रोजगार चला सकते हैं।
0: नीतीश राज जी, आप इसी तरह योजनाओं का लाभ लेकर आगे बढ़ें, अपने जीवन में को मुकाम हासिल करें। आपने हमारे कार्यक्रम के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद सर।
2: तो श्रोताओं, इसी तरह हम श्रमिक जगत कार्यक्रम में श्रमिक भाइयों के लिए चल रही योजनाओं के बारे में, अनुभवी श्रमिकों से बातचीत और श्रमिकों के कल्याण के लिए, उनके अधिकारों, उनकी तरक्की के लिए चल रहे कार्यक्रमों पर चर्चा करते रहेंगे। तो इस वादे के साथ कि अगले श्रमिक जगत कार्यक्रम में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे यानी पीयूष आनंद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम श्रमिक जगत। प्रस्तुतकर्ता थे अतुल कुमार प्रियदर्शन। प्रसारण आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया।

AIR at 90. हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 7:30 से आप सुनेंगे पटना से प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्या खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: Akashwani at 90.
1: इधर आइए, इधर
2: इधर।
1: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
3: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
2: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
3: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
2: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042। हमारा ईमेल एड्रेस है patna@gmail.com।
3: शुभवाणी,
2: लाभवाणी,
1: आकाशवाणी।
0: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है, आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने NH 31 और NH 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन में अपग्रेड करने की दी मंजूरी। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान प्राप्त करने के लिए वार्षिक आय सीमा को 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 4 लाख रुपए किया। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा, TRE4 के लिए जुलाई महीने में प्रकाशित होगा विज्ञापन। और रोहतास जिले की तेलकप पंचायत को नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार से किया गया सम्मानित। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने बिहार में NH 31 और NH 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन में उन्नयन की मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि योजना के तहत 144 किलोमीटर लंबी सड़क का अपग्रेडेशन किया जाएगा। इस पर 3,936 करोड़ रुपए की लागत आएगी। उन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में पूर्णिया शहर में ग्रीनफील्ड बाईपास का निर्माण किया जाएगा।
1: खगड़िया से पूर्णिया सेक्शन को लिया गया है। इस सेक्शन की लेंथ है 144 किलोमीटर और कॉस्ट आएगी 3,936 करोड़ रुपीज। 4 लेनिंग होगी और प्रॉपर एक्सेस कंट्रोल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर के तरीके से इसको डेवलप किया जाएगा। एग्जिस्टिंग 2 लेन रोड है जिसको कि अपग्रेड किया जाएगा 4 लेनिंग से। बहुत इंपॉर्टेंट हाईवे है ये और आगे नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी भी इसी से जुड़ती है।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन में उन्नयन की मंजूरी मिलने पर केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि इस परियोजना से सीमांचल और कोसी क्षेत्र की कनेक्टिविटी सुदृढ़ होगी और आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान प्राप्त करने के लिए वार्षिक आय सीमा को 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि आय सीमा बढ़ने से अधिक मरीजों को योजना का लाभ मिलेगा।
2: स्वास्थ्य विभाग का एजेंडा था जिसके अंतर्गत मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से राज्य के मरीजों को इलाज के लिए अनुदान का लाभ प्राप्त करने हेतु पूर्व से निर्धारित वार्षिक आय सीमा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर उसे 4 लाख रुपए करने की स्वीकृति दी गई।
0: श्री चौधरी ने बताया कि कैबिनेट ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद उद्योग उन्नयन योजना के क्रियान्वयन के लिए 164 करोड़ रुपए से अधिक की राशि एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना के लिए 31 करोड़ रुपए से अधिक की योजना को भी मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने कुल 13 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा TRE4 के लिए जुलाई महीने में विज्ञापन प्रकाशित कर दिया जाएगा। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री तिवारी ने बताया कि शिक्षक नियुक्ति के लिए अब प्रत्येक वर्ष जुलाई महीने में ही विज्ञापन प्रकाशित किए जाएंगे। अगले 5 वर्षों में 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी।
3: हमने 5 साल में हमने कैलेंडर बनाया है कि हम 1 लाख शिक्षकों की और भर्ती करेंगे। अब कैलेंडर बनाया है तो इसमें हर साल किसी साल 12,000 किसी साल 15,000 शिक्षक हमारे रिटायर भी होने वाले हैं। TRE4 की वैकेंसी जुलाई महीने में हम अधियाचना BPSC को भेज देंगे और हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में यह निर्णय लिया है कि हर साल न्यूनतम 20,000 की बहाली करेंगे और 5 साल में 1 लाख करेंगे।
0: शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य के मदरसों और संस्कृत विद्यालयों की स्थलीय जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन विद्यालयों में तय मानकों के अनुरूप शिक्षण व्यवस्था नहीं पाई जाएगी उसे बंद किया जाएगा।
3: और मदरसा विद्यालय हो या संस्कृत विद्यालय, सभी विषयों की पढ़ाई होगी। दोनों को साथ साथ करा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि किसी एक पर हम कर रहे हैं, हम दोनों को करा रहे हैं। जबकि संस्कृत विद्यालयों को तो हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ पैसे दिए ही नहीं आज तक।
4: और मदरसे को हमेशा पैसा मिलता है, चाहे वो वेतन का पैसा हो या इंफ्रा का पैसा हो, वो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय द्वारा मिलता है।
0: ग्रामीण विकास मंत्री राजीव रंजन सिंह ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किए। देश भर की 42 उत्कृष्ट पंचायतों को ग्रामीण विकास, सुशासन, जनभागीदारी, स्वच्छता, डिजिटल सेवाओं तथा सतत विकास लक्ष्यों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए दो श्रेणियों में ये पुरस्कार प्रदान किए गए। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत पुरस्कार श्रेणी के अंतर्गत नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार से रोहतास जिले की तेलकप पंचायत को पुरस्कृत किया गया। इस श्रेणी में पंचायत को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। मुखिया अनीता टोप्पो ने पुरस्कार ग्रहण किया।
5: सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत में द्वितीय पुरस्कार जाता है तेल कप बिहार को।
0: इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि सरकार विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पंचायतों के सशक्तिकरण पर काम कर रही है।
6: आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये सपना है और एक लक्ष्य निर्धारित 2047 तक हम भारत को विकसित भारत बनाएंगे। हम विकसित भारत बनाने का लक्ष्य लेके चल और हम उस लक्ष्य को लेके हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये सोच है कि ग्रामोदय से ही भारत का

0: उदय हो सकता है, जब तक गांव सशक्त नहीं होगा तब तक इस देश को हम विकसित भारत नहीं बना सकते। और इसलिए पंचायती राज व्यवस्था में के प्रति उनका समर्पण रहा है।
1: राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि राज्य के 13 जिलों में आयोजित होने वाले श्रावणी मेले के लिए 2,25,00,000 रुपए की राशि आवंटित की गई है। उन्होंने कहा कि यह राशि मेला क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए खर्च की जाएगी। श्री जायसवाल ने कहा कि राज्य सरकार श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: इधर आइए इधर।
1: इधर?
0: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
2: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
1: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
2: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
1: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
2: शुभ वाणी,
1: लाभ वाणी,
0: आकाशवाणी।
3: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। पूरा प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कई स्थानों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 40.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ बक्सर राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। पटना का अधिकतम तापमान 39.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की और बढ़ोतरी हो सकती है।
4: अगले 2 से 3 दिनों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने का पूर्वानुमान है। राज्य के उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम भाग के जिलों के 1 या 2 स्थानों पर वर्षा की संभावना है, जबकि शेष भागों का मौसम आमतौर से शुष्क बने रहने की संभावना है।
3: मुंगेर के ITC पार्क स्थित 700 साल पुराने विशाल वटवृक्ष को हेरिटेज ट्री घोषित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि दुनिया के सबसे पुराने वृक्ष के रूप में खड़ा यह वटवृक्ष बिहार के महत्वपूर्ण प्राकृतिक धरोहर है। एक रिपोर्ट।
5: मुंगेर के ITC पार्क में 700 वर्ष पुराना वटवृक्ष को प्राकृतिक धरोहर के रूप में पहचान देने की कवायद शुरू हो गई है। वन प्रमंडल पदाधिकारी अमरीश कुमार मल ने बताया कि लखनऊ के बीरबल सहनी पूरा विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने कार्बन डेटिंग से इस वटवृक्ष की उम्र 700 वर्ष निर्धारित की है।
6: काफी पुराना ये प्रतीत होता है, इसलिए हमने लखनऊ के एक इंस्टीट्यूट को हमने इसके उम्र पता करने के लिए हमने एक लेटर दिया था और हालिया में ही उनका रिपोर्ट हमें प्राप्त हुआ है, जिसमें यह बताया गया है कि ये करीब 700 से भी ज्यादा वर्ष पुराना पेड़ है।
5: मुंगेर बानकी महाविद्यालय की सहायक प्राध्यापिका कृतिका सुमन ने कहा कि इस पेड़ का संरक्षण चुनौतीपूर्ण है।
7: ये हमारे राज्य के लिए एक बहुत बड़ी धरोहर है। इसको बचाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। इसका जो पहला चैलेंज है वो ये है, क्योंकि इसके जो एरियल रूट्स है और इसके जो तने हैं वो काफी दूर तक फैले हुए, उनको सपोर्ट देना है। तो इसके चलते हम आर्टिफिशियल कोई बैम्बू का खंभा वगैरह लगा सकते हैं उसको एरियल रूट्स को सपोर्ट करने के लिए। दूसरी चीज है कि इंसेक्ट्स का अटैक होता होगा, दीमक का अटैक उसमें हो रहा होगा, तो हमको उस अटैक से भी उसको बचाना है। तीसरा, जितना ज्यादा हो सके हमको ह्यूमन इंटरफेरेंस को रोक, उसके आसपास हमको कंस्ट्रक्शन नहीं करनी है, मिट्टी खुली रहे ताकि उसके जो रूट्स हैं उनको ऑक्सीजन मिलता रहे, पानी प्रॉपर मिलता रहे, जिससे वो नॉर्मल तरीके से जीवित रह सके। कि ऑब्वियसली इतना पुराना पेड़ है तो उसमें बहुत सारे पशु पक्षी वगैरह रहते होंगे, तो हमको उसको एज ए इकोसिस्टम कंजर्व करना।
5: मुंगेर का यह वटवृक्ष हमें

0: यह याद दिलाता है कि जब तक हम अपनी प्रकृति को सहेज कर रखेंगे हमारा इतिहास भी अमर रहेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंगेर से प्रशांत कुमार सिंह।
1: ऊर्जा विभाग के सचिव अजय यादव ने भीषण गर्मी को देखते हुए निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का अधिकारियों को निर्देश दिया है। विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने उपभोक्ताओं की शिकायतों के शीघ्र निपटारे के भी निर्देश दिए। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से पर निर्मित बेली ब्रिज पर वाहन परिचालन का सफल ट्रायल किया गया। परीक्षण के दौरान 2.5 टन वजन वाले चार पहिया वाहन को 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाकर पुल की मजबूती की जांच की गई। मधुबनी जिले के बिस्फी थाना क्षेत्र के केरवार गांव में पानी से भरे एक गड्ढे में डूबने से एक ही परिवार के 5 बच्चों की मौत हो गई। मृतकों में सगे और चचेरे भाई बहन शामिल हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि मिट्टी खनन के लिए जेसीबी से खोदे गए गड्ढे में नहाने के दौरान ये हादसा हुआ। सभी बच्चों के शव बरामद कर लिए गए हैं। इधर जिला प्रशासन की ओर से मृतकों के निकटतम परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान की गई है। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने स्वास्थ्य विभाग के तिरहुत प्रमंडल के क्षेत्रीय अपर निदेशक डॉक्टर अजय कुमार को पटना में 40,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। वहीं ब्यूरो की टीम ने नवादा जिले के मैस्कौर प्रखंड के ग्रामीण आवास सहायक वीरू कुमार चौधरी को 10,000 रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। युवा रोजगार और कौशल विकास विभाग की ओर से बेगूसराय में आयोजित रोजगार मेले में 70 से अधिक युवाओं को विभिन्न कंपनियों ने ऑफर लेटर प्रदान किया। इधर दरभंगा में कल से 6 जून तक अलग अलग प्रखंडों में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। खगड़िया और मोतिहारी में भी कल एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन होगा। मुंगेर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के शंकरपुर गांव में एक व्यक्ति के घर पर फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मधुबनी जिले के रहिका थाना क्षेत्र से पुलिस ने हाईवे पर फायरिंग करने के आरोप में एक आरोपी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। शेखपुरा जिले के पैन पंचायत में राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान के तहत किसानों के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ज्ञान भारतम मिशन के तहत सहरसा जिले के कहरा गांव से अभय कांत ठाकुर ने लगभग 500 साल पुरानी पांडुलिपि जिला प्रशासन को सौंपी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने NH 31 और NH 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन में अपग्रेड करने की दी मंजूरी। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान प्राप्त करने के लिए वार्षिक आय सीमा को 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 4 लाख रुपए किया। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा TRE-4 के लिए जुलाई महीने में प्रकाशित होगा विज्ञापन। और रोहतास जिले की तेलकप पंचायत को नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार से किया गया सम्मानित। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: इधर आइए। इधर
3: इधर
2: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
4: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
3: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
4: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
3: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222205042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
4: शुभ वाणी,
3: लाभ वाणी,
4: आकाशवाणी।
5: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है कटिहार जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता कुमार।

0: मुकेश चौधरी।
1: कटिहार जिला प्रशासन द्वारा आम नागरिकों की शिकायतों के त्वरित और प्रभावी समाधान के लिए पंचायत स्तर पर सहयोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर प्रत्येक माह के पहले और तीसरे मंगलवार को संबंधित पंचायत सरकार भवन अथवा निकटवर्ती सार्वजनिक स्थल पर आयोजित किया जा रहा है। जिले के प्रभारी मंत्री प्रमोद कुमार चंद्रवंशी और प्रभारी सचिव राजकुमार द्वारा विधिवत रूप से जिले की कई पंचायतों में कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। इस अवसर पर उपस्थित जनसभा को संबोधित करते हुए प्रभारी सचिव राजकुमार ने कहा कि यह सहयोग शिविर जनता और सरकार के बीच एक सेतु का कार्य कर रहा है। बीते कुछ दिनों से जिला भीषण गर्मी की चपेट में है। जिले का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रहने की वजह से सुबह से ही गर्मी का असर दिखने लगा है। इधर भीषण गर्मी की वजह से अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। वहीं नगर निगम क्षेत्र में 15 स्थानों पर निःशुल्क प्याऊ की व्यवस्था की गई है। कटिहार नगर निगम के नगर आयुक्त संतोष कुमार ने बताया कि शहर के सभी प्रमुख चौक चौराहों पर प्याऊ की व्यवस्था की गई है। साथ ही कई स्थानों पर शेड का निर्माण भी कराया गया है ताकि लोगों को इस गर्मी में कुछ राहत मिल सके।
2: नगर निगम क्षेत्र में 15 जगहों पे प्याऊ की व्यवस्था की गई है। आम नागरिकों को निःशुल्क पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है और इसके साथ साथ उनको ORS भी दिया जा रहा है।
1: कटिहार के सभी सरकारी विद्यालयों में अब माता समूह का गठन किया जाएगा जो बच्चों की नियमित उपस्थिति, पढ़ाई की गुणवत्ता, अनुशासन और विद्यालय की गतिविधियों पर नजर रखेगा। शिक्षा विभाग की इस नई व्यवस्था के माध्यम से स्कूल और अभिभावकों के बीच समन्वय को मजबूत करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। इस पहल के तहत माता समूह की बैठक प्रत्येक महाविद्यालय में आयोजित होगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी राहुल चंद चौधरी ने बताया कि सरकारी विद्यालयों में माताओं की सक्रिय भागीदारी बढ़ाने को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। माता समूह द्वारा दिए गए सुझावों और फीडबैक के आधार पर विद्यालयों में सुधारात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। जिले के बराड़ी और मनिहारी में बीते दिनों अवैध खनन के विरुद्ध जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 21 हाईवा तथा एक पोकलेन को जब्त किया। इन सभी वाहनों में अवैध रूप से मिट्टी का खनन कर ओवरलोडिंग के साथ परिवहन किया जा रहा था। जिला पदाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि जिले में लगातार अवैध खनन को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बराड़ी, मनिहारी, कुर्सेला समेत कई स्थानों पर अवैध खनन के विरुद्ध लगातार छापेमारी की जा रही है। कटिहार के प्रभारी मंत्री सह खान एवं भूतत्व मंत्री प्रमोद कुमार ने जिले के विकास भवन स्थित सभागार में 20 सूत्री और आपदा की समीक्षा बैठक में भाग लिया। बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते उन्होंने कहा कि जिले में अब किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता या सरकारी अनुदान राशि स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में ही दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा से जान गंवाने वाले मृतकों के परिजनों को राहत अनुदान राशि के अलावा अन्य प्रकार के अनुदान राशि भी अब स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में ही देने का निर्देश दिया गया है। श्री कुमार ने कहा कि कटिहार जिला कई नदियों से घिरा हुआ है, इसलिए संभावित बाढ़ एवं प्राकृतिक आपदा के खतरे से निपटने के लिए जिला के सभी पदाधिकारियों और कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं।
3: तो हम लोग बैठ करके उसका पहले से तैयारी कर लेंगे ताकि बाढ़ आने के पहले लोगों के जान माल की रक्षा हो सके, बाढ़ से लोग ज्यादा प्रभावित नहीं हो। ये हम सब लोग अभी तुरंत बैठक करके हम लोग इसका प्लान कर।
1: कटिहार प्रखंड अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय सिरसा में समर कैंप का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला शिक्षा पदाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी सह प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा किया गया। यह कैंप 1 जून से शुरू होकर 30 जून तक चलेगा। इस दौरान छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास, उनकी रचनात्मक प्रतिभा के संवर्धन, भाषा एवं गणितीय दक्षता में वृद्धि तथा विभिन्न शैक्षणिक और शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी राहुल चंद्र चौधरी ने बताया कि समर कैंप बच्चों के लिए केवल अवकाशकालीन गतिविधि नहीं है, बल्कि यह उनके बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक एवं रचनात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण मंच है। उन्होंने कहा कि यह कैंप विद्यार्थियों को सभी गतिविधियों में सक्रिय सहभागिता करने तथा अपने अंदर छिपी प्रतिभाओं को विकसित करने में सहायक साबित होगा।
0: अभी आप सुन रहे थे कटिहार जिले की हलचल, इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता कुमार मुकेश चौधरी।
4: मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज एवं FM बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 7:52 होने को हैं। पेश है सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर लहरी। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे कुमारी स्वर्णा घोष को। आरंभ में इनसे सुनिए रामधारी सिंह दिन।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: सुगम संगीत के कार्यक्रम सुरलहरी को जारी रखते हुए आइए सुनते हैं कुमारी सुवर्णा घोष से रामनाथ अवस्थी की ये रचना।

सुगम संगीत के कार्यक्रम सुरलहरी में आप सुन रहे थे कुमारी स्वर्णा घोष को। प्रसारण आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। 8 बजे हैं, अब सुनिए रजनीगंधा कार्यक्रम में फिल्मी गीत।

गीतकार हैं समीर और संगीतकार हैं आनंद मिलिंद, आवाज़ें हैं उदित नारायण और साधना सरगम की। और फिल्म का नाम है अनाड़ी।

अब सुनिए सोनू निगम, अलका याग्निक, सपना मुखर्जी और कैलाश खेर को। फिल्म का नाम है अंदाज़।

बाबुल फिल्म का गीत सुनिए। सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में गीतकार और संगीतकार हैं आदेश श्रीवास्तव।

सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति एवं साथियों को सुनिए फिल्म बादल में। गीतकार हैं समीर और संगीतकार हैं अनु मलिक।

0: और कास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: रजनीगंधा कार्यक्रम के अंत में सुनिए दीवाना फिल्म का गीत। आवाज़ें हैं कुमार सानू और साधना सरगम की, शब्द हैं समीर के और तर्ज है।

0: प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इंपैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
1: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बसें BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
0: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कॉन्ट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है, और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
1: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय घटकर लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा।
0: उड़ीसा में कोस्टल हाईवे जो स्टेट की बहुत लंबे समय से एक डिमांड रही है, बिकॉज कोस्टल एरियाज का बार बार साइक्लोन से इम्पैक्ट होना, कोस्टल एक्टिविटीज जो है फिशिंग हो, पान की खेती हो, धान की खेती हो, कई तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, और साथ ही साथ जो टूरिज्म और श्रद्धा के बड़े केंद्र हैं जैसे पुरी हो गया, चिलिका हो गया, इन सब की कनेक्टिविटी अलोंग द कोस्ट कैसे हो, ये एक लंबे टाइम से उड़ीसा की डिमांड रही है। तो इस डिमांड को आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट में अप्रूव किया।
1: मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टॉल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बैनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बाकी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। एक रिपोर्ट।
2: ऋतव्रत बैनर्जी पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्यसभा सांसद थे और बाद में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। उन्हें लगभग 60 विधायकों का समर्थन मिल गया है। यह संख्या दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत आवश्यक 2/3 बहुमत के आंकड़ों से अधिक है। ममता बनर्जी गुट ने इससे पहले शोभन देव चट्टोपाध्याय को विपक्ष नेता नामित किया था। इससे पहले पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति के लिए जमा किए गए हस्ताक्षरों से जुड़े विवाद में पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में विधायक ऋतव्रत बैनर्जी और संदीपन साह को निष्कासित कर दिया था। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज नबन्ना में सामाजिक सुरक्षा योजना अन्नपूर्णा की शुरुआत की। इसके अंतर्गत 28 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में 3,000 रुपए भेजे गए। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को पंजीकरण कराने के लिए 90 दिन का समय दिया गया है। 25 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाएं योजना के लिए पात्र होंगी। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉक्टर जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार द्वारा शपथ ग्रहण के बाद एक्साइट में कहा कि इस बदलते टेक्नोलॉजी के युग में कर्नाटक नए आइडियाज के साथ अपने विकास पथ में सबसे आगे बढ़े। लोकभवन से विधानसौध पहुंचने के बाद उन्होंने महात्मा गांधी, डॉक्टर बीआर अंबेडकर, जगत ज्योति बसवन्ना और अन्य महान पुरुषों की पुतली पर पुष्प नमन किया। उसके बाद उन्होंने विधानसौध के नॉर्थ गेट पर झुककर नमस्कार किया। अपने पहले कैबिनेट मीटिंग में वह कुछ नए समाज कल्याण कार्यक्रमों की घोषणा करने की संभावना है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डी के

0: एस कुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। दिल्ली के मालवीय नगर के एक होटल में आज सुबह आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। एक रिपोर्ट।
1: दिल्ली पुलिस ने दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में होटल में आग लगने की घटना में गैर इरादतन हत्या के आरोप में FIR दर्ज किया है। इस हादसे में कम 21 लोगों की मौत हो गई। 26 लोगों का अभी इलाज चल रहा है। दिल्ली नगर निगम ने भी घटना की जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत संधू ने कहा है कि कल से जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस उपायुक्तों और नगर निगम के उपायुक्तों की संयुक्त नेतृत्व में एक महीने तक चलने वाला प्रवर्तन और रोकथाम अभियान शुरू किया जाए। अनुपम मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार बनकर उभरा है। श्री यादव ने बताया कि 2025 तक वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि के मामले में देश ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार के कदमों की।
2: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं GST ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98 लाख से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिल रही है।
3: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित हो गया। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको सहूलियत हो रही है।
2: वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है जो बाजार से 50-80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिलती है।
4: दवाई ले रहा हूँ, सस्ती दवाई मिलती है, डॉक्टर का विश्वास है कि जन औषधि से दवाई खरीदे।
2: वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40,00,000 करोड़ रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
5: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल,

0: कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी अगले दो दिन तेज वर्षा हो सकती है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर ने कहा है कि प्रस्तावित भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते का 99% काम पूरा हो चुका है। मुंबई में उन्होंने कहा कि दोनों देश बाकी बचे मुद्दों को सुलझाने में लगे हैं और अगले कुछ सप्ताह में समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है। ईरान ने कुवैत और बहरीन में स्थित अमरीकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया है। इसमें एक भारतीय की मौत हो गई है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंग यांग को हराया। रोहन कपूर और ऋत्विका ने चीनी ताइपे के हु लिंगफांग और यांग पो ह्यूआन को पराजित किया। प्रवर्तन निदेशालय ने आज पंजाब और उत्तर प्रदेश में भारत और कंबोडिया से संचालित मानव तस्करी गिरोह मामले में तलाशी अभियान चलाया। ईडी ने बताया कि इस गिरोह के मानव तस्करी, साइबर धोखाधड़ी और अवैध गतिविधियों में शामिल होने का संदेह है। निदेशालय ने बताया कि दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर और चार्जशीट के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत जांच शुरू की गई। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
1: बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 304 अंकों की गिरावट से 74,346 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 78 अंक कम होकर 23,406 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले 44 पैसे कमजोर होकर 95.70 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विमानन ईंधन स्थिरता कोष को मंजूरी दी। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को भी स्वीकृति दी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग में 21 लोगों की मौत। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में तेज वर्षा की चेतावनी दी। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी चीन के वेंग होंग यांग को हराकर सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Union Cabinet approves 10,000 crore rupee ATF price stabilization fund to support Indian Airlines. Also gives nod to National Capital Region Planning Board for old trucks and buses replacement in Delhi NCR area. Expelled TMC MLA Ritavrat Banerjee appointed as leader of opposition in West Bengal Legislative Assembly. Congress leader D.K. Shivakumar sworn in as 25th Chief Minister of Karnataka. Dr. G. Parmeshwar becomes Deputy Chief Minister while 12 legislators also take oath as Cabinet Ministers. Massive fire in Malviya Nagar in Delhi claims 21 lives. Police file FIR under charges of culpable homicide. Met Department warns of very heavy rainfall in Kerala and Mahe tomorrow. And in badminton, India's Ayush Shetty enters second round of Indonesia Open Super 1000 after defeating China's Wang Hongyang. The Union Cabinet has approved one-time budgetary support of 10,000 crore rupees for oil marketing companies to provide aviation turbine fuel ATF price stabilization support to Indian Airlines for their domestic and international operations. The support will be provided to companies to facilitate stable ATF pricing for airlines during the ongoing period of exceptional fuel price volatility arising from the West Asia crisis. Briefing Media, New Delhi Today, Information and

दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने वाकये की छानबीन का हुक्म जारी किया है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर तरनजीत सिंह संधू ने कहा है कि डीएम, डीसीपी और एमसीडी के डिप्टी कमिश्नर की मुश्तरका कयादत में कल से एक माह के दौरान आग लगने की रोकथाम पर अमल आवरी से मुतालिक मुआयने, ऑडिट्स और अदम तामील की सूरत में सीलिंग की कार्रवाई करने के लिए होटल्स, गेस्ट हाउसों, नर्सिंग होम्स, कोचिंग सेंटर्स और दीगर मराकज के मुआयने की मुहिम शुरू की जाएगी। दिल्ली

0: दारों के आम और जिमनी इंतखाबात और तीन मरहलों में हुए पंचायती इंतखाबात पिछले पीर को हुए थे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की गुज़िश्ता 12 साल के दौरान दूर अंदेश क़यादत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के तहत भारत में खातिर ख्वाह तब्दीली आई है। इस मुद्दत के दौरान मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, ख़वातीन और जवानों की फलाह बहबूद और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी न्यूज गुज़िश्ता 12 बरसों के दौरान अहम शोबों में हुकूमत की तरफ से किए गए इकदामात के बारे में एक खुसूसी फीचर पेश कर रहा है। आज हम भारतीय मुतवस्सित तबके को बाइख्तियार बनाने के लिए हुकूमत की तरफ से किए गए इकदामात के बारे में बात करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: गुज़िश्ता 12 बरसों में हुकूमत ने वसी इस्लाहात के जरिए भारतीय मुतवस्सित तबके को बाइख्तियार बनाया है। टैक्स निजाम को सहल बनाया, बैंक कार्य को मुस्तहकम बनाया और पेंशन निजाम ने इस तबके के माली तहफ्फुज़ को मजीद बेहतर बनाया है। नए टैक्स निजाम के तहत 12 लाख रुपए सालाना की आमदनी वाले अफराद को टैक्स से मुस्तस्ना रखा गया है। इसके अलावा जीएसटी में इस्लाहात के जरिए रोजमर्रा की अशिया की कीमतों में कमी आई है। योजना शहरी स्कीम के तहत करोड़ों अफराद की जिंदगी में नुमाया तब्दीली आई है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने कहा कि इस स्कीम से किराए पर रहने वाले अफराद को नुमाया राहत मिली है।
2: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित हो गया। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं।
1: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 हेल्थ कार्ड जारी किए गए जिससे आम लोगों को हिफ्जाने सेहत के शोबे में तहफ्फुज़ फराहम किया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना स्कीम के तहत जन औषधि केंद्रों पर मयारी जेनेरिक दवाएं 50-80% कम कीमतों पर दस्तयाब हैं। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए बिहार के ब्रह्मदेव ने कहा कि इन केंद्रों पर आम दुकानों के मुकाबले दवाएं निहायत ही किफायती कीमतों पर दस्तयाब हैं।
3: लगभग एक साल से यहाँ से दवाई ले रहा हूँ, सस्ती दवाई मिलती है। डॉक्टर का विश्वास है कि जल्द उसी से दवाई खरीदे।
1: 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भी आम आदमी को बाख्तियार बनाने के अमल में एक मजबूत अवामिल साबित हुई है। इस स्कीम के तहत अहल मुस्तफिदीन को अब तक 40 लाख करोड़ रुपए के कर्जे तकसीम किए जा चुके हैं। जैसे जैसे आमदनी में इजाफा हो रहा है और मौके वसी हो रहे हैं, भारतीय मुतवस्सित तबका मुल्क की तरक्की, उमंग और खुशहाल मुस्तकबिल में फाल रोल अदा कर रहा है। दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शबाना बेगम।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने डेनमार्क के वजीर आजम के तौर पर लगातार तीसरी बार ओहदा संभालने पर मेटे फ्रेडरिक्सन को मुबारकबाद दी है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि भारत और डेनमार्क के दरमियान बाहमी एतमाद, मुश्तरका अकदार और पायदार मुस्तकबिल के मुश्तरका अज़्म पर मबनी शराकत दारी है। वजीर आजम ने कहा कि वो भारत डेनमार्क ग्रीन कलीदी शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम करने के लिए जनाब फ्रेडरिक्सन के साथ करीबी तौर पर मिलकर काम करने के मुंतजर हैं। लाओस के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा थोंग सावन फोम विहाने ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। मीटिंग के दौरान सदर जमहूरिया ने कहा कि दोनों ममालिक के दैरीना सकाफती ताल्लुकात हैं जो बुद्ध मत के मुश्तरका विरसे और रामायण से जाहिर होते हैं। उन्होंने कहा कि सिफारती ताल्लुकात के क्याम के 70वीं सालगिरह का जश्न भारत लाओस दोतरफा ताल्लुकात में एक अहम संग मील है। वेनेजुएला की कारगुजार सदर डेल्सी एलियोना रॉड्रिग्स कोम्स भारत के 5 रोजा दौरे के लिए नई दिल्ली पहुंच गई हैं। उमूर खारजा इक्तसादियात और खजाना के वजरा और दीगर हुकाम पर मुश्तमिल एक वफ़द भी उनके हमरा भारत तशरीफ लाया है। दौरे के दौरान मोहतरमा रॉड्रिग्स वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ दोतरफा तबादले ख्याल करेंगी। इस तबादले ख्याल में भारत वेनेजुएला ताल्लुकात के वसी तर पहलुओं का जायजा और तवानाई के तहफ्फुज़, तजारत व सरमायाकारी, दवासाजी, हिफ्ज़ान सेहत, नकलो हमल और काबिले तजदीद तवानाई के शोबों में मजीद तावुन के लिए राह हमवार करना शामिल है। भारतीय कंपनियों ने श्रीलंका के बुनियादी ढांचे और तवानाई के शोबे में अहम कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल किए हैं जिससे दोनों पड़ोसी मुल्कों के दरमियान बढ़ते हुए इक्तिसादी तालमेल की अक्कासी होती है। लंका आईओसी पीएलसी ने सापू गासकांडा पावर स्टेशन के प्लांट ए फॉर 2026-27 के लिए 316,000 लीटर लुब्रिकेटिंग ऑयल सप्लाई करने का 392

वे आशार्य 4-7 मिलियन श्रीलंकाई रुपए की मालियत का ठेका हासिल किया है। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने केरलम और माहे में बहुत तेज बारिश के पेश नजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, शिमाल मशरकी भारत के कुछ हिस्सों, मगरबी बंगाल, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, अंडमान और निकोबार जजायर और लक्षद्वीप में भी अगले 2 दिन के दौरान बहुत तेज बारिश की पेशगोई है। महकमे ने मशरकी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में कल गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की पेशगोई की है। बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ी आयुष शेट्टी इंडोनेशिया ओपन सुपर 1000 के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। उन्होंने चीन के वैंग होंग यांग को हराकर शानदार वापसी की है। मिक्स डबल्स मुकाबले में भी भारत के रोहन कपूर और ऋत्विका गाडे की जोड़ी ने चीनी ताइपे की जोड़ी को हराकर एक और जीत दर्ज की है। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। मरकजी काबीना ने भारतीय एयरलाइन कंपनियों की मदद के लिए ATF की कीमतों को मुस्तहकम करने की खातिर 10,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। उसने दिल्ली NCR इलाके में पुराने ट्रकों और बसों को बदलने की खातिर कौमी राजधानी खत्ता मनसूबा बंदी बोर्ड को भी मंजूरी दी है। पार्टी से निकाले गए तृणमूल कांग्रेस के रुकन असेंबली रीता व्रता बनर्जी को मगरबी बंगाल कानून साज असेंबली में अपोजिशन का रहनुमा मुकर्रर किया गया है। कांग्रेस के लीडर DK शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें वजीर आला की हैसियत से हलफ लिया। डॉक्टर जी राम परमेश्वर नायब वजीर आला बने हैं, जबकि 12 लेजिस्लेचर ने काबीनी वजरा की हैसियत से हलफ लिया। दिल्ली के मालविया नगर इलाके में आग लगने के एक बड़े हादसे में 21 अफराद की जान चली गई। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है मॉनसून पूर्वानुमान, कृषि क्षेत्र के लिए संभावनाओं और चुनौतियों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर जेपीएस डबास। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: जब तपती धरती की दरारें आसमान की ओर उम्मीद से देखती हैं, जब किसान की निगाहें खेत से ज्यादा क्षितिज पर टिक जाती हैं, जब गांव की चौपाल से लेकर देश के बाजार तक एक ही सवाल गूंजने लगता है, मॉनसून कब आएगा, तब ये सिर्फ मौसम का इंतजार नहीं होता, ये इंतजार होता है नई फसल का, नए अवसरों का, नई उम्मीदों का। भारत में मॉनसून महज बारिश नहीं है, ये खेतों की धड़कन है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है और करोड़ों लोगों के सपनों का आधार है। इसकी चाल तय करती है कि खेतों में कितनी हरियाली होगी, गांव में कितनी खुशहाली होगी और अर्थव्यवस्था की रफ्तार कितनी तेज होगी। यही वजह है कि मॉनसून का हर पूर्वानुमान केवल मौसम विज्ञान का विषय नहीं बल्कि कृषि, ग्रामीण विकास और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संकेत बन जाता है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, मॉनसून का पूर्वानुमान, कृषि, ग्रामीण विकास और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। हमारे साथ हैं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव और प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर जेपीएस डबास। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि इस वर्ष का मानसून क्या संदेश लेकर आ रहा है, किसानों के लिए इसमें क्या संभावनाएं हैं और ग्रामीण भारत और अर्थव्यवस्था पर इसके क्या दूरगामी प्रभाव पड़ने वाले हैं। शुरुआत करते हैं अखिल जी आपके साथ, आपसे ये समझना चाहेंगे कि इस साल मौसम विभाग ने जो मानसून का पूर्वानुमान जारी किया है उसमें डायनेमिक और सांख्यिकीय मॉडल के क्या संकेत हैं, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में हमारी पूर्वानुमान तकनीक भी बदली है और उसमें बहुत ज्यादा एफिशिएंसी भी देखने को मिली है।
3: जो भारत मौसम विज्ञान विभाग जो नॉर्मल फोरकास्ट को हम बोलते हैं, जब मॉनसून की वर्षा के लिए फोरकास्ट जारी करता है, इसके लिए अब भारत मौसम विज्ञान विभाग जो है पिछले कुछ वर्षों से एक डायनेमिक जो है मॉडल का उपयोग कर रहा है, जिसमें स्टैटिस्टिकल यानी कि सांख्यिकीय से संबंधित जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है उसके साथ साथ जो डायनेमिकल मॉडल्स होते हैं क्लाइमेट के वो भी रन किए जाते हैं, फिर उन दोनों को आधार बना करके जो वर्षा का क्या रेंज रह सकता है आने वाले मॉनसून के सीजन के दौरान, ऋतु के दौरान,

0: उसको है फिर जारी किया जाता है। तो अभी अगर हम देखेंगे तो पिछले कुछ वर्षों से अगर आप उसके डेटा को भी देखेंगे तो जो ये मॉनसून का जो पूर्वानुमान जा रहा है यानी कि फोरकास्ट में जो एक्यूरेसी है उसमें भी काफी जो है इम्प्रूवमेंट हुआ है, काफी बेहतर हुई।
1: जी डॉक्टर डबास, चूंकि आप कृषि वैज्ञानिक हैं और जब आप बोलते हैं तो भारत के किसान बहुत गौर से सुनते हैं, आपसे ये जानना चाहेंगे कि मौसम विभाग के इस पूर्वानुमान को देखते हुए इस खरीफ के मौसम में किसानों को किस तरह की फसल योजना अपनानी चाहिए? क्या कम पानी वाली या जल्दी पकने वाली किस्मों पर ध्यान देना उन्हें चाहिए?
0: आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस बार हमें उम्मीद है कि थोड़ी वर्षा कम है, 10% के करीब कम बता रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि वर्षा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा, क्योंकि तो फसल जो है पानी से ज्यादा जरूरी कौन कौन कौन से स्टेज पे उसको कोई सूखा ना पड़े, तो वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जहां तक हमारी कृषि विज्ञान का सवाल है, इस समय हमारे पास 700 से अधिक कृषि विज्ञान केंद्र है, लगभग 80 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं और ISR इंस्टीट्यूट है जो कि किसानों को गाइड करने के लिए और भारत सरकार की तरफ से किसान कॉल सेंटर 24 आवर काम कर रहा है। हमारे पास ऐसी किस्में हैं जो कम पानी में तैयार हो जाती हैं, हमारे पास कुछ ऐसी विधियां हैं जिसमें कम पानी लगता है और पैदावार अच्छी मिलती है, और साथ साथ में हमारे जो किसान है उसको हमें शिक्षित करना है कि जो भी पानी जमीन पे गिरे उसमें कम से कम रन ऑफ से मतलब फ्लड के तौर में बहे, ज्यादा से ज्यादा पानी हमारी जमीन मिट्टी के अंदर जाए और उसका सदुपयोग कर पाए, और पानी की जब फसल को होता है उसके साथ साथ में उससे बहुत फसलों के बहुत सारे दुश्मन है जो उस पानी को चुराने की कोशिश करते हैं, इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहता है खरपतवारों का। तो अगर हम हमारी जो कृषि क्रिया ऐसे करेंगे जिससे कि पानी की भी बचत हो, खरपतवार का नियंत्रण हो, तो ये जो 10% पानी की जो वर्षा इस बार हमें कम पूर्वानुमान है, इसके बावजूद भी हम खरीफ के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं और अपनी मिट्टी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रख सकते हैं। तो मैं अपने किसान भाइयों को ये जरूर कहना चाहूंगा कि बीज के साथ साथ हमें एक तो जितने भी हमारे पास देसी खाद हैं, खासकर चाहे कुरडी का खाद हो, चाहे हमारे पास वर्मी कंपोस्ट हो, चाहे बायोगैस की सलरी हो, अगर बायोगैस की सलरी और वर्मी कंपोस्ट है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये खाद न केवल हमारी फसलों को पोषण देते हैं बल्कि हमारी जमीन की जल धारण क्षमता को बढ़ाते हैं, और साथ साथ में बरसात से पहले ही हमें अपने खेतों की जुताई भी करनी है, और जुताई करने के साथ साथ में उसकी मेड़बंदी को मजबूत करना है कि जो भी बूंद गिरे वो या तो हमारे खेत में मिट्टी में नीचे जाए, जमीन के अंदर जाए, या हमारी फसल को मिले, और कम से कम जो पानी का हरास जो है वो रनऑफ के तौर पे हो या खरपतवार ले पाए, तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। दूसरी ध्यान रखने वाली बात होती है, जो भी हम फसल लेते हैं उसमें कुछ क्रिटिकल अवस्थाएं होती हैं जिसमें हमारे किसानों को जो भी बरसात का पानी होता है वो इकट्ठा करके उसमें अगर हम उपयोग कर पाते हैं तो उसके बावजूद भी हम अपना फसल का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारा जो कृषि विज्ञान तंत्र है और साथ साथ में जो हमारा मौसम विभाग है, ये जब दोनों मिलके क्योंकि काम कर रहे हैं, इस समय मौसम विभाग की तरफ से हर ISR इंस्टीट्यूट को, हर कृषि विज्ञान केंद्रों को काफी सूचना जाती है कि हफ्ते में के दो दिन बाद मंगलवार को शुक्रवार को कि नेक्स्ट 5 डे कैसा मौसम रहने वाला है, क्या पूर्वानुमान है, उसी के आधार पे हमारे कृषि वैज्ञानिक हर एक सब्जेक्ट के बैठते हैं और वो बताते हैं कि हमारे किसानों को कौन सा बीज बोना है, कब बोना है, कैसे बोना है, बीज की वो साथ ट्रीटमेंट किससे करना, उपचार कैसे करना है, और हमें इस हालात से निपटने के लिए हमारे साथ में हमारा जो प्रसार तंत्र है, खासकर हमारा दूरदर्शन मास मीडिया है और हमारे ऑल इंडिया रेडियो है और साथ में दूसरी जो चीजें हैं वो भी किसानों को एजुकेट करने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हम इसका लाभ उठाएंगे, हम इससे किसी तरह हरास नहीं होने देंगे और इस विपरीत परिस्थिति को भी हम एक अपॉर्चुनिटी में बदलने की कोशिश करेंगे जिससे हमारा उत्पादन भी बढ़े, उत्पाद की गुणवत्ता भी बेटर हो, हम कीड़े मकोड़े बीमारियों का भी ठीक से प्रबंध कर पाए और साथ साथ में हम मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हुए हर बूंद का सदुपयोग करके अधिक से अधिक अन्न सब्जी फल और सभी फूल और सभी चीजें उगाएं।
1: डॉक्टर श्रीवास्तव, आपसे ये समझना चाहेंगे कि अक्सर देखा जाता है कि देश में सामान्य मानसून का औसत तो ठीक रहता है लेकिन कुछ राज्यों में सूखा और कुछ में बाढ़ आ जाती है। इस बार वर्षा के जो स्थानिक वितरण को लेकर मौसम विभाग का क्या आकलन है?
0: मॉनसून जो है वो हर साल एक नई तरह की परिस्थिति को लेकर के आता है, तो इस वर्ष भी जो मॉनसून में जो वर्षा है पूर्वानुमान दिया गया है उसके अनुसार वो करीब करीब 90% पहले की संभावना है, जो लॉन्ग टर्म एवरेज है यानी दीर्घावधि औसत का, जिसमें 10-4% की वृद्धि हो सकती है। अब ये जो वर्षा का पूर्वानुमान किया गया है ये अगले 4 महीनों के लिए जो है वो किया गया है, यानी कि जून से लेकर के सितंबर तक का। अब इसमें ये बात समझने की बहुत जरूरत है कि जैसे आपने अभी बताया कि कुछ राज्यों में जो मानसून की वर्षा है वो कम हो सकती है, कुछ राज्यों में ज्यादा हो सकती है, इसमें अभी तक का जो स्थानिक जो हमारा पूर्वानुमान है का

0: उसमें ये है कि जो पूर्वोत्तर राज्य है यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, वहां पर जो वर्षा है वो करीब करीब सामान्य रहने की संभावना है उत्तर पूर्व भारत में, यानी कि जो लॉन्ग पीरियड एवरेज यानी कि दीर्घावधि औसत का 94 से 106% तक की रेंज में वर्षा हो सकती है। वहीं मध्य भारत में और दक्षिण पूर्वी भारत में 94% जो है दीर्घावधि औसत का उससे कम वर्षा रहने की संभावना है। उत्तर पश्चिम भारत में 92% यानी कि 92% से कम वर्षा रहने की संभावना है, यानी कि वर्षा जो है वो सामान्य से कम रहने की संभावना है। हालांकि इसमें ये भी जरूरत समझने की बात है कि ये जो वर्षा है ये बहुत ही इवन तरीके से चारों महीनों में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहती है, कभी किसी समय में ज्यादा वर्षा मिल जाती है, इसके बाद कई बार फ्लड की सिचुएशन देखने को मिलती है, कई बार मौसम ब्रेक कंडीशन भी आती है जब वर्षा काफी घट जाती है। तो इसके लिए भारत मौसम विभाग लगातार पूर्वानुमान देता रहता है। इसमें जैसे कृषि के लिए अगर हम बात करें तो सप्ताह में 2 बार जो अगले 5 दिनों का विवरण दिया जाता है। इसके साथ साथ हर बृहस्पतिवार को बारिश से संबंधित जो है एक्सटेंडेड रेन फोरकास्ट जारी किया जाता है, जिसमें अगले 4 हफ्तों के लिए सप्ताहवार यानी कि हर सप्ताह में कैसा वर्षा रह सकती है उसका भी पूर्वानुमान जारी किया जाता है। इसमें मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि इसमें जो हमारा मुख्य रूप से जो मॉनसून कोर जोन है
1: जी
0: यानी कि वो क्षेत्र जो कि ज्यादातर मौसमी वर्षा पर जो निर्भर करता है कृषि के लिए, वहां पर जो है वर्षा का पूर्वानुमान भी जो हमारे अभी मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है उसमें सामान्य से कम वर्षा की संभावना जो है वो दर्शाई गई है। तो इसको देखते हुए जो मौसम की जो पूर्वानुमान किए जा रहे हैं स्थानिक स्तर पर भी और डिफरेंट टाइम फ्रेम के लिए यानी कि जो हर दिन दैनिक रूप में पूर्वानुमान किए जाते हैं, इसके साथ साथ में जो एक्सटेंडेड रेंज यानी कि विस्तारित रेंज का पूर्वानुमान भारत मौसम विज्ञान विभाग करता है उसका भी बहुत अच्छे से उपयोग होना बहुत जरूरी है, ताकि बहुत कुशल रूप से जो ये प्रिपरेटरी चीजें हैं उनको मैनेज किया सके, एग्रीकल्चर रिलेटेड चीजों को मैनेज किया जाए।
1: जी बिल्कुल डॉक्टर डबास, आपने अभी कुछ देर पहले बताया कि जहां पर कम बारिश होने की आशंका जताई जा रही है वहां किसान किस तरीके से अपनी फसल का ध्यान रखें, और जैसा कि अभी डॉक्टर श्रीवास्तव बता रहे हैं कि कुछ राज्यों में ज्यादा बारिश की भी संभावना है, यदि मानसून के दौरान अचानक बहुत भारी बारिश होती है तो जल भराव से फसलों को बचाने के लिए किसानों को कौन से बुनियादी वैज्ञानिक उपाय पहले से कर लेने चाहिए?
2: हमारे जो किसान है वो हमें क्षेत्र वाइज हम उसको बात करते हैं, जैसे राजस्थान पूरा एरिया है, इसमें हम लोगों ने बहुत किसानों का आदा किया हुआ है, तो उन्होंने खेतों पे टैंक बना रखे, तालाब बना रखे हैं, उनकी कोशिश होती जो भी ज्यादा बारिश हो उसको टैंक में जाए। और इसी तरह से हमारे पूरे देश में सभी नदियों पे बांध बने हुए हैं, हमारी कोशिश ये रहती है कि अपने आवश्यकता के अनुसार पानी को इकट्ठा रखें और पानी को पूरा कितना हमारे पास पानी है, कितने आगे बारिश होने वाली है, कितना भी छोड़ना है, तो ये बैराज से हम लोग नियंत्रण करने की कोशिश सरकार करती है। और इसी का फायदा उठा के किसानों को भी हम गाइड करते हैं कि जिन क्षेत्रों में अधिक बारिश होने वाली है वहां पे हम धान की फसल या जो फसलें ज्यादा पानी चाहिए उसका रिकमेंड करते हैं। और ये भी हम किसान को आगाह करते हैं कि जो पानी खेत से निकालना है, क्योंकि जल निकासी भी बहुत जरूरी है, अगर हमें फसल अच्छी लेनी है और बरसात ज्यादा है तो वहां पे जल निकासी का भी होना बहुत जरूरी है। लेकिन जब जल निकासी किसान करे तो इस आधार पे करे कि उसकी जो उपजाऊ मिट्टी भी ना जाए, फसल को नुकसान ना हो, और मौसम विभाग को ध्यान में रखते हुए इन बातों के, क्योंकि किसान की जितनी भी कृषि क्रियाएं आगे जो पूरे 4 मानसून के जो महीने रहेंगे वो हम लोग हर वीक में 2 बार बताते हैं किसानों को, और सभी कृषि विज्ञान केंद्र भी और सभी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी हम ये बताना चाहते हैं अगर बरसात की संभावना है तो उसमें किसान को क्या करना है, क्या नहीं करना है और कौन सी विधि अपनानी है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहूंगा धान का ही, अगर धान की सब क्षेत्र नीचे है जिसमें पानी खड़ा होता है तो हमारे पास धान के अलग अलग किस्में हैं जो अलग अलग ऊंचाई में भी और पानी को भी सहन कर सकती हैं। अगर बरसात कम हो रही है लेकिन हमें धान फिर भी पैदा करना, खासकर नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट में जहाँ क्योंकि बासमती का हमारा एक्सपोर्ट लगभग 30,000 करोड़ से ज्यादा का है और इसमें हमें लगातार भी पैसा मिलता है और हमारा देश बासमती के नाम से काफी जाना भी जाता है, तो बासमती के में भी हमें एक तो डायरेक्ट सीडिंग के लिए बहुत सारी नई किस्में निकाली हैं जिसमें 35% पानी बचता है। इसी तरह से SRI विधि से भी अगर हम बासमती के चावल की खेती करते हैं तो 30 से 35% पानी बचता है और साथ में फसल भी अच्छी होती है, कीड़े बीमारी का प्रकोप भी कम होता है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी हम किसान को पहले से एजुकेट करके रखें जिससे कि किसान अपनी बचत करते हुए और जहां पानी की संभावना बहुत कम है तो वहां किसानों को कहेंगे धान जैसी फसल ना लगा के या तो मक्का लगाएं या मोटे अनाज लगाएं या दलहनी फसल लगाएं, लेकिन जो भी फसल लगाएं उनमें खरपतवार नियंत्रण और निराई गुड़ाई ये एक विशेष योगदान है, इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है क्योंकि खरपतवार तो पानी के साथ साथ में न्यूट्रिएंट भी चुराई करते हैं, मतलब किसान से फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन जो निराई गुड़ाई है वो एक फसल की जड़ों को एक ऐसा एटमोसफियर प्रदान करती है जिससे कि पौधे की जड़ें काफी ग्रोथ करती हैं और वो दूर तक के पानी के पूछ खींच लेती है और पानी एकदम से सीधा वापस।

0: कणों से उड़ता नहीं है बल्कि जमीन में बना रहता है। और कुछ क्रिटिकल अवस्था पर हम किसानों को बार बार ध्यान देते हैं कि इस समय हमें पानी की वो विधि अडॉप्ट करनी है, जैसे ड्रिप सिंचाई है या स्प्रिंकलर विधि है, जहाँ पे हम कम पानी से भी ज्यादा लाभ उठा पाए। खासकर जब आपने दक्षिण भाग की बात या मध्य भाग की बात की, जहाँ पे इस बार बारिश की थोड़ी संभावना कम लग रही, तो वहाँ पे हम किसानों को उस किस्म की सलाह देते हैं। तो हमारे जो कृषि वैज्ञानिक वो भी तैयार है, साथ साथ में भारत सरकार ने अभी लास्ट तो लगभग एक हफ्ता पहले ही एक मीटिंग ली है, जिसमें सभी राज्यों के कृषि विभाग के जितने भी अधिकारी थे, साथ साथ में हमारी क्या योजना होनी चाहिए, हमारे पास कौन सी चीजों के कितने सीड हैं, और किसान को सही समय पर सीड भी मिले, साथ साथ में उसके पास हमारे उर्वरक भी पहुंचे और किसान को सब सुविधाएं मिले, तो उसके लिए सरकार पहले से तत्पर होके ऑलरेडी कार्य योजना बना रही है। और इस समय जो हमारी कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR जो है, ये पूरे देश में इस महीने को किसानों को एजुकेट करने के लिए यूज कर रही है, और कृषि वैज्ञानिक गांव में जा रहे हैं, उनको एजुकेट कर रहे हैं। तो हमारी तैयारी पूरी है, और तो वो हमारे प्रयास रहेगी किसानों को हम किस तरह से लागत को कम करने में मदद करें, कैसे पानी के संरक्षण में मदद करें, कैसे किसानों को तालाब और सब चीजों में गाइड करें। मल्चिंग इसमें एक बहुत बड़ा योगदान करती है।
1: बिल्कुल डबाल जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
0: तो उन सब चीजों को हम काफी जोर दे रहे हैं, और मुझे लगता है कि हमारा देश जो है तकनीकी तौर के तौर पे और उसमें हमारा सक्षम है, और आप लोगों के सहयोग से हम बहुत अच्छे से कर पाएंगे।
1: डॉक्टर श्रीवास्तव, जब जलवायु परिवर्तन की हम बात करते हैं और जलवायु परिवर्तन के दौर में अल नीनो और ला नीना के जो संकेतक हैं वो तेजी से बदल रहे हैं, दो छोटे छोटे सवाल। पहले तो हमारे श्रोताओं के लिए अल नीनो और ला नीना को थोड़ा आप एक्सप्लेन कर दें, और साथ ही उसी से जुड़ा एक सवाल ये है कि इस साल के मानसून पर इनका क्या और कितना असर देखने को मिल सकता है।
2: अगर हम एल नीनो को बहुत ही सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें, तो ये एक तरह से ऐसी सिचुएशन होती है, ये इस तरह का सिचुएशन डेवलप होता है जो कि काफी दूर से ही भारतवर्ष के जो मौसम को प्रभावित कर सकता है। भारतवर्ष के कहे या अगर सौर ग्रह रूप में समझे, तो ये पूरे ग्लोबल जो वेदर सिस्टम है, जो वेदर के इवेंट्स हो रहे होते हैं, प्रभावित करता है। इसमें मुख्य रूप से अगर हम एल नीनो की बात करते हैं, तो जो प्रशांत महासागर, जो मध्य रेखा के पास का प्रशांत महासागर है, वहां पर जो समुद्र की सतह है, उसमें जो टेम्परेचर है, उसका तापमान जो है, उसका धीरे धीरे वो बढ़ जाता है, यानी कि वो असामान्य रूप से गर्म हो जाता है। जब प्रशांत महासागर का जो भूमध्य रेखा के पास समुद्र सतह का तापमान असामान्य रूप से गर्म हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं अल नीनो। और जब ये समुद्र की सतह का तापमान असामान्य रूप से ये ठंडा हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं ला नीना। तो ये जो दो इवेंट है, ये एक तरह से प्राकृतिक इवेंट है जो कुछ सालों के बाद जो हमें देखने को मिलते रहते हैं। जब समुद्र का पानी गर्म हो जाता है भूमध्य रेखा प्रशांत महासागर में, तो इसका सबसे बड़ा असर ये होता है कि जो हवाएं हैं, जो हवा की जो एक नेचुरल जो डायरेक्शन होता है, उसमें इनका जो रुख होता है, ये उसको बदलने का काम करता है। हवा जो भारत में जो मानसून को खींच कर लाने वाली हवाएं हैं, ये उनको कमजोर करने का एक तरह से कार्य करता है। इसलिए एल नीनो का बहुत असर जो है काफी हद तक भारत के मानसून पर देखा जाता है। इन जनरल अगर हम बात करें, तो जब भी एल नीनो कंडीशन होती है, तो भारत में जो वर्षा है उसमें कमी देखी जाती है। हालांकि कुछ वर्ष ऐसे भी देखे गए हैं जब एल नीनो के बावजूद भी काफी अच्छी वर्षा भारत वर्ष में देखने को मिली है। इसमें हमें ये भी समझने की जरूरत है कि जब ला नीना कंडीशन होती है, तब भारत वर्ष में जो वर्षा है उसका जनरल ट्रेंड अगर देखें, एक अगर जनरली हम बात करें उसके बारे में, तो वो वर्षा के लिए सहायक सिद्ध होता है। जबकि एल नीनो कंडीशन, यानी कि जो समुद्र की सतह का तापमान असामान्य रूप से गर्म हो जाता है, तो वो वर्षा के लिए नेगेटिवली काम करता है, नकारात्मक रूप से उसको प्रभावित करता है। लेकिन जो मानसून सिस्टम है, वो अपने आप में बहुत रहस्य सिस्टम है। इसमें सिर्फ एक फैक्टर का जो है, यानी कि एक जो इवेंट है जैसे एल नीनो, सिर्फ इसका ही असर नहीं होता है, बहुत सारे अन्य कारक हैं जो भारत के मानसून को प्रभावित करते हैं। जैसे कि इंडियन ओशन डायपोल, यानी कि जो हमारा जो हिंद महासागर में जो डायपोल स्थिति बनती है, उसका भी असर होता है कई बार। तो सिर्फ एक कारक से भारत के मानसून का जो है डायरेक्शन तय नहीं होता है, लेकिन एल नीनो को इन जनरल देखा जाता है, तो ये एक काफी ज्यादा जो है प्रभाव डालता है भारत के मानसून के ऊपर। अगर हम बात करें 2026 की, यानी कि जो आने वाले जो अभी मानसून का सीजन हमारा शुरू ही हो गया है लगभग, इसमें तो अभी जो एल नीनो की कंडीशन है, वो अभी न्यूट्रल कंडीशन से एल नीनो की वीक कंडीशन की ओर जो है ट्रांजिशन चल रहा है, यानी कि मॉनसून के दौरान एल नीनो कंडीशन जो है डेवलप करने के गाइडेंस जो है वो सारे मॉडल दिखा रहे हैं, और यही पूर्वानुमान भी दिया गया है। यानी कि मानसून के दौरान एल नीनो कंडीशन जो है वो डेवलप हो सकती है। प्रशांत महासागर में समुद्र की जो सतह तापमान है वो असामान्य रूप से

0: गर्म होगा जो कि हवाओं के रुख को निर्धारित तौर पर प्रभावित करेगा और हम इसका असर भी मौसम की जो मानसून की जो वर्षा है इसमें भी हमें देखने को मिल सकता है। और इसी को देखते हुए यह भी कारक रहा है कि जो वर्षा का पूर्वानुमान है वो बिलो नॉर्मल यानी कि सामान्य से कम वर्षा का पूर्वानुमान में इसकी बहुत बड़ा योगदान रहा।
1: जी डॉक्टर डबास, उन किसानों के लिए आप क्या कहेंगे जहां पर जल संरक्षण, सूक्ष्म सिंचाई और वर्षा जल संचयन को लेकर कुछ किसान काफी सजग रहते हैं, उन किसानों को किन व्यवहारिक उपायों पर ध्यान देना चाहिए?
0: ये जो हमारे किसान हैं जिनके पास में जल सिंचाई की बहुत अच्छी विधियां हैं और साथ साथ में सजग हैं, इनको मैं ये कहना चाहूंगा सबसे पहले तो एक अच्छी किस्म का चुनाव करना है, बीज का सही समय से प्रबंध करना है। प्रबंध करने के बाद में हमारे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए क्योंकि कुछ पोषक तत्व वैसे होते हैं जो हमारी फसल को सूखे से लड़ने की भी ताकत देते हैं और उसकी जड़ों के विकास को महत्वपूर्ण योगदान देते हैं जिससे कि उसको फायदा होता है। तो एक संतुलित मात्रा में खाद का उपयोग करना है, उसमें केवल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर ही नहीं करने, साथ साथ में फास्फोरस, पोटाश और दूसरी चीजों का भी देख करना है। और जो सरकार ने हमें एक योजना दी है सॉयल टेस्टिंग की, उसके आधार पर अगर खाद का प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद आती है कि हमें किस्म का चुनाव, क्योंकि इस समय हमें उस किस्म का चुनाव करना है जो जल्दी पक्के तैयार हो, जिसका अनाज भी अच्छा हो, साथ साथ में कम पानी ले। हमें विधि भी वो चुननी है कि उसका प्रॉपर प्लांट पॉपुलेशन हो। कई बार हम बुआई करते हैं तो बीज की मात्रा ज्यादा होती है लेकिन पौधे काफी सघन हो जाते हैं, तो हमें अगर पौधों की संख्या सही रखेंगे तो कम पानी में हम ज्यादा पैदावार ले पाएंगे। और साथ साथ में खरपतवारों का प्रबंध बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान प्ले करता है क्योंकि खरपतवार काफी मात्रा में बीमार भी फैलाते हैं, कीड़े भी फैलाते हैं, साथ साथ में पानी का बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। तो अगर हम खरपतवारों का प्रबंध कर लेते हैं उससे भी बहुत बड़े पानी की बचत होती है और साथ साथ में हमारी मिट्टी का व्यवस्था रहता है। और निराई गुड़ाई समय पर होना बहुत ही जरूरी है। और इसके साथ साथ में हमें जो पानी हमारे पास है वो सही टाइम है, मोस्टली अगर आपके पास अपनी इरिगेशन फैसिलिटी है तो पानी का सुबह और शाम इस्तेमाल करना है। और क्रिटिकल स्टेजेस पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है, जैसे कि बाली निकलनी है, बाली आने वाली है, उग रहा है या फुटाव चल रहा है। और कई बार कुछ किसान भाई ज्यादा खेत में पानी खड़ा रखते हैं, उससे नुकसान भी होता है खासकर धान की फसल में। तो अगर हम पानी सूखने दें और फिर पानी लगाएं तो उससे लगभग 30-35% पानी की बचत होती है और पैदावार भी अच्छी आती है, कीट और बीमारी का प्रकोप भी कम होता है। तो मैं उन किसानों को ये कहना चाहूंगा कि उसका उपयोग करना बहुत ही जरूरी है। इसी तरह से मक्का की फसल में भी कुछ खास क्रिटिकल स्टेजेस होती है, उसका विशेष ध्यान रखना है, खासकर जब उसमें फुटाव हो, जब टेसल बने, उसमें फ्लावरिंग आए, तो उस समय पानी की कमी ना हो तो बहुत अच्छा रहता है। और खरपतवार प्रबंधन यहाँ भी करना है और साथ साथ में मक्का के में कीट प्रबंधन पे भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि आजकल एक पाल आदमी वार मार रहा है जो काफी नुकसान करता है। तो उसको हम समय से पहले अगर टैकल कर लेंगे तो हम ज्यादा पैदावार ले पाएंगे। साथ साथ में जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक लगातार संपर्क में बने रहें और जितना भी अधिक से अधिक मात्रा में देसी खाद का प्रयोग करेंगे उससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी, मिट्टी की जल धारण क्षमता भी बढ़ेगी और साथ साथ में मिट्टी का जब उर्वरा शक्ति बढ़ेगी तो हमारी फसल अच्छी पैदा होगी। तो वह हमें विशेष ध्यान रखना है और संतुलित मात्रा में खाद का प्रयोग करें, किसी भी हालत में घबराए नहीं। और हमें अपने किसान पर पूरा विश्वास है कि किसान हमारा बहुत सक्षम है, सरकार की योजनाएं अच्छी हैं और आपका जो विस्तार तंत्र है खासकर मास मीडिया है वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और साथ में जो हमारे मौसम विभाग का जो सहयोग है तो इसके सहयोग का हम इसकी सूचनाओं का जानकारी का उपयोग करते हुए मुझे लगता है कि हम स्थिति में बहुत अच्छी तरह उभर के आएंगे और अच्छा काम कर पाएंगे।
1: जी डॉक्टर श्रीवास्तव, एक और बड़ा बदलाव ये दिख रहा है कि अब कम दिनों में बहुत भारी बारिश जिसे एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स कहते हैं वो हो जाती है और शुष्क दिन यानी ड्राई स्पेल्स बढ़ रहे हैं। मौसम विज्ञान इस नए पैटर्न को कैसे देख रहा है?
0: तो इसमें हमें ये बात समझने की जरूरत है कि जैसे जैसे धरती का एटमॉस्फेयर का तापमान धीरे धीरे बढ़ता है तो इसके जो मॉइस्चर को होल्ड करने की यानी कि ये कितनी अपने अंदर पानी को हवा के अंदर ऐसा वेपर या नमी को अपने अंदर रख सकता है वो भी बढ़ जाता है। हर एक डिग्री राइज पर लेते ह्यूमिडिटी है तो रिटेन करने की कैपेसिटी करीब करीब 7% जो है बढ़ जाती है। यानी कि अभी जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो अवेलेबिलिटी है पानी की, वाटर वेपर की, वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और जब इस तरह के जो गर्म एनवायरनमेंट की कंडीशन होती है ये लगातार कन्वेक्टिव एक्टिविटीज को जो कि सडनली गर्मी की वजह से एकदम से क्लाउड डेवलपमेंट को और एसोसिएटेड उसके साथ में बहुत ही इंटेंस बारिश को जो है काफी ज्यादा सहायक होता है। और क्योंकि ऑलरेडी इसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है एटमॉस्फेयर में तो इस तरह की जो घटनाएं हैं जहां पर बहुत सारी वर्षा एक बहुत ही सीमित समय में हो जाती है और उसके बाद में काफी कई दिनों तक फिर ड्राई स्पेल देखने को मिलता है, इस तरह की घटनाएं जो है वो देखने को मिल रही है।

0: जैसे कि ये सब मौसम बदलाव हो रहे हैं, इसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए ताकि जो भी ये वर्षा है, एक तो ये इकट्ठा इतनी वर्षा हो रही है, ये जो पानी जो हमें मिल रहा है इसका, ये रन ऑफ के जरिए इसका थोड़ा वेस्टेज ना हो और इसको हम सदुपयोग कर सके, तो इसका एकत्रित करने के लिए भी कुछ ना कुछ उपाय पहले से बनाए रखे।
1: जी डॉक्टर डबास साहब से ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक अच्छा मॉनसून ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर को कैसे बढ़ाता है और इसका असर ट्रैक्टर, एफएमसीजी और अन्य उद्योगों पर कैसे पड़ता है।
0: जैसे ही किसान की आमदनी बढ़ती है, किसान को अच्छी फसल मिलती है, किसान पहले से तत्पर होता है क्योंकि उसको और आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ना है, अपने सपने देखता है, तो सपनों वो चाहता है कि उसके पास अच्छी मशीनरी होनी चाहिए, अच्छी तकनीकियां होनी चाहिए और आगे के मौसम को रक्षा करने के लिए उसके पास सभी संसाधन होने चाहिए, तो वो पैसा जो है बाजार में लगाता है, बाकी चीजें बाजार में नहीं लगती हैं। तो जब भी किसी का उत्पादन बढ़ता है, किसान को पैसे ज्यादा जाते हैं, तो आपके जितने भी ट्रैक्टर हैं या मशीनरी है या फार्म इक्विपमेंट है या सीड है या दूसरी चीजें हैं, और इसके साथ साथ में हमारे जो उपभोक्ता को भी अच्छी किस्म का भोजन मिलता है और जब हमारी एक्सपोर्ट बढ़ती है तो देश का नाम होता है, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले कोई कम से कम 20 साल से हमारी एक्सपोर्ट धान, बासमती धान में हम आप पूरे वर्ल्ड में एक बहुत अच्छा काम कर पा रहे हैं और इससे और भी अच्छा करने की संभावना है, क्योंकि किसान हमारा सक्षम है, हमारी खेती में भी जान है और गवर्नमेंट भी चाहती है, गवर्नमेंट ने काफी अच्छी परिस्थितियां बनाई है जिससे कि किसान एक्सपोर्ट कर सके, जो हमारे भारतीय किसान संगठन बने हैं, किसान उत्पादक संगठन बने हैं, वो भी इस तरफ आपकी आप ही आगे बढ़ रहे हैं और सरकार ने पहले से डिसाइड कर रखा है कि कौन से जिले से कौन सा प्रोडक्ट की ज्यादा प्रोडक्शन हो सकता है, उसमें क्या क्या प्रोसेसिंग हो सकती है, कैसे हम उसको जिले वो सक्षम कर सकते हैं, तो सरकार की जो योजनाएं हैं, किसान की मेहनत है और जो भी किसान का उत्पादन बढ़ता है वो सारा का सारा बाजार में आता है, जब बाजार में आता है तो पूरे देश में रौनक आती है, तो एक किसी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे जो भी पैसा गवर्नमेंट अलॉट करती है तो उसका फायदा सबसे ज्यादा होता है। ये हमारे जितने भी अर्थशास्त्री कृषि अर्थशास्त्री हैं उन्हें काफी प्रेजेंट किया गया, अगर हम कृषि में 1 रुपया खर्च करते हैं तो हमारी आमदनी और बाकी क्षेत्रों से कहीं ज्यादा होती है, तो इसको देखते हुए मैं कहूंगा कि कृषि के क्षेत्र में सरकार को और अधिक ध्यान देने की जरूरत है और किसान को और अधिक सक्षम बनाने की जरूरत है, और साथ साथ में हमें ये देखना मंडी में भाव क्रैश ना करें, जब किसान कई बार मेहनत करता है अच्छा उत्पादन लेता है तो जब भाव क्रैश कर जाता है तो किसान टूट जाता है, तो सरकार को जब भाव अधिक होते हैं तो उसको कम करने की कोशिश करती है, लेकिन सरकार को ये भी कोशिश करनी है कि किसान को उत्पादन लागत से अधिक पैसा मिले, और ये खाली हमारी वो नहीं मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाली फसलें ही नहीं बल्कि जो सब्जियां हैं, फल हैं, फूल हैं, क्योंकि देश को हर चीज की जरूरत पड़ती है, तो हमें सरकार को उस तरफ भी थोड़ा सजग होने की जरूरत है।
1: डॉक्टर श्रीवास्तव, दुनिया भर की तकनीकों पर चर्चा होती है, जब कोई भी नए गैजेट्स मार्केट में आते हैं तो हम चर्चा करते हैं कि अमेरिका में ये चल रहा है, यूरोप में ये चल रहा है, दुनिया के दूसरे देशों में ये चल रहा है। मौसम पूर्वानुमान के क्षेत्र में आपसे समझना चाहेंगे कि दुनिया के अलग अलग देशों में किस तरह की तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है और भारत ने पिछले 1 दशक में पूर्वानुमान की तकनीकों में किस तरह का बदलाव किया है और उसके क्या प्रभाव दिख रहे हैं, बहुत संक्षेप में।
0: जी देखिए, पहले तो भारत मौसम में अगर हम पूरे वैश्विक स्तर बात करें तो सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट जो हो रहा है वो ऑब्जर्वेशन के क्षेत्र में हो रहा है। अभी जितने भी तरह तरह के मैकेनिज्म है जो मौसम को ऑब्जर्व करने के, उसमें काफी ज्यादा जो है वृद्धि हो रही है। इसको साथ साथ में जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है एटमॉस्फेरिक प्रोसेस को लेकर के वातावरण में एटमॉस्फेयर में जो भी एक्टिविटीज हो रही है उसमें काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से जो हमारे न्यूमेरिकल मॉडल्स हैं जिनको हम हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटर पर रन करते हैं और हमें गाइडेंस मिलता है जिसके बेसिस पर हम लोग फोरकास्ट इशू करते हैं, तो इसमें भी काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट जो है वो देखने को मिल रहा है। जहां तक बात है भारत मौसम विज्ञान बाकी, तो पिछले 10 वर्षों में आप देखेंगे कि जो हमारा ऑब्जर्विंग नेटवर्क है, ऑब्जर्वेशन नेटवर्क है, बहुत ज्यादा उसमें बढ़ोतरी देखी गई है। जो हमारे सैटेलाइट सिस्टम्स है उसमें बढ़ोतरी हुई है, बहुत उन्नत हुए हैं। साथ साथ में रडार है उसका कवरेज भी काफी बढ़ गया है, जिसकी वजह से जो ये अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे जो काफी इंटेंस रेनफॉल एक्टिविटी को, उसको भी ट्रैक करने में काफी ज्यादा रियल टाइम में मदद मिलती है। इसके साथ साथ जो मॉडल्स हैं, जो न्यूमेरिकल मॉडल्स हम लोग यहाँ रन कर रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में भी, और साथ साथ में जो अन्य संस्थान है भारत सरकार के, वहां पर भी वो जो मॉडल्स रन किए जा रहे हैं उसमें काफी ज्यादा रिजोल्यूशन में परिवर्तन हुआ है, इम्प्रूवमेंट हुआ है, और काफी हाई रेजोल्यूशन मॉडल जो फ्रेमवर्क है वो डेवलप किए गए हैं और उनके बेसिस पे जो गाइडेंस मिल रही है उसको उपयोग करके पूर्वानुमान दिया जा रहा है। इसके साथ साथ में AI का भी काफी ज्यादा इस्तेमाल अब शुरू हो गया है, और AI ML को यूज करके, यानी कि जो कृत्रिम जो इंटेलिजेंस

0: है ये, इसका भी काफी भरपूर उपयोग किया जा रहा है ताकि पूर्वानुमान को और अधिक सटीक बनाया जा सके।
1: जी हाँ बिल्कुल, मॉनसून भारत के लिए केवल एक मौसम नहीं बल्कि जीवन, जीविका और विकास का आधार है। इसकी हर बूंद खेतों में अन्न, गांव में अवसर और अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा लेकर आती है। आज की चर्चा से ये साफ है कि मॉनसून का पूर्वानुमान केवल बारिश का अनुमान नहीं बल्कि कृषि उत्पादन, ग्रामीण रोजगार, बाजार की मांग और देश की आर्थिक गति से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संकेतक है। साथ ही बदलती जलवायु परिस्थितियों में वैज्ञानिक पूर्वानुमान, आधुनिक कृषि तकनीकों और जल संरक्षण के उपायों का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। डॉक्टर श्रीवास्तव और डॉक्टर डबास, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे मॉनसून पूर्वानुमान, कृषि क्षेत्र के लिए संभावनाओं और चुनौतियों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। चर्चा का विषय है

मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ एवं एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है कार्यक्रम फिल्मी गज़लें। दोस्तों, गज़ल की बात करें तो ये गज़ल जो है अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। लुगत में इसके माने औरतों की बातें करना या औरतों से बातें करना। अरब के शायर जब अपनी माशूकाओं का सरापा खींचते या उनकी बड़ाई करते या उनके हुस्न व जमाल की तारीफ़ करते, उनकी खूबसूरती की तारीफ़ करते, उनकी मोहब्बत में अपने दिली जज्बात का इजहार करते जब, तो इस अमल को तगज़ल और ऐसे अशार को गज़ल कहते थे। अरबी में गज़ल इश्किया अशार को कहते हैं। अरबी गज़ल में मतलब भी होता था और गज़ल की हयत के मुताबिक दूसरे अशार के तमाम मिसरे हम काफिया भी होते थे। गज़ल का हर शेर मुस्तकिल मज़मून का हामिल नहीं होता था। अरबी से गज़ल फ़ारसी में आई। फ़ारसी शायरों ने गज़ल को अपने अपने ढंग से सजाया, कई बड़े कारनामे अंजाम दिए। एक ये कि उन्होंने गज़ल के हर शेर को एक मुस्तकिल मज़मून का हामिल बनाया, यानी कि एक शेर में एक ही बात। गज़ल के हर शेर में एक मुस्तकिल मज़मून अदा करने की कोशिश के नतीजे में गज़ल के अंदर इशारों और किनायों में बातें करने की सलाहियत पैदा हुई। बड़े से बड़े मज़मून को अलामत, तस्बीह और इस्तेआरे के पर्दे में, यानी खुलकर बात नहीं कहने के, तो इस तरह की बातें पर्दे में किया करते थे। और ये तो आप जानते हैं कि दो मिसरों में एक गज़ल होती है। गज़ल में 5 अशार होते हैं, दो दो मिसरे के, और 5 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो चलिए, बातें तो और होती रहेंगी। अब एक प्यारी सी गज़ल हम आपको सुनवाते हैं। इसे हमने लिया है अदालत फिल्म से। आवाज़ बहुत प्यारी है लता मंगेशकर की। इस गज़ल को लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने और मौसिकी जो दी है वो मदन मोहन ने दी है। आइए इस गज़ल का लुत्फ़ लीजिए।

उनको ये शिकायत है कि हम कुछ नहीं कहते, कुछ कहने पे आओ तो उठा लेती है दुनिया। मतलब हम किस तरह की बात करें अपने महबूब से, ये मेरे महबूब को कौन सी बात अच्छी लगे वो बात एक शायर ही कह सकता है। वो अपनी बात को किस तरह से रखता है अपने महबूब के सामने, यानी उसका महबूब उससे नाराज़ भी नहीं हो और वो उससे खुश रहे, उसका साथ देता रहे, उसकी बातों से उसके लहजे से मोहब्बत टपकती रहे। तुझसे लफ्ज़ों का नहीं रूह का रिश्ता है मेरा, तुझसे लफ्ज़ों से नहीं लफ्ज़ों का नहीं रूह का रिश्ता है मेरा, तू मेरी सांसों में तहलील है खुशबू की तरह। किस किस बात को हम याद करें, तो आइए एक प्यारी सी गज़ल के ज़रिए हम आपको याद दिलाते हैं कि अपने महबूब से, महबूब की हर बातों को हम किस तरह से याद करते हैं। ये गज़ल हमने लिया है बाज़ार फिल्म से और आवाज़ है भूपिंदर की। गज़ल को लिखा है बशर नवाज़ ने और मौसिकी तो ज़बरदस्त है इसमें, और मौसिकार जो हैं वो खय्याम हैं।

अब हम बात करते हैं सैयद जानिसार हसैन रिज़वी और अख्तर तसल्लुस के

फिल्मी गज़लें आप सुन रहे थे आकाशवाणी की भागलपुर केंद्र से। अब सुनिए कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे पुरानी फिल्मों के गीत। आरंभ में सुनिए आदमी फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी और तलत महमूद की आवाज़ों में। गीतकार हैं शकील बदायूनी और संगीतकार हैं नौशाद।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में सुनिए महबूब की मेहंदी फिल्म का ये प्यारा सा गीत, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने और धुन दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

मेरे हुजूर फिल्म का गीत सुनिए। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गीतकार हैं हसरत जयपुरी और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

गीत फिल्म में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर को। ये प्यारे प्यारे हसीन गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से, कार्यक्रम है पुरानी फिल्मों से। और अब कार्यक्रम के अंत में सुनिए पाकीज़ा फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2,00,000 ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
1: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है, और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
2: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिए में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने

के बाद ये नियुक्ति हुई है। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धरमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉक्टर जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डीके शिवकुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत में आवागमन वाहन पारितंत्र अब किसी एक तकनीक पर निर्भर नहीं रहेगा। नई दिल्ली में हीरो मोटोकॉर्प की पहली फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल बाजार में उतारे जाने के अवसर पर उन्होंने कहा कि भविष्य का वाहन पारितंत्र इलेक्ट्रिक वाहनों, जैव ईंधन, हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा को भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप एकीकृत करेगा। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स्ड डबल्स प्रीक्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंगयांग को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।